আই বাহারা যাই বাহার বাহারা আই বাহার গুলশন মে।

आज फूलों का बुलबुल के दिया जोने को है, आज फूलों का बुलबुल के दिया जोने को है।

आखिर आप क्या हैं? हैं? आखिर तो आप फूल हैं, औलाद नहीं है, अजी बुलबुल हैं किसी बाग के, सयाद नहीं है।

हम वो हैं जिंदगी में कभी साथ न छोड़ेंगे, थामेंगे अगर हाथ तो फिर हाथ न छोड़ेंगे।

0: अहो ऐकलत का?
1: हो आमचा रेडिओ पुणेरी, हो आमचा रेडिओ पुणेरी।
2: शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुणेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: किसी की एक लाइन मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पर असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब्ड रही, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चले होंगे, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चले होंगे। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व्ड बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती व्हेन दे आर अंडर स्ट्रेस, कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है। सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन। इफ आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे। आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे 8 घंटे जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट, वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रांग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

खुशियों की गुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: ओम शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज फिर आप सबका स्वागत। इन दिनों हम बात कर रहे थे सेल्फ मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट की कई कोर्सेस हम करते आ रहे हैं और अगर करियर में है तो बहुत सी बातें जहां स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात है, एंगर मैनेजमेंट की, लेकिन अब तक हम ये समझ नहीं पाए थे कि सेल्फ को भी मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सेल्फ को ही नहीं पहचानते थे। खुद की पहचान के साथ साथ जहां मैनेज करने की बात आई, वहां पहली बात जो आई थी वो है सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि मेरी एबिलिटी क्या है किसी भी सिचुएशन पर रिस्पॉन्ड करने की, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं अपने प्रति सबसे पहले जिम्मेवार हूं और उसके बाद बाकी जिम्मेवारियां मेरे सामने आती हैं। अगर पिछली कड़ी को एक बार थोड़ा सा और देखें तो हमने बात की थी कि अगर मैं अपनी खुशी और अपने दुख की जिम्मेवार हूं तो फिर मैं किसी और की खुशी या दुख की जिम्मेवार नहीं हो सकती। आज थोड़ा सा और इस बात को आगे बढ़ाते हैं। हमारा सौभाग्य हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। जिस तरह से पिछले एपिसोड में आपने बताया था कि मेरे साथ मैं जो क्रिएट कर रहा हूं, मैं जो भी इमोशन क्रिएट करती हूं, जो भी थॉट फीलिंग क्रिएट करती हूं, उसकी जिम्मेवारी मेरी हो जाती है। तो अगर मैं खुश हूं अपनी वजह से हूं, मैंने क्रिएट किया, और अगर मैं दुखी हूं तब भी मैंने क्रिएट किया है। यहां तक तो ठीक था, लेकिन जहां हमने ये बात की थी, क्योंकि उसका रिस्पांस भी आया है, बहुत से लोगों के मन में ये बात उठ रही है कि जब दूसरा दुखी होता है और वो वजह मैं बन रहा होता हूं कि मेरी वजह से हुआ, कोई सिचुएशन ऐसे क्रिएट हुई या कुछ हुआ, तो वो दुखी और वो बार बार मुझे कह रहा है आई एम सैड बिकॉज ऑफ यू, मैं तुम्हारी वजह से दुखी हूं, तो वो मुझे कैसे इफेक्ट नहीं करेगी। और दूसरी तरफ अगर मैं या कोई और किसी और के दुख के लिए जिम्मेवार नहीं हो सकता, तो फिर तो मैं अपने हिसाब से कुछ भी तरह से करता जाऊं। तो ये दो बातों को थोड़ा हम और चाहेंगे कि अगर हम खुले।
1: सी, पहली बात तो अपने को समझ लें। जब ये फिट एकदम क्लियर हो जाता है कि आई एम द क्रिएटर, तो जैसे आई एम द क्रिएटर, एवरीवन इज द क्रिएटर ना। इफ आई एम द क्रिएटर, यू आर योर क्रिएटर, तो हर एक अपना अपना क्रिएटर हो गया ना। हम संकल्प हमारी रचना है। जब सबसे पहली बात हमें ये समझ में आ गई कि मैं अपने संकल्पों का रचयिता हूं, सो आई एम द क्रिएटर, तो जैसे आई एम द क्रिएटर इरिस्पेक्टिव ऑफ सिचुएशन आई एम द क्रिएटर ना। यस, सिचुएशन ट्रिगर तो होती ही है, डेफिनेटली है, कि जब तक परिस्थिति आती नहीं, इट्स लाइक दिस स्टिम्यूलस रिस्पॉन्स। तो स्टिम्यूलस तो आएगा, वो व्यक्ति है, परिस्थिति है, वट एवर, स्टिम्यूलस रिस्पॉन्स, बिटवीन द टू फ्रीडम टू चूज द रिस्पॉन्स, ये बॉक्स तो आ रहा है ना बीच में। और इसीलिए देखा जाता है एक ही परिस्थिति में अलग अलग लोग हैं लेकिन रिस्पॉन्स अलग अलग होगा। एक ही ट्रेजेडी में अलग अलग लोग हैं, रिस्पॉन्स अलग अलग होगा। मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक कपल है जिनसे मिलना हुआ कुछ समय पहले। उनके 2 साल के बच्चे ने शरीर छोड़ा, 2-year-old चाइल्ड डाइड। स्टिमुलस, द डेथ ऑफ अ चाइल्ड, यंग बेबी, बड़ी बात है ना। इससे बड़ी बात कहेंगे तो क्या हो सकती किसी के लिए। लेकिन अब दो लोग

0: दोनों के सामने सेम स्टिमुलस। अब दोनों कौन है? पेरेंट्स है, तो दोनों के लिए स्टिमुलस जो आया है वो इक्वली हैवी है, इक्वली चैलेंजिंग है। दोनों का रिस्पॉन्स एक जैसा होना चाहिए। अगर स्टिम्युलस रिस्पॉन्सिबल है तो दोनों का रिस्पॉन्स एक जैसा होना चाहिए। अब इसमें हमने देखा कि एक जो वाइफ है उसने उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया। इसका मतलब ये नहीं कि उसके लिए लॉस बड़ा नहीं है या उसको कुछ लग नहीं रहा कि मेरा बच्चा चला गया। ऑफकोर्स द लॉस इज देयर, लेकिन फिर सिचुएशन को तो एक्सेप्ट करना ही होगा। और जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे आप फिर आगे मूव ऑन करेंगे। तो एक ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है एंड मूव्ड ऑन, यू नो, चाहे वो अपने जॉब में ऑक्यूपाइड है या लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दिया है, स्वीकार कर लिया है कि ये मेरे साथ हुआ है। द फादर ऑफ द चाइल्ड एक्सेप्ट नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे अब खुश रहने का कोई हक नहीं है। दैट इज द रिस्पॉन्स। सेम स्टिमुलस, दो रिस्पॉन्स। She says, I have understood, not in my control, I have to move ahead. He says, I will never be happy, I have no right to be happy. Same situation, different response. और simple level पर ये तो फिर भी एक बहुत बड़ी बात है। आप एक office में देख लो, हम suppose 10 लोगों की एक team है, एक ही boss है। एक boss ने आज एक एक करके सबको बुलाया, suppose हम सब ने एक गलती कर ली, एक एक को बुलाया, डांट दिया, एक ही response होगा सबका। Stimulus एक ही है, परिस्थिति एक ही है, रिस्पॉन्स हर एक का अलग अलग। तो जब हम हर सीन में ये देखते हैं कि सेम सिचुएशन अलग अलग लोग अलग अलग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो रिस्पॉन्स कौन क्रिएट करेगा?
1: हम खुद लोग।
0: जितना भी हम दर्द में जाएंगे हम सब उस परिस्थिति को ब्लेम कर रहे हैं। लेट्स से बॉस से डांट पड़ी तो हम अपनी अपनी सीट पर चले गए, किसी को 5 मिनट लगा ठीक होने में, किसी को 5 घंटे लग गए, किसी को तो 5 दिन लग जाते हैं ठीक होने में कि क्यों मुझे डांटा। अलग अलग रिस्पॉन्स, राइट? लेकिन जो 5 मिनट भी अपसेट है या 5 दिन भी अपसेट है, दोनों ब्लेम किसको करते हैं?
1: बॉस को।
0: अब दर्द का लेवल तो अलग अलग है, लेकिन दोनों ब्लेम किसको कर रहे हैं? क्योंकि दोनों ये सोच रहे हैं कि मेरे दर्द का कारण there. Now here I have to understand, I am the creator, not the boss. The boss is the stimulus which has come from outside. So aap koi bhi paristhiti mein dekh lo.
1: Achha, to matlab baat ye aayi ki kis boss ne daanta, suppose ye example lete hain, boss ne daanta, jaiz matlab ye baat ye kahi jati hai ki it will hit, okay, jo
0: boss is not going to hit.
1: No, whatever he's going to say comes to me. And of course I will not like, this is the first response, this is my response also, but how do I shield it then? See, if his reaction, matlab whatever he has reacted, main usse affect na hu, aise kaise ho sakta hai?
0: Nahi, ye baat nahi hai. Aapne jo kehna hai wo aapne kiya. Let's say you're my boss just now, okay? So aapko jo kehna hai aap kahenge. Pehli baat, aap us basis par kahenge jo aapki state of mind hai abhi. Kabhi kabhi galti to itni hoti hai, लेकिन आपका ही मूड ठीक नहीं होगा, सो यू आर जस्ट गोइंग टू रिएक्ट। बट मुझे अब पहली बात ये समझना होगा कि आपका जो रिएक्शन है वो आपकी क्रिएशन है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने जो इतना जोर जोर से शोर मचा दिया, दैट्स बिकॉज आप दर्द में हैं, बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन, नॉट बिकॉज यू हेट मी। द फर्स्ट थिंग वाई आई गो इन टू पेन इज इवन इन अ बॉस कोलीग, इवन अ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप। अब सपोज हस्बैंड पूरा दिन ऑफिस से आए, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स, अपने अपने कॉम्प्लेक्सेस, आके वाइफ को डांट दिया, जोर से कुछ कह दिया, तो वाइफ इफ शी अंडरस्टैंड्स कि ही रिएक्टेड लाइक दिस बिकॉज ऑफ हिज ओन पेन, बिकॉज वो दर्द में है। शोर कौन मचाता?
1: जो दर्द में
0: होता है। लेकिन बुरा उसको इसलिए लगता है, मुझे ऐसा कहा, मतलब वो मुझसे नाराज है, मतलब वो मुझसे नफरत करते हैं, मतलब वो मुझसे प्यार नहीं करते, कंक्लूजन हो गया। तो आई गो इन टू पेन, वंस आई गो इन टू पेन आई कांट अंडरस्टैंड दैट यू आर इन पेन।
1: अच्छा, और ये जो सारे थॉट्स ही मैंने क्रिएट किए थे,
0: ऑफकोर्स
1: उन्होंने जो कुछ किया वो तो किया है क्या, उनके करने से, उनके क्रिएशन से मैंने क्रिएट किया।
0: तो फिर हम वही कह रहे हैं ना बार बार, कि सिचुएशन, सी द हस्बैंड इज देयर, द बॉस इज देयर, वट एवर, समबडीज डेथ इज देयर, बट उसके सामने एक एक थॉट जो क्रिएट किया वो किसने क्रिएट किया?
1: हाँ, वो मैं, बट अब वो सिचुएशन ही ऐसी है

0: थॉट में दूसरा कैसे क्रिएट,
1: मैं ये थॉट क्रिएट कह रहे हैं ना कि वही सिचुएशन में अलग अलग लोग अलग अलग थॉट्स क्रिएट करते हैं,
0: तो मैं बेस्ट रिस्पॉन्ड करूं।
1: दैट वॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सिचुएशंस अलग अलग आनी है, लाइफ इज दैट, अलग अलग सीन्स आने हैं, हर परिस्थिति में व्हाट इज द बेस्ट रिस्पॉन्स फॉर मी।
0: एंड इफ यू स्टार्ट स्ट्रेट अवे ब्लेमिंग यू, यू आर रिस्पॉन्सिबल,
1: क्योंकि अगर मैं दर्द में चली गई, आपने मुझे गुस्सा किया, मैंने ये नहीं देखा कि मेरे पास कोई चॉइस है, मैंने दर्द क्रिएट किया, तो मैं किसको जिम्मेवार ठहराऊंगी? तो आपको जिम्मेवार ठहराऊंगी तो आपसे नफरत करूंगी। फिर चेंज किसको होना चाहिए?
0: मुझे।
1: दैट्स हाउ द होल विशेस साइकिल अगेन गोज एंड अगेन आई कीप टॉकिंग अबाउट यू हैव टू चेंज एंड डोंट बॉदर दैट आई हैव टू चेंज बिकॉज आई थॉट मैं जो दर्द क्रिएट किया उसका रिस्पॉन्सिबल कौन था?
0: वो व्यक्ति था।
1: इसीलिए हमने कहा बार बार भी ये सेंटेंस अगर ले लो ना दैट यू आर द क्रिएटर, यू आर द क्रिएटर।
0: उन्होंने तो दे डिडंट बिहेव, ही डिडंट बिहेव राइटली विद मी।
1: या बट डिड आई रिस्पॉन्ड राइटली?
0: हाउ शुड आई रिस्पॉन्ड? ओके
1: येस अग्रीड, वी आर नॉट सेइंग कि किसी का बहुत जोर जोर से चिल्लाना या बहुत वो बहुत अच्छी बात है आपके लिए, लेकिन ठीक है उन्होंने जो किया सो किया, अब मैंने क्या करना है? अटेंशन जब इस तरफ आएगी तभी तो
0: तो उस तरफ तो आती नहीं है ये।
1: एंड फिर मैंने सोचा कि मैंने जो थॉट्स क्रिएट किए वो सारे इसलिए क्रिएट हो रहे थे क्योंकि उन्होंने गुस्सा किया,
0: स्टिमुलेट कहीं हुए। ओह गॉड यस।
1: तो फिर किसको चेंज होना चाहिए? इट्स वेरी डीप रूटेड क्योंकि मैंने ये नहीं सोचा कि ये मैं क्रिएट कर रही हूं, ये मैं क्रिएट कर रही हूं। इफ आई कैन से उन्होंने ऐसा क्यों किया, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, कैन आई ऑल्सो क्रिएट अ थॉट वो इतने दर्द में है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, वो मेरे से नाराज नहीं है, एक्चुअली वो कोई और पेन में है, लेट मी फाइंड आउट दैट। इट कुड बी अ डिफरेंट रिस्पॉन्स, इट कुड बी अ रिस्पॉन्स कि हाँ वो दर्द में है लेकिन मैं अपना ध्यान रख लूं ताकि अपना ध्यान रख के मैं उनका भी ध्यान रख सकती हूँ। डिफरेंट रिस्पॉन्स।
0: बट ही इज शाउटिंग एट मी, यू नो, ही इज अक्यूजिंग मी, ही इज सेइंग सो मेनी बैड थिंग्स टू मी, ही इज टेलिंग मी दैट यू आर नॉट
1: थ्रोइंग आउट हिज फ्रस्ट्रेशन एंड हिज पेन एंड आई कंज्यूम दैट पेन।
0: सो आई हैव टू यू नो प्रोटेक्ट माई सेल्फ। सी
1: आई कंज्यूम एंड क्रिएट एंड वी स्टार्ट विद इवन वॉचिंग द टेलीविजन, वॉचिंग अ मूवी। आप देखो ये तो फिर भी हमारे रिश्तेदार है ना, वॉट अबाउट वो जो एक्टर्स जो टीवी पर है या जो आप मूवी में हैं, वहां वो गुस्सा करते हैं बुरा हमें लगता है यहाँ बैठकर, वहां कोई शरीर छोड़ता है रोते हम हैं यहाँ बैठकर, क्या कर रहे हैं? हाउ मेनी पीपल सिट एंड क्राई विद द मूवी?
0: आई डू दैट,
1: यू डू दैट। सो सी दैट्स फ्रॉम वेयर द हैबिट इज गोइंग वेरी डीप, कि कैसे हमारी इमोशंस जो हैं वो हम दर्द को कैसे कंज्यूम कर लेते हैं कि वो दर्द में है लेकिन उन्होंने हमें वो दर्द नहीं दिया, वो उनका अपना दर्द था जो उन्होंने बाहर निकाला। जब मूवी भी है, चलो अब तो सामने तो कोई नहीं है ना, वो तो स्क्रीन के ऊपर है, यहाँ हम क्यों रो रहे हैं? ये किसने क्रिएट किया? वो एक्टर ने थोड़ी क्रिएट किया आके,
0: वो तो हमें आके कुछ भी नहीं कह रहा।
1: अब उसी सिनेमा थिएटर के अंदर सब लोग तो नहीं रो रहे ना। सो एवरीवन इज क्रिएटिंग देयर ओन थॉट्स। इसको आप जितना हर सीन में देखते जाओगे ना, यू विल एंजॉय द डे, यू विल एंजॉय, क्योंकि आप देखते जाओगे आई एम क्रिएटिंग,
0: मैंने क्या क्रिएट किया।
1: इट्स वेरी नाइस एंड दिस इज सेल्फ अवेयरनेस। इट डजंट मीन कि हम फर्स्ट डे में परफेक्ट हो जाएंगे, बट देन द जर्नी बिगिन्स कि ये जो अभी अभी मैंने जेलसी का थॉट क्रिएट किया, ये किसने क्रिएट किया? मैंने क्रिएट किया, नहीं ये उसकी वजह से, ना ना ना, मैंने क्रिएट किया,
0: मैंने किया,
1: मैंने क्रिएट किया। ये अभी जो
0: रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी, यस,
1: ये अभी अभी जो हर्ट हुआ, कौन हर्ट हुआ? मैं हर्ट हुई, किसने क्रिएट किया? लेकिन उन्होंने बोला, हाँ उन्होंने बोला, हर्ट किसने क्रिएट किया? दिस इज टॉकिंग टू माई सेल्फ। एंड जैसे जैसे हम ये करते जाएंगे, हमारा रिश्ता अपने आप से
0: हाँ वेरी स्ट्रांग हो जाएगा।
1: I start looking after myself. It doesn't mean that day one I will become pain free. No, it's not going to happen.
0: No, no, yes, yeah. I continue to react. Yeah. Actually,
1: but the journey has begun. The journey has begun. कि हम अपने साथ अपने ऊपर देखना शुरू कर देते हैं. अभी भी hurt होंगे कभी कभी. अभी भी गुस्सा आएगा. लेकिन blame बंद हो जाएगा. उसकी वजह से, उसकी वजह से, उसकी वजह से, ना ना, मेरे रिस्पॉन्स, मेरा रिस्पॉन्स। डू आई हैव अ चॉइस? येस। व्हेन डू आई वांट टू चेंज? नाउ, कम ऑन, यू नो। सो यू स्टार्ट वर्किंग, आप अपने कोच बन जाते हैं। जैसे गिरा, कौन गिरा? मैं गिरी। किसकी वजह से गिरी? अपनी वजह से। उठो फिर, चलो मूव, दिस. सो कॉन्स्टेंटली फिर आपका अटेंशन किस पर होने लग जाता है?
0: अपने ऊपर.
1: मेडिटेशन है ना. दिस इज व्हाट इट इज. अभी तो अपने लिए टाइम नहीं था ना, क्योंकि सारा ध्यान तो इसको इसको इसको सबको चेंज होना था. तो इतने लोगों की तरफ ध्यान था तो अपने ऊपर नंबर ही नहीं आया मेरा अपने ऊपर ध्यान रखने का. अब मुझे जब समझ में आया कि और कोई नहीं क्रिएट कर रहा है.
0: ओ वेरी गुड. यू नो द सिचुएशंस को लेकर जो टेंशन होती है, जो इनसिक्योरिटी है, वो सब आई कैन स्टॉप डूइंग दैट एक्चुअली.
1: ऑफकोर्स
0: यू नो बिकॉज आई एम क्रिएटिंग इट. आई एम सो इनसिक्योर, आई एम फीलिंग सो टेंस, आई एम सो स्ट्रेस्ड आउट. So it's like I can do it, I can stop it now, right now. Because I am creating it.
1: Every time. This is very deep. इसको practice करना, ये एक बहुत बड़ी जिसको कहे ना liberation हो जाती है blame culture से, कि दूसरे जिम्मेवार हैं, दूसरे. I can never be happy then. I can never be happy. Now when I start looking at myself, I am creating, I am creating. होगा दर्द कभी कभी, लेकिन ठीक होने में कितना time लगेगा?
0: हाँ, because the moment this thought, yeah. But it has to rub in actually.
1: इसलिए एवरी डे, एवरी डे आई एम द क्रिएटर. सम पीपल से लेकिन आपको नहीं पता वो क्या कर रहे हैं. यस, वो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी रिस्पॉन्स, क्योंकि अपनी जीवन का जिम्मेवार मैं हूं, वो अपनी जीवन के जिम्मेवार हैं. तो वो जो क्रिएट कर रहे हैं वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और मैं जो क्रिएट करूंगा
0: मैं अपने लिए. लेकिन अगर वो गलत करते हैं, सपोज हमारे बच्चा है या कोई भी है, वो गलत पे गलत गलत पे गलत करता जा रहा है, तो एटलीस्ट अच्छा, बट आई डोंट हैव टू टेक क्रिएट द पेन, बट आई हैव टू क्रिएट दिस थॉट दैट दिस इज रॉन्ग.
1: आई कैन,
0: एक्शन इज रॉन्ग.
1: आई कैन टेल हिम वट इज राइट टू डू, बट दैट डजेंट मीन आई हैव टू गो इन पेन. यू नो फॉर एग्जाम्पल, बच्चा उल्टा जवाब दे दिया, थोड़ा सा रूडली बात कर दिया. आई जस्ट रिसेंटली एट अ प्रोग्राम, वी हैड टू डेज प्रोग्राम, तो एक दिन हमने ये टॉपिक डिस्कस किया कि आज सारा दिन स्टेबल रहना है, और नेक्स्ट डे वी वर गोइंग टू आस्क कि व्हाट इज द रिजल्ट. तो एक यंग मदर शी केम एंड शी सेड कि मैं जैसे ही प्रोग्राम के बाद घर पहुंची, तो मेरे को लगता है 3 या 4 साल की डॉटर उसकी, तो वो मेरे साथ बहुत गुस्सा थी कि मैं उसको प्रोग्राम में नहीं लेके गई, मैं घर छोड़ गई थी उसको इतने घंटे के लिए. तो मैं जैसे ही पहुंची वो मुझसे बहुत रूडली बात करने, क्योंकि आजकल छोटे छोटे बच्चे भी, तो शी सेड वो इतना रूडली बात किया. शी सेड मैंने एक बार उससे प्यार से बात किया कि बच्चे मैं तुमको शाम को ले जाऊंगी, उसने फिर से किया. शी सेड क्योंकि मुझे याद था कि आज मुझे डिस्टर्ब नहीं होना है. शी सेड उसने 3 बार ऐसा किया और मैंने 3 बार अपने ऊपर ध्यान रखा कि मुझे डिस्टर्ब नहीं होना है, एंड शी सेड द मैजिक वॉज वो ठीक हो गई. शी सेड दैट वॉज लाइक A realization hit me. She said, क्योंकि पहले अगर वो मेरे साथ इस तरह से rudely बात करती तो I would have shouted back at her कि ये कोई बात करने का तरीका नहीं है, या कभी तो जोर से उसको एक मैं लगाई देती उस टाइम. She said, वो ठीक हो गई. She said, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? बच्चों को ठीक करना. लेकिन हम ठीक कैसे करते हैं? जैसे एक बच्चा रूडली बात कर रहा है, हम उससे और रूडली बात करके उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं. हम उसको डांट कर बताते हैं कि रूडली नहीं बोलना चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं? रूडली बोलकर उसको बोल रहे हैं कि रूडली नहीं बोलना चाहिए. हाउ विल इट वर्क? सो आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई रिस्पॉन्स. अब वो बच्चा रूडली बात कर रहा है, वो राइट कर रहा है, रॉन्ग कर रहा है, इज नॉट द क्वेश्चन एट ऑल. वो स्टिम्युलस है. आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई रिस्पॉन्स.
0: इन फैक्ट सो राइटली सेड दैट हम रूडली बोल के उनको बोलते हैं कि रूडली नहीं बोलना चाहिए.
1: वो गुस्सा कर रहे हैं, हम गुस्सा करके उनको बोलते हैं कि गुस्सा नहीं करना चाहिए. वो डिसिप्लिन्ड नहीं है, हम आउट ऑफ कंट्रोल जाकर उनको बोलते हैं डिसिप्लिन्ड होना चाहिए. हाउ विल इट वर्क? हाउ विल इट वर्क? लेकिन हम उस टाइम क्यों आउट ऑफ कंट्रोल चले जाते हैं? क्योंकि हम कहते हैं वो स्टिम्युलस ऐसा है कि मुझे इस तरह से डिस्टर्ब तो होना ही चाहिए. अगर मेरा बच्चा रूडली बात करे तो मैं क्या डिस्टर्ब नहीं हूं? सो मेरे डिस्टर्बेंस का कारण कौन? आप. द डे दिस थिंग स्टार्ट सिंकिंग इन कि आसपास मेरे चाहे कोई कुछ भी करे फिर भी रिस्पॉन्स मेरे हाथ में है, तो सारा ध्यान किस पर आ जाएगा?
0: अपने ऊपर.
1: माई रिस्पॉन्स. एंड दैट फॉर दैट लेडी दैट डे इट वॉज लाइक She said, "This is the way to bring up children. I have understood it, and it was her practical experience. It was not theory." She said, "इस तरह से तो बड़ा करना है इनको. हमें सिर्फ अपना ध्यान रखना है. वो तो अपने आप ठीक हो गई." She saying, "और यही मैं अगर उसको बोल के ठीक करने की कोशिश करती, तो ध्यान किस पर रखना था? रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे की नहीं लेनी है. हमने क्या सोचा? बच्चे को ठीक करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अपने को ठीक रखना, दूसरों को सुधारना हमारी जिम्मेवारी हो चुकी है. Without taking care of myself.
0: My response Oh, very true. That is what stability is all about.
1: That is what stability is all about.
0: Yeah, ek aur

0: 20 years they have been sitting at home, और 20 साल के बाद भी ये regret कर रहे हैं अपना वो decision.
1: इनकी वजह से मैंने
0: तो फिर वो घर रहकर भी खुशी कहाँ हुई. फिर हम कहते हैं हमने उनके लिए इतना किया इतना किया इतना किया, वो अभी भी खुश नहीं है. वो क्यों खुश नहीं है? क्योंकि हमने किया किया किया बहुत कुछ, लेकिन हम खुश नहीं थे. तो हम जब खुश नहीं थे तो वो खुश कैसे होंगे?
1: बहुत इम्पोर्टेंट बात है, वही ट्रूथ से शिवानी, कि जो भी हम कुछ कर रहे होते हैं वही दूसरों के प्रति भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम निभा रहे हैं,
0: विद स्टेबिलिटी,
1: हाँ, विद एंड हैप्पीनेस, यू नो,
0: दैट इज स्टेबिलिटी. हम डूइंग लेवल पर निभा रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं. कहेंगे मैं अपने इन लॉज का ध्यान रखती हूँ, मैं हस्बैंड, मैं तो सारा दिन घूमती रहती हूँ, इतना कुछ करती हूँ, फीलिंग क्या है? कहते फिर भी कोई खुश नहीं होता. कैसे होगा अगर मैं दर्द में हूँ वो सब करने के टाइम? तो इसलिए डूइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी से पहले फीलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुश रह कर सब कुछ करना है, फिर आप कोई खुश हो सकता है. नहीं तो आप दर्द में तो सब लोग दर्द.
1: और सबसे बड़ी बात जो हमें ताकत मिल जाती है वो ये कि खुश रहना मेरा अपने हाथ में है. आई कैन क्रिएट इट एनी टाइम आई वॉन्ट. इनफैक्ट आप सबसे हम यही कहेंगे कि वो हैप्पीनेस के मूवमेंट्स को खुद क्रिएट करें, हैप्पीनेस के थॉट्स को खुद क्रिएट करें, और फिर हम काम, इनफैक्ट कोई भी काम शुरू करने से पहले, इनफैक्ट आई थिंक समवेयर वी शुड स्टार्ट विद दैट थॉट.
0: एंड दैट्स व्हाई वी स्टार्ट विद 1 मिनट साइलेंस. आप दिन की शुरुआत मेडिटेशन से करें, बीच बीच में रुक कर हमारा है कोई कार्य शुरू करने लगे हैं, पॉजिटिव थॉट. You know, happiness is not excitement, jump kar rahe hain sara din. Happiness is positive thought, stable thought. I can do this, I will do this with stability. Taki beech mein wo negative thought nahi aaye. Hoga ya nahi hoga, mere se hoga, pata nahi kya.
1: वो पता नहीं वो कैसा फील करेंगे, उनको क्या फीलिंग होगी. वेरी ट्रू शिवानी, आज की इस बात ने कहीं ना कहीं हमें एम्पावर किया है और एक क्लैरिटी के साथ बात सामने आई है कि वेयर वी स्टैंड. थैंक यू सो मच. इस पूरी श्रृंखला के दौरान पूरी बातचीत में कहीं कोई ऐसी बात लगती है जिसको आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, आपके लिए ये स्टिमुलस है, और अगर आपका कुछ रिस्पॉन्स है आपका हम स्वागत करते हैं. आप इस प्रोग्राम में जरूर शामिल हों, चाहे फोन द्वारा या फिर ईमेल पर संपर्क करें.
2: हमारे फोन नंबर है 9999344555, 9999344666, 9873666555, और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@bkmail.org.
1: अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज इतना ही. आने वाली कड़ियों में और बातें करेंगे सेल्फ मैनेजमेंट से जुड़े हुए. अभी आपसे विदा लेते हैं. ओम शांति.

0: शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गलती तो गलती हुई ना, दूसरे की गलती को अगर पहली बात हमें कोई राइट भी नहीं है, लेकिन दूसरे की गलती को चेक करने का आपको हक तब है जब आप बिल्कुल परफेक्टली राइट पर हैं। आप भी गलती करके दूसरे की गलती को सुधारें तो उसके दूसरे के ऊपर कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उस चीज का पड़ेगा ही नहीं। एंड इसीलिए हम सब लोग दूसरों को सुधारने की कोशिश करते रहते हैं, बट इट्स नथिंग इज रियली वर्किंग, इट वोंट वर्क दैट वे, क्योंकि हम खुद वो गलतियां या उससे भी बड़ी गलतियां कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप एकताहित रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पुण्याचा आवाज तुमच्या हृदयाचा साते। पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशिया बाटो।
1: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: आदत बनी कैसे? करते करते करते करते आदत बनी। अब एक नए तरीके से उन्हीं चीजों को करेंगे तो एक नई आदत बन जाएगी। जब हम एक ही तरह से सोचते जाते हैं हर सिचुएशन में, अगर हमारा एक टिपिकल वे ऑफ रिस्पॉन्ड होने लग गया या रिएक्ट होने लग गए, लेट्स से किसी की आदत हो गई इरिटेट होने की कि चिढ़ के बोलना है, कुछ भी हुआ चिढ़ के बोलना है। किसी की आदत हुई क्रिटिसाइज करना है कि सामने वाले ने कुछ भी काम किया हो ना, उसने उसके अंदर कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेना। अब करते करते एक बार किया होगा, दो बार किया होगा, दस बार किया होगा, दस लोगों को किया होगा, करते करते उस आत्मा को खुद ही नहीं पता चलता।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम सरस्व, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

ओम शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। आपको बता दें, एक बार फिर याद दिला दें कि लाइफ स्किल्स इस श्रृंखला में हम और आप साथ साथ हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी ऐसी स्किल्स हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं अपने जीवन की जो शायद हम उन टेक्निक्स को नहीं सीख पाए और इसीलिए आज हम दुख, दर्द, भय, इन सारे सर्कमस्टांसेस में इन सारे अनुभवों को प्राप्त कर रहे हैं। अगर याद हो पिछली कड़ी में हमने बात की थी कि जो भी हम लोगों के बारे में सोचते हैं

0: वो उन तक हमारे बोलने से पहले ही पहुंच रहा होता है। एक और बात जो हमने जानी थी कि जब भी हम किसी की कमजोरी देखते हैं, धीरे धीरे वो कमजोरी हमारे अंदर आनी शुरू हो जाती है, उसकी टेक्निक को समझा था। इसीलिए अगर हम पॉजिटिविटीज देखें, हर एक की विशेषता देखें, तो वो मुझ में आनी शुरू हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि कितने तरह के विचार होते हैं, कौन से ऐसे थॉट्स हैं जो हम क्रिएट करते हैं और फिर उनका हम पर क्या असर होता है। हमारे साथ हैं साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी, दोनों का स्वागत। डॉक्टर पटेल, एक बात तो हम फटाफट रिवाइंड जो हमने अभी शुरू में भी कही है कि किसी की विशेषता देखते हैं या नेगेटिविटी देखते हैं, वो धीरे धीरे हम पर आ रही है। अब हमने ये भी आपकी बात मान ली कि हम थॉट क्रिएट कर रहे हैं और फिर फीलिंग जो है वो क्रिएट होती है। अब कौन से ऐसे थॉट्स हैं जो ज्यादा हावी होते हैं, कितनी तरह के हम, क्योंकि आई थिंक थॉट्स तो
1: मतलब
2: थॉट्स हावी होते हैं। अगेन हावी मेरे पे कौन सी चीज होगी जो ऐसे सी चेंज ट्राई एंड बी अवेयर, हावी नहीं होते हैं। कौन से ऐसे थॉट्स हैं जो हम ज्यादा क्रिएट करते हैं,
0: ज्यादा उनका जो फीलिंग्स है,
2: हाँ,
0: जो ज्यादा स्ट्रांग
2: जो हम क्रिएट करते हैं,
0: तो कौन से ऐसे थॉट्स हैं जो मैं ज्यादा क्रिएट करता हूँ और फिर उनका मुझ पर क्या असर होता है।
1: आपने जो पहले पूछा कि भी कितने प्रकार के थॉट्स होते हैं, इस पर मैंने थोड़ा चिंतन किया है और इसलिए गहराई से सोचा कि जब ज्यादा प्रकार के थॉट्स के बारे में हमें पता चलेगा तो हम जागृत होंगे, कॉन्शियस होंगे। कई लोग ये भी कहते हैं चार प्रकार के थॉट्स होते हैं, मैंने थोड़ा गहराई से सोचा और कुल प्रकार से क्लासिफाई किया कि सात प्रकार के विचार हैं।
0: सेवन
1: टाइप्स ऑफ थॉट्स। एक तो है टॉक्सिक थॉट्स,
0: टॉक्सिक,
1: हाँ, जो कहेंगे जहरीले विचार,
0: हाँ,
1: जैसे ना टॉक्सिन्स जो क्रिएट करते हैं,
0: तो बॉडी में इतने टॉक्सिन्स की बात होती
1: है, थॉट्स भी टॉक्सिन्स क्रिएट करते हैं।
0: ओके,
1: जैसे क्रोध के विचार, फिर भय के विचार, बदला लेने के विचार, ये जो सब है, जेलसी,
0: मतलब जो ज्यादा एनर्जी से भी भरे होते हैं, मतलब इफ यू रियली लुक एट
1: एनर्जी
0: उनमें, हाँ, वो काफी मात्रा जो है कंटेंट ज्यादा होता है,
1: इमोशंस है, और वो जो केमिकल्स रिलीज करते हैं ना वो भी टॉक्सिक केमिकल्स
0: हैं,
1: एड्रिनालिन, नॉर एड्रिनालिन और भी ऐसे कोर्टिसोल रिलीज करते हैं, तो सब सच में टॉक्सिक केमिकल्स है। दूसरे है नेगेटिव थॉट्स, वो उससे भले कम उसकी मात्रा है लेकिन फिर भी वो नेगेटिव थॉट्स है कि असफलता के विचार, बीमारी के विचार, यह जो सब है किसके अवगुण देखना, यह सब नेगेटिव विचार है। तीसरे है वेस्ट थॉट्स, वो भले नेगेटिव भी नहीं है लेकिन फिर भी वो वेस्ट है,
0: अननेसेसरी है,
1: हाँ, कि उस समय जरूरी नहीं है। आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं और उस समय उनको विचार आ रहा है कि खेलने जाना है, खेलना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, पढ़ते समय वो वेस्ट थॉट है, ऐसे उसको कहेंगे वेस्ट थॉट। चौथे है नेसेसरी थॉट्स, कि कहीं काम के विचार भी करने पड़ते हैं, आपको भोजन बनाना है तो कार्य करना है, उसके जो विचार है वह काम के विचार है। पांचवे कहेंगे राइट थॉट्स, कहीं पॉजिटिव थिंकिंग को मुश्किल समझते हैं परंतु कम से कम राइट थॉट्स तो होने ही चाहिए, कि जो परिस्थिति जैसी है वैसी देखो,
0: अच्छा उसको बड़ा चढ़ा के
1: नहीं, नहीं देखो, हाँ,
0: मतलब तो जो सही सिचुएशन है, स्थिति का आंकलन हो गया,
1: हाँ, वो जैसी है वैसी देखो, है ना। वास्तव में हम अलग अलग मिरर यूज करते हैं, परिस्थिति को हम विकृत रूप दे देते हैं उन मिरर्स के द्वारा। छठे है पॉजिटिव थॉट्स, कि भाई वह सकारात्मक सोच, और सातवा है एलिवेटेड थॉट्स,
0: ओके,
1: वो पॉजिटिव से भी हायर है क्योंकि उसके अंदर एक सचमुच पॉजिटिव एनर्जी है, ज्ञान के विचार, आध्यात्मिकता के विचार, वह है एलिवेटेड थॉट्स। तो ये सात प्रकार के विचारों को अगर अच्छे से हम समझे और फिर ये डिसाइड करें कि मेरे कौन से विचार चल रहे हैं, तो हम विचारों पर कंट्रोल प्राप्त कर सकेंगे।
0: पहले अवेयरनेस और उसके बाद इट्स क्वाइट अ स्टडी, काफी पढ़ना है, लेकिन हमने कहा है कि हम शायद लाइफ स्किल्स को नहीं जानते, तो पहला ये है, आपने कहा कि टॉक्सिक से लेकर एलिवेटेड
1: थॉट्स तक
0: ये पूरी जर्नी है,
1: हाँ।
0: तो मेरे को यही पूछना है, सिचुएशन डिपेंडेंट है, क्योंकि अभी तक हमारे विचारों का जो सृजन, चाहे मैं ही कर रही थी, वो सिचुएशन डिपेंडेंट था?
2: नहीं, अभी तक भी हम ही क्रिएट कर रहे थे, हम सोच रहे थे कि वो सिचुएशन डिपेंडेंट है। सी, अभी इवन टिल

0: शुरू करते हैं टॉक्सिक थॉट्स से।
1: बड़ा सिंपल है कि भाई क्रोध के विचार है ना, भय के विचार, कोई व्यक्ति डर जाए, यहाँ तक कि अगर किसी को चूहे का डर लगता है, देखते हैं कि न्यूज़पेपर में भी चूहा देखा तो जंप लगाएगा और सारे बॉडी के अंदर वो केमिकल्स रिलीज होते हैं,
0: डर लग जाता है।
1: ब्रेन
0: अच्छा, जो आपके फिजिकल बॉडी को इम्पैक्ट डालेंगे
1: वो नेगेटिव इम्पैक्ट, वो सचमुच पॉइजन्स है। जैसे कॉर्टिसोल एक पॉइजन है सचमुच, जो ब्रेन को भी डैमेज करता है, हार्ट को डैमेज करता है, और ये टॉक्सिक थॉट से वो कॉर्टिसोल की मात्रा बहुत बढ़ जाती है।
0: डॉक्टर साहब, अब अगर ऐसे सिचुएशन है कि बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, ठीक है, और मैं क्रिएट कर रही हूं ये थॉट कि बच्चा नहीं पढ़ रहा है, और धीरे धीरे वो एंग्जाइटी एंगर में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या वो स्ट्रेट अवे टॉक्सिक बनता है या कुछ कुछ उनसे गुजरता हुआ जाता है?
1: एक तो ये ठीक है कि वो स्लोली बनेगा, कि धीरे धीरे आपको भी बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो अंदर में थोड़ा इरिटेशन आया, पहले तो अच्छा नहीं लगा, अपने फोर्स किया कि पढ़ ठीक से, फिर भी वो नहीं पढ़ रहा है तो और उसकी मात्रा बढ़ी। लेकिन ये ऑल ऑफ अ सडन भी बढ़ सकता है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है कि एक माँ बच्चे को पढ़ा रही थी और बाजू में सब्जी काट रही थी और बच्चा नहीं पढ़ रहा था, वो मिस्टेक एक ही जगह पर अटक के मिस्टेक कर रहा था, तो माँ ने कहा पढ़ ठीक से, फिर से नहीं कहा, फिर से गुस्सा किया ठीक से पढ़ नहीं पढ़ रहा है, फिर से वही मिस्टेक की, तो उसे चाकू उसको पेट में डाला। रियल एग्जाम्पल, दिस इज एन टॉक्सिक आउटवर्ड इफेक्ट, पर सदैव नहीं होता है, परंतु अंदर में केमिकल्स तो रिलीज होते ही है टॉक्सिक थॉट्स के कारण।
0: रिएक्शन इट्स सच अ हार्मफुल,
2: हर थॉट हमारी बॉडी पर इफेक्ट कर रहा है, हर थॉट हमारा बिहेवियर वाइज एनर्जी एक्शन में आ रही है। अब किसी चीज में जैसे इस पर्टिकुलर केस में वो इतनी पावरफुल थॉट यू नो गुस्से की क्रिएट हुई, क्यों कई बार आप हाथ नहीं उठा दोगे बच्चे पर? हाथ उठा सकते हो ना, चलो आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है कि इसको चाकू ही मार दिया, पर वो तो सिर्फ इसलिए था क्योंकि हाथ में उस टाइम चाकू था, लेकिन थप्पड़ तो हम मार देते हैं ऐसे, वो कहना नहीं मान रहा, भाई तुमको एक बार समझाया, दो बार, तीन बार, चार बार, हाथ उठ जाता है, बस इस बार बाई चांस हाथ में चाकू था, बट इट्स ओनली अ क्वेश्चन ऑफ कि माई थॉट्स वर सो पावरफुल, नेगेटिव एनर्जी इतनी क्रिएट हो गई कि मेरा अपने हाथ पर, मेरा अपने वर्ड्स पर, मेरा अपने एक्शंस पर कोई कंट्रोल नहीं रहा, क्योंकि लॉजिक वर्क करना बंद कर देगी ना, वो नेगेटिव एनर्जी इतनी मैंने क्रिएट कर दी।
0: वेनम था एक्चुअली, इतना आपने कहा कि
1: पॉइजन
0: है और वो पॉइजन ही फिर निकलना
2: चाहिए। वो कई बार ये भी हो सकता है कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ना हुआ, इट हैज बीन हैपनिंग बहुत पेंट अप, वो ये भी हो सकता है कि उस बच्चे की वजह से ना हो,
0: किसी और का गुस्सा,
2: किसी और बात से आप बहुत परेशान है, हो सकता है कोई और हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप को लेकर आप बहुत परेशान है, एंड योर कंटिन्यूसली थिंकिंग ऑन इट, ये सिर्फ एक स्टिम्यूलस बन रहा है आपके गुस्से को बाहर निकालने के लिए, बट आप वैसे ही बहुत परेशान हैं और ये फिर आपको आपको लगता है ये आपको और इरिटेट कर रहा है, यू नो व्हाट वी थॉट कि वो मुझे इरिटेट कर रहा है, एंड तब आपका हाथ उठ गया, अब आपके हाथ में चाकू था। दीज आर सिचुएशन, जब हम देखते हैं कि चाकू लग गया, कितनी बड़ी गलती हो गई, डेफिनेटली, लेकिन अंदर भी बहुत सारी गलतियां हो रही है, नॉट नेसेसरी दे आर ऑल कमिंग आउट लाइक दिस। बाहर आ गया तो बहुत बड़ा डैमेज हो गया, लेकिन अंदर भी बहुत बड़ा डैमेज क्रिएट हो रहा है, दैट वी हैव टू सी कि हर सिचुएशन में कौन सी मेरी थॉट्स क्रिएट हो रही हैं, एंड इसीलिए जो हमने पिछली बार डिस्कस किया था, इश्यूज को रिजोल्व करते जाएं, कब कौन सा इश्यू आपके नेक्स्ट इश्यू पर
0: हावी हो जाए,
2: दैट इज वेयर बहुत बार आप देखो, अगर ऑफिस में मेरा आज दिन अच्छा नहीं बीता, मैं घर पर आकर बच्चों को छोटी छोटी बातों के लिए डांटूंगी, अगर आज दिन बहुत अच्छा था ऑफिस में, आई वॉज वेरी रिलैक्स्ड, वेरी पीसफुल, घर पे बच्चा कोई बड़ी भी गलती कर देगा, आई विल से इट्स ओके ना, बच्चे ही हैं, करते हैं, इट लॉट डिपेंड्स ऑन माई प्रीवियस इश्यूज एंड माई प्रीवियस थॉट्स दैट आई वॉज कैरिंग विद मी, इट जस्ट कम्स आउट इन दिस। सपोज बॉस मेरे को डांटता रहता है, कोलीग्स मेरे साथ ठीक नहीं है, मैं उनको कुछ नहीं कह पा रही, तो वो रिजेंटमेंट, वो गुस्सा भरता गया, फाइनली किस पे निकलेगा? उन पर निकलेगा जिनके ऊपर मेरे पास पावर है, क्योंकि उस इश्यू को वहां नहीं रिजोल्व किया, उसका इफेक्ट फिर यहां आया। बहुत सारी मदर्स आज कहती है हस्बैंड इतना चिल्लाता है, मदर इन लॉ इतना चिल्लाती है, फाइनली वो किस पर निकलता है? छोटे छोटे बच्चों पर, वर्बल अब्यूज नहीं, फिजिकल अब्यूज, वो हाथ उठा सकते हैं छोटे छोटे बच्चों पर, क्यों? मदर इन लॉ को कुछ नहीं कह पाई, हस्बैंड को कुछ नहीं कह पाई, उस पर निकाल दिया, दिस इज वेयर दैट चेन ऑफ थॉट्स आपके फिर एक्शंस में आने लग जाती है। तो टॉक्सिक थॉट्स तो बहुत डैमेजिंग है, इट कुड बी जैसे फियर बताया, एंग्जाइटी, रिजेंटमेंट, इट कुड ऑल्सो बी रिजेक्शन।

0: यू नो कई बार मुझे आपसे रिजेंटमेंट नहीं, लेकिन मैं रिजेक्टेड फील कर रही हूँ, कोई मुझे अप्रिशिएट नहीं करता, कोई मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, ये भी मेरे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है. इट विल नेवर लेट मी कम फॉरवर्ड. एंड मैं अंदर ही अंदर आजकल रिलेशनशिप्स में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, ये जो बहुत क्लोज रिलेशनशिप्स हो जाती हैं, और फिर अगर एक जना डिसाइड करता है कि नहीं दिस रिलेशनशिप डजंट वर्क फॉर मी, वी हैव सीन चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स हु से आई डोंट वांट टू लिव, तो किस तरह के थॉट्स क्रिएट कर रहे होंगे वो, जो वो इस बात पर पहुंचते हैं मैं उस व्यक्ति के बिना नहीं जी सकता, मैं नहीं जीना चाहता, मैं उसका एक फोन सुनने के लिए बस कुछ भी करने के लिए रेडी हूं, कौन सी थॉट्स क्रिएट हो रहे होंगे सारा दिन. एंड फिर कई बार वो सुसाइड के लेवल पर भी ये बातें जाती हैं. तो बहुत एस्पेक्ट्स में हम ये चेक कर सकते हैं कि टॉक्सिक मतलब जो मेरा बहुत नुकसान कर रहे हैं, और जो मेंटल टॉक्सिन्स हैं फिर वो फिजिकल में भी, जैसे गिरीश भाई ने बताया कि वो टॉक्सिन्स क्रिएट करेगा.
1: और एक अगर एग्जाम्पल है ना तो हेट्रेट का है. हेट्रेट से वहां तो एक को लग गया, लेकिन हेट्रेट से तो आप हजारों को मार रहे हैं.
0: सबसे पहले अपने आप को,
1: अपने आप को.
2: यहाँ एक अगर हमने टेक्निक ही सीखनी है तो जैसे हम बात कर रहे हैं टॉक्सिक बाद में ही आता होगा. इट मस्ट बी, तो पहले कैसे आइडेंटिफाई करें कि कहाँ से वो शुरू होती है सीरीज. अगर हम इस चेन देखते हैं सेवन तरह के थॉट्स में, कौन सी वो पहली चेन है जो मुझे टॉक्सिक तक लेकर जाएगी. चेन की पहली कड़ी कौन सी होती है.
1: पहली कड़ी तो आएगी वही की नेगेटिव एस्पेक्ट,
2: नेगेटिव थॉट, बेस थॉट या नेगेटिव थॉट.
1: पहले नेगेटिव,
2: नेगेटिव थॉट.
1: वेस्ट तो हो सकता है कि उसमें नेगेटिविटी नहीं है, ऐसी आप टाइम को वेस्ट कर रहे हो, लेकिन शुरुआत होगी नेगेटिव थॉट से, फिर उसका लेवल बढ़ता जाएगा और टॉक्सिक तक पहुंच जाएगा.
0: नेगेटिव कई बार ये भी हो सकता है कि आप किसी और परिस्थितियों में नेगेटिव सोच रहे हैं, वो परिस्थितियां एवरेज लेवल की हैं, जो हम कह रहे हैं ना परिस्थिति स्टिमुलस है, तो वो परिस्थितियां ऑर्डिनरी हैं, लेकिन मेरी रिस्पॉन्स उसमें नेगेटिव है एंड एनर्जी तो मेरी डिप्लीट हो रही है, और फिर सडनली मैं एक थोड़ी सी बड़ी परिस्थिति में आ जाऊंगी. लेट्स से ऑफिस में काम करते करते मुझे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, दैट विल बी नेगेटिव थॉट्स. और फिर घर गई, सडनली मुझे एक बिगर सिचुएशन मिली, तो मैं इमीडिएटली जो थॉट क्रिएट करती हूँ इट समटाइम्स टॉक्सिक, बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नेगेटिव क्रिएट करते करते मन की कितनी सारी ताकत खत्म हो जाती है, एंड देन अ लिटिल बिगर सिचुएशन एंड आई विल रिएक्ट इन अ बिगर वे. तो वो रिजेंटमेंट, हेट्रेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे, एंड देन नॉट नेसेसरी कि आपके प्रति है तो आपके साथ ही वो हमेशा होगी. आपके साथ मैंने नेगेटिव क्रिएट करते करते करते अपने आप को इतना डिप्लीट कर दिया कि फिर इन्होंने अगर मेरे साथ थोड़ा सा कुछ बड़ा कर दिया, आई कैन जस्ट क्रिएट दोज टॉक्सिक थॉट्स. सो इट इज अ कंटिन्यूअस चेकिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ थॉट्स आई क्रिएट इन एवरी सिचुएशन विद एवरी पर्सन इन एवरी इंटरेक्शन. दैट्स वाई वी सेट कॉन्स्टेंट अवेयरनेस हमें रखनी होगी, क्योंकि बीमारी धीरे धीरे धीरे कब सडनली ज्यादा हो गई पता नहीं चलेगा.
1: और इतनी और एक बात जब आपने पूछा तो मुझे याद आया कि बहुत सारे केसेस में जिनमें इस प्रकार के बहुत टॉक्सिक थॉट्स हैं, इसका रूट तो जो है वो चाइल्डहुड में होता है. कहीं ना कहीं अब्यूज हुआ और कोई रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस आया तो एक ब्लॉक सा क्रिएट हो जाता है, और वो ब्लॉक फिर सदा के लिए डिस्टर्ब करता है, जिसको थॉट डिसऑर्डर भी कहेंगे. इवन सिजोफ्रेनिया के जो केसेस है कईयों में मैंने देखा है कि पता भी नहीं चलता है. घर में तो ये समझते हैं कि इसको बहुत गुस्सा आता है या छोटी छोटी बातों में ये व्यक्ति चिढ़ रहा है, परंतु वास्तव में उसमें वो सिजोफ्रेनिया का प्रॉब्लम है, थॉट डिसऑर्डर है, जिसके कारण व्यक्ति ऐसे टॉक्सिक इमोशंस क्रिएट कर रहा है. वो रिजॉल्व करे तो टोटली रिजॉल्व हो जाएगा.
0: के साथ कोई एक बार ऐसे कुछ हो जाए जैसे अब हमें लोग ही नहीं अच्छे लगते, तो फिर क्या हुआ, देखो कितना डैमेज हो गया. अब हमारा लोगों पर ही विश्वास नहीं रहा, तो वो हर रिश्ते में कैसे जाएंगे, हर इंटरेक्शन में कैसे होंगे. एवरी इंटरेक्शन विल बी देन नेगेटिव एंड द साइकिल बिकम्स मोर एंड मोर विशेस.
1: वन रिलेशनशिप, नो इवन वन रिलेशनशिप, जैसे किसी मदर से, जैसे डॉटर का मदर से कुछ प्रॉब्लम हुआ तो फिर और भी, ऑल नो लेडीज आर बैड फॉर हर, या जेंट्स से हुआ तो ऑल जेंट्स आर बैड, ऐसी स्थिति बन सकती है.
2: अच्छा, ये तो बात रही कि टॉक्सिक जो कि काफी दिख जाते हैं, यूजुअली हम देखें तो जो बात समझ में आ रही है कि टॉक्सिक में हमें एहसास भी हो रहा है, हमारे फिजिकल भी वो क्रिएट हो रहे हैं, केमिकल्स, केमिकल रिएक्शंस भी हो रहे हैं. उसके अगर हम नीचे थोड़ा सा नीचे उतरे तो टॉक्सिक के बाद आपने नेगेटिव बोला ना, तो नेगेटिव में क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज नेगेटिव. क्योंकि नेगेटिव में बहुत बार लोग बोलते हैं मैं किसी

0: अनुसार नहीं करता, शोर मचाओ, काम मेरे अनुसार होगा। काम होता गया, इवन लेट्स से काम होता गया, मेरी हालत क्या होती जा रही है? दिस आई नाउ नीड टू स्टॉप एंड चेक कि मेरी हालत क्या होती जा रही है। और अगर अपने बारे में नहीं सोचना चाहते तो कम से कम इतना सोचो उन बच्चों की हालत क्या होती जा रही है। सिर्फ मदर वो टेक्निक नहीं यूज कर रही, फादर भी वही टेक्निक यूज कर रहा है, सिर्फ पेरेंट्स नहीं यूज कर रहे, टीचर भी वही टेक्निक यूज कर रही है, प्रिंसिपल भी वही टेक्निक यूज कर रही है, क्योंकि एवरीवन इज इन द सेम बोट, एवरीवन इज यूजिंग द सेम टेक्निक। कैन वी जस्ट लुक एट अ लिटिल चाइल्ड जो अभी ग्रो हो रहा है, जिसकी सेल्फ एस्टीम अभी डेवलप होनी है, जिसका सेल्फ कॉन्फिडेंस अभी डेवलप होना है, जो इमोशनली अभी डेवलप हो रहा है, जैसे फिजिकली डेवलप हो रहा है, और इस एक छोटे से बच्चे को जो डेवलप हो रहा है, ये चार पांच लोग जो उसके पूरे जीवन का फोकस है अभी वर्तमान समय,
1: इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं
0: हम, इमोशनली ब्लैकमेल नहीं, हम उसको इमोशनली डिप्लीट कर रहे हैं। हम सी ना, एक छोटे बच्चे को बीच में रखो, सर्कल में आप पांच लोगों को खड़ा करो, मदर, फादर, टीचर, प्रिंसिपल, जो भी, या कोई बड़ा सिबलिंग, सारे उसको कौन सी एनर्जी दे रहे हैं? काम करवाना, होमवर्क करवाना, खाना खाना, पढ़ना, जो भी है, व्हाट इज द एनर्जी कमिंग? कैन यू सी व्हाट विल हैपन टू दिस चाइल्ड? एंड देन वी आर सेइंग, आजकल के बच्चे देखो कैसे हो गए हैं, छोटी छोटी बातों में इनको गुस्सा आने लग जाता है, इनकी टॉलरेंस पावर कम होती गई है। स्टॉप, क्यों हो गई ऐसी? व्हाई? क्योंकि इनको सबसे कौन सी एनर्जी मिली? वो पर्सनैलिटी कैसे बड़ी हो रही है? अब जब वो पर्सनैलिटी
2: वरिड ही रहेगा,
0: वरिड नहीं, वेरी वेरी लो सेल्फ एस्टीम और उसकी अपनी टॉलरेंस पावर, क्योंकि उसको पांचों लोगों से कौन सी एनर्जी मिल रही थी? पांचों के अंदर टॉलरेंस पावर नहीं थी, पांचों में पेशेंस नहीं थी। बच्चे में पेशेंस आ जाएगी, कहां से आएगी? दिया आपने वो खाना खिलाया उसको? आपने वो खाना खिलाया नहीं, और कहते ताकत क्यों नहीं है, ताकत क्यों नहीं है? वही ताकत डेवलप होगी जो चारों तरफ से आ रही है। अब मैं प्रिंसिपल को नहीं चेंज कर सकती, मैं टीचर को नहीं चेंज कर सकती, मैं कम से कम अपने आप को करूं। सिर्फ ये नहीं सोचे काम करवाना जल्दी कैसे हो जाए, मोर इम्पोर्टेंट इज जो कर रहा है उसकी डेवलपमेंट कैसी हो, एंड ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट मेरी स्थिति कैसी हो। लेट्स नॉट बी ओनली वर्क ओरिएंटेड, लेट्स बी फीलिंग ओरिएंटेड, देन वील टेक केयर ऑफ ईच अदर। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट,
3: ना सटल बात है बहुत, अगर सुपरफिशियल भी देखो ना, शी इज 100% राइट है। डीप बात को आप समझ लो, अगर कोई इतनी डीप बात न भी समझे तो भी ये समझना चाहिए कि फियर वो टेम्पररी मोटिवेटिंग फैक्टर है। डर से बच्चा सदैव नहीं पड़ेगा, जब तक आप उसके सर पे खड़े हैं शायद पड़ेगा, और जैसे ही आप और कुछ करने लगेंगे बच्चा छोड़ देगा उसको धीरे धीरे, तो उल्टा वो सीख जाते हैं, फिर तो डर की भी इफेक्ट नहीं होगी। समझो नहीं, गुस्से से आप समझते बच्चे शांत रहेंगे, नहीं, उल्टा वो समझेंगे कि भी गुस्सा दिलाओ, उनको आनंद आएगा अंदर, दे विल लर्न दिस। नहीं, एक बार दो 11-12 साल की लड़की आपस में डिस्कशन कर रही थी, एक ने दूसरी को कहा कि चल हम कुछ शरारत करते हैं ताकि माँ को गुस्सा आए। तो माँ को गुस्सा आएगा तो मुझे बहुत मजा आता है, माँ को गुस्सा आता है तो बोले मुझे अपने कमरे में 2 घंटे बंद रहना पड़ता है, लेकिन मैं बहुत इंजॉय करती हूँ कि माँ मुझे कंट्रोल नहीं कर रही, मैं माँ को कंट्रोल कर रही हूँ। नो, लेट अस मेक सम मिस्चीफ। वैसे अल्टीमेटली चिल्ड्रन लर्न दिस।
0: एंड जो गिरीश भाई ने कहा था ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का रूट कॉज चाइल्डहुड में है। जो चाइल्डहुड में हम ये एनर्जी एक बच्चे को देते हैं, तो उसको जो सबकॉन्शियस में जो फीलिंग है वो है दे डोंट केयर फॉर मी, एंड वेरी सून ही इज गोइंग टू बी डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स विच यू विल फील ही डजंट केयर फॉर मी, बट इट स्टार्टेड एट दैट टाइम
2: कि जो मैंने दिया वो
3: even maybe why I should care for them.
0: They actually, there are children who come and say उन्होंने मुझे क्या दिया, and they are not in terms of physical, लेकिन इनसे मुझे क्या मिला, मुझे भी उनकी कोई परवाह नहीं है। यू नो, वी टेल देम आपके पेरेंट्स रो रहे हैं, आपके पेरेंट्स इतने अपसेट हैं, इट्स वेरी सैड, बट दे गेट अ सेडिस्टिक प्लेजर आउट ऑफ इट कि इन्होंने मुझे बहुत दुख दिया था, आज मैं करूंगा ऐसे काम जिससे इनको दुख मिले।
2: कितना मैं भी कितना रोया था, कितना डरता था। Oh my God! I just I'm selected.
0: But it really happens. We are meeting a lot of children who say this, and it's very sad to see that you know the cycle is getting more and more vicious. More and more, both are blaming each other. No one's ready to take the responsibility.
3: You know, many disturbed children are like this. Only. And I think sir, school ka ek case mere paas hai. Wahan teachers ne kaha. Teacher said ki bhi ye parents ka fault hai pura. पेरेंट्स ने उनको नेगेटिव बातें सिखाई है, नेगेटिव रूप से डेवलप किए, इसके कारण बच्चे ऐसे बने।
2: आई थिंक क्योंकि हमें नेगेटिविटी का ही पता नहीं है शायद। सिस्टर शिवानी, डॉक्टर गिरीश पटेल, थैंक यू सो मच। कहीं ना कहीं वो सारी बातें निकल कर आ रही हैं।

जिन्हें अभी तक हमने ये माना था कि ये तो बिल्कुल नेचुरल है, आज चेक करने की जरूरत है। हमने सात तरह के जो थॉट देखे हैं कि इस तरह के थॉट्स हम क्रिएट करते हैं, उसमें टॉक्सिक तो बहुत विजिबल है लेकिन नेगेटिव को हमने अभी तक रियलाइज नहीं किया था। लेट्स ट्राई टू रियलाइज, लेट्स ट्राई टू सी, लेट्स बिकम अवेयर कि पूरे दिन में ये जो नेगेटिव, हमने यही सोच लिया कि नेगेटिव मतलब दूसरे का बुरा सोचना, लेकिन उसके अलावा हम क्या क्या कर रहे हैं, कितने कितने ये जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, चाहे वो डर है, संशय है, भय है, दुख है, या हर्ट है, या रिजेक्शन है, ये सारे जो थॉट्स हैं, या इरिटेशन है, छोटी छोटी बात पे इरिटेट होते जाना, अपनी बात मनवाने के लिए कितने कितने तरीके अपनाना, कितने कितने यू नो थॉट्स उन तक पहुंचाना, एनर्जी पहुंचाना, ये हम क्या कर रहे हैं अपने साथ भी, अपनों के साथ भी, फिर हमें रिश्तों में कहां से प्यार मिलेगा। लेकिन जहां हम सीखते जाएंगे, ज्ञान एक ऐसी रोशनी है जो आगे का रास्ता क्लियर कर देती है। कोई बात मन में है, कोई सवाल है, आप हमारे साथ शेयर करें। आप हमें ईमेल पर या फोन पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 9999344555, 9999344666, 9873666555। हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही। लाइफ स्किल्स की इस श्रृंखला में वो वाली स्किल्स हम सीख रहे हैं जो आज तक शायद नहीं सीखी थी, लेकिन आज सीखकर ना सिर्फ अपने जीवन को, अपनों के जीवन को, आने वाले जीवन को बेहतर बना पाएंगे। आपसे विदा लेते हैं, ओम शांति।

0: नमस्कार, मी मोनाली स्वागत. तुम्ही ऐकत आहात रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो.
1: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुणेरी आवाज. अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं. बने रहिए हमारे साथ.

0: ओम शांति। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे, और सभी विद्यार्थी मित्रों को बड़ा ही अच्छा लगेगा आज हम लोग करियर इन म्यूजिक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि म्यूजिक एक ऐसा पैशन है जिसके माध्यम से आप अपना करियर बना सकते हैं, अपने हॉबीज को अच्छी तरह से क्रिएट कर सकते हैं। और बड़ा अच्छा लगता है जब आप अगर करियर भी नहीं हुआ तो लोगों को जरूर खुश कर सकते हैं, कहीं भी चार लोगों के बीच में अगर थोड़ा सा भी आप गुनगुना देते हैं तो सभी को अच्छा लगता है। तो सभी को खुश करने का एक बहुत ही सुंदर तरीका है संगीत। तो आइए म्यूजिक में करियर कैसे कर सकते हैं, क्या सिस्टम है, क्या तरीका है, वो हम जानने वाले हैं। आज हमारे साथ विशेष मेहमान रश्मित कौर हैं, जिनसे हम लोग बातें करने वाले हैं। और आप एमपी से हैं, जागरा से, स्कूल में आप बच्चों को म्यूजिक पढ़ाते हैं, सेकेंडरी स्कूल है विशेष, फर्स्ट टू ट्वेल्थ बच्चों को जो है आप म्यूजिक सिखाते हैं। तो आइए रश्मित कौर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: ओम शांति भाई जी।
0: ओम शांति, कैसे हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ बिल्कुल।
0: जी जी जी, मैं चाहूंगा कि आपका संगीत से कैसे जुड़ना हुआ वो बताइए हमें।
1: मेरा संगीत से ऐसा जुड़ना हुआ कि मैं सिख फैमिली को बिलोंग करती हूँ, तो हम लोग बचपन से ही गुरुद्वारे जाते हैं।
0: अच्छा,
1: तो गुरुद्वारे में हमको वादन की भी विद्या प्राप्त होती है और गायन की भी होती है। वादन
0: तो
1: में
0: कीर्तन भजन और शब्द गाते हैं तो जुड़ जाते हैं, तो उससे लगन लग जाती है।
1: जी, वादन में भी ढोलक तबला हारमोनियम, इससे मेरी स्टार्टिंग हुई। और गाते सभी हैं हम लोग फैमिली में, क्योंकि सिख फैमिली में अधिकतर ऐसा ही होता है कि गाने का सबको
0: शौक
1: रहता है। जी भाई जी,
0: बंगाल में भी ऐसा ही है
1: जी।
0: वहाँ पर बोले खाना पीना और उसके साथ बजाना नहीं हो तो फिर बंगाली नहीं कहेंगे।
1: जी जी भाई जी।
0: तो रश्मिता जी, मैं चाहूंगा कि जो शुरुआत आपकी जो है, पहले जैसे बचपन से ही आपको जो है वाद्य का जो है इंस्ट्रूमेंट के साथ जुड़ना हुआ,

0: तो पहली बार आपको कैसे लगा कि मैं संगीत में कुछ कर सकती हूँ, कब ऐसा एहसास हुआ?
1: जब मैं छोटी थी तब मैं गुरुद्वारे में गाती थी, तब मुझे ऐसा कुछ शौक नहीं था, मैं भक्ति में बहुत थी छोटी थी तब। फिर ट्वेल्थ में भी मेरा सब्जेक्ट कॉमर्स ही था।
0: अच्छा,
1: ट्वेल्थ के बाद इवन मुझे ये भी नहीं पता था कि म्यूजिक में भी आगे कुछ करियर होता है। मुझे लगता था कि बस ऐसे ही गाते हैं, कुछ नहीं, मुझे जीरो नॉलेज था। मेरे मामा जी प्रोफेसर हैं एक कॉलेज में, उन्होंने मुझे बताया कि एक म्यूजिक भी सब्जेक्ट होता है आर्ट्स में। तो फिर मैंने वहीं जावरा से ही कॉलेज में मैंने बीए लिया, उसमें मैंने एक मेन सब्जेक्ट मेरा म्यूजिक लिया।
0: अच्छा अच्छा
1: जी। वहां से फिर मुझे थोड़ा पता लगा कि क्लासिकल म्यूजिक भी कुछ होता है।
0: बिल्कुल,
1: पहले मुझे बिल्कुल इसका नॉलेज नहीं था, तो वहीं से मेरी स्टार्टिंग हुई। फिर वहां मतलब मेरे गुरुमा हैं जिन्होंने मुझे पूरी बारीकियां समझाई संगीत की।
0: बहुत बढ़िया।
1: कि कैसे क्या होता है इसमें, कैसे करियर बन सकता है, आप कैसे बाहर जाएंगे, और बहुत ऑल इंडिया रेडियो के बारे में भी उन्होंने मुझे बताया कि आपका क्या करियर बन सकता है म्यूजिक में। तो वहीं से मेरी स्टार्टिंग हुई म्यूजिक में।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रश्मिता जी, एक और बात मैं पूछना चाहूंगा, जैसे कि आप भजन वगैरह तो गा ही लेते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि कहीं म्यूजिक में ही आपको कुछ करना है, आप फिर आर्ट्स में जब आपको पता चला कि इसमें म्यूजिक है और इसमें आप मास्टरी कर सकते हैं, तो तब आपको एहसास हुआ और वहीं से आपने म्यूजिक के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया। तो आपके जो गुरु रहे उनके बारे में थोड़ा सा बताइए, वो कैसे?
1: मेरी गुरुमा है प्रीति वर्मा मैम।
0: जी जी जी।
1: वो खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से वो खुद पढ़कर आई थी।
0: अच्छा अच्छा।
1: और वो गोल्ड मेडलिस्ट है।
0: क्या बात है।
1: और उन्होंने 4 साल कर्नाटक में रहकर भी संगीत की शिक्षा प्राप्त करी है।
0: अच्छा, अच्छा, अच्छा।
1: तो उन्होंने मुझे एक एक, मतलब मेरी फैमिली रेडी नहीं थी मुझे बाहर भेजने के लिए खैरागढ़, क्योंकि अच्छा। मैं कभी जावरा से बाहर कभी गई नहीं थी, और खैरागढ़ एकदम अलग ही स्टेट हो जाता, क्योंकि मैं एमपी की थी और खैरागढ़ छत्तीसगढ़ में है।
0: अच्छा अच्छा। दोनों अलग स्टेट हो जाते हैं।
1: जी। तो उन्होंने मेरी फैमिली को मनाया कि ये मतलब कुछ कर सकती हैं म्यूजिक में आगे। तो उन्होंने ही पूरी फैमिली को मनाया, पापा से बात करी, मम्मा से बात करी।
0: अच्छा, अच्छा।
1: तो मैं मतलब मेरा संगीत का पूरा श्रेय उनको ही जाता है एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि अगर वो नहीं आती जावरा में तो मुझे नहीं पता रहता कि संगीत में मैं कुछ कर सकती हूँ। मतलब अभी भी मैम मुझे एक एक चीज मैं उनसे पूछती हूँ, और वो मुझे एकदम अपने बेटी जैसे ही रखते हैं, सब बताते हैं। और वो खैर छत्तीसगढ़ के, और छत्तीसगढ़ के लोग बहुत मीठे होते हैं बात करने में भी। तो सब उन्होंने ही मुझे बताया।
0: छत्तीसगढ़ में आर्टिस्ट भी काफी हैं।
1: जी, बहुत हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं चाहूंगा कि कुछ बातें, जैसे कि उनकी कौन सी, जैसे सिखाने का तरीका क्या है, स्टाइल ऑफ टीचिंग क्या है उनका?
1: उनका स्टाइल ये है कि जैसे वो खुद सीखी हैं वो वैसे ही सिखाती हैं। उनका मतलब उन्होंने स्टार्टिंग से ये नहीं सोचा कि जो मुझे आता है वो स्टूडेंट्स को नहीं आए, या वो जो चीज छूट गई है उनकी वो भी चीजें वो बताती हैं कि ये चीजें मुझसे नहीं हो पाई थी तो आप लोग करो इस चीज को। जो मेरे एक जो नेट की प्रिपरेशन होती है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की, तो उन्होंने स्टार्ट करी एमए के बाद, लेकिन उन्होंने मुझे बीए में ही बता दिया था बैचलर्स में कि आप अभी से इसकी पढ़ाई करो। और ऐसे कोई भी टीचर्स जैसे नोट्स बहुत नहीं देते हैं, कुछ कुछ उन्होंने मुझे सारे उनके नोट्स दे दिए थे जब मैं जावरा में थी। और उनका सिखाने का तरीका ऐसा था कि वो चीजें बातों बातों में ही याद करवा देती थी उनको, हमको समझने की ऐसी जरूरत नहीं पड़ती थी।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तो शी इज लाइक माई मदर, उन्होंने बिल्कुल मुझे एकदम बेटी जैसे सिखाया। और भी सब स्टूडेंट्स को उन्होंने पहले मुझे खैरागढ़ भेजा, उसके बाद वहां जितने स्टूडेंट्स थे सबको वो मेरा एग्जाम्पल देती थी। और अभी भी 2-3 स्टूडेंट्स आ गए हैं खैरागढ़ में जावरा से।
0: रश्मित जी, बहुत ही अच्छा लगा आपने अपने गुरु माँ के बारे में बताया, और मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, उनका स्टाइल ऑफ टीचिंग जो है बहुत ही यूनिक है जो उन्होंने आपको सिखाया। तो मैं चाहूंगा कि जैसे शुरुआत उन्होंने किन चीजों से, उनसे क्या सीखा पहले पहले?
1: जी, मैंने उनसे एक्चुअली उस टाइम ऐसा हुआ था कि कोरोना आ गया था।
0: हाँ हाँ हाँ।
1: तो हमारी क्लासेस बहुत कम लग पाती थी, फिर भी उन्होंने मुझे बहुत सारी बेसिक चीजें बताई थी, जैसे रियाज कैसे किया जाता है, खाने पीने में क्या परहेज करना चाहिए।
0: हाँ।
1: और किस टाइम रियाज करना चाहिए, वैसे रियाज का कोई समय नहीं होता है।
0: हाँ, बिल्कुल,
1: हम कभी भी जी हम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन एक गले के रियाज के लिए हमें खर्च का रियाज जरूरी होता है, जो हमें सुबह करना, जब हमारी आवाज थोड़ी भारी रहती है। तो बहुत सारी उन्होंने बारीकियां मुझे संगीत

0: ये ऊपर चला जाता है, फिर तार सप्तक का रियाज है जी।
1: चलिए अच्छा, अब इसकी प्रैक्टिस करने के लिए क्या हमें इन्हीं चीजों के साथ प्रैक्टिस करना है या कुछ और भी चीजें दी जाए?
0: भाई जी, इसमें बहुत सारी चीजें रहती हैं, लेकिन हमको ऐसे बोलते हैं कि अगर आप एक ही चीज को पहले पक्का करोगे
1: बिल्कुल,
0: तो आप आगे और अच्छे से इसे निभा पाओगे चीजों को। तो पलटे होते हैं बहुत सारे, जैसे हमने पहले सारे गामा का रियाज करा, तो इसके बाद हम इसकी थोड़ी हम बीपीएम बढ़ाते हैं, मतलब स्पीड बढ़ाते हैं। जैसे हम अभी हम करें सारेगा तो और स्पीड, सारेगामा पाधा नीसा, फिर हम इसे आकार में करते हैं आ, आ, आ, आ, आ, ऐसे करके इसकी स्पीड बढ़ाते हैं, तो इससे हमारे गले में थोड़ा बेस बनता है। फिर इसके ही पलटे रहते हैं, अलंकार रहते हैं, सा सा रे रे गा गा मा मा, डबल हुआ ट्रिपल, सा सा सा रे रे रे गा गा गा, ऐसे करके बहुत सारे पलटे रहते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कैसे आप जो है रियाज या खर्च का प्रैक्टिस करते हैं, ये आपने बताया। और मुझे लगता है कि ये सारी चीजें जो है कभी कभी बहुत बोर लगता है सुनने में, लेकिन जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उससे आपका गला निखरता है और आपकी प्रैक्टिस बढ़ती है, और यही एक चीज है जो आपकी आवाज को बनाए रखता है।
0: जी जी भाई जी, बिल्कुल।
1: तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और अगर आप पहली बार अगर कभी किशोर दा के पुराने कोई एल्बम वाले गीत या स्टेज शो को अगर आप किशोर दा के सुनेंगे, तो उन लोगों को कहा जाता था कि वो पहले ही ये सारी चीजें जो है प्रोग्राम के पहले लोगों को एंगेज करते थे और लोगों के नाम के साथ में रियाज क्रिया करते थे वो, और हर एक को नाम लेके उसके साथ में जो है रागों को वो प्रेजेंट करते थे, सा सा रे रे रे गा गा गा गा मामा पापा पापा ऐसे करके जो है फिर उनके नाम लिया करते थे। तो इससे वो ये वो एक उनका ट्रेंड था, वो एक तराना जैसे उनको सुनने को अच्छा भी लगता था, लेकिन एक्चुअली में वो उनकी प्रैक्टिस हो जाती थी और उसके बाद उनका गाना शुरू हो जाता था। तो ये एक बहुत ही सुंदर जो टेक्निक बना, लोगों को ये भी मालूम नहीं कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनको एंटरटेन भी हो रहा है और दोनों चीजें हो रहा है। तो वो चीजें जो है शायद कई बार हम लोग जो है ये सोचते हैं कि कैसे हम लोग इन चीजों को करें, प्रैक्टिस कैसे करें, कैसे रियाज करके फिर अच्छा प्रेजेंटेशन दे अपनी। तो बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि आप किसी न किसी टेक्निक के माध्यम से लोगों के साथ जुड़ें, और कभी कभी गाना से ज्यादा तराना भी अच्छा लगता है, बिना शब्दों के वहां पर जो है मेलोडी आता है, तो वो बड़ा एक एक आर्टिस्ट की खूबसूरती उसमें नजर आता है कि कैसे ये चीजें जो है कर रहे हैं, है ना। तो अभी आप रश्मित जी को भी सुन रहे होंगे, तो उनका भी जो साथ सा, सा, ये जो उन्होंने किया, तो वो सारी चीजें हमें जो है एक अलग फील देता है। तो ये अब जितना अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी उतना मेलोडियस वो चीजें बनेगा, और जब मेलोडियस हो गया तो फिर गाना आपका अच्छा ही निकलेगा, ये गारंटी है। तो ये आपको समझना है। तो आइए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और रश्मिता जी से ही एक बहुत ही प्यारा सा गीत हम लोग सुनेंगे, रश्मित कौल जी से। तो एक गीत सुनाइए, अभी वक्त हो गया एक ब्रेक का।
0: जी, जी। जी। तो मैं लाइट म्यूजिक शब्द आप जो बोले।
1: जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, सुनाइए लाइट म्यूजिक।
0: लाइट म्यूजिक ही सुना दूं?
1: जी जी
0: जी। एक मेहंदी हसन जी की गजल है,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: मैं वो सुनाना चाहूंगी।
1: स्वागत है।
0: ये राग भीम पलासी में है।
1: बहुत बढ़िया
0: जी। नीसा पनी सागरे रे नीपसा

0: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। करियर इन म्यूजिक इस विषय को लेकर रश्मिता कौर जी से बातें हो रही हैं और बड़ी अच्छी बातें उन्होंने बताया अपने गुरु के बारे में, और इसके साथ में उन्होंने एक प्रेजेंटेशन भी आपको दिया है, बहुत ही प्यारा सा मेहंदी हसन का गजल आपने सुना। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और जैसे कि म्यूजिक की बात हम लोग जब करते हैं तो म्यूजिक में सबसे ज्यादा जो है, कई बार जो है माता पिता उसके लिए रेडी नहीं होते बच्चों को म्यूजिक में करियर करने के लिए, तो इसके लिए आप क्या बताएंगे कि कैसे हम लोग अपने घर वालों को समझाएं कि आज म्यूजिक में भी अच्छा करियर बन सकता है।
1: जी भाई जी, ऐसा होता है फैमिलीज में कि संगीत के लिए नहीं मानते। बहुत लोगों को लगता है कि संगीत में सिर्फ सारे गामा ही होता है, जबकि सा लगाना ही बहुत मुश्किल होता है। बहुत साधना चाहिए रहती है, बहुत रियाज चाहिए रहता है सिर्फ सा लगाने के लिए। जब मैंने म्यूजिक को अपना करियर चूज करा तब मुझे भी बहुत लोगों ने बोला कि सिर्फ सारे गामा तो रहता है, क्या करना रहता है इसमें। इवन जहां मैं पढ़ाती हूँ वहां के भी स्टाफ मेंबर्स मुझे बोलते हैं कि आपका सब्जेक्ट तो बहुत ईजी है। तो मैं उनको बताती हूँ कि एक
2: है तो करके दिखाओ।
1: जी, इसमें सिर्फ आप सा ही लगा के बताइए, क्योंकि सा लगाने के लिए इतनी साधना, मतलब जैसे हम अगर हम भगवान को, जैसे अगर हम प्रेयर करते हैं तो हम कितनी उसके लिए भी हम साधना करते हैं भगवान से, क्योंकि संगीत भी ईश्वर से मिलने का माध्यम है।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: जब हमारा मन उदास रहता है तो हम भगवान को याद करते हैं, हम बाबा को याद करते हैं। बट अगर हम, जैसे म्यूजिक है तो हम भगवान को याद भी म्यूजिक के द्वारा ही करते हैं। अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो भी हमें गीत लगाते हैं। अगर हम गुरुद्वारे में शब्द कीर्तन करते हैं तो वो भी एक म्यूजिक ही है। मुस्लिम्स में भी कवाली रहती है, चर्च में भी प्रेयर्स रहते हैं, तो म्यूजिक हर जगह है। तो हम अगर कहते हैं कि म्यूजिक ईजी है तो म्यूजिक ईजी तो नहीं है, लेकिन हम उसको ईजी बना सकते हैं। हम रियाज करके, प्रैक्टिस करके और साधना करके अच्छे से हम म्यूजिक को अपना करियर कैसे बना सकते हैं, मैं इसके बारे में बताती हूँ कि म्यूजिक में सिर्फ हम एक म्यूजिक टीचर भी बन सकते हैं, हम कॉलेज में प्रोफेसर भी बन सकते हैं। इसमें जॉब हमें प्राइवेट स्कूल में भी मिलती है, गवर्नमेंट स्कूल में भी मिलती है, नवोदय स्कूल में भी मिलती है, केंद्रीय विद्यालय स्कूल में भी मिलती है, एक

0: वे स्कूल में भी मिलती है। इसके अलावा हम अपनी खुद कॉम्पोजिशन बना सकते हैं, हम लिरिक्स लिखकर उस सॉन्ग को निकाल सकते हैं बाहर।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: बहुत मतलब इसमें रहता है म्यूजिक में। हम खुद की कॉम्पोजिशन अगर बनाते हैं तो उसमें भी ऐसा रहता है कि मतलब वो बहुत हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम बॉलीवुड में जाना चाहें, खुद का भी अगर आज यूट्यूब चैनल भी बहुत बना सकते हैं हम उसमें, तो उसके माध्यम से भी हम म्यूजिक में आगे बढ़ सकते हैं। आजकल ऐसा है कि बहुत लोग संगीत में शिक्षा नहीं भी लेते हैं, फिर भी वो लोग इतनी आगे पहुंच जाते हैं उनकी मधुर आवाज के कारण। तो ऐसा है कि अगर फैमिली को भी मनाने की बात हो, तो पहले ऐसा होता था कि फैमिलीज नहीं मानती थी, बट मुझे नहीं लगता कि अब कोई फैमिली ऐसे मना करती होंगी, क्योंकि अब म्यूजिक ऐसी चीज है कि म्यूजिक के द्वारा ही सब लोग बहुत ज्यादा फेमस भी हो जाते हैं, अर्निंग भी होती है। अगर हम शोज करते हैं पार्टीज में या कहीं प्रोग्राम्स होते हैं तो उसमें भी अर्निंग, जी स्टेज शोज
1: करते हैं जी। रश्मिता जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि कैसे हम लोग जो है म्यूजिक में अपना करियर को बना सकते हैं, और बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास कि हम लोग स्काई इज द लिमिट कह सकते हैं, कि बहुत सारी चीजें हैं। आप इसके साथ खुद अपना जो है गाने पब्लिश करके भी पैसे कमा सकते हैं, और फिल्मों में गाकर भी पैसे कमाए जा सकते हैं, और इसके साथ में आप अपना खुद का बैंड भी बना सकते हैं जिसके जरिए आप अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं, कंपनी आपकी बना सकते हैं जिसके जरिए आप बहुत पैसा कॉर्पोरेट कंपनी बना सकते हैं। तो चलिए, ये हुआ इनकम सोर्स कैसे जनरेट कर सकते हैं आप। इसके अलावा म्यूजिक सीखने से आपको संतोष मिल जाता है, खुशी मिल जाता है, और दोस्त जो आपके आसपास में लोग रहते हैं उन सभी को भी आपको जो है खुशी देने का एक माध्यम बन जाता है, जो मैंने शुरुआत में ही बताया था। तो ये सारी चीजें हैं, म्यूजिक हम सभी को प्रिय लगता ही है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो संगीत से अलग होगा, या संगीत जिसको पसंद नहीं होगा, गाना सुनना पसंद नहीं होगा, म्यूजिक सुनना पसंद नहीं होगा। सभी लोग सुनते भी हैं और पसंद भी करते हैं, हर व्यक्ति की अपनी चॉइसेस भी होती है संगीत में। तो इसका मतलब ये है कि जो सबकी चाहत है वो आप म्यूजिक के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। और किसी भी धर्म में, जैसे अभी रश्मिता जी ने बताया, रश्मित कौर जी ने, कि कैसे अलग अलग धर्मों में भी जो है संगीत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको चाहे प्रेयर करना हो आपको, या फिर आपको जो है पढ़ना हो, या फिर आपको जो है किसी से बात करना हो, तो ये सारी चीजें जो है आपको जो है इबादत करना हो, तब भी संगीत आपका जो है माध्यम बनता है। एक और बात मैं पूछना चाहूंगा, जैसे कि हम लोग अब शुरुआती दौर में प्रोफेशनली हम लोग सीखना चाहे संगीत को, तो क्या उसमें गुरु का कितना इम्पोर्टेंट रोल रहता है? गुरु हमें सिलेक्टेड करना चाहिए, या फिर जैसे ही आपको बिना गुरु के भी कर सकते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है?
0: एक्चुअली गुरु का होना बहुत जरूरी है
1: जी, जी,
0: बिना गुरु के हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं
1: जी, जी, जी।
0: और गुरु हम ऐसा मानते हैं कि हम अपने आप को इतना योग्य नहीं मानते कि हम गुरु को चुने, गुरु हमें चुनते हैं।
1: अच्छा अच्छा
0: जी, हम क्योंकि गुरु जो वो गुरु ही इसलिए बने हैं क्योंकि उन्होंने सीखा है इतना, और हम तो उनसे सीखने जा रहे हैं। तो अगर हमारे पास कभी ऑप्शंस भी आते हैं कि आपको किस गुरु से सीखना है, तो हम कभी अपनी चॉइस नहीं बता सकते, क्योंकि हम कैसे चूज करेंगे कि ये गुरु अच्छे हैं और ये गुरु अच्छे नहीं है। तो गुरु सब अच्छे होते हैं, गुरु सबको, जैसे बाबा सबको एक जैसा ज्ञान देते हैं, नंबर वार रहते हैं सब लोग, कौन कितना ले रहा है। ऐसी स्कूल में भी रहता है कि टीचर सबको एक जैसा ज्ञान देते हैं, लेकिन वो स्टूडेंट्स पे रहता है। ऐसे संगीत में भी गुरु सबको एक जैसा ज्ञान देते हैं, वो स्टूडेंट्स पे, शिष्य पे डिपेंड करता है कि वो अपने गुरु से कितना ले रहे हैं, गुरु की सेवा कितना कर रहे हैं, गुरु के दिल में कितना बस रहे हैं। मतलब अगर हम गुरु से सीख रहे हैं तो हमको बिल्कुल शिष्य बन के ही सीखना चाहिए। हमें ये नहीं कि आपने ऐसा सिखाया था, हमारे दूसरे गुरु जी उन्होंने ऐसा सिखाया था। मतलब एक रहता है स्टूडेंट्स में जो टीचर्स को वो बोलते हैं, और गुरु का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं होगा कि हमको स्टार्टिंग कैसे करनी है, अगर स्टूडेंट्स भी अगर स्कूल जाते हैं तो अगर वहां टीचर ही नहीं रहेंगे तो वो कैसे सीखेंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो संगीत के लिए भी गुरु का होना बहुत जरूरी है, तो गुरु का होना भी जरूरी है और शिष्य का भी उतना ही। जैसे अगर गुरु अपने 100% दे रहे हैं तो शिष्य को भी अपना 100% देना पड़ेगा, नहीं तो वो अधूरा रह जाएगा सब कुछ।
1: अच्छा, संगीत सीखने में जो है ना कुछ चैलेंजेस है, क्या चैलेंजेस है थोड़ा बताइए।
0: संगीत सीखने में चैलेंजेस

0: यही है कि हमें अपना पूरा 100% देना पड़ता है संगीत को। चैलेंज तो हम खुद को ही देते हैं एक तरह से, कि हमें अगर जैसे अगर हमें रियाज करना है, हम अगर एक दिन भी उसे छोड़ते हैं तो हम पीछे ही रह जाते हैं। उसको कंटिन्यू हमको रखना पड़ता है संगीत, तो हमको खुद को पहले निश्चय करना पड़ता है। और गुरु पे हम सबसे पहले, अगर हम गुरु से सीखते हैं तो हमको सबसे पहले अपने गुरु पे ट्रस्ट होना चाहिए। हमें डाउट नहीं होना चाहिए कि अगर हमें सिखा रहे हैं, क्या पता सही सिखा रहे हैं या गलत सिखा रहे हैं, क्योंकि सब में स्टूडेंट्स में रहता है ऐसा कि इनके पास जा रही हूँ क्या पता मुझे कैसे, तो निश्चय होना बहुत जरूरी है कि गुरु कैसे। तो यही रहता है कि हम जितना रियाज करेंगे, गुरु जी ने अगर कोई एक चीज बताई है, तो म्यूजिक में ऐसा है कि हमारी क्लासेस रेगुलर नहीं होती हैं। अगर हम किसी से पर्सनल क्लास भी लेते हैं तो मंथ में हमारी कभी 2 क्लास कभी 5 क्लास रहती है। उसका रीजन ये है कि एक बार अगर आपको गुरुजी ने कोई चीज बताई है तो आपको उसको पूरा हफ्ता प्रैक्टिस करनी है, पूरा वीक प्रैक्टिस करनी है, तो वो आपको नेक्स्ट चीज बताएंगे। तो वो जो वो बेसिक चीजें हमें बताते हैं तो उसका ही हम रियाज इतना करते हैं तो आगे के लिए हम चीजों के लिए परफेक्ट खुद ही बन जाते हैं कि अब नेक्स्ट चीज जो है हमको वो कैसे करनी है और नहीं करेंगे तो हम फिर वही जीरो पर आ जाएंगे। जी
1: चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया कि कैसे हम लोग म्यूजिक का जो चैलेंज है वो यही है कि आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस में ही या रियाज करने में आपको थोड़ा अलग से आ सकता है। वहां पर अगर आप उस चैलेंज को अगर आपने ओवरकम किया तो बहुत अच्छा हो सकता है। अगर वहां पर आप टूटे या फिर थोड़ा सा लेजीनेस रहा तो वो हमेशा के लिए बना रहता है। इसलिए म्यूजिक में सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि आपको 2 क्लास मिले महीने में, 3 क्लास मिले, लेकिन रोज आपको तो प्रैक्टिस करना ही है, ये आपका चैलेंज है। अगर आप सोच रहे हैं कि चलो गुरु फ्राइडे को ले रहा है, उसके पहले मैं थर्सडे को प्रैक्टिस करके अच्छी तरह से फ्राइडे को मैं सुनाऊंगा थर्सडे को प्रैक्टिस करके, तो ये सारी चीजें जो है आपको बड़ा मुश्किल कर देगा। आप ऐसी चीजें बिल्कुल संगीत में नहीं चलता है। इवन जो अच्छे से गा रहे पॉपुलर संगीतकार है वो भी रियाज आज भी कर रहे हैं। जितना रियाज करेंगे आप उसमें उतना ही आपका गला अच्छा बन जाता है और आप अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, सुरों पे आपकी पकड़ बनी रहती है, रागों पर आपकी पकड़ बनी रहती है। तो अगर ये चीज जो है संगीत में यही चैलेंज है कि आपको प्रैक्टिस रेगुलर रियाज रेगुलर करना पड़ेगा, सबसे बड़ा चैलेंज। और सीखते वक्त तो हर चीज को जो है, जैसे अब राग की बात आती है तो हर राग का अपना एक स्टाइल है, तो सब में सब सुर लगते हैं ऐसा भी नहीं है, किसी में सुर कम भी हो जाते हैं, किसी में सुर जो है पूरे के पूरे लगते हैं, आरोह अवरोह, ये सारी चीजें आपको एक तो मैथमेटिकली आपको याद भी रखना पड़ता है। तो यहां पर संगीत के साथ साथ कुछ गणित भी है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं रश्मित कौर जी से। और अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक, सुनते एक बहुत ही प्यारा संगीत। आप सुनाए हैं रिनुमाद 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: मुश्किल भी है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि सभी का पसंद होते हुए भी सभी लोग गायक नहीं बन पा रहे हैं ना, तो यहां मुश्किल है। अब मुश्किल किस बात पे है वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बात बताई। अब इसके बाद अगर मैं एक और बात जोड़ना चाहूंगा, संगीत और मैथमेटिक्स साथ साथ चलते हैं, तो बोलेगा अरे सर अभी एक नया चैप्टर क्यों जोड़ रहे हो आप? लेकिन आप समझेंगे अभी। रश्मित कौर जी, संगीत में मैथमेटिक्स कैसे काम करता है थोड़ा सा?
1: संगीत देखा जाए तो मैथ्स ही है एक तरीके से।
0: फिर से वापस हमारे विद्यार्थी मित्र कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं?
1: ऐसा है कि जो हमारा शास्त्रीय संगीत है
0: जी जी,
1: ये निबद्ध है। अगर जैसे अगर हम कोई ताल में इसको गा रहे हैं, वो ताल जितने मात्रा की है
0: जी जी,
1: हमको उतनी ही मात्रा में उसको खत्म करना रहता है। अगर सम पर अगर हम आ रहे हैं तो अगर एक भी मात्रा, मतलब एक भी मात्रा अगर ऊपर नीचे हुई तो हमारा गलत हो जाएगा। शास्त्रीय संगीत में ऐसा बोलते हैं कि एक बार बेसुरे हो जाओ लेकिन बेताले मत हो। बेताल होना मतलब सब गड़बड़ हो जाता है। तो हम चाहे तो हम उसे अपनी फिंगर्स पे काउंट करके भी गा सकते हैं, नहीं तो अगर हमें ताल समझ आती है तो हम मन में या हाथ पे ऐसे बीट देकर भी हम गा सकते हैं। कोई भी अगर हम ताल, हर जो मतलब बंदिशें रहती हैं वो बहुत सारी तालों में निबद्ध रहती है।
0: बिल्कुल,
1: जैसे
0: बिल्कुल।
1: मैंने सीखा था भीम पलासी, उसमें मैंने एक छोटा ख्याल बंदिश सीखी थी, जा रहे अपने मंदिरवा। उसमें ऐसा था कि स्टार्टिंग में मुझे बहुत दिक्कत आती थी कि ये कैसे है काउंट, कैसे म्यूजिक में कैसी काउंटिंग रहती है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इसमें भी हमको कुछ ऐसा रहता है। और काउंट करके गाना कुछ लोग कहते हैं कि गलत है, जबकि ऐसा कुछ गलत नहीं है। जबकि जो बड़े आर्टिस्ट रहते हैं वो भी काउंट करके गाते हैं, और अगर उनको ताल, वो बड़े आर्टिस्ट हैं, उनको ताल ऐसे समझ में आती है कि उनको काउंट करने की नीड नहीं भी होती है, उनको समझ आता है। जब मुझे शास्त्रीय संगीत के बारे में नहीं पता था तो मुझे लगता था कि तबला एक जैसा ही प्ले करता है, ऐसा नहीं पता था कि इसमें भी ताल होती होंगी, ऐसा कुछ मुझे नहीं पता था। जब मैं खैरागढ़ गई, वहां जाके मुझे पता लगा, अच्छा ये वाली ताल प्ले हो रही है, अब इसके बाद ये वाली ताल प्ले हो रही है, उसमें भी काउंटिंग रहती है कि एक ताल 8 मात्रा की है, एक ताल 16 मात्रा की है, तो उसमें हम जैसे फिंगर्स पे ऐसे से करके काउंट करते हैं, ऐसे धा धिन धिन धा धिन धिन धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा, तो ये ऐसे हम काउंट करते हैं, काउंटिंग के हिसाब से हम गाते हैं। जैसे अगर हम यहाँ से उठा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अगर हम 7 से उठा रहे हैं तो जा रे अपने मन, ये इसको सम बोलते हैं। यहाँ पर आते हैं मंदिर वा जा, तो हमने पहले जहाँ से जा स्टार्ट करा था वहीं पे हमको आना चाहिए। अगर हम इधर आ गए तो मतलब हमारा गलत हो गया, हमने काउंटिंग गलत कर ली। तो यहाँ से जा रे अपने मंदिर वा जा रे, ऐसे करके काउंट करके हम गाते हैं। तो हमको गुरुजी ने यही सिखाया था कि आप स्टार्टिंग में तो आप काउंट करके गाओ, फिर धीरे धीरे आदत हो जाती है तो हमको काउंट करने की नीड ही नहीं रहती। और अगर हाथ पे नहीं काउंट करें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं।

ऐसे करके मैंने एक बंदिश सीखी थी और बहुत सारी, अगर हम इसका बड़ा ख्याल गाते हैं विलंबित जिसको कहते हैं, उसे भी हम जैसे वो विलंबित मतलब एकदम स्लो हो जाता है, तो उसमें भी मैंने विलंबित एक सीखा था।

0: मतलब ये सम आ गया। तो अगर हम गा रहे हैं तो अगर हमने बेर, जैसे अभी मैंने लिया बेर, तो अगर मैंने बेर कर दिया, एक भी मात्रा हो गई तो वो पूरा गलत हो जाएगा। अगर संगतकार साथ में बैठे हैं तबले के,
1: बिल्कुल,
0: तो वो देखने लग जाते हैं कि इन्होंने गलत गा दिया, वो फिर हमको बताते हैं कि ये अब आएगा सम। स्टार्टिंग में मेरे साथ होता था और स्टार्टिंग में सबके साथ होता है,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: कि हम सुर में तो गाते हैं लेकिन हम ताल में नहीं गा पाते। तो इसके लिए यही है कि हमें रियाज करना पड़ता है,
1: बिल्कुल।
0: और हमारा ये है

0: हमें तबले के साथ रियाज करना चाहिए।
1: सही बात।
0: तबले के साथ रियाज करते तो हम बेताल नहीं है, बेताले नहीं होते। हमें पता रहता है कि इस ये मात्रा है, ये ताल चल रही है, तो हमको कैसे गाना है, कहाँ से उठाना है, कहाँ हमको पॉज लेना है। तो ये अगर हम तबले के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी कभी इसमें गलती नहीं होगी ताल में।
1: चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया। और मुझे लगता है कि जो हमारे विद्यार्थी मित्र हैं वो सोच रहे होंगे संगीत सीखना आसान है, लेकिन आसानी के साथ साथ कुछ चीजों का जो है परफेक्शन भी इसमें चाहिए होता है, जिसके वजह से आपकी पहचान बनती है। अगर आप मात्राओं को अगर इधर उधर बेताले हो जाते हैं तो फिर वो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, सुनने वालों को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो दोनों आपको जो है, जब भी आप गाते हैं, बहुत सारे लोगों को संगीत के साथ गाना अच्छा लगता है और बहुत सारे लोगों को सोलो में भी गाते हैं तो अच्छा लगता है। तो ये पूरी प्रैक्टिस के ऊपर रहती है कि कितना आपने अब उसको रियाज किया है, कितना आपकी जो है इन चीजों के साथ बेसिक जो है, अगर कोई गाना आप गाते हो तो गाना ये फिनिश प्रोडक्ट है मेरे भाई। इसके पहले जो है बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर कोई गाना लिखा है तो वो किस ठाट में बनेगा और किस तरह से उसमें राग आएगा और किस तरह से उसको डेकोरेट किया जाएगा, ये सारी चीजें जो है एक कंपोजर, सिंगर, ये सारे लोग मिलके उसके बारे में सोचते हैं। और जब वो सारी चीजें तैयार हो जाता है, उसके बाद गायक को वो चीजें बताई जाती कि इस राग में ये चीजें ऐसे ऐसे आपको गाना है, तो फिर सिंगर जो है उसको उस ताल को समझता है, उस राग को समझता है, फिर उसको अपने तरीके से उसको उस लहजे में, उस मोड में, उस फील में गाता है। फिर उसके बाद वो रिकॉर्डिंग पूरी तरह से होने के बाद, सारा सेट होने के बाद आपके पास फिनिश प्रोडक्ट आता है, है ना। लेकिन उसके पहले बहुत सारा जो है काम होता है, जिसके बारे में अभी हम लोग रश्मिता कौर से सुन रहे थे। तो ये सारी चीजें हैं और वो सारी चीजें जब पूरी हो जाती है तब जाके आपके पास गाना आता है, है ना। तो इसलिए बहुत जरूरी है, सिर्फ गाना सुनने से आपको आसान अच्छा लगता है, लेकिन उसके पीछे जो है चार पांच लोगों का बड़ी मेहनत रहती है, तब जाके वो चीजें बनी है। तो सबसे पहले तो एक और बात मैं पूछना चाहूंगा, जितना आपकी रुचि रहेगी उतना ही चीजें जो है वो अच्छा आप सीख पाएंगे। अगर संगीत में रुचि रखते हैं तो आप तो जैसा टाइम मिले वैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो आपकी इंटरेस्ट भी देखिए और उसके बाद फिर आप इस चीजों में आगे बढ़ेंगे। तो एक और बात मैं पूछना चाहूंगा जाते जाते, जैसे कोई गाना बनता है
0: जी,
1: तो कंपोजिंग्स वगैरह जिसको बोलते हैं
0: जी,
1: तो उसमें जैसे कि कैसे शुरू हो जाता है, थोड़ा सा कोई ऐसा कंपोजिंग किया हो आपने या आपने गुरु के साथ, गुरुमा के साथ कुछ चीजें, तो वो एक एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए।
0: एक्चुअली मैंने अभी तक कुछ कंपोज करा नहीं है
1: जी, जी।
0: मुझे लिखने का शौक है।
1: हाँ हाँ।
0: मैं संगीत पर मैंने कविता लिखी है।
1: अच्छा अच्छा
0: जी। मैं आपको चार लाइन उसकी सुनाती हूँ।
1: बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए।
0: इसका टाइटल है वह है संगीत।
1: वह है संगीत।
0: जीवन जीने की कला है संगीत, ईश्वर से मिलाप है संगीत। जीवन जीने की कला है संगीत, ईश्वर से मिलाप है संगीत, महफिल में आने का सबब है संगीत। जो शहर में करे रियाज वह ईश्वर से करे मिलाप। शहर मतलब जो सुबह अमृत वेला हम जिसको बोलते हैं, जो हम बोलते हैं जो जिस टाइम हम रियाज करते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि अगर हम सुबह उठ के रियाज करते हैं मतलब हम ईश्वर से मिलाप करते हैं, हम सरस्वती माँ से मिलाप करते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो यही है, मैंने दो चार लाइन लिखी थी और वैसे मेरे फोन में है, मुझे एकदम अभी याद नहीं आ रही।
1: कोई नहीं, हम समझ गए कि आप लिखते भी हैं और कंपोजिशन का अभी आपके पास वो चीजें नहीं है।
0: मैं स्टार्ट करूंगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि आप उसे भी एक बार अनुभव वो भी आपके पास आ जाए। और जाते जाते मैं चाहूंगा कि एक आपका पसंदीदा गीत हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को सुनाइए। कोई भी फिल्मी गीत, कोई भी मोटिवेशनल, कोई भी गीत सुनाइए जी।
0: जी, ऐसे तो बहुत सारे हैं।
1: जी जी जी, अभी जो याद आ रहा है वो सुनाइए।
0: जी
1: ओके सुनाइए।
0: ये गीत मुझे मेरी दादी ने सिखाया था।
1: अच्छा।
0: दादी जी गाते थे पहले दादाजी के लिए, तो उन्होंने मुझे अच्छा। सिखाया था कि दादाजी को बहुत पसंद था। तब से मैं बहुत छोटी थी, तब मुझे गीत दादी से ही मैंने पहली बार सुना था। फिर जब मुझे बहुत बाद में याद आया तो फिर मैंने इसे यूट्यूब पे सुना था।
1: अच्छा, अच्छा।
0: ये सॉन्ग खानदान मूवी का है, तुम ही मेरे मंदिर।
1: हाँ, तुम्हें मेरे पूजा।
0: मैं स्टार्ट करती हूँ।
1: बिल्कुल।

चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में हमने रश्मित गौर को सुना, बहुत ही प्यारा संगीत आपको सुनाया उन्होंने, और संगीत की यात्रा के बारे में उन्होंने बताया, अपनी भी बताया और आप कैसे इसमें अच्छा कर सकते हो ये भी आपको बताया है। तो चलिए, आशा करूंगा आपको आज के इस एपिसोड में संगीत में करियर करने का बहुत ही सुंदर जो है बातें आपको सुनने को मिले। अगर आप सोच रहे हैं संगीत में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप जरूर आगे बढ़े और जो बातें आपको बताई गई हैं उस पर जरूर काम कीजिए। एक बार जो है आप इन सारी चीजों को ध्यान में रखें और आगे बढ़ते जाएं, ऐसी शुभ आशा के साथ फिर से एक बार रश्मित कौर जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। फिर मिलते हैं और ओम शांति। चलिए मित्रों, आप सभी का करियर आप संगीत में अच्छा करें, ऐसी शुभ आशा के साथ फिर मिलते हैं अगले कड़ी में कुछ नई बातें लेकर। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते, मां गणेशा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: गाओ ना गीता, अब तो गाना आता है तुम्हें?
1: मुझे नहीं आता। नहीं मिलना भैया, आजकल तो गीता दीदी खूब गाती है।
2: हाँ हाँ गाइए ना।

0: सर, इतनी तेज चलाने की क्या जरूरत है सर?
1: जिंदगी में मैंने कभी हार नहीं मानी विनोद, और वो भी एक गलत तरीके से ओवरटेक करती हुई गाड़ी से।
0: दैट्स द स्पिरिट सर।

0: बहुत प्यार से बोल के उसको मोटिवेट करते, आगे बढ़ाते, तो ये होता है हम अपने समय को उनको दान दे रहे उनकी उनकी उन्नति के लिए। ये होता है समय का दान देना है, दान देना। और दूसरी चीज है समय को सफल करना, अर्थात हम कोई भी काम करें, चाहे वो झाड़ू लगाने का काम हो या फिर ऑफिस में बैठकर कारोबारी संभालने का काम हो, उस काम को हम सेवा समझकर अगर करते हैं तो वो समय भी सफल होता है। नहीं तो हमें ऐसा लगता है कि क्या यार मुझे ही करना है, मैं ही करना है, मुझे इतना काम करना पड़ेगा। जब हम काम के तौर पे देखते तो बहुत काम गिने जाता है, लेकिन वही हम सेवा के तौर पे करते हैं तो बड़े दिल से करते हैं। और भी तरीका है समय को सफल करना कि अच्छे अच्छे आर्टिकल्स को पढ़ना है और ज्ञान चिंतन करके दोस्तों के साथ शेयर करना है, इससे भी हमारा समय बहुत सफल होता है। और समय को खर्च करना मतलब क्या, समय को खर्च करना मतलब फॉर एग्जांपल 10 मिनट की काम रहती है, हम आलस्य और अलबेलेपन में अरे कर लेंगे वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं, व्यर्थ बातों में जैसे कि फोन पे लाइन पे लगे रहते हैं, फोन पे बातें करते रहते, गॉसिप करते रहते, उससे अच्छा कि उस गॉसिप पे साइड पे रखो, क्योंकि हर एक शब्द जो हम बोलते हैं वो वापिस 100 गुना होकर हमें वापस आते हैं। तो इसीलिए हमें बहुत अच्छा शुभ बोलना है किसी और के बारे में तो वो शुभ हमको 10 गुना क्या 100 गुना होकर वापिस आएगा। तो बेस्ट इसे बोलते हैं खर्च करना, हम ऐसे हमको लग नहीं रहा है कि हम खर्च कर रहे। तो दूसरी बात है कि समय को वेस्ट करना, ये भी है कि समझ लीजिए 2 शब्दों में कहने वाली बात को 10 शब्दों में कहना, या फिर व्यर्थ ही लड़ाई झगड़ा करना, बातों का पहाड़ बना देना, तो ये सारे चिंतन या फिर पर चिंतन करना, ये भी तो समय को हम वेस्ट गवा रहे, क्योंकि हर एक मिनट हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। इसको हम अगर गौर से विचार करेंगे तो जरूर ही हम आगे सफल पाएंगे। या फिर समय को बर्बाद करना मतलब उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ कह सकती हूँ, कोई भी बच्चा रहता है या फिर स्टूडेंट रहता है, 1 साल का पढ़ाई के दौर पे उन्होंने अच्छे से होमवर्क नहीं किया, पढ़ाई नहीं किया, ऐसे ही साल बर्बाद कर दिया, चाहे छोटा बच्चा हो या फिर मेडिकल इंजीनियरिंग का कोई भी स्टूडेंट हो, उसने उसका 1 साल अच्छे से पढ़ाई नहीं किया या फिर स्टडी नहीं किया तो उसने जो एंड रिजल्ट रहता है वो 0 आता है। तो इसके वजह से उसका जो वो समय बर्बाद हो गया। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि अगर हम बचपन में अच्छे से पढ़ लिख के रहते, अच्छे से समय को इस्तेमाल किया रहता था तो आज हम बड़े पोजीशन में होते थे, आज हम ये छोटे मोटे काम नहीं करते थे। तो इसीलिए समय वापस नहीं आता है दोस्तों, जैसे कि कहा जाता है कि शब्द और समय हाथ से चला जाता है और शब्द मुख से गया तो वापस नहीं आता है। इसलिए समय को बहुत महत्व देते हुए अपना कार्य करके इसमें सफल पाइए। थैंक यू सो मच।
1: रेडियो श्रोतागण, अगले ज्ञान चिंतन में हम आपसे फिर जुड़ेंगे, तब तक बने रहें रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
3: तो हमारे थॉट्स का सोर्स है, स्रोत है, संकल्प भी किस आधार पर

0: उठ रहे हैं, एक है पास्ट एक्सपीरियंसेस, कोई बीती हुई बातें, दूसरी इन्फॉर्मेशन जो हम पढ़ते हैं सुनते हैं, और तीसरी हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी मान्यताएं ये हैं। तो वो मान्यता के आधार से, जैसे कभी खुशी कभी गम, जीवन ही ये है, तो ये एक मान्यता है। तो थॉट ऑटोमेटिकली गम की थॉट, उदासी की थॉट क्रिएट करने की आप अपने आप को परमिशन दे देते हैं। जहां आपने अपनी बिलीफ सिस्टम को चेंज किया कि खुशी इज एवर लास्टिंग, तो फिर आपकी थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में जाएगी।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: शादी करोगी मुझसे?
1: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
2: आज मैं आत्मा ड्राइवर, ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे हिसाब से चले, मेरा मुख मेरे हिसाब से बोले, मेरा हाथ वो ही करे जो सही है कर्म, और मन वो ही सोचे जो सही है। दैट वुड बी दैट माई कार इज इन माई कंट्रोल। सो लाइक दिस फाइव पीपल आर स्टेइंग इन द हाउस, पांच आत्माएं ड्राइवर और उनकी अपनी अपनी एक गाड़ी। अगर हर आत्मा का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल होता तो जर्नी कैसी होती उस रोड के ऊपर? ब्यूटीफुल। हर एक ने प्यार से निकल जाना, हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना है, उसने घूम जाना, एक्सीडेंट कभी होता ही ना। द पावर टू मोल्ड, द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू टर्न हियर, द पावर टू ब्रेक स्टॉप, सब कुछ हो जाता अगर ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में होती तो। और अगर पांचों की होती तो वो जीवन, वो घर स्वर्ग होता, राइट? अब अगर सपोज चार की भी नहीं है, एक भी अपने करना शुरू कर दे, सी, तो कितनी सारी चीजें बचेंगी अगर एक आत्मा अपने ऊपर संयम ले आए। दिस इज द पावर दैट वी हैव। लेकिन अगर पांचों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चलें, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के नहीं चलेगा उस घर के अंदर। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ टुडे।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। नमस्कार, मैं हूँ अमोल। आप सभी रेडियो पुनेरी आवाज सुनने वालों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। वेलकम सिस्टर।
2: ओम शांति।
1: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग डिवाइन।
2: थैंक यू।
1: काफी इंटरेस्टिंग था आपका ये सोल का ज्ञान। आपने कहा था कि मैं शक्ति हूँ, मैं इस इंद्रियों का मालिक हूँ, आई द सोल, मेरी मर्जी के बिना मुंह में कुछ ना जाए ना मुख से निकले। लेकिन क्या हो रहा ना, ये कुछ बोल देने के बाद, कर देने के बाद याद आ रहा है।
2: कोई बात नहीं,
1: फिर रिग्रेट होता है, फिर लगता है कि छोटा सा, अरे मैं इस बात में फेल हो गया, थोड़ा बुरा लग रहा है।
2: 10 में से 9 times गलती हो सकती है।
1: वो भी सिर्फ साइलेंस हो रहा है, बोलना चाहता हूँ लेकिन मन से बोल रहा हूँ।
2: कोई बात नहीं, बहुत बड़ी बात है।
1: अंदर से तो पूरे वो निकल गए ना, इमोशन सारे वही आ गए।
2: इसका मतलब इधर तो मालिक बन गए।
1: मालिक मतलब
2: मालिक बन गए,
1: फुल मार्क्स नहीं दे सकते ना। 1 out of 10 में,
2: 1 out of 10 बार मालिक बन गए।
1: 1 बार बना बस।
2: अनेक जन्मों से हार रहे थे और आज एक बार जीत गए, तो अपने आप को क्या करेंगे?
1: शुरुआत तो ही,
2: अपने आप को अप्रिशिएट करना है।
1: वही तो कहूँ, शुरुआत तो होगी।
2: इमेजिन,
1: ABCD का ए तो आया।
2: एक क्रिकेटर है, वो आज तक जितने मैच खेला 0 पे ही आउट हुआ। जब जब खेला 0 पे ही आउट हुआ। हर बार 0 पे आउट हुआ, उसने कभी कोई स्कोर ही नहीं किया है। आज वो खेलने गया और उसने 5 run बना लिया है, फिर आउट हुआ, तो उसको क्रिटिसाइज करेंगे क्या? आज उसने खेला है, आज उसने अपना बैरियर तोड़ा है, आज उसने इतने समय का जो एक चल रहा था रिकॉर्ड वो तोड़ा है, किया है कुछ जो उसने पहले नहीं किया था, तो व्हाट डू वी नीड टू गिव? लॉट ऑफ लव एंड अप्रिसिएशन। टू वेरी केयरफुल अबाउट दिस। 1 out of 10 इज अ वेरी गुड स्कोर।
1: ये झूठा झूठा अप्रिसिएशन तो नहीं है?
2: ये कैसे झूठा झूठा अप्रिसिएशन?
1: जैसे छोटे बच्चों को हम
2: नहीं,
1: कोई बात नहीं
2: है। नहीं, आप एक विजुअलाइज करें, एक चलो बच्चे को देखें जो इतने दिनों से आप उसको सिखा रहे थे, वो नहीं सीख रहा था। पहले तो उसको पता ही नहीं था, तो वो कर नहीं रहा था, फिर आप सिखा रहे थे, वो सीख नहीं रहा था, आज फाइनली उसने थोड़ा सा कर दिया।
1: जैसे मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को बोलता हूँ, अभी आप बड़े हो गए हो, अपने हाथ से खाओ, मैं अपने हाथ मैं नहीं खिलाऊंगा।
2: ठीक है।
1: तो पहले वो ऐसे इधर कर लेते, इधर करते, 10 बार गिराते, फिर एक निवाला मुंह में डाल
2: लेते। जब वो एक निवाला मुंह में सही डाल लेते हैं,
1: तब मैं क्लैप करता हूँ।
2: वो झूठा झूठा होता है?
1: नहीं।
2: आपको अच्छा लगता है? यू रियली फील दैट दे हैव डन समथिंग, या वो झूठा झूठा होता है?
1: अच्छा लगता है।
2: क्यों अच्छा लग रहा है?
1: कि सीख रहा है बच्चा,
2: जो वो नहीं कर पा रहा था पहले, अब उसने कर लिया, तो झूठा झूठा कैसे हुआ? ये झूठा झूठा नहीं है, जेन्युइन अप्रिसिएशन। अब ये जैसे ही आपने उसके लिए अप्रिशिएट किया, ताली बजाई, या उसको मोटिवेट किया, उसको प्यार से कहा कि ब्यूटीफुल, लुक व्हाट यू डन, अब क्या होगा उसका प्रभाव उस बच्चे पर? क्या पड़ेगा, क्या पड़ेगा उसका प्रभाव?
1: एनकरेज होगा।
2: तो वो क्या होगा, वो कर्म वो क्या करेगा?
1: और करेगा, दोबारा करेगा, बेटर करेगा, और उसको कॉन्फिडेंस आएगा, कभी ये नहीं बोलेगा कि इट्स डिफिकल्ट।
2: सिंपल, नाउ वी नो एवरीथिंग। जो हम बच्चे के साथ कर रहे हैं, जो हम दूसरों के साथ कर रहे हैं, वो हमें अपने साथ करना है। अगर हम एक बार भी ये कर पाए कि कुछ मन में आया था लेकिन कर्म इंद्रियों द्वारा बाहर नहीं निकला, वेरी बिग अचीवमेंट, वेरी बिग अचीवमेंट। परमात्मा सिखाते हैं कि जो पाप हम करते थे, मतलब गलत बोलना, गलत सुनना, हाथों से गलत करना, ये पाप कर्म बन जाता है। तो परमात्मा कहते हैं, अगर कर्म इंद्रियों से पाप होना बंद हो गया, मन में अभी चल रहा है, तो भी आपने बहुत अचीव कर लिया। वो भी बहुत अचीव किया है। फिर हम ग्रो करेंगे ना, स्टेज वाइज जाएंगे। फर्स्ट स्टेज में कर्म इंद्रियों से बंद होगा, सेकंड स्टेज में मन से बंद होगा, और परमात्मा सिखाते तीसरी स्टेज में स्वप्न से भी चला जाएगा।
1: बहुत अच्छा।
2: या मतलब यहाँ से पूरी तरह से वो
1: डिलीट हो गया। सही बात है,
2: डिलीट हो गया, लेकिन फर्स्ट स्टेज हमने अचीव कर ली। सो इट्स सो ब्यूटीफुल। अब लेकिन इसको क्या करना है, रोज करना है। अब जो हमने मेडिटेशन लास्ट टाइम की, सिर्फ इतनी लाइन, मैं आत्मा शरीर की मालिक हूँ, ये लाइन को रोज सुबह चिंतन करना है। फिर इसको सारा दिन में करते जाना है कि आप जो काम कर रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, बात कर रहे हैं, जितनी बार भी याद आता जाए कॉन्शियसली, वो लाइन अंदर क्रिएट करके फिर उस काम को करते हैं। मैं आत्मा ये कर रही हूँ, मैं आत्मा ये कर रही हूँ, हम इसको याद दिला रहे हैं फिर से। तो इसको पूरा दिन अभ्यास करते जाना है, ये एक बैकग्राउंड में अंदर चलता जाना चाहिए अब शुरू, ताकि एक नई प्रोग्रामिंग क्रिएट होनी शुरू हो रही है। कैन वी डू दैट नाउ, नेक्स्ट स्टेप?
1: श्योर।
2: नेक्स्ट स्टेप हम ये कर सकते हैं कि मॉर्निंग में किया, फिर उसको सारा दिन में क्या करते जाएं? हाँ, सारा दिन में जो काम आप कर रहे हैं उसमें करते जाएं। मैं आत्मा ये कर रहा हूँ, मैं आत्मा इस आत्मा से बात कर रहा हूँ, मैं आत्मा अभी बाहर जा रहा हूँ,
1: दूसरी आत्मा से इंटरेक्ट करने जा रहा हूँ।
2: ये भी एक कॉन्शियसली अगर हम करें कि अभी मैं बेटे से मिलने जा रहा हूँ,
1: नहीं, बेटा एक सोल जो मेरे बेटे का रोल प्ले कर रहा है उससे मिलने,
2: मेक्स अ कम्प्लीट कम्प्लीट ह्यूज डिफरेंस।
1: लेकिन फिर उसकी क्वालिटीज याद आ जाती है ना, अच्छे बुरे, बुरी वाली। लेट मी बी वेरी फ्रैंक, अगर समझो मैं किसी एक्स वाई जेड से मिलने जा रहा हूँ, रिश्तेदार से, और मैं बोलूँ कि आई द सोल मीटिंग अनदर सोल, और जो कि मेरे भाई का सपोजिंग रोल कर रहे हैं, बहन का कर रहा है या रिश्तेदार का कर रहा है, फिर सारी उसकी लिस्ट लंबी आती है, ये बोला इसने, ये बोला इसने, ये बोला इसने,
2: वो सेकंड स्टेज पे करेक्ट करेंगे। अभी उसके लिए और नॉलेज चाहिए, ये हमारी फर्स्ट स्टेज ऑफ नॉलेज है। आप एक
1: तो मिलूंगा ही कैसे सोल समझ के, जब उसके उसके एकदम एक्सरे सामने दिखता है।
2: कोई बात नहीं, आप ये एक थॉट क्रिएट करके जाना है, फिर अभी हम सेकंड नॉलेज लेंगे ताकि ये वाली बात भी कट हो जाएगी। फिर पहले फर्स्ट, फिर स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। स्टेप बाय स्टेप नहीं चले तो नहीं वॉक करेंगे। स्टेप बाय स्टेप, जब तक ए नहीं आता तो हम बी पे नहीं जाते। तो ए को रोज करेंगे, बी की नॉलेज जैसे ही मिलेगी ना वो भी हो जाएगा। अभी ये स्टेप कि जिससे भी मिले, मैं दुकानदार से बात कर रहा हूँ, नहीं, मैं आत्मा से बात कर रहा हूँ। मेरे घर जो आया है गाड़ी चलाने, वो आत्मा आई है गाड़ी चलाने के लिए। आत्मा है ये, आत्मा है ये, आत्मा है ये, आत्मा है ये प्रैक्टिस। ये शुरू में लगेगा कि हम फोर्सफुली कर रहे हैं, लेकिन हम किसको चेंज कर रहे हैं? कॉन्शियसनेस को चेंज कर रहे हैं। यू जस्ट सी, इवन सेइंग द लाइन, ये ड्राइवर है, ये आत्मा है, डिफरेंस। शुरू में ये फोर्सफुल कंडीशनिंग लगेगी, थोड़े दिन में ये नेचुरल कॉन्शियसनेस बन जाएगी। आपको डिफरेंस नहीं लगेगा ये ड्राइवर है ये आत्मा, उसमें डिफरेंस नहीं आएगा?
1: बहुत आएगा।
2: अभी क्या डिफिकल्ट है इसमें? बहुत सिंपल है ये। जो आपके अभी सपोज आप कमरे में बैठे हैं, आपका स्टाफ आया, कोई झाड़ू पोछा कर रहा है, सिर्फ एक थॉट क्रिएट करनी है, ये आत्मा है, क्योंकि है ना, वो है ना, रोल अलग अलग प्ले कर रहा है, ये आत्मा है। बजाय कि हम पहले ये क्रिएट करते थे नौकर है, कुक है, चपरासी है, क्या क्या बोलते हैं।
1: मेरे गुरु मुझे कहते थे कि जो तुम लोग गटर के सामने मुंह पे कपड़ा रख के और इस तरह देखते हो, चार दिन वो अगर नहीं आएगा तो आपका क्या हाल होगा? थैंक दैट पर्सन, एंड वो आत्मा का आप शुक्र करो। सबसे पहले उसको रेस्पेक्ट करो, उसको कि आपका वो काम कर रहा है सफाई, जो आप क्या करोगे 8 दिन यार वो नहीं करेगा तो आप करोगे?
2: वो उसका रोल है कि वो कितना अच्छा काम कर रहा है। लेकिन हम अभी
1: हाउ मच यू बेनिफिटेड बाय दैट,
2: राइट? नाउ दैट इज गिविंग अप्रिसिएशन फॉर द रोल। नाउ वी वॉन्ट टू गिव अप्रिसिएशन टू द सोल फर्स्ट। ये अप्रिसिएशन तो उस रोल के लिए कि वो नहीं करेगा तो हमारे लिए कितना डिफिकल्ट।
1: जैसे हम बोलेंगे द सोल प्लेइंग द रोल ऑफ दिस,
2: मैं तो फिर रोल भी छोड़ दो, आप सिर्फ एक लाइन क्रिएट करो हर एक को मिलने के

0: ये आत्मा है बस। रोल तो कर ही रहे हैं सब अलग अलग, हम अक्नॉलेज भी करते हैं लोगों के रोल को। आप अक्नॉलेज करेंगे कि आपका ड्राइवर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है?
1: पहले एक्नॉलेज कहाँ करते थे सिस्टर्स,
0: हम डिपेंड,
1: वॉचमैन बराबर दिखता नहीं है, ये सब बराबर
0: डांस है, वो व्यवहार है, उनके रोल को हम अक्नॉलेज करते हैं कि ये इम्पोर्टेंट।
1: एक्नॉलेज क्या करते, उनको रोल वाइज बात करते थे, उनके साथ रोल वाइज बिहेवियर था मेरा। रोल ये है, तू चुप कर, तू बैठ जा, तू छोटा है, तू बड़ा है, हाँ हाँ जी नमस्ते।
0: अब हम क्या कर रहे हैं,
1: अलग अलग,
0: अब हम क्या कर रहे हैं, हम अपने बिहेवियर को चेंज करना चाहते हैं, लेकिन बाहर से नहीं करेंगे, हम अंदर से करेंगे।
1: मतलब
0: हम सिर्फ ये थॉट क्रिएट करेंगे, ये आत्मा है, वेट एंड सी हाउ द बिहेवियर विल चेंज।
1: अंदर से हुआ तो बाहर से तो ऑटोमेटिक होगा, एज एन एक्टर आई कैन अंडरस्टैंड।
0: कॉन्शियसनेस शिफ्ट, तो कॉन्शियसनेस से थॉट, फीलिंग, एटीट्यूड, एक्शन, हैबिट, पर्सनैलिटी, डेस्टिनी चेंज। सिर्फ आज ये होमवर्क है, कुछ भी करे, मैं आत्मा ये कर रही हूँ, किसी से भी मिले, ये आत्मा है, एक तीन वर्ड है सिर्फ, ये आत्मा है बस। सिर्फ सोचते जाए, बोलते जाए, अंदर बोलते जाए, ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है, करते जाए, लिखते जाए, ये आत्मा है। आपके बेटे का नाम विवेक, आप सिर्फ एक पेपर पे लिखो, विवेक आत्मा है, विवेक आत्मा है। यू विल चेंज इंटरनली व्हाट यू आर थिंकिंग एंड फीलिंग अबाउट दैट पर्सन। दिस हैज टू बी डन, टू बी एक्सपेरिमेंटेड, टू सी व्हाट मिरेकल हैपेंस। क्योंकि वी आर सो यूज्ड टू लुकिंग एट दैट पर्सन विद द कॉन्शियसनेस, ये मेरा बेटा है। तो मेरा बेटे के लेबल के थ्रू बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस अलग होती हैं।
1: लेकिन एज एन एक्टर जब मैं एक किंग का रोल करता हूँ तो मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ, कितनी बार बोलता हूँ अपने आप को,
0: तो मैं राजा
1: उठने में, बैठने में, राजा ऐसे बैठते, राजा ऐसे करते हैं। लेकिन जैसे शूटिंग खत्म होती है फिर वापस सुरेश अरोड़ा बन जाता हूँ।
0: हाँ, तो कितनी देर, लेकिन एक पूरा दिन करेंगे अगर शूटिंग, सपोज वन मूवी की आप शूटिंग 8 घंटे कर रहे हैं, तो आप 8 घंटे मैं राजा हूँ कर सकते हैं ना,
1: 100%।
0: अब वो मूवी की सपोज 6 महीने चल रही है शूटिंग,
1: हाँ तो रोज वापस,
0: और 6 महीने रोज आप जा रहे हैं, तो 6 महीने रोज आप मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ, वो कॉन्शियसनेस कर सकते हैं ना, 6 महीने कर सकते हैं, तो 6 साल भी कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इट ऑल डिपेंड्स हमें कितना टाइम करना है। वो तो आपको पता होता है कि ये खत्म हो गया, सो यू शिफ्ट योर कॉन्शियसनेस।
1: हियर जो ओरिजिनैलिटी पे मैं आ जाता हूँ, वैसे फादर का रोल प्ले करके आई शुड बी ओरिजिनैलिटी पे मुझे आना चाहिए, एज अ सोल। आई एम अ सोल प्लेइंग
0: फादर का रोल प्ले करके नहीं ओरिजिनैलिटी में आना है, ओरिजिनैलिटी में होकर फादर का रोल प्ले करने जाना है।
1: आई सोल
0: एक्चुअली अभी रोल को नहीं देखो,
1: सिर्फ सोल,
0: रोल कॉन्शियसनेस तो बहुत डीप इनग्रेन्ड ही है। आप सिर्फ सामने बैठो अगर बात करें, आई एम टॉकिंग टू दिस सोल। रोल तो हमें पता ही है, हमें याद नहीं दिलाने की जरूरत है अपने आप।
1: जब आपकी बॉडी मुझे दिखती है तो वो सोल कैसे देखो आपको?
0: तो बॉडी तो दिखती है, तो ड्रेस भी तो दिखती है।
1: हाँ, तो ड्रेस भी तो कमेंट करता हूँ मैं।
0: हाँ, कोई बात नहीं,
1: जीन्स कैसे पहने,
0: कोई बात नहीं, लेकिन आपको पता है ना कि आप ड्रेस पे कमेंट कर रहे हैं, मेरे पे नहीं कर रहे हैं।
1: आप पे ही आ गया ना, क्या इसको अकल नहीं है, ड्रेस कैसे कपड़े पहनता है,
0: मेरी ड्रेस पे।
1: हाँ,
0: आप किससे बात कर रहे हैं? ये ड्रेस है, ये भी ड्रेस है,
1: लेकिन जो फेस है,
0: हाँ?
1: जो फेस मुझे दिखता है,
0: दिखता है,
1: फेस देखते हुए मैं आत्मा कैसे बोलूं उसको?
0: फेस दिखते हुए ये फेस मैंने पहना है,
1: इतना सोचना पड़ेगा मुझे,
0: ये आत्मा है, ये ड्रेस भी पहनी है, ये ड्रेस भी पहनी है, दो ड्रेस पहनते हम, एक ड्रेस रोज चेंज होती है, एक ड्रेस कुछ सालों के बाद चेंज होती है।
1: मैं नहीं बोलूंगा ये डिफिकल्ट,
0: इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स द ट्रूथ, इज इट नॉट द ट्रूथ?
1: सत्य तो है,
0: ये ड्रेस हम रोज बदलते हैं।
1: आंख जो देख रही है सिस्टर,
0: आंख तो ये भी देख रही है, लेकिन आंख को पता है कि ये पहनी हुई वाली ड्रेस
1: okay,
0: है।
1: मैं साड़ी से बात नहीं कर रहा हूँ,
0: आप साड़ी से नहीं बात,
1: चेहरे से कर रहा हूँ, तो अब साड़ी से, चेहरे से नहीं, आत्मा से।
0: यस,
1: ओके ओके,
0: इट्स नॉट सिंपल,
1: थोड़ा सिंपल हुआ। हाँ,
0: है ही सिंपल, वो है ही सिंपल, क्योंकि वो सत्य है ना, तो वो सिंपल है। हमने सिंपल को सारा भूल

0: ये कॉम्प्लिकेटेड किया है. नाउ वी जस्ट गोइंग बैक टू व्हाट द ट्रूथ इज. सो आज ये अभ्यास, ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है, मैं आत्मा हूं. ये एक थॉट भी क्रिएट करने से, थॉट से फीलिंग, फीलिंग से एटीट्यूड, बिहेवियर, हमारी वाइब्रेशन चारों तरफ अलग फैल रही है. वी आर इन द फर्स्ट स्टेज ए ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम बॉडी कॉन्शियसनेस टू सोल कॉन्शियसनेस. जर्नी हैज बिगन. अब हमें इस यात्रा को सिर्फ आगे लेकर जाना है. फर्स्ट पॉइंट ऑफ नॉलेज, मैं शरीर का मालिक आत्मा एनर्जी हूं. सेकेंड पॉइंट ऑफ नॉलेज, मैं आत्मा इस शरीर में बैठकर इस शरीर को कहां से बैठकर चलाती हूं. वेयर एम आई इन दिस बॉडी.
1: आपने बताया था ना इसके अंदर.
0: राइट. अब ये भी मुझे याद रखना है, ये भी मुझे याद रखना है कि यहां हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में सेंटर, क्यों मैं वहां बैठा हूं, क्यों मैं आत्मा वहां हूं, क्योंकि आई हैव टू बी नियर द ब्रेन. क्योंकि ब्रेन इस बाकी पूरे शरीर को चलाएगा. जैसे एक मशीन है, सपोज एक रोबोट है, उस रोबोट को कंप्यूटर से कंट्रोल किया जाता है. ठीक है, तो रोबोट ये शरीर है. विजुअलाइज करें, एक रोबोट है, वो ये शरीर है. उस रोबोट को चलाना, कंट्रोल करना किससे किया जाता है? कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन से किया जाता है. तो वो कंप्यूटर कौन है? वो ब्रेन है. लेकिन कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए कोई बैठता है.
1: लाइक रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में रहता है.
0: yes.
1: और जो भी चैनल मुझे टीवी में चाहिए,
0: दैट्स इट,
1: दबाने वाला मैं हूँ.
0: जैसे आजकल गेम्स नहीं होती कि हाथ में रिमोट कंट्रोल है. प्लेन क्या है? वो शरीर है. जो रिमोट हाथ में है वो क्या है? वो ब्रेन है. वो जो दबाने वाला है
1: वो मैं हूँ,
0: वो मैं हूँ. तीन,
1: तो मैंने कुछ नहीं अब नहीं किया बोलने की चांस ही नहीं अब तो.
0: कैसे चांस?
1: ये ज्ञान मिलने के बाद
0: कैसे पॉसिबल है?
1: मतलब हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लेनी पड़ेगी.
0: अब वो प्लेन वहां पड़ा है, वो सडनली ऐसे उड़ जाता है, तो हम कहेंगे क्या प्लेन अपने आप उड़ गया? अपने आप उड़ ही नहीं सकता, वो कर ही नहीं सकता. मैंने कोई बटन दबाया है तो वो वैसे उड़ा है. अब क्या हो रहा था? सिर्फ अनअवेयर बटन दब रहे थे. तो वो प्लेन इधर उधर उधर उधर उधर कुछ कुछ हो रहा था. अब अवेयरनेस से बटन दबाना है कि कौन सा बटन दबाना है, किस डायरेक्शन में उस प्लेन को लेके जाना है. अवेयरनेस से कई बार नहीं होता, अनअवेयर बटन दब जाते हैं. तो ये आजकल हम पहले अनअवेयर चल रहे थे, कोई भी बटन दब रहा था. तो क्या हो रहा था? मुख कुछ बोल रहा था, हाथ कुछ कर रहा था, कुछ भी हो रहा था. मैं बटन दबाऊं नहीं तो कंप्यूटर कुछ नहीं कर सकता, और अगर कंप्यूटर कुछ करे नहीं तो ये शरीर कुछ नहीं कर सकता. तो बटन दबाने वाला मैं.
1: सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी धीरे धीरे सुन सुन के मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पे ही आ रही है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग.
0: इट्स नॉट अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई एम दी ओनली वन हु हैज द पावर टू डू एनीथिंग. ब्रेन क्या है? जड़ है.
1: हाँ, दिस अ बेटर वर्ड.
0: ब्रेन जड़ है.
1: इंस्टेड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम द पावर.
0: आई एम द पावर.
1: ओके.
0: आई एम दी ओनली वन हु कैन डू इट. बॉडी कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन इट्स ओन. ब्रेन कैन नॉट गिव इंस्ट्रक्शन टू द बॉडी विदाउट मी. तो ये रोबोट, ये कंप्यूटर, ये मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा, मैं आत्मा इंस्ट्रक्शन दूंगा, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगा, कंप्यूटर वो सिग्नल फिर उस रोबोट को देगा, रोबोट ये काम करेगा. अगर रोबोट क्या कर रहा है वो पसंद नहीं आ रहा, ना रोबोट की गलती, ना कंप्यूटर की गलती, मुझे कोई इंस्ट्रक्शन को चेंज करना.
1: आपके पास से रिमोट, आपके पास से हाथ में कंट्रोल्स, आपके पास से चेंज कर दो डायरेक्शन.
0: दैट इज ऑल दैट वी आर डूइंग. दैट इज ऑल वी आर डूइंग. तो मैं आत्मा, सेंटर ऑफ द ब्रेन. जब हम मेडिटेशन करते हैं तो थॉट्स क्रिएट करने के साथ साथ हमें विजुअलाइज भी करना चाहिए.
1: क्या?
0: जो भी थॉट हम क्रिएट करेंगे उसको हमें साथ साथ विजुअलाइज करना चाहिए. अगर हम विजुअलाइज नहीं करते तो ध्यान कभी कभी इधर उधर चला जाता है. तो जैसे हम थॉट क्रिएट करें, मैं आत्मा हूं, हमें उसको विजुअलाइज कर लेना चाहिए.

0: विजुअलाइज मतलब मैं आत्मा यहां सेंटर ऑफ द फोरहेड, क्योंकि हम सेंटर ऑफ द ब्रेन में विजुअलाइज नहीं कर सकते, तो सेंटर ऑफ द फोरहेड टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट, इस प्रकृति के बीच एक पॉइंट ऑफ लाइट, छोटा सा चमकता हुआ सितारा, मैं आत्मा हूं। अब आत्मा पॉइंट नहीं है, आत्मा एनर्जी है, लेकिन विजुअलाइज करने के लिए हमें उसको एक वो सिंबॉलिक फॉर्म देना है, तो हम कहते हैं पॉइंट ऑफ लाइट। बिंदी कैसे लगाते हैं, वैसे हमें यहां देखना है कि मैं आत्मा शरीर का मालिक, यहां विजुअलाइज करें मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा हूं, यहां से एनर्जी इस पूरे शरीर को चलाती है, यहां से हर थॉट जो मैं क्रिएट करता हूं वो चारों तरफ फैलती है, हैपनिंग फ्रॉम हियर। सो माय सेकंड स्टेप कि मैं आत्मा हूं, एनर्जी हूं, पॉइंट ऑफ लाइट इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड, विजुअलाइज। थर्ड स्टेज, मैं आत्मा सारा दिन क्या करती हूं, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए ना ये आत्मा की फंक्शनिंग कैसे है। जैसे ये शरीर है, हमें इसकी पूरी नॉलेज है कि ये इसके अंग हैं, ये इसके अंदर ऑर्गन्स हैं, ऐसे ये चलता है तो ऐसे ये बनता है, हमें पूरी नॉलेज है इस शरीर की। इसी तरह आत्मा सारा दिन क्या करती है उसकी भी नॉलेज चाहिए। जैसे इस शरीर को चलाने वाले ये सारे अंग हैं, वैसे आत्मा के भी अंग हैं।
1: अच्छा।
0: आत्मा के भी फंक्शंस है कि आत्मा क्या करती है। जब मैं आत्मा सोचने का काम करते हो, वी कॉल इट द माइंड। जब मैं आत्मा सोचने का काम करती हूं, व्हेन आई द सोल आई एम क्रिएटिंग थॉट्स, इट्स कॉल्ड द माइंड। मैं आत्मा सोचती हूं। हम सब ने अनुभव किया है कि हम सोचते हैं, थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं सारा दिन,
1: हजारों लाखों थॉट्स
0: सारा दिन में। थॉट्स दिखाई नहीं देती,
1: नहीं देती।
0: थॉट्स कोई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से नहीं दिख सकती है, लेकिन हम सारा दिन का अनुभव है कि हम सोचते हैं। एक बच्चे को भी मालूम है कि वो सोचता है, उसको बोलना चलना लिखना सिखाया जाता है, सोचना नहीं सिखाया जाता। सोचना तो वो कर रहा है, ये सोच जो रहा है ये एनर्जी है, ये फिजिकल है। सोच दिखाई नहीं देती, फील होती है, इट्स एनर्जी। ये जो एनर्जी है थॉट्स की, ये एनर्जी मैं आत्मा क्रिएट कर रही हूं। तो मैं आत्मा ही जब सोचती हूं उसको मन कहते हैं।
1: ओके।
0: हम आत्मा वर्ड यूज नहीं करते थे आज तक डेली सारा दिन में, लेकिन मन वर्ड यूज करते थे।
1: करेक्ट।
0: करते हैं,
1: मेरा मन ये कहता है।
0: यस yes, मेरा मन ये कहता है। तो वो मेरा मन जो कह रहा है वो कौन, मैं आत्मा कह रही हूं कि मैं आत्मा जब सोचती हूं, तो मैंने कहा मेरा मन ये कह रहा है। तो मैं आत्मा सोचती हूं, तो जो सोच रहे हैं हम वो मैं कर रही हूं। दैट्स वाई वी ऑलवेज सेड आई एम द क्रिएटर ऑफ एवरी थॉट, नॉट दैट थॉट्स आर कमिंग टू मी। सोच आ रही है, संकल्प आ रहे, आई एम द क्रिएटर ऑफ एवरी थॉट। विजुअलाइज करें यहां वो एनर्जी, वो हर थॉट क्रिएट करती है। जब वो थॉट क्रिएट करती है तब हम उसको कहते हैं मन। अब सारा दिन में ये कितनी थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं,
1: हजारों।
0: अब ये हजारों थॉट्स को हम ब्रॉडली क्लासिफाई कर सकते हैं। कई बार हमारी थॉट्स बहुत प्योर, बहुत प्योर, बहुत डिवाइन, पॉजिटिव होती हैं। कई बार हमारी थॉट्स नेगेटिव हो जाती हैं, नकारात्मक हो जाती हैं। कई थॉट्स हमारी नेसेसरी होती हैं, आवश्यक विचार है, ये करना है, ये काम करना, नेसेसरी थॉट्स। कई थॉट्स हमारी वेस्ट होती हैं, व्यर्थ चिंतन, जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला, वो वेस्ट थॉट्स चलती हैं। अब जो हम थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं इसको हम कहेंगे सोल कॉन्शियस थॉट्स, एलिवेटेड थॉट्स, जब हम अपनी ओरिजिनलिटी की थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं। अब ये सारों को सम टोटल,
1: एलिवेटेड थॉट का मीनिंग बताएं, एक एग्जांपल।
0: आई एम अ प्योर डिवाइन सोल, एलिवेटेड थॉट।
1: ओके।
0: यू आर अ वेरी प्योर सोल, एलिवेटेड थॉट। ये एलिवेटेड है, ये सिर्फ पॉजिटिव नहीं है। पॉजिटिव क्या होता था, ये काम हो जाएगा, ये मुश्किल नहीं है, ये हो सकता है, ये हम कर

0: लगाते हैं तो देखते हैं कि ब्रेक ठीक है कि नहीं। आज आप सारा दिन में क्या करना, काम करो, नॉर्मल अपना कर रहे हो, सब कुछ चल रहा है, सडनली से पॉज, कौन सी थॉट चल रही थी, वो थॉट को पकड़ें, मतलब देखें और इमीडिएटली इस पांच कैटेगरीज में से उसको डालें कहीं कि ये प्योर थी, पॉजिटिव थी, नेगेटिव थी, नेसेसरी थी, वेस्ट थी। बस इतना करना है, चेंज नहीं कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ क्लासिफाई कर रहे हैं
1: कि ये वाली थॉट आई थी,
0: ये वाली थॉट आई थी, ये पांच कैटेगरीज में से कौन सी थी, इसको हम कौन सी कैटेगरी में डाल सकते हैं, बस इतना आज चेकिंग करना है। और हमारा वो वाला होमवर्क तो है ही कि सब कुछ करते हुए, हर एक से मिलते हुए, एक थॉट पहले,
1: आई द सोल,
0: मैं आत्मा हूँ, दैट इज आवर होमवर्क फॉर टुडे।
1: थैंक यू सो मच सिस्टर, ओम शांति।
0: ओम शांति।
1: थैंक यू।
2: शिफ्टिंग फ्रॉम बॉडी कॉन्शियसनेस टू सोल कॉन्शियसनेस is a slow and gradual journey. Transformation may be in small steps, but is a big achievement. We are changing a sanskar of many births, and we should appreciate and motivate ourselves. The first attention we need to take is that we do not allow our negative emotions to come out in words and actions. Second step, they do not come even in thoughts. And third step, there is no trace even in our dreams. Let us practice while doing anything. We create the thought, I the soul am doing this. While meeting someone, we create the consciousness, I the soul am talking to this soul. When we create soul consciousness, we do not have our expectations of relations and position. The soul is seated in the center of the brain, between the hypothalamus and pituitary gland. Every time we create the thought, I the soul, we visualize a tiny point of light in the center of the forehead.
3: If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 099-99-559-660.

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसा अन्न वैसा मन, तो तामसिक भोजन का पर्यावरण पे तो असर हो रहा है, लेकिन तामसिक भोजन का हमारे मन पर क्या असर हो रहा है? अगर उस भोजन में नफरत की, क्रोध की, दर्द की ऊर्जा है, तो हमारी मन की स्थिति भी वही हो जाएगी उसको ग्रहण करने के बाद। तो अगर आज हम सिर्फ दो प्रतिज्ञा ले, एक हमारा अन्न सात्विक हो और दूसरा हम सिर्फ आज एक संस्कार का त्याग करें, वो है क्रोध, तो सही मायने में हमने आज इस यज्ञ

0: में आहुति डालकर विश्व में शांति लाने की सेवा की, वो सच्ची सेवा है।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। ऐसी धरनी को नमन करता है पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: भारत की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाली मुंबई के प्रदेश में, जी हाँ, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र प्राय द्वितीय भारत के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। भारत का ये सुंदर प्रदेश गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गोवा राज्यों से घिरा हुआ है और इसके पश्चिम में है विराट अरब सागर। आइए अब जानते हैं कुछ यहाँ के दिलचस्प इतिहास के बारे में। प्राचीन 16 महाजनपदों में अश्मक या अशक का स्थान आधुनिक अहमदनगर के आसपास का माना जाता है। सम्राट अशोक के शिलालेख भी मुंबई के निकट पाए गए हैं। महाराष्ट्र के पहले प्रसिद्ध शासक सातवाहन, जो ईस्वीसन पूर्व 230 से 225 तक रहे, वे महाराष्ट्र राज्य के संस्थापक थे और उन्होंने अपने पीछे बहुत से साहित्यिक, कलात्मक तथा पुरातात्विक प्रमाण छोड़े हैं। उनके शासन में ही मानव जीवन के हर क्षेत्र में भरपूर प्रगति हुई। फिर इसके बाद वाकाटक आए, जिन्होंने भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। उनके शासनकाल में महाराष्ट्र में शिक्षा, कला और धर्म सभी दिशाओं में अत्याधिक विकास हुआ। उनके शासन के दौरान ही अजंता की गुफाओं में उच्च कोटि के भित्ति चित्र बनाए गए। वाकाटकों के बाद कुछ समय के लिए कलचुरी वंश ने शासन किया और फिर चालुक्य सत्ता आई। इसके बाद तटवर्ती इलाकों में शिलाहारों के अलावा महाराष्ट्र पर राष्ट्रकूट तथा यादव शासकों का भी नियंत्रण रहा। यादवों ने मराठी को शासन की भाषा बनाया और दक्षिण के एक बड़े भाग पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। इसके बाद याद करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की, जो कि पहला मुस्लिम शासक था जिसने अपना राज्य दक्षिण में मदुराई तक फैला दिया। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर दौलताबाद कर ली। वह जो स्थान था वो पहले देवगिरी नाम से प्रसिद्ध था और अहमदनगर के पास था। बहमनी शासकों ने महाराष्ट्र तथा इसकी संस्कृति को समन्वित किया और शिवाजी के कुशल नेतृत्व में महाराष्ट्र का सर्वांगीण विकास हुआ है और ये एक अलग पहचान के साथ उभर कर सामने आया। शिवाजी ने स्वराज तथा राष्ट्रीयता की एक नई भावना पैदा की। उनकी प्रचंड शक्ति ने मुगलों को भारत के इस भाग में आगे नहीं बढ़ने दिया।
3: नाह पर जो सहसे राह पर राम जी राज है, राम जी राज है।

दक्षिण के पठार से लेकर पंजाब पर हमला बोलकर मराठाओं का आधिपत्य स्थापित किया, परंतु 1820 तक आते आते अंग्रेजों ने पेशवाओं को हरा दिया था और ये प्रदेश भी अंग्रेजी साम्राज्य का एक अंग बन गया था। फिर शुरू हुए स्वतंत्रता संग्राम। इसमें भी महाराष्ट्र सबसे आगे था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म भी यही हुआ है। मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य शहरों के अनगिनत नेताओं ने पहले तिलक और बाद में महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में कांग्रेस के आंदोलन को आगे बढ़ाया। गांधी जी ने भी अपने आंदोलन का केंद्र महाराष्ट्र को बनाया था और गांधी युग में राष्ट्रवादी देश की राजधानी सेवाग्राम। स्वतंत्रता के संग्राम की बात आ गई तो सुन लेते हैं

0: ऐसी धरनी, ऐसे व्यक्तित्व को नमन करता है पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: और आप हो हमारे साथ महाराष्ट्र के सफर में। अब जानते हैं महाराष्ट्र की पहचान एक प्रदेश के रूप में कैसे हुई। शायद आप सभी जानते होंगे कि महाराष्ट्र और गुजरात का जो स्थापना दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अब ये दोनों राज्य मुंबई का हिस्सा थे। जब मुंबई राज्य से महाराष्ट्र और गुजरात के गठन का प्रस्ताव आया तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मुंबई को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने की वकालत की। उनका तर्क था कि अगर मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी बने रहना है तो यह करना आवश्यक है। किंतु देश के पहले वित्त मंत्री और वित्त विशेषज्ञ चिंतामणि देशमुख

इसका प्रहार विरोध किया और इसी मुद्दे पर केंद्रीय मंत्रिमंडल से भी इस्तीफा भी दे दिया। देश की आजादी के बाद मध्य भारत के सभी मराठी भाषा के स्थानों का समीकरण करके एक राज्य बनाने को लेकर बड़ा आंदोलन चला और 1 मई 1960 को कोंकण, मराठवाड़ा, पश्चिमी महाराष्ट्र, दक्षिण महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र जो खानदेशी नाम से जाना जाता है तथा विदर्भ सभी संभागों को जोड़कर महाराष्ट्र राज्य की स्थापना की गई। महाराष्ट्र आपस के मराठी भाषी क्षेत्रों को मिलाकर बनाया गया जो पहले 4 अलग-अलग प्रशासनों के नियंत्रण में था। इनमें मूल ब्रिटिश मुंबई प्रांत में शामिल दमन तथा गोवा के बीच का जिला, हैदराबाद के निजाम की रियासत के 5 जिले, मध्य प्रदेश के दक्षिण के 8 जिले तथा आसपास के ऐसी अनेक छोटी छोटी रियासतें शामिल थी जो समीपवर्ती जिलों में मिल गई। महाराष्ट्र भारत के स्तर में बसा हुआ है और भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो ये राज्य मुख्यतः पठारी है। महाराष्ट्र पठारों का पठार है। इसके उठे हुए पश्चिमी किनारे सह्याद्री पहाड़ियों का निर्माण करते हैं और समुद्र तट के समानांतर तथा इसके ढलान पूर्व तथा दक्षिण पूर्व की ओर धीरे धीरे बढ़ती है और राज्य के उत्तरी भाग में सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं जबकि अजंता और सतमाला पहाड़ियां राज्य के मध्य भाग से होकर जाती है। अरब सागर महाराष्ट्र की पश्चिमी सीमा का पहरी है जबकि गुजरात और मध्य प्रदेश इसके उत्तर में है। राज्य की पूर्वी सीमा पर छत्तीसगढ़ है और कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश इसके दक्षिण में। महाराष्ट्र में कई प्रकार की आकर्षक भूआकृतियां हैं। नर्मदा नदी जो विभ्रंश घाटी से होकर बहती हुई अरब सागर में गिरती है राज्य की उत्तरी सीमा के एक हिस्से का निर्माण करती है और अरब सागर में ही मिलने वाली ताप्ती नदी की विभ्रंश घाटी इसकी उत्तरी सीमा के दूसरे हिस्से को चिन्हित करती है। ये दो नदी घाटियां सतपुड़ा श्रृंखला नामक उत्खंड से विभक्त होती है। ताप्ती घाटी के दक्षिण में अरब सागर के किनारे कोकण का तटीय क्षेत्र है और जिसके पूर्व में पश्चिमी घाट या सह्याद्री पहाड़ियों के नाम से विख्यात गगार स्थित है। सह्याद्री पहाड़ियों की तराई कोकण में अरब सागर से 6.4 किलोमीटर की दूरी तक पहुंचती है। कोकण का जो तटीय किनारा है संकरा है, इसके बीच बीच में सह्याद्री पहाड़ियों के पर्वतीय स्कंद है और क्षेत्र को कई पश्चिमवर्तीय द्रुतगामी नदियां प्रवाहित करती है। उत्तर में स्थित उल्लास इनमें सबसे बड़ी है। सह्याद्री पहाड़ियां उत्तर दक्षिण दिशा में दीवार की तरह लगभग 640 किलोमीटर तक लगातार स्थित है लेकिन इसमें गुजरने वाली कई दर्रे तटीय भूमि और भीतरी क्षेत्र के बीच महत्वपूर्ण सड़क और रेल संपर्क उपलब्ध कराते सह्याद्री की पूर्वी ढलान का उतार दक्कन के पठार की ओर क्रमिक जो पूर्व की ओर ढलान वाली गोदावरी, भीमा और कृष्णा नदी की घाटियों द्वारा निर्मित है और इन नदियों के अंत प्रवाह से महादेव, जनता, बालाघाट और अन्य पर्वत श्रृंखलाओं को आकार मिलता है। महाराष्ट्र में स्थित ये पर्वत श्रृंखलाएं और घाटियां रुके हुए लावे से निर्मित है जिनकी मोटाई कई स्थानों पर 3050 मीटर है। कई पहाड़ियों में लावे के विभिन्न प्रकार के अपरदन के कारण पठारी समतल जैसे ऊपरी हिस्से से युक्त सीढ़ीनुमा गगार की विशेष संरचनाएं बन गई है। अगर बात करें कृषि की तो महाराष्ट्र के लगभग 65% श्रमिक कृषि तथा संबंधित गतिविधियों पर निर्भर है। यहाँ की प्रमुख फसलें हैं धान, ज्वार, बाजरा, गेहूं, तूर, उड़द, चना और दलहन। ये राज्य तिलौना का प्रमुख उत्पादक है। महाराष्ट्र को पूरे देश का औद्योगिक क्षमता का केंद्र माना जाता है और राज्य की राजधानी मुंबई देश की वित्तीय तथा वाणिज्यिक गतिविधियों का केंद्र है। राज्य की अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। अब ये बात हुई राज्य की आर्थिक विकास की, पर शिक्षा की बात करें तो ये शिक्षा एक ऐसा स्तंभ है जो किसी भी देश या प्रदेश को विकास की ओर ले जाता है। तो आइए थोड़ा जानते हैं महाराष्ट्र के शिक्षा के बारे में।

यहाँ के शिक्षण संस्थान में मुंबई विश्वविद्यालय, नागपुर विश्वविद्यालय, पुणे विश्वविद्यालय, कोल्हापुर में जो है शिवाजी विश्वविद्यालय, मुंबई में संजीवनी महिला विश्वविद्यालय, फिर मुंबई की है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, कवि गुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय जो रामटेक में है, और इसके अलावा भी कई विश्वविद्यालय शामिल है। यहाँ शिक्षा और प्रशिक्षण की निगरानी और प्रायोजन के लिए शिक्षा, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा निदेशालय बने हुए हैं। महाराष्ट्र में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित कुछ अग्रणी अनुसंधान संस्थान भी है। ये संस्थान जल तथा विद्युत, उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान, रसायन विज्ञान, पर्यावरण अभियांत्रिकी, परमाणु अनुसंधान आदि से संबंध रखते हैं। महाराष्ट्र में शिक्षा के और भी अवसर कई अलग अलग क्षेत्र में प्राप्त किए जा सकते हैं, और वंडरफुल है यहाँ की संस्कृति, बहुत ही निराली। महाराष्ट्र का सांस्कृतिक जीवन तो प्राचीन भारतीय संस्कृति, सभ्यता और ऐतिहासिक घटनाओं के प्रभाव का मिश्रण है। ये मराठी भाषा और मराठी साहित्य विकास महाराष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान की अभिव्यक्ति है। स्थानीय क्षेत्रीय देवताओं के प्रति भक्ति, ज्ञानेश्वर और तुकाराम जैसे संत कवियों की शिक्षाएं, छत्रपति शिवाजी और अन्य राजनीतिक तथा सामाजिक नेताओं के प्रति आदर भाव महाराष्ट्र की संस्कृति की विशेष पहचान है। कोल्हापुर, तुलजापुर, पंढरपुर, नासिक और अन्य धार्मिक स्थलों पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। मेलों और त्योहारों का भी महत्व कम नहीं है। महाराष्ट्र के सांस्कृतिक जीवन में गणेश चतुर्थी, रामनवमी और अन्य स्थानीय और क्षेत्रीय मेले और त्योहार महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनके द्वारा लोगों का स्थानीय तथा क्षेत्रीय मेल मिलाप होता है और ये सामाजिक एकता को बढ़ावा देते हैं। अभी जो गणेश जी की यादें ताजा हो गई है, तो क्यों नहीं हम सुने उनकी महिमा का ये गीत।

0: आप हो हमारे साथ।
1: ऐसी धरनी को नमन करता है पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
0: महाराष्ट्र के शहर पर

मेरे भाई और बहनों, महाराष्ट्र के नाम से अभिनय करना तो बहुत पुराना है। वैसे पूरे भारत के फिल्म उद्योग की जो शुरुआत है, इसका श्रेय दादा साहेब फाल्के और बाबूराव पेंटर इनके जैसे अग्रणियों को जाता है। पुणे की जो प्रभात फिल्म कंपनी, उन्होंने संत तुकाराम और ज्ञानेश्वर के निर्माण के लिए प्रसिद्ध थी। हिंदी सिनेमा में नाना पाटेकर और माधुरी दीक्षित जैसे मराठी कलाकार विशेष रूप से सफल रहे। मराठी साहित्य की ही तरफ महाराष्ट्र में संगीत की भी प्राचीन परंपरा रही है। लगभग 14वीं शताब्दी में इसका मेल भारतीय संगीत से हुआ और आधुनिक काल में पंडित पलुस्कर और पंडित भातखंडे ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को नई दिशा दी। विलायत में हुसैन अल्लाह रखा इन जैसे अन्य वादकों की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। आज हम पंडित भीमसेन जोशी और लता मंगेशकर जैसे गायक इनको याद करते हैं। वे महाराष्ट्र के सांस्कृतिक जीवन में संगीत की महत्वपूर्ण भूमिका का प्रतिनिधित्व करते आए हैं। महाराष्ट्र में कला की भी प्राचीन परंपरा रही है। जो अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं, वस्त्र, सोने चांदी के आभूषण, लकड़ी के खिलौनों, चमड़े के सामान और मिट्टी के बर्तन, इनकी डिजाइनों की तरफ आप देखेंगे तो पता चलेगा महाराष्ट्र की कला भी बहुत ही वंडरफुल रही है। 1833 में स्थापित सर जेजी स्कूल ऑफ आर्ट कला शिक्षा के क्षेत्र में पहला आधुनिक संस्थान था और अब महाराष्ट्र के अधिकांश नगरों और बड़े शहरों में कला संस्थान स्थापित है। शास्त्रीय नृत्य शैलियों ने प्रतिभाओं को आकर्षित किया और पुणे जैसे बड़े नगरों में इनके प्रशिक्षण विद्यालय फल फूल रहे हैं। लावणी, पोवाड़ा मना रोमानी गीत और ओजस्वी नृत्य और तमाशा जैसी संगीत, नाटक व नृत्य से युक्त लोक कथाएं पुनर्जीवित हुई है। कला और फिल्म निदेशालय, साहित्य और संस्कृति बोर्ड राज्य सरकार की गहरी रुचि के परिचायक है। महाराष्ट्र की जो संस्कृति का प्रभाव महाराष्ट्र से बाहर भी फैल रहा है। भूतपूर्व मराठा साम्राज्य की राजधानियां जैसे बड़ौदा, अभी वो बड़ोदरा के नाम से जानी जाती है, ग्वालियर और अन्य नगरों में महाराष्ट्र मंडल इसमें खास सक्रिय भूमिका निभाता है। महाराष्ट्र की और विशेषता सुनने से पहले हम लता जी के इस मनभावन कंठ को भी सुन लेते हैं।

0: आपको हमारे साथ महाराष्ट्र की सैर पर।
1: ऐसी धरनी ऐसे व्यक्तित्व को नमन करता है पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
0: दोस्तों, आप हमारे साथ है महाराष्ट्र के प्रवास पर, महाराष्ट्र के सैर पर। महाराष्ट्र में देखने और घूमने के लिए कैसे स्थान है ये भी हम देखते हैं। यहाँ के महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्र हैं खास अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, केनेरी गुफाएं, पितलखोरा, कार्ला गुफाएं, इनके बाद महाबलेश्वर, माथेरान और पंचगनी, जवाहर, मालशीज घाट, अम्बोली, चिकलधारा और पन्नाला पर्वतीय स्थल। इसके अलावा यहाँ कई धार्मिक स्थान भी है, जैसे पंडरपुर है, नासिक है, शिरडी, नांदेड़, वैद्यनाथ, त्र्यंबकेश्वर, तुलजापुर, गणपति पुले, भीमा शंकर, हरिहरेश्वर, शेगांव आदि। ऐसे सुंदर स्थल और प्रकृति दोनों ही साथ महाराष्ट्र में, यथा हमारा और आपका महाराष्ट्र का सफर। अब आगे बढ़ते हैं एक मंजिल की ओर, 29 राज्य एक राष्ट्र एक कहानी।
1: ऐसी धरनी ऐसे व्यक्तित्व को नमन करता है पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
0: फिर मिलकर रहेंगे, लेकिन अंत में ऐसे महान राष्ट्र को दिल से सलाम करते हुए आपकी खिदमत में पेश आइए।

प्रिय प्रवतो सिद्धासनाधीश्वर राजाधिराज महाराज श्रीमंत श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब हम अपने आप को परमिशन देते हैं ना गुस्सा करने की, तो हम दिन में दो चार बार कर देते हैं। अब जितनी बार हम करेंगे वो संस्कार क्या होता जाएगा, वो संस्कार पक्का होता जाएगा। जैसे सपोज किसी को स्मोकिंग की आदत है तो वो कहते हैं दिन में सिर्फ दो, तो जब तक वो दिन में दो लेंगे वो कभी नहीं छूटेगी, क्योंकि जितनी बार की तो वो आदत क्या होती जाएगी, पक्का। लेकिन अगर अब उन्होंने कहा तीन दिन बिल्कुल नहीं, तो वो तीन दिन में उन्होंने उस आदत को कमजोर करना शुरू किया। तो कोई भी आदत को खत्म करने का एक ही तरीका है सिर्फ, कि उसको कर्म में आने नहीं देना। जितनी बार वो आएगी वो सिर्फ क्या होती जाएगी, स्ट्रेंथन होती जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

सब बकवास है सब बकवास, सब बकवास है सब बकवास। बालू मेहता को जिसकी चलती है हुकूमत उसकी, है दुनिया का दस्तूर यही सब गलत, यहाँ ताकत ही सही सब बकवास। किसने की प्रेम की बात, उसे हमारे सामने लाया जाए, हम उसे सख्त सख्त सजा

0: पड़ोसी, लेखिका सुधापुरी, पात्र परिचय यश, सैंडी, पंकज, वेदांत, दृष्टि, उन्नति, आदित्य प्रकाश, आदित्य।
1: आज तो हम सब ने जम के डिस्कशन की।
2: हाँ, पढ़ाई की क्लास कम और डिबेट की क्लास ज्यादा लग रही थी।
3: ये हमारे स्कूल में शाम को जो एक्स्ट्रा क्लास शुरू हुई है ना, काफी फायदा है इससे।
4: एक तो हम सबको एक बार फिर से इकट्ठे होने का मौका मिलता है और टीचर के सामने सामने सारा होमवर्क भी हो जाता है।
5: अच्छा है ना, मुझे तो किसी भी काम में कोई अड़चन आए तो तभी की तभी पूछ लेता हूँ।
6: कई बार तो मिस हमें ही आपस में डिस्कशन करके परेशानी का हल ढूंढने को कह देती है।
2: इससे पता है एक ही काम को करने के अलग अलग तरीके पता चलते हैं।
1: कई बार तो खुद को ही हैरानी होती है कि हमने किसी बात को उस एंगल से देखा क्यों नहीं।
0: पल में ही सब प्रॉब्लम सोल्व जाती है, ये सिस्टम हर स्कूल में हो जाए तो अच्छा है।
1: पर आज तो मजा ही आ गया, कोई नए सर आए थे।
3: जैसे ही सर ने लेक्चर देना शुरू किया मैंने डिस्कशन शुरू कर दी।
2: ओए, मैं क्या कहता हूँ, हर बार जब किसी बोरिंग टॉपिक से बचना हो तो डिस्कशन शुरू कर देना चाहिए।
3: हाँ, टाइम कैसे बीता पता ही न चला। बात शुरू कैसे हुई थी याद है?
4: बात शुरू हुई थी भारत में व्यापार से, उन्नति से।
5: और पहुँची कहाँ?
7: भारत की विदेश नीति तक।
2: पर अब पता है ना किस दुविधा में पड़ गए हैं।
1: हाँ पता है,
5: सर ने कहा है एक ऐसा रोल प्ले करना है जिसमें हम क्लास में ही एक प्रकार की ग्रुप डिस्कशन करेंगे।
1: हाँ, पत्रकारों की तरह। हाँ, टॉपिक होगा भारत की विदेश नीति।
3: हाँ, उन्होंने कहा है कि दो टीमें बनेंगी और वो अपने अपने नजरिया रखेंगी।
2: चलो अभी टाइम है, हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं।
4: पर कैसे, पहले नेट से जानकारी तो इकट्ठी करें।
5: वो तो कर ही लेंगे, मैं तो ये सोचने को कह रहा हूँ कि कैसे ये सब इन्फॉर्मेशन मिलाकर एक प्रोग्राम के रूप में देंगे, मतलब डिस्कशन कैसे दिखाएंगे, कौन क्या बोलेगा।
3: यही तो होमवर्क दिया है सर ने, वो भी कुछ कम नहीं है।
4: कह रहे थे कल ही हम सबसे सुनेंगे हम क्या क्या जानते हैं अपने देश की विदेश पॉलिसी के बारे में।
5: चलो चलो चर्चा शुरू करो, अभी जो जो जानते हैं ऐसा ही बोलते हैं।
6: और बीच बीच में ये कंप्यूटर भैया तो है ही।
1: ये कंप्यूटर तुमने नया लिया है क्या?
0: नहीं, हमारे पड़ोस में एक अंकल है, मुझसे बहुत प्यार करते, बोले कल शाम की क्लास के लिए ले जाकर अपनी प्रेजेंटेशन दिखा सकते।
1: हाँ अच्छी बनाई थी तुमने, भारतीय राष्ट्रीय जल पशु पर द फ्रेश वाटर डॉल्फिन।
2: हाँ, ये गंगा नदी में अधिकतर पाई जाती है, पर तुमने बहुत अच्छी तरह से दिखाया कि कैसे गंगा के मैले होने से यह विलुप्त होने के कगार पर है।
0: थैंक्स। जैसा कि इसका नाम है, यह साफ ताजे पानी में रह सकती है और अब इसकी संख्या भी बहुत कम हो गई है।
3: पर असली थैंक्स तो उन अंकल का है जिन्होंने अपना कंप्यूटर देकर तुम्हें क्लास में सब दिखाने का मौका दिया।
0: हाँ ये तो है, ये अंकल सबकी मदद करते, सब इनका बहुत आदर करते हैं।
1: और वो देखो दीदी भी आ रही है।
6: क्या बातें चल रही हैं?
0: पूछो मत दीदी।
3: दीदी हमें न कल एक रोल प्ले।
6: मैं बताती हूँ दीदी।
4: नहीं पता है हमारे सर ने हमें क्या काम दिया।
2: देखो पहले आज क्या दिखाया सबको। ओहो आगे क्यों आ रहे हो?
5: मैं आ रहा हूँ, तुम पहले आगे आए थे। दीदी देखो मैं बताता हूँ।
6: दीदी मैं।
2: ठहरो, एक एक करके आओ ना, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो।
1: दीदी हमें अपनी शाम की एक्स्ट्रा क्लास के लिए हमारे देश की विदेश नीति पर चर्चा करनी है, जरा मदद कर दो, इसमें क्या क्या आता है।
3: देखो मैं बताता हूँ, जितना मुझे पता है आजकल तो हमारे प्रधानमंत्री की विदेश नीति तो इस बात पर केंद्रित है कि अपने सब पड़ोसियों से आपसी संबंध किस प्रकार सुधारे जाए, है ना दीदी?
4: अभी पता चल जाएगा, इतनी बेसब्री क्यों हो रही है तुम्हें?
5: चलो बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास आजकल ये सब जानकारी प्राप्त करने के लिए।
2: रेडियो,
6: टेलीविजन,
0: अखबारें और
7: दीदी।
3: और सबसे आगे इंटरनेट।
6: क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो तुम लोग, विदेशी हमारे पड़ोसी ही तो होते हैं। देश के लेवल की बात करने से पहले ये तो बताओ कि तुम अपने घर के पास रहने वाले लोगों से कैसा व्यवहार करते हो।
2: बहुत अच्छा,
5: अच्छा।
3: हाँ हम हमेशा उनकी मदद करते हैं।
1: मम्मी जब भी कुछ अच्छा बनाती है उनके घर जरूर भेजती है।
2: एक बार मेरा इम्तिहान था, अगले दिन लाइट ही चली गई।

0: सबसे ज्यादा मजा तो तरह तरह के खाने खाने में आता है। सबका एक ही चीज को बनाने का तरीका फर्क होता है।
1: यानी अनेकता में एकता। हाँ हाँ, पर ये तो एक्टिव तरीके हुए पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाने के। अब ये बताओ, हम और किन तरीकों से उनकी मदद कर सकते हैं?
0: मतलब
1: क्या न करके उनकी मदद कर सकते हैं?
0: मैं बताऊँ, ज्यादा ऊंचा म्यूजिक न बजाकर।
1: हाँ, ये तो ठीक है। हो सकता है कोई पड़ोस में बीमार हो या किसी का इम्तिहान हो और उन्हें हमारे म्यूजिक से परेशानी हो।
2: एक और बात, इससे नॉइस पोल्यूशन भी कम होगा।
1: और बताओ,
3: अपने घर के बाहर साफ सफाई रखकर।
1: अगर सब ऐसे ही सोचें तो मोहल्ले भी साफ हो जाएंगे और सब पड़ोसी भी खुश रहेंगे।
4: जो भी सार्वजनिक साधन है, जैसे पार्क या बस स्टैंड या पीने के पानी का नल या लाइब्रेरी या और कोई सुविधा, सबको उसका ध्यान से प्रयोग करना चाहिए, ये समझ कर कि औरों को भी उसका प्रयोग करना है।
5: दीदी बस, अब पड़ोसियों की बहुत बातें हो गई, आप तो इधर आ जाओ बस, आज तो हम सब अच्छे फंसे हुए हैं।
2: हाँ, घर के पास के पड़ोसियों की बात बाद में करेंगे, पहले देश के पड़ोसियों की बात बताओ। बहुत काम है और हमारे पास है ये शाम भर का टाइम और ये कंप्यूटर लैपटॉप।
1: फिर क्या प्रॉब्लम है? चलो, कोई भी काम कितना भी बड़ा क्यों ना हो या कोई भी रास्ता कितना ही लंबा क्यों ना हो, शुरू कहाँ से होता है?
6: पहले कदम से।
7: तो चलो लेते हैं हम सब अपना पहला कदम।
1: हाँ, साथ के साथ नोट्स भी तैयार कर लेते हैं, फिर रोल फिक्स कर लेंगे बाद में।
4: काम इतना ज्यादा है कि कदम जैसे रुक से रहे हैं।
3: तो आओ मिलके गाना गाते हैं।

0: बिल्कुल सही, पर दीदी पहले आप ही शुरू करो ना, कुछ बताओ तो सही किस दिशा में चलें।
1: देखो, अच्छे संबंधों की बात की जाए तो एक सशक्त विदेशी नीति अब हमारे देश का ध्येय है।
2: मतलब गोल है?
1: हाँ, हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हमारे देश का ध्यान व्यापार पर अधिक केंद्रित होना चाहिए बजाय राजनीतिक या भूमि संबंधित प्रस्तावों के।
2: तभी तो क्लास में टॉपिक व्यापार से विदेश पॉलिसी तक पहुंच गया।
1: हमारे प्रधानमंत्री की विदेश पॉलिसी के मुख्य बिंदु हैं पड़ोसियों से अच्छे संबंध। जानते हो क्यों?
0: जिससे सब देशों में शांति और अमन हो,
2: और ये शांति और अमन उनकी उन्नति के कार्यक्रम में भी सहायक होगी।
3: दीदी, पापा बता रहे थे सभी महत्वपूर्ण विश्व में नेताओं ने हमारे देश के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने में रुचि दिखाई है।
1: हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो, पर वो इसलिए क्योंकि भारत में उन्हें व्यापार की और अच्छे बाजारों की झलक दिखी है।
0: हाँ, वो तो है।
4: अमेरिका के जॉन कैरी ने तो भारत आने से पहले ही भारत और अमेरिका के संबंधों के महत्व की बात करते हुए हमारे प्रधानमंत्री के स्लोगन सबका साथ सबका विकास का प्रयोग किया।
5: और दूसरी तरफ अगर भारत और जापान के संबंध की बात की जाए तो ये हमेशा से काफी मजबूत और स्थिर रहे हैं।
0: जापान की संस्कृति पर भारत में यानी बौद्ध धर्म का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है।
6: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी।

0: बाय ईस्ट हो या वेस्ट,
1: इंडिया इज द बेस्ट।
2: चलो चलो, बहुत सी जानकारी इकट्ठी करनी है और रोल बांटने हैं।
3: कल की तैयारी, अभी तो बहुत काम है। अब देखते हैं सर हमें क्या क्या कमेंट्स देते हैं।

0: पुणेरी आवाज ऐकण्यासाठी कर्ण आतुर झाले, पुणेरी आवाज ऐकण्यासाठी कर्ण आतुर झाले.
1: रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंदी रहा, आनंद लुटा.
2: नमस्कार, मैं हूँ पेंटल, आप सुन रहे हैं रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियाँ बांटो.
3: नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना आपका स्वागत करती हूँ. आशा करती हूँ आप सभी हेल्दी वेल्दी होंगे और प्रसन्न भी होंगे. तो आज हम चर्चा करते हैं, आज का हमारा विषय है मानसिक बीमारियों का कारण और निवारण. आज जैसा कि हम देख रहे, संसार में बीमारियों की भरमार है. चिंताएं पहले भी थी, समस्याएं भी थी, जीवन काफी कठिन था. यातायात के साधन व दूसरे साधन भी इतने नहीं थे, परंतु आज इतने साधन होते हुए भी बीमारियां बढ़ती जा रही है. इन बीमारियों में मानसिक बीमारियां जो अन्य बीमारियों का भी कारण बनती है, जैसे रात को नींद न आना, किसी भी काम में मन न लगना, उदास रहना, परेशान रहना, ज्यादा सोचते रहना आदि शामिल है. इनको चिकित्सा विज्ञान ने भिन्न भिन्न नाम दिए हैं. इन मानसिक बीमारियों से 50 साल की उम्र तक के युवा ज्यादा प्रभावित है. क्या है इसका कारण? वास्तव में सभी बीमारियों के मूल में मनुष्य की अज्ञानता है, जिस कारण वो अपने को आत्मा के बजाय शरीर समझ बैठा है. मनुष्य धन संपदा, पद प्रतिष्ठा, ठाट बाट के पीछे ज्यादा व्यस्त है और आत्मिक उन्नति की ओर उसका ध्यान ही नहीं है. शरीर को चलाने वाली चेतन आत्मा का ज्ञान ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है. आत्मा जब शरीर छोड़ देती है तो शरीर जड़ बन जाता है, जिसे मृत्यु कहते हैं. आत्मा की तीन शक्तियां हैं. पहला है मन, अर्थात संकल्प शक्ति. दूसरा है बुद्धि, अर्थात विवेक या निर्णय लेने की शक्ति. और तीसरा है संस्कार, जो हम कर्म करते हैं, कर्म के प्रभाव से जो बनते हैं वो होता है संस्कार. तो इन तीनों के बारे में नहीं जाने जानते हुए हम आगे के कार्य को करते रहते हैं और हमें आत्मा का ज्ञान ही नहीं होता है. इस कारण हमारी मानसिक बीमारियां जो है बढ़ती चली जाती है और हम खुद को ही नहीं समझ पाते हैं और हम खुद को पहचान भी नहीं पाते हैं कि हम कौन है. तो खुद को जानना बहुत जरूरी है. तो हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हुए लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ. और तब

नमस्कार दोस्तों, तो ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना आपका फिर से स्वागत करती हूँ और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हैं। आज का हमारा विषय है मानसिक बीमारियों का कारण और निवारण। मन और मस्तिष्क, इसमें क्या भेद है हम इसके बारे में भी नहीं जानते। चिकित्सा विज्ञान वाले अभी तक मन और मस्तिष्क में भेद नहीं कर पाए हैं। मन आत्मा की शक्ति है जबकि मस्तिष्क शरीर का अंग है जो आत्मा के लिए जैसे कंप्यूटर का काम करता है।

आत्मा मन और बुद्धि के द्वारा मस्तिष्क रूपी कंप्यूटर को चलाती है, जिससे पूरा शरीर चलता है। जैसे गाड़ी का इंजन चलने से पूरी गाड़ी चलती है और चलाने वाला है ड्राइवर। बच्चे को बचपन से ही अच्छे संस्कार देने की कोशिश होती है ताकि वह बड़ा होकर अच्छा इंसान बने। अगर वह गलत संग पकड़ लेता है तो खुद को भी बर्बाद करता है और परिवार व समाज के लिए भी कई तरह की समस्याएं खड़ी कर देता है। मन भी बच्चे की तरह है, उसके संग की संभाल की भी आवश्यकता है। ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग से आत्मा की बुद्धि ज्ञान से भरपूर व शक्तिशाली बन जाती है, तो उसका पूरा नियंत्रण मन पर रहता है। मन वही संकल्प रचता है जो सही हो, कल्याणकारी हो। फलस्वरूप आत्मा की जो कर्म है, कर्म भी श्रेष्ठ होते हैं, जिससे आने वाले सतयुग और त्रेतायुग में संसार सुखी होता है। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ, और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों, तो ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना आपका फिर से स्वागत करती हूँ और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हुए चलते हैं। हमारा आज का विषय है मानसिक बीमारियों का कारण और निवारण। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मन का इलाज होना चाहिए। द्वापर के बाद देह अभिमान में आने के कारण और आत्मा की बुद्धि रूपी दीपक को ज्ञान घृत न मिलने के कारण उसकी विवेक की रोशनी मंद हो गई है और उसका मन पर नियंत्रण कम होता चला गया है। मन मनमानी कर जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ जाने लगा है। मन कर्म इंद्रियों का गुलाम बन कभी आँख से अच्छा अच्छा देखने को, कानों द्वारा अच्छा अच्छा सुनने को, जीभ के द्वारा अच्छा स्वादिष्ट भोजन खाने को भटकने लगा है और थकावट के कारण कमजोर होने लगा है। उसको ये पता नहीं रहा कि बाहरी वस्तुएं जो कि नश्वर है सुख नहीं दे सकती। जो शांति सुख वो बाहर ढूंढ रहा है वो उसके अंदर ही है, परंतु उसे अंदर झांककर देखने की फुर्सत नहीं है। इसी कारण उसने गलत जीवन शैली अपना ली है और अपने को, अपने शरीर को रोगों का घर बना लिया है। इसलिए इलाज होना चाहिए मन का, परंतु चिकित्सा विज्ञान वाले भी मन और मस्तिष्क में भेद न कर पाने के कारण मस्तिष्क का इलाज करके इलाज की जो इतिश्री कर लेते हैं। जैसे मानसिक रोगियों को बिजली जैसे झटके मस्तिष्क में लगाते हैं। अब सर्व आत्माओं के परम पिता निराकार परमात्मा शिव अपने साकार माध्यम ब्रह्मातन द्वारा अपना परिचय, हम आत्माओं के स्वरूप का ज्ञान, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहे हैं, जिससे आत्मा की अज्ञानता और सर्व प्रकार के संशय मिट जाते हैं। आत्मा अपने निजी आत्मिक स्वरूप में स्थित हो गए परमात्मा द्वारा सिखाए गए राजयोग की विधि द्वारा अपनी मन बुद्धि की तार सर्वशक्तिमान ज्ञान सागर, शांति के सागर, दुखहर्ता सुखकर्ता परमात्मा से जुड़कर शक्तिशाली बन समस्याओं और बीमारियों पर जीत पा लेती है। ईश्वरीय ज्ञान से सद्बुद्धि जागृत होती है, जिससे व्यर्थ और समर्थ को परख कर निर्णय करने की क्षमता आत्मा में आ जाती है, जिससे ऐसे कर्म ही नहीं होते

कि दुख बीमारी हो। अतः आज विश्व की सर्व आत्माओं से अनुरोध है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर पधारकर परमात्मा द्वारा दिए जाने वाले सत्य ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग को सीखकर अपने को मानसिक व शारीरिक बीमारियों से मुक्त बनाए। याद रहे, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, गाते रहिए और कुछ गुनगुनाते रहिए।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: जब हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं दैट इज नॉट फेयर, बिकॉज पिता है, हम बच्चे हैं, वो कभी नहीं ये डिसाइड करेगा कि एक बच्चा ट्रेन ब्लास्ट का विक्टिम हो जाए और दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। एक पिता कभी ये नहीं कर सकता है, और अगर परमात्मा ये कर भी रहा है तो देन वी कैन क्वेश्चन ऑन व्हाट बेसिस। परमात्मा हमारी जीवन की यात्रा नहीं डिसाइड कर रहा है, हमारे अपने किए हुए कर्म, एंड दैट्स व्हाई थॉट्स लीड्स टू डेस्टिनी। उसमें सब थॉट्स जो अभी किए, जो बहुत सारे पहले, लेकिन वही थॉट्स अब उस डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। अब जो हुआ हादसा वो पिछले किसी कार्मिक अकाउंट की वजह से हुआ, लेकिन उस हादसे के बाद अब क्या करना है, एटलीस्ट दैट इज इन माय कंट्रोल नाउ।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो खुशियाँ।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने मुझे नीचे खींचा, उनकी वजह से ऑफिस में मेरा नाम खराब हो गया, उनकी वजह से पूरे सर्कल में मेरा नाम खराब हो गया। वो उन्होंने किया, मैंने उनके प्रति कितना गुस्सा, कितनी नफरत, कितना हर्ट, कितनी इरिटेशन क्रिएट की, या मैंने क्षमा कर दिया, ये चॉइस किसके पास है। अगर कोई हमारे साथ गलत करे और बड़ा वाला गलत करे, क्या उनके लिए अच्छा सोचना पॉसिबल है?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो।

0: सफर आरजे सनी के साथ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, खाबों के सफर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका हम सफर सनी, लेकर आया हूं प्रोग्राम रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर। जी हाँ, जहाँ पर आप सुनते हैं बहुत ही खूबसूरत गाने, 50s, 60s, 70s तक के गाने आपको हम लोग सुनाते हैं और बहुत ही अलग अलग कलेक्शन आपको अल्फाबेट के माध्यम से सुनाते हैं। जैसे पिछली बार हमने आर अल्फाबेट से सुनाया था, आज भी वही अल्फाबेट से आपको सुनाएंगे। और हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम को सजाने के लिए गानों का कलेक्शन लेकर उपस्थित है विभाजी। विभाजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू सनी, आपको सबसे पहले मैं नमस्कार कहना चाहूंगी और खाबों का सफर सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार से प्यार भरा नमस्कार।
1: जी जी जी, स्वागत है आपका। बहुत ही अच्छा लगता है जब आप अपने कलेक्शन के साथ हमारे साथ जुड़ते हैं और मीठी प्यारी बातें करते हैं, और हमारे श्रोताओं को भी बहुत ही अच्छा लगता है कि आप ऐसे ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे गाने लेकर आते हैं जिससे हमारी खुशी दुगनी हो जाती है। अब कहते हैं कि कभी कभी हमारे जीवन में तोड़ निभाना पड़ता है और ये जो है कभी कभी बहुत जल्दी खत्म भी हो जाता है, लेकिन कभी कभी ये जिंदगी भर चलता है। तो रिश्ते हैं, दोस्ताना है, तो जिंदगी भर ये चीजें निभाने वाला हमें एक बना के रखना पड़ता है और रस्सी की तरह हमें इसे लेके चलना पड़ता है। लेकिन कभी कभी कुछ चीजें ऐसी हो जाती है कि उसमें गांठें भी पड़ जाती हैं। इसीलिए गांठें पड़ भी गए तो रुकना नहीं, हमें चलना है। तुझे अभी बहुत चलना है, जल जल कर नहीं कभी गलना भी है। वादा किया है तूने खुद से, वादा तो निभाना ही होगा। इरादा किया है तूने अब जो, पूरा करके दिखाना ही होगा। तुझे अभी बहुत गिरना है, गिर गिर कर खुद को संभलना है, संभल कर कभी नहीं थमना है। तो साथियों, यहाँ पर यही बात बताई जा रही है कि हमारे जीवन में बहुत मुश्किलें आएगी, लेकिन फिर भी हमें रुकना नहीं, चलना है और चलते रहना है, क्योंकि चलना ही जिंदगी है, चलने का नाम ही जिंदगी है। तो आइए इस जिंदगी के कुछ इस पलों में एक घंटा हम आपके साथ हैं खाबों के सफर के साथ, और आशा व्यक्त करते हैं आपके इस एक घंटे को हम लोग बहुत ही खुशनुमा, यादगार, हल्का फुल्का और प्यार भरे, मस्ती भरे गीत सुनाएंगे। तो विभा जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड पहला गाना कौन सा आप सुना रहे हैं?
2: सबसे पहले तो मैं आपका, हमारे श्रोताओं को शुक्रिया करना चाहूंगी इतना कीमती वक्त मुझे देने के लिए, और इसीलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आर अक्षर पे आज फिर गाने लेके आई हूँ, और कोशिश यही है कि आपका दिल लुभाए, ये गाने आपको अच्छे लगे। ये गाना है रुक जा रात ठहर जा रे चंदा, बीते ना मिलन की बेला। ये गाना मीना कुमारी और राजकुमार पर फिल्म आया गया है। गाने के बोल बहुत ही भावुक है। अगर आपको स्टोरी पता है तो राजकुमार अपनी पत्नी को दुल्हन बनकर

0: के सामने आने को कह रहे हैं और इन लम्हों को वो लम्हे समेट लेना चाहते हैं क्योंकि वो बीमार हैं और उनको अपनी जिंदगी जाती हुई नजर आ रही है। मीना कुमारी दुल्हन के वेश में उनके सामने है और मीना कुमारी भी इन लम्हों को समेटना चाहती है और कह रही है, रात को कह रही है रुक जाने के लिए कि इतना तो बढ़ जा कि ये लम्हा मेरे हाथ से निकले। कल का डरना कल की चिंता, दो तन है एक मन हमारे, रुक जा रात ठहर जा चंदा, बीते मिल के बेला।
1: बहुत ही खूबसूरत गीत आपने याद कराया है। दिल एक मंदिर इस एल्बम का है और मुझे कुछ याद है कि मैं स्कूल पढ़ा करता था उस समय इस फिल्म के बारे में जिक्र किया करते थे लोग कि दिल एक मंदिर, इस नाम से ही लोगों ने इसको देखना शुरू किया था। तो ये एक फिल्म आई थी उस समय 1963 में शायद, और मीना कुमारी, राजेंद्र कुमार, राजकुमार, मोहम्मद अली, शोभा कोटे पर पिक्चराइज किया गया था। तो ये खूबसूरत फिल्म का ये खूबसूरत गाना कार्यक्रम की शुरुआत में आपके लिए, आप सुना है रेडियो मधुबन 90.4 FM, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीर आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, खाबों के सफर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग इस तरह के खूबसूरत गाने सुनते हैं तो दिल में एक नई ऊर्जा पैदा हो जाती है। और चीजें जो है, ऊर्जा तो पैदा होती है लेकिन उसे संभल के भी रखना होता है। मुनव्वर राना कहते हैं, अगर कभी रोना ही पड़ जाए तो इतना रोना आके बरसात तेरे सामने तौबा कर ले। तो चलिए, बहुत ही अच्छी बातें जो है हमने मुनव्वर राना की आपको सुनाई दो लाइनें। आशा करता हूँ आपके चेहरे पर मुस्कान आ गई होगी। तो हंसिए, दिल से हंसिए, खुश रहिए और खुशियां बांटिए। अब विभा जी, अगला गाना कौन सा आप सुनाने वाले हैं?
2: अगला गाना जैसे ये जितेंद्र और माला सिन्हा पे फिल्म आया गया, जैसे आप जितेंद्र जी का ध्यान आते ही आपको एक चुलबुलापन और एक शरारत सामने आ जाती
1: जी नजर आता
2: है। जी बिल्कुल। और ये गाने के बोल हैं, रुख से जरा नकाब हटा दो
1: मेरे हुजूर,
2: जलवा फिर एक बार दिखा दो मेरे। ये ट्रेन में गाया गया गाना है और माला सिन्हा अपना बुके में है और उनके साथ जितेंद्र छेड़ाखानी कर रहे हैं और गाना गा रहे हैं। तुम मिले हो मुझे ऐसे मिलता चांद जैसे रातों में। गाने के बोल भी बहुत खूबसूरत हैं।
1: जी जी जी। जितेंद्र, माला सिन्हा, राजकुमार, जॉनी वॉकर पर पिक्चराइज किया गया था। ये फिल्म आई थी मेरे हुजूर, जिसका टाइटल सॉन्ग आपने याद कराया है, 1958 का है और बहुत ही पॉपुलर फिल्म रही उस समय की। शंकर जयकिशन साहब का संगीत से सजा ये फिल्म, विनोद कुमार के निर्देशन में ये फिल्म बनी थी। ये फिल्म जो है उस समय एक प्रेम कहानी पर बनी हुई है और आशा करता हूँ आपने इस फिल्म को अगर देखा हो तो एंजॉय किया होगा। और क्लाइमैक्स लव स्टोरी को भी बीच में इसमें बताई गई है और शादी में समस्या आती है, फिर उसके बाद वापस ये चीजें जो है लास्ट में जाकर ठीक हो जाती है। तो चलिए, अब इस फिल्म का ये टाइटल सॉन्ग अभी आपके लिए। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना, हर्षद जयपुरी साहब का लिखा, मोहम्मद रफी का गाया, मेरे हुजूर इस एल्बम का गीत आपने सुना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कहते हैं मंजिलें बहुत है और अफसाने भी बहुत हैं, जिंदगी की राह में इम्तिहान भी बहुत है। मत करो दुख उसका जो कभी मिला नहीं, दुनिया में खुश रहने के बहाने अभी बहुत हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और आशा करता हूँ आप सभी को बहुत ही प्यारे प्यारे गीत सुनने का एक बहुत ही सुहाना अवसर हम दे पा रहे हैं आपको। और जो गाने आपको अच्छे लगते हैं उसके लिए जरूर कमेंट करिए 7219190005 पे, ताकि हमें बहुत खुशी मिलती है आपके मैसेजेस सुनकर पढ़कर। तो विभा जी, अगला गाना कौन सा है आपके पटारे में?
2: अगला गाना है मेरे पास, ये थोड़ा उदासी भरा गाना है, रुला के गया सब गुनाह मेरा, बैठी हूँ कब हो सवेरा। बेहद उदासी वाला ये गाना है और प्रीतम को याद करते हुए इसके बोल प्रीतम को बुला रही है और सवेरे का, सुबह होने का इंतजार है। सुबह मतलब नई जिंदगी का, नई खुशियों का इंतजार कर रही है। कैसी रे जिंदगी की सांसों से हम डूबे, के दिल डूबा हम डूबे।
1: जी, बहुत ही खूबसूरत गीत आपने याद कराया है, रुला के गया सपना मेरा। ये ज्वेलती फेस एल्बम का है और ये फिल्म आई थी 1957 में। देवानंद, अशोक कुमार, वैजयंती माला, तनुजा, इन पर पिक्चराइज किया गया था और ये कहीं न कहीं मुझे लगता है देवानंद का डबल रोल इसमें दिखाया गया है। और इस फिल्म में ये बहुत बड़ा क्लाइमेक्स है जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया। तो आइए, बहुत ही खूबसूरत गाना है जो आपको अभी सुना रहे हैं हम लोग, तो चलिए सीधे गाने की तरफ चलते, उसके बाद फिर बात करते हैं। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: रुला के गया सपना मेरा, क्या बात है। लता मंगेशकर की खूबसूरत आवाज में ये गीत आपने सुना। शर्मन साहब का लिखा, सचिन देव बर्मन का संगीत से सजा, ज्वलती फिस एल्बम से ये गाना था। आशा करता हूँ आप सभी को ये गाना सुनकर कहीं न कहीं कुछ यादें ताजी हो गई होगी, आपके जीवन की पुरानी यादें। तो चलिए आप यादों से निकलकर हमारे साथ जुड़ जाइए ख्वाबों के सफर में। और बात कर रहे हैं हम ख्वाबों के सफर में, समय आगे बढ़ता जा रहा है। कभी कभी लगता है कि हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें एक साथ आ जाती हैं और फिर

0: मंजिल मिल जाएगी। भाग दो, लेखिका सुधापुरी, पात्र परिचय यश, पंकज, उन्नति, सैंडी, वेदांत, आदित्य प्रकाश, दृष्टि, आदित्य।
1: ओए, जब से इन महाराज जी ने एक योगी का रोल क्या किया है, कुछ ज्यादा सीरियस नहीं हो गए?
2: पर हवा के रोल में ये तो हमें भी हर समय टोकते रहते हैं। यहाँ कूड़ा मत फेंको, वहाँ पानी क्यों गिराया, लोगों को पीने नहीं मिलता, वेस्ट करना पाप है।
3: अरे फिर ऐसे हमारी कौन सुनेगा जब हम ही अपना आचरण ठीक नहीं करेंगे।
4: बात सुनो पानी जी, आप बहुत शिकायतें लगा रहे हो।
0: और करूँ भी क्या धरती जी, ओहो सॉरी सॉरी, या आप पृथ्वी कहलाना ज्यादा पसंद करेंगी।
2: शांत हो जाओ, मुझ हवा को प्रणाम करो।
3: वाह भाई वाह, तुम्हें ही क्यों?
2: क्योंकि मानव बिना भोजन के कई दिन जीवित रह सकता है, बिना पानी के कुछ ही दिन, और बिना हवा के
5: कुछ ही पल। जय हो।
6: शुरू हो गई तुम लोगों की मस्ती, इतना क्यों हंस रहे हो? जोक क्या है?
7: लॉफ्टर थेरेपी।
1: जोक तो मैं बताता हूँ। कहते हैं, पता है सांप को हाई फाई क्यों नहीं देना चाहिए?
6: क्यों?
1: क्योंकि वो तुम्हें डस देगा।
6: सब तैयार हो, शुरू करें?
5: हाँ हाँ हाँ दीदी, कल के आगे से प्रैक्टिस करते हैं।
0: अच्छा, कल हमने बिश्नोई जाति की अमृता की कहानी तक किया था ना, इसके बाद ना यहाँ पर हम दिखाएंगे जैसे धरती पर मानव की लापरवाही से वही हो रहा है जिसका डर था। हम सब तरफ तबाही का सीन दिखाएंगे,
2: जैसे अचानक जोर से बिजली का कड़कना और जैसे तूफान का आना।
0: हाँ, चारों ओर त्राही त्राही, शोर चीख पुकार।
4: हाँ, मिली जुली घबराई आवाजें, सब इधर उधर भागते हुए।
6: अच्छा, जैसे पार्श्वभूमि से घबराए स्वर में फिर ये डायलॉग, किसकी बारी है बोलो?
0: मेरी। ये क्या, क्या ये धरती का अंत है?
2: अरे बच्चों, भागो भागो।
3: कहाँ भागे, सब तरफ बर्बादी है।
2: ये धरती जैसे बीच में से फट रही है।
1: बचाओ, ये पानी का सैलाब,
8: चारों तरफ सब टूट के बिखर रहा है, सब इमारतें पेड़, और ये क्या, सब इस तूफान में पानी में बह रहा है।
9: प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के

0: चल।
1: इधर तो मारे जा रहे हैं।
2: बच्चों उधर से देखो कितना भयानक लावा बहता हुआ आ रहा है, जैसे सबको निकल ही जाएगा।
3: सब मवेशी बच्चे बूढ़े सब डूब रहे हैं।
4: करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो दर्शकार वो ही तो महान है।
5: अच्छा यहाँ तुम सब स्टेज पर चारों तरफ कोहराम दिखाओगे
6: और पीछे से पार्श्वभूमि में जैसे किसी रेडियो या टीवी पर कोई जोर शोर से चिल्ला चिल्ला कर खबरें सुनाता हुआ।
7: कुछ पता नहीं चल रहा है कि आखिर क्या हुआ है। पूरे विश्व भर में तहस नहस की खबरें आ रही हैं। अंडमान द्वीप, सिशेल्स, मॉरिशस और लक्षद्वीप सब पानी में समाते हुए। हांगकांग से भी यही खबर है। भारत का दक्षिणी भाग हिंद महासागर का कहर झेलता हुआ। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि जैसे ये अर्थ का टिपिंग पॉइंट है, सब खत्म होने जा रहा है। उपग्रह से आए हुए चित्रों के अनुसार धरती पर कई जगह से धुआं और बिखराव स्पष्ट दिखता हुआ। कहीं धरती के सब एलिमेंट्स बिखर तो नहीं रहे हैं।
8: यहाँ जैसे हम अपने प्रधानमंत्री जी का जनता के नाम संदेश सुना सकते हैं, प्रधानमंत्री जी की आवाज़ में।
9: मैं जनता से निवेदन करता

0: कि इस विश्व संकट के समय में धीरज रखें। सुरक्षा कर्मी दुर्घटनाग्रस्त इलाकों में राहत सामग्री लेकर जा रहे हैं। कई हेलीकॉप्टर राहत कार्यों में जुटे हुए हैं।
1: फिर जैसे बिजली के झटके और अचानक से गहरा सन्नाटा, अब आगे अंधेरा होगा और हम सब बात मंच से चले जाएंगे।
2: और फिर केवल एक योग करते हुए व्यक्ति पर स्पॉटलाइट होगी।
3: पार्श्वभूमि में गहरी सांसों की आवाजें होंगी और गहराई से आती ओम की ध्वनि।
4: और फिर वह योगी जैसे अपने आप से बातें करेगा।
5: यहाँ मैं योगी का रोल करूँगा, मैं आगे आता हूँ।
6: आगे आकर बोलो।
5: ये सब क्या देख रहा हूँ मैं? कुछ गलत तो नहीं कह रहे थे ये पेड़, धरती, वायु और जल? मेरी ये नित्य की प्रार्थना, अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय का पाठ सिर्फ रटने के लिए नहीं है, जरूरी संदर्भ में भी इन श्लोकों का कोई महत्व होगा। हमारे पर्यावरण के अलग अलग भाग, पेड़, धरती, हवा और जल कितने परेशान हैं, जो हमारा पालन कर रहे हैं। हम उन्हें ही नष्ट करते जा रहे हैं, उन्हीं का विनाश कर रहे हैं, तो हमारे विनाश में क्या दे? यहाँ फिर मैं घुटने टेकते हुए बैठ जाता हूँ।
6: ठीक है, आगे तुम प्रकृति से बात करते हो तो दोनों हाथ ऊपर उठाकर करुणा भरी आवाज में प्रार्थना की तरह चलो बोलो।
5: हे प्रकृति, रास्ता दिखाओ। मैं सारी मानव जाति की ओर से हाथ जोड़कर पूछता हूँ, हम मानव इस समस्या का क्या हल निकाल सकते हैं? तुम ही बताओ, पेड़ों, जल, वायु, पृथ्वी माँ, हम क्या करें जिससे तुम्हारी परेशानी दूर हो जाए? हमारी वैदिक प्रार्थना का पालन करने में हमारी मदद करो। हम असत्य से सत्य की ओर बढ़े, हम अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर बढ़े, और मृत्यु से अमरता की ओर।

0: अब पार्श्व भूमि में ऐसा म्यूजिक होगा जैसे जैसे अब सब ठीक हो रहा हो। हम सब आगे आते हुए एक एक करके बोलते हुए हमारा जैसे चक्र घूमता हुआ एक एक बारी बारी आगे आकर बोलता हुआ।
1: धरती पर गंदगी फैलाने से सबको रोकना होगा।
2: इसके लिए या तो सब बेकार चीजों को रिसाइकल करना होगा या डिकम्पोज करके खाद बनाओ।
3: अपनी जरूरतें घटाओ।
0: हमारी माँ नानी दादी जब पुराने कपड़ों के थैले बनाती थी तो कुछ बुरा नहीं करती थी।
4: सब मिलकर एक ही कमरे में टीवी देखते थे तो प्यार के साथ साथ बिजली कम खर्च होने से धन भी बढ़ता था।
5: कसम खाओ बल्कि सब बच्चों को ही बचपन से ही जैसे कसम दिलवाओ कि अब से हम सारा कूड़ा कूड़ेदान में ही डालेंगे,
6: इधर उधर नहीं फेंकेंगे, उसका उपचार करेंगे।
7: अच्छा है। और हवा, उसे प्रदूषण से बचाना तो अब अत्यधिक जरूरी है। वायुमंडल की ओजोन लेयर में छिद्र, एंटार्क्टिका के ऊपर, चलो वहाँ तो कोई स्थायी रूप से रहता नहीं, पर कब तक बचोगे? अब तो सर पे आ बनी है।
1: और कहते हैं ये छिद्र बढ़ता ही जा रहा है, कई तरह के त्वचा के कैंसर।
2: कहीं ऑस्ट्रेलिया जैसे धूप में बाहर घूमना ही दुश्वार ना हो जाए, वहाँ तो बिना किसी क्रीम या छतरी के धूप में घूमने की सख्त मनाही है।
3: हमारे देश में तो कैसे हम सर्दियों में धूप सेका करते थे।
0: उसके लिए हम कहेंगे अगर मानव जीवित रहना चाहता है तो फैक्ट्रियों और वाहनों के धुओं को कम फैलाओ।
4: कारपूल, सार्वजनिक यातायात के साधनों का प्रयोग करके जहरीले गैसें कम हवा में फेंको।

0: जल निर्मल बनाएंगे,
1: जल निर्मल बनाएंगे,
0: गंदगी नहीं बहाएंगे,
1: गंदगी नहीं बहाएंगे,
0: वायु शुद्ध बनाएंगे,
1: वायु शुद्ध बनाएंगे,
0: जीवन को बढ़ाएंगे,
1: जीवन को बढ़ाएंगे।
2: हाँ, ये अच्छा अंत होगा नाटक का, शाबाश। नाटक वाटक तो ठीक है, पर आज हम खुद क्या कर सकते हैं?
3: वो देखो वहाँ कूड़े का ढेर। तो चलो साथियों, सबसे पहले उस कूड़े के ढेर को जो है
4: ये आज हमारे हाथों से बच न सकेगा। दीदी आइए, आज सब मिलकर इस हॉल के बाहर के पार्क को साफ करें।
5: सफाई के लिए अभियान हमारे दिलों से शुरू हो।
3: हाँ, आज देश को हमारा मिलके काम करने का नेक इरादा चाहिए।
2: फिर सब मिलकर पिकनिक मनाएंगे, वहाँ कैंटीन में समोसे की दावत मेरी तरफ से।

0: रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंदी रहा, आनंद।
1: नमस्कार, मी वर्षा उसगावकर, तुम्ही ऐकता आहात पुणेरी आवाज 107.8 FM वर। आनंदित रहा आणि नेहमी सगळ्यांना आनंदित ठेवा।
2: स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेक।

0: आपने जाना कि कैसे नरेंद्र अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी से मिले और धीरे धीरे कैसे वे गुरु के प्रति आकर्षित हुए, पर ये सहज ही नहीं हुआ।
1: श्री रामकृष्ण के साथ प्रथम भेंट के समय नरेंद्रनाथ ने श्री रामकृष्ण देव की जो सारी बातें सुनी थी एवं उनका जैसा विलक्षण व्यवहार देखा था, उसका वास्तविक तात्पर्य समझने में थोड़ा समय लगना आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि अवतारवाद में विश्वास नहीं रहने पर इन सब बातों और व्यवहारों का रहस्योद्घाटन संभव नहीं है। इधर नरेंद्र के युक्तिपरायण और ब्राह्म समाज के भाव में रंगे मन ने उन्हें अकस्मात तर्कहीन अवतारवाद को स्वीकार नहीं करने दिया।
0: श्री रामकृष्ण देव निश्चय ही सब कुछ जानते थे कि वे कौन हैं, नरेंद्र कौन है तथा नरेंद्र के साथ उनका संबंध कैसा है। वर्तमान परिस्थिति में उनकी पहली जरूरत थी नरेंद्रनाथ को भी उन सब विषयों से अवगत कराना। दक्षिणेश्वर में प्रथम मिलन के अवसर पर व्यक्त घोषणा के बाद भी वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। दूसरे दिन नरेंद्र की भय विहलता ने श्री रामकृष्ण देव में हास्य उत्पन्न कर दिया था, प्रयोजन की सिद्धि के मार्ग में भी बाधा खड़ी कर दी थी। तीसरे दिन श्री रामकृष्ण देव केवल अपनी पूर्व धारणा की सत्यता निर्धारित करने अग्रसर हुए थे, ऐसा प्रतीत नहीं होता।
1: समाज में रहने के लिए नरेंद्र नाथ को जिस बाहरी युक्ति तर्क और आचार व्यवहार का मुखौटा धारण करना पड़ा था, उसका अतिक्रमण कर उनकी दैवी अवचेतना का सूत्रपात करना भी आवश्यक था। वस्तुतः परीक्षा के साथ साथ श्री रामकृष्ण देव ने उस दिन नरेंद्र के अंतर देवता को भी जगा दिया था। उस दिन से ही नरेंद्रनाथ के जीवन में अभूतपूर्व आध्यात्मिक विकास का सूत्रपात हुआ।
0: नरेंद्र के संशय का स्वरूप पूर्व भांति ही रह गया, यद्यपि अदृश्य रूप से उस संशय की शक्ति क्षीण होने लगी। होश रहते नरेंद्र विश्वास का लेप लगाकर युक्ति तर्क को दूर कर देने के लिए तैयार नहीं थे। गुरु की आवश्यकता को महसूस करने के बावजूद वे ऐसे किसी भी व्यक्ति को गुरु मानने को तैयार नहीं थे जिसकी बात को बिना तर्क विचार किए ग्रहण करना पड़े। उन्हें लगता था कि भगवान देह धारण कर आते हैं, ये बात विश्वास के योग्य नहीं है। हिंदू देवी देवताओं को स्वीकार करना दुर्बलता या कुसंस्कार मात्र है।
1: वस्तुतः उनके भीतर उन दिनों विश्वास अविश्वास की जैसे प्रचंड आंधी उठ रही थी। अधिकतर पथ गहन अंधकार के आवृत रहता है। इसी बीच अचानक बिजली चमक उठती है और वे रास्ते का पता पाकर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार वे चल रहे थे। चलने में कष्ट होता था, किंतु कष्ट के भय से योद्धा नरेंद्रनाथ असत्य के साथ या तर्कहीन लोक परंपरा के साथ कोई समझौता करने को सहमत नहीं थे, क्योंकि ये उनके स्वभाव के विपरीत था।
0: ऐसा स्वभाव लेकर नरेंद्र दक्षिणेश्वर आए थे, किंतु इस विचार प्रवणता के कारण श्री रामकृष्ण देव ने उन्हें दूर नहीं हटा दिया, बल्कि और अधिक स्नेह से अपनी गोद में बैठा लिया था। नरेंद्र भावी लोक शिक्षक जो थे, इसी वजह से मानव मन की प्रगति के पथ से उनका सूक्ष्माति सूक्ष्म परिचय आवश्यक था, नहीं तो विभिन्न प्रकृति के मनों का वे परिचालन कैसे करते।
1: फिर श्री रामकृष्ण देव जानते थे कि नरेंद्र अत्यंत ऊंचे स्तर का अधिकारी है, अतएव उनकी जिज्ञासा भी सामान्य व्यक्तियों की तुलना में कहीं अधिक होगी। इसी से वे प्रेम करके समझा बुझाकर धीरे धीरे उन्हें अध्यात्म के मार्ग पर ले चले थे। वे जानते थे कि नरेंद्र के जीवन में सफलता अनिवार्य है। वर्तमान संदेह संशय आदि छोटी मोटी बाधाएं उनकी आध्यात्मिकता के स्रोत को रोक नहीं सकती, बल्कि उनकी शक्ति और गति के वेग को और अधिक बढ़ा देंगी।
2: अग्निमीणे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्।

0: योग्य शिष्य को पाकर श्री राम कृष्ण पहले दिन से ही नरेंद्र नाथ की ओर विशेष रूप से आकर्षित हो गए थे। परवर्ती काल में जब नरेंद्र उनसे समाधि प्राप्ति के लिए आग्रह ही नहीं बल्कि हठ करते थे तो उन्होंने कहा था,
1: क्यों तू तो उस समय कहता था कि तेरे माँ बाप हैं, उनकी सेवा करनी होगी, फिर अब क्यों समाधि प्राप्ति के लिए मचल रहा है?
2: उन्होंने नरेंद्र को एक कहानी कहकर समझाया।
1: देख, एक आदमी मरकर भूत हो गया। बहुत दिनों तक अकेला रहने के कारण वो साथी का अभाव अनुभव कर रहा था, अतः वो चारों ओर खोज करने लगा। कोई कहीं मरा है सुनते ही वहां दौड़कर पहुंच जाता और सोचता कि अब उसे साथी मिल जाएगा, किंतु वो देखता कि मृत व्यक्ति गंगाजल के स्पर्श से अथवा किसी अन्य उपाय से उद्धार पाकर चला गया है, इसीलिए वो दुखी होकर लौट आता और फिर पहले की तरह अकेले दिन गुजारने लगा। उस भूत को साथी नहीं मिला, मेरी भी वैसी ही अवस्था हुई। तुझे देखकर सोचा था कि अब मुझे एक साथी मिल गया है, पर तूने भी कह दिया कि मेरे माँ बाप हैं, फलतः मुझे कोई साथी नहीं मिला।
0: बीए की पढ़ाई के साथ ही नरेंद्र अपने पिता के आदेशानुसार सुप्रसिद्ध वकील निभाई चरण बसु के पास वकालत का काम सीखने लगे। नरेंद्र दक्षिणेश्वर में श्री राम कृष्ण के पास आते जाते हैं, ये सभी को पता था, पर ये बात घर वालों को पसंद नहीं थी, पर कोई आपत्ति करने का साहस नहीं करता था।
2: बीए की परीक्षा के लिए ज्यादा दिन बाकी न थे। एक दिन शाम हो जाने के पश्चात नरेंद्र पाठ्य पुस्तक में मन लगाने का प्रयत्न कर रहे थे कि इसी समय उनके एक सहपाठी मित्र वहां आए और गंभीर भाव से नरेंद्र को नाना प्रकार के उपदेश देने लगे। उनका कहना था कि दर्शन शास्त्रों की चर्चा, साधु संग, धर्मालोचना आदि पागलपन छोड़ जिससे सांसारिक सुख सुविधा हो उसी के लिए प्रयत्न करना कर्तव्य है। कुछ दिनों से तथाकथित सांसारिक अनुभवी व्यक्तियों से नरेंद्र इसी प्रकार का उपदेश पाते आ रहे थे। अब प्रिय मित्र के मुंह से भी उसी प्रकार का उपदेश सुनकर उन्होंने व्यथित हृदय से अपनी मानसिक अशांति का वर्णन करते हुए कहा,
3: मैं समझता हूँ कि सन्यास ही मानव जीवन का सर्वोच्च आदर्श होना चाहिए। नित्य परिवर्तनशील अनित्य संसार के पीछे सुख की कामना से इधर उधर दौड़ने की अपेक्षा उस अपरिवर्तनीय सत्यम शिवम सुंदरम को पाने के लिए प्राण प्रण से कोशिश करना 100 गुना श्रेष्ठ है।
2: वैराग्य के प्रेमी नरेंद्र जब उत्साह के साथ त्याग की महिमा का वर्णन करने लगे तो उनके मित्र से उनका तर्क आरंभ हो गया। थोड़ी देर में उत्तेजित होकर उनके मित्र ने कहा,
4: देखो नरेंद्र, तुम्हारी जिस प्रकार की बुद्धि और प्रतिभा थी उससे तुम जीवन में काफी उन्नति कर सकते थे, परंतु दक्षिणेश्वर के श्री राम कृष्ण देव ने तुम्हारी बुद्धि बिगाड़ दी, और यदि कुशल चाहते हो तो उस पागल का संग छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा।
2: नरेंद्र चुप रहे। ये मित्र श्री राम कृष्ण के बारे में नाना प्रकार के सवाल करने लगे। नरेंद्र उठकर कमरे में ही टहलने लगे। उनका मुखमंडल गंभीर हो उठा। थोड़ी देर बाद मौन भंग करके उन्होंने कहा,
3: भाई, तुम श्री राम कृष्ण देव को नहीं समझ रहे हो। अधिक क्या कहूं, मैं स्वयं भी उन्हें पूरी तरह से नहीं समझ सका हूं। फिर भी मैं उस सरल सौम्य महापुरुष को क्यों चाहता हूं ये कह नहीं सकता।
2: मित्र दुखी होकर ये सोचकर

0: चले गए कि रामकृष्ण की संगत से ही नरेंद्र की बुद्धि बिगड़ गई है।
1: नरेंद्रनाथ नाना प्रकार की विरुद्ध समालोचनाओं की परवाह न करते हुए अपने निर्दिष्ट पथ पर ही चलने लगे। बीए की परीक्षा समाप्त हुई। इस परीक्षा की तैयारी के लिए उन्हें कठोर मानसिक परिश्रम करना पड़ा था। थकावट को दूर करने के लिए वे बीच बीच में सहपाठी मित्रों के साथ संगीत हंसी आदि आमोद प्रमोद में सम्मिलित हो जाते थे। नरेंद्र को बाध्य होकर ही मित्रों के आनंदोत्सव में सम्मिलित होना पड़ता था, क्योंकि वे लोग एक तरह से जबरदस्ती ही उन्हें ले जाते थे।
0: एक दिन निमंत्रण पाकर नरेंद्र वराहनगर के किसी मित्र के यहाँ गए हुए थे। रात में जब वे मित्रों के साथ संगीत और हास परिहास में संलग्न थे और मग्न थे, इसी समय एक व्यक्ति ने वहां आकर उन्हें समाचार दिया कि नरेंद्रनाथ के पिता एकाएक हृदय रोग के कारण परलोक सिधार गए हैं। उज्जवल आलोकपूर्ण उस कमरे में नरेंद्रनाथ ने अपने चारों ओर अंधकार ही अंधकार देखा। जब वे घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके गौरव और गर्व के हिमालय सदृश पितृदेव की मृतदेह को घेर कर माता और भाई बहन रो रहे हैं। नरेंद्र का दृढ़ हृदय विचलित हो उठा। पितृशोक से अधीर होकर उनके भी आंसू बह निकले।
1: श्रीयुत विश्वनाथ दत्त उन दिनों भारत की राजधानी महानगर कलकत्ता के समाज में सुप्रसिद्ध थे। केवल यही नहीं, वकालत में भी उन्होंने ऐसा यश प्राप्त किया था कि उत्तर भारत के दूर दूर के नगरों में भी उन्हें कार्यवश जाना पड़ता था। उनकी आमदनी प्रचुर थी, किंतु स्वजनों के लालन पालन और मित्रों के साथ संगीत के उपभोग एवं भोजनादि में खर्च भी बहुत होता था। इसके अतिरिक्त समृद्ध परिवार के उपार्जनहीन मुखिया काली प्रसाद एक ओर जितने बेहिसाब खर्चीले थे, उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति का तो वे नाश करते ही थे, इसके अतिरिक्त विश्वनाथ के रुपयों के भी कुछ अंश हजम कर जाते।
0: अंतिम दिनों में विश्वनाथ बाबू अपने कलकत्ता स्थित अटर्नी के दफ्तर पर ध्यान नहीं दे पाते थे। किसी मित्र के ऊपर दफ्तर का भार सौंप देने के लिए वे विवश हो गए। ये सुयोग पाकर उस मित्र ने विश्वनाथ बाबू के नाम पर ऋण लेकर सारे रुपयों को निगल लिया। अतः विश्वनाथ बाबू के परिवार में एक बाहरी आडंबर के रहने पर भी आर्थिक और भौतिक परिस्थिति ऐसी ही हो गई थी कि किसी भी क्षण में परिवार संकटग्रस्त हो जा सकता था। तब विश्वनाथ बाबू की अपरिमित आमदनी एवं चाचा के बेहिसाब खर्चे के बावजूद बचे हुए सम्मिलित संपत्ति के थोड़े अंश का एकमात्र भरोसा था। इस संपत्ति पर भी बाद में विवाद उठ खड़ा हुआ। विश्वनाथ के जीवन की सांध बेला में सम्मिलित परिवार में मन मुटाव बढ़ जाने के कारण उन्हें अपना पैतृक निवास सील छोड़कर स्त्री पुत्र के साथ अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी।
1: इसके लिए उन्हें अस्थायी रूप से 7 नंबर भैरव विश्वास लेन में स्थित एक किराए के मकान में चले जाना पड़ा। नरेंद्र उन दिनों यानी 1883 ईस्वी में बीए की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। किराए का मकान उनकी नानी के घर के निकट ही था, अतः वे नानी के घर ही दूसरे तल्ले पर अध्ययन किया करते थे। यहीं किसी दिन अपने पिता के आदेश से पिता के मित्र नेमाई चंद्र बसु महाशय के दफ्तर में अटॉर्नी का कार्य सीखने के लिए वे शिक्षार्थी के रूप में भर्ती होकर प्रतिदिन पिता और चाचा के साथ दफ्तर जाया करते। ऐसी अनेक व्यस्तताओं में भी वे पहले की तरह ही दक्षिणेश्वर जाया करते और मित्रों के साथ आमोद प्रमोद करते। इस प्रकार उनका जीवन सहज सरल गति से चल रहा था। उनका बीए का परीक्षाफल 30 जनवरी 1884 ईस्वी को प्रकाशित हुआ। वे द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए थे, किंतु इसके कुछ ही दिनों बाद असमय ही वज्राघात हो गया।
0: विश्वनाथ बाबू के जीवन काल में ही संपत्ति के बंटवारे का मुकदमा शुरू हो गया था। इस समय अपने घर से बहिष्कृत नरेंद्रनाथ ने कुछ दिन और किराए के मकान में रहकर बाद में माता और भाई बहनों के लिए नानी के मकान में आश्रय की व्यवस्था की। मुकदमा लंबे अरसों तक चला था और अंत में नरेंद्र आदि ने अपना उचित हिस्सा प्राप्त किया था। भुवनेश्वरी देवी ने वस्तुतः पहले ही आपस में मेल मिलाप करने की चेष्टा की थी, क्योंकि मुकदमे में रुपयों का खर्च तो था ही, सबसे बढ़कर पारिवारिक कलह अंततः प्रकट हो अदालत में पहुंचे, ये सोचने में भी उन्हें कष्ट होता था।
1: किंतु दूसरा पक्ष, विशेषकर काली प्रसाद की पत्नी, किसी भी सम्मानजनक प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुई। मुख्य रूप से इन्हीं के अत्याचार से भुवनेश्वरी देवी को घर छोड़ना पड़ा था। इनकी पुत्रवधु यानी

0: नाथ की पत्नी पति की मृत्यु के बाद 1886 ईस्वी में इनके हाथ में पुतली की तरह नाचती थी। अतएव तारकनाथ जो प्रचुर धन रख गए थे उसे उनकी विधवा पत्नी मुकदमे में खर्च कर अंत में सर्वस्वहीन हो गई और बाद में वृद्धावस्था में उन्हें अपना पेट पालने के लिए स्वामी विवेकानंद के घर में रहना पड़ा था। तब अतीत के अत्याचार को भूलकर स्वामी जी ने उनकी उदारता पूर्वक सहायता की थी। मुकदमा जीतने के बाद विश्वनाथ बाबू का परिवार अपने घर लौट आया था, किंतु ये बहुत बाद की बात है। उन दिनों नरेंद्रनाथ ने गृह त्याग कर दिया था, अतएव संभवतः उनके भाग्य में फिर स्थायी रूप से पिता के घर में वास करना घटित नहीं हुआ।
1: इस समय श्रीमती भुवनेश्वरी देवी के सद्गुणों का जो अपूर्व विकास हुआ था उसका उल्लेख करते हुए स्वामी शारदानंद ने लिखा है, पति की मृत्यु के अनंतर घनाभाव होने पर भी धैर्य, सहिष्णुता, तेजस्विता आदि गुण उनमें विशेष रूप से विकसित हो गए थे। जो उस समय के 1000 रूपये प्रतिमास खर्च करके गृहस्थी का प्रबंध करती थी उन्हीं को अब 30 रूपये मासिक से अपना और अपने पुत्र पुत्रियों का निर्वाह करना पड़ता था, परंतु फिर भी उनके चेहरे पर कभी कोई चिंता की रेखा दिखाई नहीं पड़ी। अनेकों गुण संपन्न ज्येष्ठ पुत्र नरेंद्रनाथ अनेक प्रकार की चेष्टाएं करने पर भी धनोपार्जन का कोई साधन नहीं ढूंढ पा रहे थे, बल्कि गृहस्थी में वीतराग होकर निरंतर त्याग के मार्ग पर ही अग्रसर हो रहे थे। ऐसी विषम परिस्थिति उपस्थित होने पर भी श्रीमती भुवनेश्वरी देवी जिस प्रकार धीर और स्थिर भाव से अपने कर्तव्य का पालन कर रही थी वो सोचकर उनके प्रति हृदय से भक्ति ही उत्पन्न होती है।
0: पति की मृत्यु के बाद भुवनेश्वरी देवी के कंधों पर गृहस्थी का भार आ पड़ा। वे जैसे तैसे घर चला रही थी पर बच्चों से उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। नरेंद्रनाथ खुद ही नौकरी की तलाश कर रहे थे पर घर के आर्थिक समस्याओं से वे अनभिज्ञ थे। उन्हें लगता था पिताजी के संचय से ही घर चल रहा है, परंतु एक दिन भुवनेश्वरी देवी ने पुत्र को घर का सही सही हाल बताया।
2: बेटा, तुझे एक बात कहनी है।
3: माँ, क्या बात है? पिताजी के जाने के बाद से ही देख रहा हूँ तुम एकदम खामोश रहने लगी हो। कहो ना, क्या बात है?
2: बेटा, आज तक मैंने तुझे इन सांसारिक झमेलों से दूर रखा था, पर अब तुझे सारी बातें खुलकर बतानी ही होगी।
3: हाँ हाँ, कहो।
2: तेरे पिता को गए कई महीने हो गए हैं। मेरे पास जो कुछ भी था उसी से मैंने इस परिवार का खर्च उठाया, पर अब तो मेरा हाथ भी खाली हो गया है रे बेटा। कोई और उपाय न देखकर आज तुझे बता रही हूँ, अब तू ही कोई उपाय कर।
3: माँ, ये क्या कह रही हो? पिताजी का संचय?
2: संचय नहीं बेटा, भविष्य के लिए वे कुछ भी संचय नहीं कर पाए थे। वे कमाते तो बहुत थे पर इतना बड़ा परिवार, इतने आश्रित जन, सभी को वो ही तो पालते थे, किसी के मांगने पर ना नहीं कहते थे।
3: माँ, इतने लोग रहते हैं इस घर में, क्या कोई भी मदद करने आगे नहीं आया?
2: नहीं बेटा, सभी ने हाथ खींच लिए। अब तो शायद ये घर ही छोड़ना पड़ेगा।
3: माँ, चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढ लूंगा, कोई नौकरी कर लूंगा। पर तुमने अभी तक ये बातें मुझसे कही क्यों नहीं? मैं तो निश्चिंत था कि पिताजी काफी पैसा छोड़ गए होंगे।
2: नहीं नहीं बेटा, तू पढ़ाई मत छोड़ना, तुझ पर मुझे पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा।
0: सांसारिक विषयों में उदासीन नरेंद्रनाथ एकाएक धनाभाव के कठोर आघात से चौंक पड़े। हमेशा से लाड़ प्यार में प्रचुरता के बीच में पले हुए भाई बहनों को दाने दाने के लिए तरसते देख उनका हृदय टूट गया। सुख संपत्ति के समय जो लोग परम मित्र थे, संसार के चिरकाल के नियमानुसार दुख विपत्ति के समय वे किनारा काट गए। तीक्ष्ण बुद्धि नरेंद्रनाथ सब कुछ समझ गए, पर उन्होंने

0: सुधबुध नहीं खोई। धैर्य के साथ वे निर्धनता की पीड़ा सहन करने लगे। मित्रों को पारिवारिक दुखद स्थिति की बात उन्होंने जानने न दी। एक ओर वे कानून की परीक्षा की तैयारी करने लगे और उधर काम धंधे की खोज भी करने लगे।
1: 3-4 महीने बीत गए, परंतु फिर भी किसी प्रकार की व्यवस्था न हो सकी। अन्न के अभाव से किसी किसी दिन घर वालों को आहार भी प्राप्त नहीं होता था। घर में खाद्य द्रव्य की कमी को गुप्त रूप से जानकर नरेंद्रनाथ माता से ये कहकर कि मेरा बाहर निमंत्रण है, घर में भोजन नहीं करते थे। वे एक प्रकार से उपवास करके अथवा बहुत थोड़ा ही खाकर दिन बिताने लगे। लगातार उपवास से उनका शरीर कृश और दुर्बल हो गया। यहाँ तक कि किसी किसी दिन प्रबल क्षुधा की ज्वाला से वे मूर्छित की तरह पड़े रहते थे।
0: कुछ सहृदय मित्र अवश्य ही इस विपत्ति में उनकी आर्थिक सहायता करने को उद्यत हुए थे, पर जन्म से आत्मनिर्भरशील नरेंद्रनाथ ने विनीत भाव से उन सहायताओं को ग्रहण करने से इनकार कर दिया। पेट की ज्वाला शांत करने के लिए वे भिक्षा स्वीकार कर लेंगे, ये सोचना तक उनके लिए असहाय था। ये मित्रगण नरेंद्रनाथ के गंभीर आत्मसम्मान को जानते थे, इसलिए प्रत्यक्ष रूप से सहायता करने में असमर्थ होकर वे बीच बीच में भोजन के लिए उन्हें निमंत्रण देते रहते थे।
1: वे किसी किसी दिन विशेष कार्य का बहाना कर निमंत्रण स्वीकार करने में अपनी असमर्थता प्रकट करते थे और किसी दिन दिखावटी प्रफुल्लता और आनंद के साथ आमोद प्रमोद में सम्मिलित रहते थे, परंतु उनसे भोजन के लिए अनुरोध करते ही उनका प्रफुल्ल मुखमंडल गंभीर हो उठता था और वे सोचते थे,
2: मेरे छोटे छोटे प्यारे भाई बहन भूखे हैं, माँ भूखी है, शायद सोच रही है मैं कुछ पैसों का इंतजाम करके घर लौटूंगा और मैं कैसे यहां इस स्वादिष्ट भोजन। ना ना, मैं ऐसा नहीं कर सकता। नहीं भाई, आज और देर नहीं कर सकता, बहुत जरूरी काम है, जाता हूं, भोजन फिर कभी।
0: भाग्य चक्र के सहसा घूम जाने से जिन्हें किशोर और यौवन के संधिकाल में पितृहीन होकर खाली हाथ परिवार वालों के भरण पोषण का भार अपने कंधे पर लेकर जीवन संग्राम में अग्रसर होना पड़ा है, वे ही नरेंद्रनाथ की वर्तमान स्थिति का अनुमान कर सकते हैं। नरेंद्र पागलों जैसी सड़कों पर घूम घूम कर नौकरी की तलाश कर रहे थे, पर हर दिन निराशा ही हाथ लगती, वे सूने हाथ घर लौटते।
2: माँ, माँ
3: आ गया बेटा, कोई बात बनी? और ये क्या, तू इस हालत में बाहर चला गया था? गंदे कपड़े, नंगे पांव, उलझे बाल। बेटा, तुझे इस हालत में देखकर नौकरी कौन देगा?
2: मैं हार मान गया माँ, कितने दिनों से घूम रहा हूँ, एक छोटी मोटी नौकरी भी नहीं मिली।
3: अपने पिता के दोस्तों से मिला था, क्या कहा उन्होंने?
2: माँ, मैं भाग्य में विश्वास नहीं करता था, लगता था वो कायरता है, मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास था, पर अब मेरा इस दुनिया के लोगों पर से भरोसा उठता जा रहा है। माँ, मैं पिताजी के करीबी दोस्तों से भी मिल चुका हूँ, वे सब हमारे सुख दुख के साथी थे, पर दुख के दिनों में सबने मुंह फेर लिया, उन्हें लग रहा था शायद मैं उनसे पैसे की भीख मांगूंगा, एक ने भी सीधे मुंह बात नहीं की।
3: इन्हीं दोस्तों पर तेरे पिताजी जान लुटाते थे, उनकी मदद करते थे, कितनों को तो कारोबार शुरू करने के लिए पैसे भी दिए थे, कहते थे ये दोस्त है मेरे, उनके बुरे दिनों में अगर मैं इनके साथ खड़ा न हूँ तो उनकी मदद कौन करेगा?
2: माँ, शायद बुरे दिनों में ही लोगों के असली चरित्र का पता चलता है। खैर छोड़ो, उन्हें उनकी करने की सजा जरूर मिलेगी, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बुरा समय ज्यादा दिन नहीं रहता। माँ,
3: भगवान करे ऐसा ही हो। चल आ, थोड़ा सा कुछ खा ले।
2: सबने खाना खा लिया?
3: हाँ।
2: तुमने खाया?
3: कैसी बातें करता है, तुझे खिलाया। बिना मैं भला खा सकती हूँ क्या? चल खा ले, शाम हो चली है।

0: अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम आपसे मिलते रहेंगे अपने इस कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद में।
1: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे के 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम खुश बैठे हैं, हम प्यार से वो चीज खा रहे हैं जो हमें पसंद है, तो पूरी सिचुएशन तो हमारी एक्चुअली। सी द सिचुएशन इज ऑल अबाउट मी। मैं आराम से इस कुर्सी पे बैठी हूँ, मेरे सामने मेरी फेवरेट मिठाई है, मैं प्यार से खा रही हूँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट, हैप्पी हैप्पी। और सामने से कोई आया, किसी ने एक लाइन बोल दी। इस केस में लाइन इतनी बहुत ज्यादा कड़वी भी नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी ने कोई कड़वी लाइन भी बोल दी, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर ली, किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने डांट दिया। इस केस में तो कुछ भी नहीं था, इस केस में थोड़ा सा बोला कि आपको थोड़ी परहेज करनी चाहिए थी। हियर माई वर्ल्ड वॉज परफेक्ट, सब कुछ मेरे अनुसार था, लेकिन सामने से कोई आया, सामने से किसी ने एक लाइन बोली और वो एक लाइन ने मेरे पूरे वर्ल्ड को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। मन डिस्टर्ब्ड, फीलिंग्स डिस्टर्ब्ड, फिर वर्ड्स डिस्टर्ब्ड, काफी देर तक डिस्टर्ब्ड। मीनिंग वन लाइन, किसी की एक लाइन मेरी इस दुनिया को एक घंटे के लिए डिस्टर्ब कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि अगली बार जब आप वो उनसे मिलेंगे तब भी आपको वो वाली बात याद आ जाएगी। सो इट विल नॉट इवन रिस्ट्रिक्ट टू दिस वन आवर। ये हो सकता है कि इट स्टेज ऑन माई माइंड and it comes back to my mind later on. शायद कभी जब वो लड्डू खा लिया तब वो बात याद आ जाएगी, या शायद वो बहन सामने कभी आ जाएगी तो वो बात याद आ जाएगी। मतलब माई माइंड, ये हमारा एक्सरे है।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: पुढच्या एका चारोळीमध्ये जयश्री शिंदे मॅडम यांनी रत्नश्री या नावाने पंढरपूर जिल्हा सोलापूर येथून लिहिलंय। जयश्री शिंदे मॅडम लिहित आहेत रत्नश्री या नावाने पंढरपूर जिल्हा सोलापूर येथून अबोल भाषा या शीर्षकाखाली की मन माझे सांगते तुलाच पाहत राहावे, मन माझे सांगते तुलाच पाहत राहावे, नैनांची अबोल भाषा तू अलगद ओळखून घ्यावे, नैनांची अबोल भाषा तू अलगद ओळखून घ्यावे, तू अलगद ओळखून घ्यावे।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा, ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से। तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखिए, उठा मेरा पैर लग गया, सबको डांट रहा था। तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा, सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा? इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे? किसने रखे थे? वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है? हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहां और ठीक करने की उंगली भी यहां। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना, मैं कैसे क्षमा करूं, उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की डोर में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।
2: दोस्तों, जीवन कई अनुभवों का एक संयोग है। कुछ अनुभव उसमें अच्छे होते हैं, कुछ खट्टे होते हैं, कुछ तीखे, कुछ कड़वे भी होते हैं, लेकिन इन सभी अनुभवों का काम एक ही होता है, हमें धनवान बनाना, हमें आगे बढ़ाना। उन अनुभवों को कैसे हम हमारे जीवन में संजोते हैं, उनसे हम क्या सीखते हैं, ये निर्भर करता है हमारी सोच पे, हमारे संस्कारों पे। यशस्वी भारत कार्यक्रम में मैं शांतनु आपका फिर से स्वागत करता हूँ। 90.4 FM रेडियो मधुबन आप सुन रहे हैं और मैं समझता हूँ मुस्कुराते रहे होंगे, लेकिन आज आपकी मुस्कुराहट को हम थोड़ा और बड़ा करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसी हस्ती जुड़ी है जिन्होंने कईयों के जीवन में मुस्कुराहट को जगह दी है, खोए हुए मुस्कुराहट को वापस लाया है। आज हमारे बीच में, हमारे स्टूडियो में मौजूद है नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित प्रज्ञा प्रसून जी। प्रज्ञा प्रसून जी, आपका हमारे रेडियो मधुबन के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है और आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए पहले तो बहुत बहुत थैंक्स, नमस्कार।
3: बहुत बहुत धन्यवाद शांतनु जी मुझे यहाँ बुलाने के लिए और ये अवसर देने के लिए।
2: दोस्तों, एक पुरस्कार जब मिलता है किसी को तो वो इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वो व्यक्ति जो है सर्वश्रेष्ठ है उस फील्ड में, उस व्यक्ति को वो पुरस्कार इसलिए दिया जाता है ताकि बाकी लोग जो उस फील्ड में काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहन मिले, उन्हें उमंग उत्साह मिले। और प्रज्ञा जी जिस फील्ड पे समाज सेवा करती हैं, वो बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, मैं ऐसा कहूँगा। ऐसा एक क्षेत्र जहाँ पर लोग अपने आवेश में आकर के अपने अंदर के जानवर को कंट्रोल न कर पाने की वजह से वो किसी और के जीवन को खराब कर देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ एसिड अटैकर्स की और एसिड विक्टिम्स की। प्रज्ञा प्रसून जी, आपसे ही सुनना चाहेंगे, व्हाट वाज योर लाइफ लाइक बिफोर एंड आफ्टर? आपका जीवन, आपके जीवन में जो घटना घटी उसके पहले और उसके बाद में क्या रहा, ये आपसे सुनना चाहेंगे।
3: मेरी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। बचपन से मैं बहुत शांत इंट्रोवर्ट स्वभाव की लड़की थी, तो बहुत सारी चीजें मुझे क्लास में हो या स्कूल के टाइम में या कॉलेज में, बहुत सारे ऐसी चीजों का सामना करना पड़ा जो मतलब लगता था कि सामने वाला बहुत अच्छा है कि वो बोल पाता है, मैं बोल क्यों नहीं पाती, मैं एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पाती हूँ, मैं ना क्यों नहीं बोल पाती, तो इस वजह से। लेकिन मिला जुला करके मेरी जिंदगी और मेरा जो छोटा सा परिवार था, मेरे मम्मी पापा और मेरे भाई बहन, बहुत बहुत खुश भरा भी बीता। मतलब मैं बहुत जब कॉलेज में गई तो स्कूल तक मैं बहुत ही शांत थी लड़की, इंट्रोवर्ट। कॉलेज में मेरी मुलाकात ऐसे दोस्तों से हुई जिन्होंने मुझे जीना सिखाया। जीना मतलब ऑफ कोर्स मतलब वैसा कि जिंदगी को एंजॉय करना सिखाया। बहुत मेमोरेबल समय रहा मेरा वो कॉलेज का और पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम में भी। और मैंने जैसे ही अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, मेरी शादी तय हो गई।

0: और मैं मतलब बस शादी हो गई उसके जैसे ही मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। और शादी के 12 दिन के बाद ही मतलब एक समय था कि मुझे लग रहा था कि अब तो सब कुछ इतना अच्छा हो रहा है, मैं जिस फील्ड में काम करना चाहती थी अप्रैल इंडस्ट्री में मेरी जॉब लगने वाली थी, मुझे जिस इंसान से मेरी शादी हुई थी मुझे लगा कि इससे अच्छा इंसान और कोई मुझे मिल ही नहीं सकता था। तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानती थी कि मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है और एक नई जिंदगी, नया समय, एक नया फेज अपनी लाइफ का मैं शुरू करने जा रही थी, कर चुकी थी। और बस शादी के 12 दिन के बाद ये घटना घटी और सब कुछ बदल गया। 2 दिन के अंदर मुझे मतलब मैं बचूंगी या ना बचूंगी इस पे भी सवाल आ गया, मेरी शादी बचेगी या नहीं बचेगी इस पे भी सवाल आ गया, मेरे कैरेक्टर पे सवाल आ गया कि गलती लड़की की ही है, इसने ही कुछ किया होगा, सब चीज पे सवाल आ गया। अब आगे क्या होगा मुझे कुछ नहीं पता था। मैं मतलब शुरुआत में 17 दिन तो मैं आईसीयू में थी, वेंटिलेटर पे थी, होश भी बस आता था, थोड़े कॉन्शियस रहती थी थोड़े देर के लिए, फिर चली जाती थी, अनकॉन्शियस रहती थी। लेकिन वो 17 दिन में मेरे माँ बाप को, मेरे घर वालों को बहुत कुछ सुनने को मिला, बहुत कुछ। और जब मुझे ये मतलब मेरा कंडीशन थोड़ा स्टेबल हुआ और जब मैं वार्ड में शिफ्ट हुई, तब मुझे समझ में आया कि ये तो मेरी लाइफ ही बिल्कुल बदल गई एकदम। आगे क्या है अब मुझे नहीं पता, क्या होगा क्या होने वाला है मुझे कुछ नहीं, लेकिन मुझे लगता है वो सपोर्ट और मेरी माँ का इसमें बहुत बड़ा अहम रहा है। मैं वो जो हिम्मत जो था ना वो मुझे मेरी माँ से मिला है और ना जो मैं कर पाई अपने घर वालों की वजह से ही कर पाई।
1: तो जैसे आपने जब आप अपना अनुभव सुना रहे थे तो उसमें मुझे 2-3 चीजें ऐसी मिली जिसपे कि मैं आपसे और सुनना चाहूंगा। जैसे आपने बताया कि आपने एक वो समय आपने अनुभव किया कि भाई इट फील्स लाइक एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन, ऐसा लगता है जैसे इसके बाद कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। तो आप जैसे एक सदमे में रहे होंगे जब ये तेजाब का आपके ऊपर अटैक हुआ है, तो वो जो सदमा है उससे निकल के आना, उसके लिए आपने बताया आपके परिवार वालों ने आपको बहुत मदद किया, लेकिन एक अंदरूनी मदद भी चाहिए होती है। ऐसा हमने सुना है जो व्यक्ति खुद की मदद नहीं करता उसकी मदद तो कोई नहीं कर सकता, खुदा भी नहीं करता ऐसा कहते हैं। तो आपने बताया कि आपकी माँ का बहुत बड़ा सहयोग था, आपके परिवार का बहुत बड़ा सहयोग था। मैं जानना चाहता हूँ प्रज्ञा ने प्रज्ञा को क्या सहयोग दिया, कौन सी वो चीज थी जिसकी वजह से आप थोड़ा हील जल्दी कर पाए।
0: मुझे समय लगा ये रियलाइज करने में कि मैं अब नॉर्मल नहीं दिखूंगी, मेरी लाइफ अब इतनी आसान नहीं होने वाली है। और मुझे लगता है ये जो रियलाइजेशन है ना, ये धीरे धीरे आया। मुझे लगता है कि अगर शुरुआत में ही सब वो बॉम्बार्ड हो जाता मेरे ऊपर तो शायद मैं नहीं सरवाइव कर पाती। मुझे लगता है पता नहीं क्या होता, मैं वो फेस को जी ही नहीं हूँ। मैंने ये फेस जिया है जब मेरे लाइफ में सब कुछ धीरे धीरे आया, ये रियलाइजेशन भी बहुत धीरे धीरे हुआ, धीरे धीरे समझ में आया कि लोग मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं, धीरे धीरे समझ में आया कि मुझे गलत ठहराया जा रहा है, लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि इसकी मैरिड लाइफ बचेगी कि नहीं, इसकी लाइफ तो खत्म हो गई, इससे अच्छा तो ये मर जाती। ये धीरे धीरे मुझे सुनने को मिला क्योंकि एक शील्ड था मेरे और लोगों के बीच में, मेरा परिवार, वो उस शील्ड ने बहुत सारी चीजों को फिल्टर करके
1: फिल्टर किया।
0: तो वो शील्ड मुझे बहुत समय तक बचाए रखा, ये समाज के सारे इन सारे मतलब जो पीछे बैकग्राउंड में जो चल रहा था सारी चीजों से। तो धीरे धीरे जब मैं निकलना, लोगों से मिलना शुरू की और तब मुझे समझ में आया कि ये तो बिल्कुल मुझे, मैं अब करूंगी क्या। मतलब जब मेरी बैक टू बैक सर्जरीज हो रही थी, एक साल के बाद मैंने अपनी फैकल्टी से, टीचर से बोला कि मैम मुझे अब काम करना है, तो उनका जो रिस्पांस था बहुत ही ढीला था, उनको लगा मतलब, और फिर मैं उनके पीछे पड़ गई। मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये इग्नोर कर रही हैं मुझे कि अब तुम काम नहीं कर सकती हो, तुमको कौन यहाँ काम देगा। लेकिन मैं उनके पीछे पड़ी रही इस होप में कि वो तो मुझे देंगी, लेकिन ये रियलाइजेशन भी मुझे कुछ महीनों बाद हुआ कि ये तो मुझे इग्नोर कर रही, मेरी नादानी समझी।

0: या उतनी समझदारी नहीं थी मेरे अंदर कि लोग ऐसा भी करते हैं, तो ये जो नादानी थी ना मुझे बहुत हेल्प की। मैं बोलूंगी मैं समझदार नहीं थी उस टाइम की, मुझे तुरंत समझ में आया कि लोग ऐसा भी करेंगे मेरे साथ कि इतना डिफरेंशिएशन होगा, इतना अलग मुझे खड़ा कर देंगे एक जगह कोने में। लेकिन जब ये धीरे धीरे समझ में आया तब तक मैं अपने आप को इतना स्ट्रांग बना चुकी थी। मैं मुझे ये समझ में आ गया था कि ठीक है, तब तक छोटी छोटी चीजें हो रही थी कि किसी ने ऐसा बोल दिया, किसी ने ऐसा रिएक्शन कर दिया, कोई देख के डर रहा है, कोई देख के बोल रहा है कि तेरे साथ बहुत बुरा हुआ, इससे अच्छा तो तू मर जाती। तो ये चीजें हो रही थी। फिर मुझे समझ में आया कि हाँ, कौन मुझे काम देगा, इतने महीने से मैं बोल रही हूँ लेकिन मुझे बस इग्नोर किया जा रहा है। ये हाँ हाँ बोल के एक महीने से अगले महीने टाला जा रहा है, तो ये इग्नोर करने का तरीका है। तो तब तक मैं अपने लिए कुछ और तैयार करने के लिए रेडी हो चुकी थी कि मुझे आगे क्या करना है। तो ये नादानी और मुझे बहुत हेल्प की धीरे धीरे रिकवर करने में।
1: ये जो आपका भोलापन था, ये जो भोलापन था, ऐसा कहते हैं ना कि सम थिंग्स आर बेटर नॉट टू बी नोन। ये चीजें अच्छी होती है जब आप उनको जानते ही नहीं है।
0: Exactly.
1: तो मैं समझता हूँ ये जो भोलापन था इसने आपको मौका दिया कि आप खुद को प्रिपेयर करें।
0: बिल्कुल,
1: और ये लगभग वैसा ही भोलापन है जैसे एक बीज में होता है। जब वो बीज जमीन के अंदर जाता है उसको बाहर की दुनिया का कुछ नहीं पता होता है, बाहर की दुनिया क्या एक्सपेक्ट कर रही है उससे, कितना बड़ा पौधा निकलेगा, क्या होगा। बट वो बीज जो है अंदर ही अंदर प्रिपेयर कर रहा होता है कि भाई मैं तो बाहर आऊंगा, सनलाइट एंड एवरीथिंग, मैं सब कुछ अनुभव करूंगा। तो शायद ये बीज जो था, इस बीज ने ही शायद, मैं मुझे ऐसा लगता है, आप मुझे क्लियर करेंगे और हमारे श्रोताओं को बताएंगे, शायद यही भोलापन था जिसने आपको अति जीवन को भी उसका नींव रखने में मदद किया होगा। अति जीवन क्या है उसके बारे में थोड़ा बताइए, उसकी शुरुआत कैसे हुई?
0: अति जीवन की शुरुआत उसी दिन हो गई थी जिस दिन मेरे साथ ये हादसा हुआ था। बस मैं 17 दिन जब वेंटिलेटर पे थी तब तक मैं बेड पे थी। उसके आगे जब मुझे मेरे शरीर में इतनी ताकत आ गई थी, मतलब मैं होश में आ गई थी, मैं बेड से उतरती थी और आसपास के पेशेंट से मैं सर से लेकर के मेरे कमर तक बैंडेज में, मैं मेरा पूरा जो शरीर और चेहरा और गला ये सब कुछ, हाथ सब कुछ बैंडेज में रहता था। और तब भी मैं उतरती थी और बात करती थी दूसरे पेशेंट्स। मुझे ये लगता था, मतलब उस टाइम वो एक समय था ना जब मैं वार्ड में शिफ्ट हुई तो मैंने देखा बर्न पेशेंट सारी दर्द से चीखते रहते हैं, रोते रहते हैं। रात रात को मैं सो नहीं पाती थी क्योंकि आसपास के जो बेड पे जो पेशेंट्स रहते थे वो बहुत रोते थे और बहुत दर्द से, छोटे बच्चे भी थे, औरतें भी थी, मतलब हर उम्र के लोग, और बहुत रोते थे। मैं भी दर्द में थी, मैं भी, लेकिन मैं मतलब मुंह से मेरे वो रोना और कराहना नहीं निकलता था। मुझे और मुझे लगता था कि वहाँ पे मुझे लगता था कि मुझे उनको मदद करनी है, मुझे उनको थोड़ा मोटिवेट करना है कि वो समझें कि क्या चीजें जरूरी हैं। बहुत पेशेंट्स खाना खाना छोड़ देते थे, दवा नहीं खाते थे, और यहाँ मैं डॉक्टर से पूछ पूछ के मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, क्या खाऊं कि मैं जल्दी ठीक नहीं करती थी। तो मुझे लगता था कि ये लोग क्यों नहीं खा रहे हैं, ये लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, इनको मुझे मोटिवेट करना है कि ये खाएं ताकि ये भी जल्दी ठीक हो।
1: और लगता है आपकी एक गणत ही अलग थी, शायद आपको भगवान ने बनाया ही बिल्कुल डिफरेंट है।
0: थॉट प्रोसेस मेरा बिल्कुल अलग था। उस टाइम भी मुझे ये नहीं दिखता था कि मैं तकलीफ में हूँ और मुझे रोना है और मुझे ये करना है। मुझे सामने वाले की तकलीफ अपने आप अपने से बहुत ज्यादा दिखती थी और मुझे लगता था कि ठीक है, मैं मुझे बोलना है उनको, मतलब मुझे ये समझ में आता था कि खाएंगे नहीं तो इनका हेमोग्लोबिन कम हो जाएगा, ये मर जाएंगे, ऐसा नहीं होना है। और वो बर्न्स वार्ड में जो शुरुआत के 3.5 महीने में रही थी, हर रात वहाँ 2-4 पेशेंट्स मरते थे, हर ऐसे आते थे। सफदरजंग बर्न्स वार्ड इंडिया का सबसे बड़ा बर्न्स वार्ड है, वहाँ पे मैं शुरुआत के 3.5 महीने रही।
1: जस्ट टू आस्क, मतलब तेजाब वाले जो विक्टिम्स हैं, एसिड अटैक विक्टिम्स हैं, उनकी संख्या उस वार्ड में कितनी थी? मतलब आर दे मेजोरिटी देर या जो बाकी हजार्ड से होता है वो भी थे उसमें?
0: वहाँ पे हर तरह के बर्न पेशेंट थे। एसिड से भी जले हुए आते थे, ठीक होके जाते थे, बहुत कम जले। एसिड से मुझे लगता है कि मैं तो सबसे ज्यादा जली हुई थी, और इनफैक्ट मेरे से ज्यादा जले हुए पेशेंट बचते नहीं थे। मतलब वैसा होता था,
1: I think you were 47% burned.
0: Yes, yes.
1: 40%

0: हाँ, और 50 या 60% बर्न पेशेंट को बचने का मुझे भी क्रिटिकल अनाउंस कर दिया गया था और मेरा डॉक्टर ने 17 दिन तक बोला था ये बचेगी नहीं बचेगी वी आर नॉट श्योर। तो लेकिन मेरे से ज्यादा बचे हुए पेशेंट तो कोई नहीं बचते थे वहाँ पे, और मेरे से जितने भी थे मोस्टली कम ही जले हुए पेशेंट्स रहते थे। तो फिर भी उनका तकलीफ, और स्पेशली जब बच्चे होते थे जो एक्सीडेंटली भी जलते थे और कोई पर्सनली भी किसी को जलाए, वहाँ पे आधी औरतें तो सब पर्पसली जलाई हुई रहती थी, कोई डाउनी केस में, कोई किसी चीज में, किसी को किसी के रिलेटिव ने जला दिया, मतलब कुछ भी जमीन का इश्यू हुआ या लड़ाई झगड़ा हुआ वैसे जल गए। आधे से ज्यादा वहां पे औरतें होती थी और बाकी का कैटेगरी बच्चे और मेन का भी होता था। तो मतलब बस मुझे लगता था कि मुझे किसी तरह इन सबको बचाना है। और वहां से मैं क्या करती थी, मैं मिलती थी और बाद में भी मैं टच में रही, डिस्चार्ज होने तक मैंने बहुत सारे वहां पे दोस्त बनाए और बाद में भी मैं मिलती थी उनसे, टच में थी बहुत सारे दोस्त जिंदगी।
1: ये चीज मेरे को थोड़ा और आपसे जानने का मन कर रहा है कि क्या ये हमारे समाज में आपको देख के ऐसा लगता है, उस टाइम पे तो शायद बिकॉज यू आर द फर्स्ट विक्टिम राइट, आपने अपने सामने इस चीज को अपने साथ होते हुए देखा। एक होता है हम किसी और के जीवन को देखते हैं, सुनते हैं, हमें पता चलता है उसके बारे में, और एक होता है खुद के साथ होना। तो ये जो डिफरेंस क्रिएट करना, अभी जैसे मैं जान रहा हूँ कि भाई ये परीक्षा की घड़ी होती है किसी के लिए जब उसके ऊपर एसिड अटैक होता है, तो ऐसे में उसको मैं मदद करने पहुंच सकता हूँ, लेकिन जब आप खुद ही उसके एक शिकार है तो आप अपना नहीं सोच करके किसी और के लिए कुछ कर रहे हैं, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। ये हिम्मत आपके अंदर कहाँ से आई?
0: मुझे नहीं पता कहाँ से आई, लेकिन एक चीज है कि मैं बचपन से लोगों की मदद हमेशा करना चाहती थी और अपने कैपेसिटी और कैपेबिलिटी से ज्यादा मैंने मतलब सोचा है कि मैं कर लूँ। मतलब एक छोटा बच्चा होते हुए भी मुझे लगता था कि मैं दीदी लोग की हेल्प कर दूंगी, उनको ये ना हो, उनको ये ना हो। मैं सोचती थी कि मैं अपनी माँ को हर जगह प्रोटेक्ट करूँ। मतलब एक यंग टीनेजर होते हुए कहीं भी मम्मी जाती थी या मंदिर में भी, तो कोई मेरी माँ को टच ना करे वैसा मैं शील्ड बन के खड़ी रहती थी। वो एक कहीं ना कहीं हमेशा था मेरे। मैं सबसे बड़ी हूँ अपने भाई बहनों में, तो अपने छोटी बहन और भाई का कोई कुछ हो ना, वो शील्ड बन के खड़ी रहती थी मैं हमेशा। तो वो एक बचपन से था और ये मेरे मम्मी पापा से मिला है। मैंने बचपन से अपने मम्मी पापा को लोगों का मदद करते हुए देखा है, कोई अच्छा करे उनके लिए या बुरा करे राइट, जिन्होंने उनके लिए बुरा बोला है उनको भी आगे बढ़ के जब जरूरत पड़ी है तो उन्होंने मदद किया है ऐसा। और मुझे बहुत छोटी थी तो मुझे लगता था कि कैसे है मेरी मम्मी, कि ये तो अभी इनको ये आंटी गलत बोल रही थी कुछ दिन पहले, फिर भी जाके अभी उनके घर में उनको हेल्प कर रही है, कुछ वो हुआ उनके बच्चे को हेल्प कर रही है। ऐसे ही बहुत सारे रिलेटिव भी होते थे जो बुरा बोलते थे या कुछ कर देते थे बुरा, और फिर भी जाती थी और वही करती थी, मतलब उनके बच्चों का इतना केयर कर रही है, कैसी है मम्मी। मुझे लगता था मतलब और मेरे पापा के लिए तो मतलब जहाँ जहाँ मेरे पापा सेंट्रल गवर्नमेंट में थे, जहाँ जहाँ काम किए हैं, वहाँ ऑफिस में अगर हम लोग चले जाते थे तो वहाँ 10 लोग आके हमसे मिलते थे, इसलिए कि ये वीपी सिंह की बेटी है और इसलिए कि आपके पापा ने हमारे एरिया के लिए बहुत अच्छा अच्छा काम। तो ये सुनकर के प्राउड होकर के बड़ी हुई हूँ कि आपके पापा ने यहाँ इस एरिया में 150 पौधे लगा दिए जो अब पेड़ हो गया है और अब हम लोग उसका फल खाते हैं। पापा जहाँ जाते थे तो ऐसा करते थे, तो मतलब कि ये एरिया को अच्छा इतना सुंदर बनाने में आपके पापा का हाथ है, तो बहुत प्राउड फील होता था और अच्छा लगता था कि समाज के लिए करते रहना। और मतलब हमने यही सीखा है कि आसपास लोगों की मदद करते ही रहना है, वही हमारी जिंदगी है। हम अपने आप में नहीं रह सकते हैं, हमको बाहर निकलना है, लोगों की मदद करनी है।
1: ये बहुत अच्छा एक मंत्र दिया आज आपने हमको भी और हमारे सारे श्रोताओं को कि आपको सदा ही सबके लिए सोचते रहना है, कुछ ना कुछ करते रहना है। चाहे आप वो पेड़ पौधे लगा करके पूरी दुनिया के लिए कुछ सोच सकते हैं, चाहे आप किसी व्यक्ति को उसके साथ बैठ करके बात भी करने से उसकी मदद हो सकती है। कई बार फिजिकल हो सकता है हम कुछ मदद ना कर पाए, लेकिन सहानुभूति, साथ में बैठना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। तो जो चीज आपने सीखी, परोपकार, करुणा, दया, ये आपको आपके परिवार से, उसके परिवेश से, उसके संस्कारों से प्राप्त हुआ और वो चीज आपको शक्ति देती रही कि आप ऐसे नाजुक घड़ी में भी न केवल अपना लेकिन

0: आसपास के लोगों का भी सहारा बन पाए। आपने बीच में एक बात कहा कि भाई आपकी मम्मी जो थी जो उनके लिए बुरा करते थे उनके लिए भी वो आगे अच्छा ही करती थी। जब आपके साथ जब ये एसिड अटैक का हादसा हुआ और फिर बाद में मुझे पता चला कि उस व्यक्ति को जेल हुआ, 4.5 साल की सजा हुई, तो आपको आपका क्या था उसमें, मतलब आपको कैसा लगा? What was your reaction with this?
1: देखिए शुरू में तो मैं झूठ नहीं कहूंगी, बहुत शुरुआत में बहुत गुस्सा था, मतलब शुरुआत में गुस्सा था मुझे कि ये क्यों किया, मतलब गुस्सा से ज्यादा मुझे सवाल था कि क्यों क्यों हुआ और क्यों किया, मेरी गलती क्या थी, और मतलब जानना था मुझे, सवाल था। और लेकिन एक समय हुआ कि अब मेरे मतलब ऑफकोर्स जो बीच बीच में कभी जब सर्जरी और इतनी सारी चीजें उसके साथ बार बार सर्जरी से निकलना और ये कभी कभी दिल बहुत दुखता था कि ऐसा क्यों, ऐसा किस कोई इंसान कर सकता है किसी के साथ, क्यों ऐसा, मतलब मेरी अच्छी खासी जिंदगी थी, सब कुछ खत्म हो गया। तो लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मुझे ये भी रियलाइज हुआ कि गुस्सा कुछ नहीं, गुस्सा करने से कुछ नहीं हो सकता, और पहली बात। और दूसरी बात कि बहुत मैंने अपने आप को कि मैं गुस्सा कर क्यों रही, क्यों मैं उस ग्रज के अंदर बैठी हुई हूँ जहाँ मैं सोच रही हूँ कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ, और क्यों उसने ऐसा किया, उसको सजा मिलनी चाहिए, और ये सारी चीजें। बहुत मैं इस चीज पे बिलीव करती हूँ कि जो भी इंसान जो भी गलत काम करता है उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसकी चाहे आप उसकी अपब्रिंगिंग ले लीजिए या वो यू नो माहौल जो उसको उस तरीके से बना देता है और वो सिचुएशन में ला देता है कि वो कुछ गलत काम करते। तो मुझे ओवरऑल इन चीजों को, इन थॉट प्रोसेस को, मेंटालिटी को समाज से चेंज करने का मैंने ये सोचा कि मैं उस इंसान तक क्यों लिमिट रहूं और अपनी ग्रज पे बैठी रहूं, उससे बेटर कि मैं आसपास अपने उस समाज, उस थॉट प्रोसेस और मेंटालिटी पे काम करूं कि लोगों के अंदर प्यार कैसे भरना है, राइट, दूसरे के लिए एम्पथी कैसे भरना है, उस चीज पे मैं काम करूं और एक बड़ा बड़े स्केल पे चेंज लाऊं। जैसे और मैंने बात करना शुरू भी किया बहुत सारे मतलब ऐसे सर्वाइवर्स से कि तुम क्या सोचती हो और क्यों तुमको ऐसा लगता है कि उसको भी वैसी सजा मिलनी चाहिए, और सबका एक ही जवाब रहता था कि सजा सेम मिलनी चाहिए, लेकिन क्यों, उसके बाद तुमको क्या हासिल होगा, क्यों ना हम इस चीज पे काम करें कि हम इस समाज से ये थॉट प्रोसेस, ये गंदगी निकालने का काम करें कि मतलब ये चीजें रहे ना। तो मैंने अपना पूरा फोकस उन लोगों की मदद में और अवेयरनेस पे अपना पूरा फोकस और अपना पूरा एनर्जी निकाला, और फिर ये चीजें, ये जो ग्रज और ये सारी चीजें, ये बहुत पीछे हट गई, पीछे चली गई कि मतलब मैंने कभी उस चीज पे फोकस ही नहीं किया कि मुझे इस ग्रज में बैठना है, क्योंकि मैं अपने आप को ही तकलीफ दे रही थी कि हमेशा ऑपरेशन के टाइम में जाती थी, दुखी रहती थी, रोती रहती थी, तो क्या कर रही थी मैं, रो करके मैं क्या हासिल कर ली, ठीक है। तो अगर मैं कुछ अच्छी,
0: ये आपने एक बहुत अच्छा सवाल छोड़ा आज हम सबके लिए कि जब भी हम किसी ऐसे नाजुक परिस्थिति से गुजरते हैं, हमारे सामने बहुत बड़ी परीक्षा आती है, हमें ये पूछना है इस गुस्से से मुझे क्या मिलने वाला है, या रोने से मुझे क्या मिलने वाला है, या इस चिड़चिड़ाहटपन से मुझे क्या हासिल होने वाला है। ये जब हम सवाल पूछेंगे कि इसमें मेरा फायदा क्या है, तब शायद हम उस चीज से हट करके कुछ पॉजिटिव करने में लग पाएंगे, जैसे आपने किया ना। आप मतलब गुस्सा तो पहले आया, आपने बताया, धीरे धीरे आपने उसको सबसाइड किया विद पॉजिटिव थॉट, इसको मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, ऐसा मैं क्या करूं जिससे मेरा समय सफल हो। ये एक बहुत अच्छा सवाल आपने दिया, आपको बहुत बहुत थैंक्स इसके लिए कि मुझे क्या मिल रहा है इससे, आई मस्ट आस्क दिस।
1: एग्जैक्टली और मतलब रैदर देन फोकसिंग ऑन दी नेगेटिव पार्ट ऑफ इट, अगर मैं उसी चीज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखूं कि मैं अब इस चीज को एक्सपीरियंस कर चुकी हूं, मैं लोगों का दर्द अब बहुत अच्छे से समझ सकती हूं, और मुझे लगता है इस फील्ड में जहां जहां मैंने कमियां देखी अपने ट्रीटमेंट और अपने इसमें और पेशेंट्स के साथ, मैं उन चीजों को सुधार, उन चीजों पे काम करूं ताकि वो चीजें मेरे बाद और जितने भी सर्वाइवर्स आए या जिनके साथ, एक तो ऐसा होना नहीं चाहिए, उस चीज पे मैं काम करूं। दूसरा, अगर किसी के साथ होता है तो मेरे जितना मतलब तकलीफ, या मैं, मेरे समय में क्या था, आप गूगल पे भी सर्च करते हैं एसिड अटैक 2006 में, कुछ नहीं मिलता था, तो मैं इतना इन्फॉर्मेशन उनके लिए लेके आऊं और एक ऐसा सपोर्ट बनूं उनके लिए जो

0: चाहती थी कि मेरे लिए कोई पर्पस चाहिए, तो मैं वो सपोर्ट बाकी लोगों के लिए कि आगे अगर किसी के साथ वैसा हो तो मैं वो सपोर्ट बनूं, मैंने उन चीजों पे काम करना शुरू किया और वैसे ही अतिजीवन के शुरू।
1: तो अतिजीवन में और क्या क्या चीजें होती हैं हमारे श्रोताओं को, तो उनके लिए क्या है, मतलब अगर वो अतिजीवन के साथ जुड़ना चाहते हैं, उसमें मदद करना चाहते हैं, या अतिजीवन का प्रोफाइल क्या है, वो क्या क्या करता है, अगर वो आप हमें बताएं तो बहुत अच्छा हो।
0: अतिजीवन फाउंडेशन की शुरुआत इसलिए हुई थी, सबसे पहला एम यही था। एसिड अटैक बहुत अंडर प्रिविलेज लोगों के साथ होता है और उनके पास इतना पैसा नहीं रहता कि वो अपनी प्लास्टिक सर्जरी, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करा सके प्राइवेट हॉस्पिटल में। सरकारी हॉस्पिटल में एक एक सर्जरी कराने के लिए 6-6 महीने की लाइन। तो एक अच्छा ट्रीटमेंट, बेस्ट क्वालिटी ट्रीटमेंट और सही टाइम पे उनको मिले, प्रोवाइड हो और उनको उसके लिए पैसे खर्च न करें। तो सबसे पहला एम हमारा यही था कि अतिजीवन के थ्रू हम पेशेंट को फ्री रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी प्रोवाइड कर सकें। वो हम करते हैं, उनको चाहे 2, 4, 5, 10 कितनी भी सर्जरी करनी हो, पेशेंट के लिए सब कुछ फ्री है। उनका ट्रेन का आने का अरेंजमेंट, रहने का, उनकी सर्जरी कराना और फिर उनको वापस सही सलामत अच्छा रिकवर करके।
1: ये पैन इंडिया होता है या किसी एक राज्य में होता है?
0: नहीं, पेशेंट हमारे पैन इंडिया है, ऑल अक्रॉस, गुवाहाटी से लेके वेस्ट बंगाल से लेकर के जयपुर में भी है, मतलब राजस्थान में भी है, साउथ में भी है, मैं तो खुद साउथ में बेस्ड हूँ, तो हर जगह है। और मेन हमारा सेंटर्स है, हमारा 18 हॉस्पिटल्स के साथ पैन इंडिया टाई अप है, जहाँ हम सर्जरीज कराते हैं, जहाँ मेडिकल कैंप कराते हैं, सर्जिकल कैंप्स, और वहाँ पे हम पेशेंट को बुलाते हैं। तो जैसे हमने हल्द्वानी में भी मेडिकल कैंप किया है, तो हल्द्वानी में इसलिए किया क्योंकि उत्तराखंड के पेशेंट्स जो हैं पहाड़ी एरिया के, वो लोग दिल्ली तक नहीं आना चाहते हैं। अब हमारा क्लोजेस्ट दिल्ली था तो हम उनको दिल्ली बुलाते थे, नहीं आते थे। और हमारे लगभग 12-15 पेशेंट ऐसे थे जो 3-4 साल हो गए थे हम बुलाते बुलाते नहीं आते, तो वो दिल्ली भी नहीं आते क्योंकि पहाड़ी लोग थोड़ा डरते हैं कि कहाँ जाएंगे क्या करेंगे, जबकि मैंने पूरा अश्योरेंस दिया कि मैं आपका आने जाने रहने सर्जरी सब कुछ, आपको कुछ भी नहीं खर्च करना है। तो 3-4 साल मैंने वेट किया, वो नहीं कराते हैं, बस बोलते हैं मदद करो मदद करो, अब कैसे मदद करो उनको। तो मैंने चेन्नई से 5 डॉक्टर की टीम मैं लेके गई हल्द्वानी में, हमने वहाँ टाई अप किया एक हॉस्पिटल के साथ, सेंट्रल हॉस्पिटल, और वहाँ पे हमने सर्जरी कराई, जहाँ 24 रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी हमने 4 दिन के अंदर कराया। तो हल्द्वानी, मतलब पूरे हल्द्वानी के आसपास के पीलीभीत सब जगह हमने जब मेडिकल कैंप किया, हमारे पास 65 पेशेंट, बर्न पेशेंट आए थे, एसिड अटैक और बर्न पेशेंट सब। तो सिर्फ उत्तराखंड के 65 बर्न पेशेंट आए थे, उसमें से हमने सिलेक्ट किया कि किनको, क्योंकि हम 65 की तो नहीं कर सकते थे सर्जरी, तो हमने उसमें से सिलेक्ट किया कि हम जो मेजर, जिनका इम्पोर्टेंट, जिनको मोबिलिटी प्रॉब्लम है, उनका हम पहले प्रायोरिटी में डाल करके और करेंगे। तो हमारा टारगेट 15 सर्जरी करने का था, वही हमारे करके गए थे, लेकिन इतने पेशेंट्स थे और हमको लगा सबको जरूरत क्रिटिकल है, बहुत सारे को मोबिलिटी प्रॉब्लम था, कोई अपना गला नहीं हिला सकता था, कोई मुंह नहीं खोल पा रहा था, किसी कोई आंख नहीं, आईलिड नहीं थी किसी की, तो ये सब सारे हमारे क्रिटिकल सर्जरी में आता है कि ये करना ही है। तो हमने टोटल 24 सर्जरीज करी वहाँ पे। तो ऐसे ही जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे हम लेके भी जाते हैं, मेनली हम चेन्नई बुलाते हैं पेशेंट्स को, क्योंकि वहाँ पे हमारा 5 हॉस्पिटल के साथ टाई अप है, तो कहीं भी जहाँ डॉक्टर अवेलेबल है 5 हॉस्पिटल में, वहाँ पे हम कराते हैं। और वो बेस्ड है कि आपको किस तरह की स्पेशलिटी सर्जरी करानी है, आईलिड रिकंस्ट्रक्शन कराना है तो वो हमारा शंकर नेत्रालय में होता है, नोज रिकंस्ट्रक्शन कराना है तो वो एक पर्टिकुलर डॉक्टर करते हैं, डॉक्टर गणपति, वो बेस्ट हॉस्पिटल में करते हैं। तो ऐसे करके अलग अलग वो है, तो स्पेशलिटी आपको कान की सर्जरी करानी है तो वो कहाँ होनी है, तो वैसे करके हम सर्जरी कराते हैं। तो ये एक काम है अतिजीवन का। उसके अलावा सर्जरी करा दिया हमने, ठीक करा दिया, अब क्या लाइफ, वो 4, 5, 10 साल से वो घर पे बैठे हैं, उनका मतलब लाइफ एक तरह से स्टॉप हो जाती है, एजुकेशन स्टॉप हो जाता है, सब कुछ स्टॉप हो जाता है, उनको आगे कैसे बढ़ाना है, तुम घर पे तो जिंदगी नहीं बिता सकते हो। एक तो काउंसलिंग थ्रू आउट बहुत जरूरी है, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स उनका अच्छा करना है, इंग्लिश ट्रेनिंग, हमारा पूरे साल भर क्लासेस चलते रहते हैं स्पोकन इंग्लिश का, कम्युनिकेशन स्किल्स का। अब क्या, तो आगे आपको कुछ न कुछ काम कर, जिंदगी बिताने के लिए आपको काम करना है, पैरों पे अपने खड़े रहना है, ताकि आप अपने आप को मदद कर सके। वो मेरे लिए बहुत है उसके लिए पहला स्टेप क्या है, आप अपना एजुकेशन कंप्लीट कीजिए। आप अगर टेंथ नहीं किए हैं या ट्वेल्थ नहीं किए हैं और आपको आगे पढ़ने की इच्छा है तो हम आपकी पूरी मदद करेंगे आपका एजुकेशन कंप्लीट कराने। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको इच्छा नहीं होती कि मैं अब वापस पढ़ाई में लगूं, तो उनको हम कोई भी स्किल सिखाते हैं जो जिस तरीके का है। तो हमारी कोई पेशेंट, कितनी सारी पेशेंट्स हैं जो सब्जियों का दुकान चलाती हैं, तो उनको हम उनका बिजनेस सेटअप करने में हेल्प करते हैं। बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो सिलाई का काम करती हैं हमारे साथ, चुरुज का काम करती हैं, उनको काम के हिसाब से वैसा। बहुत सारी ऐसी पेशेंट जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स बनाती हैं, तो उनको हम ये सारे स्किल में ट्रेन करते हैं कि आप कुछ भी करो लेकिन काम तो करना है, अपने पैरों पे खड़ा रहना है। कुछ भी कमाओ, 4,000 ही कमाओ महीने का, लेकिन इतना कमाओ कि आप दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहो। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो एजुकेशन कंप्लीट करके जिनको हमने इंडस्ट्री में प्लेस किया है, आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में हमारे मतलब सर्वाइवर्स काम कर रहे हैं। तो हमारा मेन एम है कि उनको जो मतलब जितनी भी सर्जरीज, जो भी ट्रीटमेंट की जरूरत है वो करा के और उनको एक इंडिपेंडेंट इंसान बनाना, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो ये वहां से लेके पूरा ट्रीटमेंट से लेकर के उनको इंडिपेंडेंट बनाने का काम करता है अतिजीवन।
1: अतिजीवन ही नाम क्यों है?
0: अतिजीवन एक संस्कृत वर्ड है जिसका नाम होता है जीवन के बाद का जीवन। तो मेरा एम यही था कि शरीर जल जाता है लेकिन हम फिर भी टट के खड़े रहते हैं, हमारा आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। एक चेहरा आइडेंटिटी होती है हमारी, वो खत्म हो जाती है। बहुत सारे लोग हमको पहचानते नहीं है जो हमसे पहले मिले होते हैं। सब कुछ खत्म होने के बाद हम अपना जीवन फिर से खड़ा करते हैं, हर कुछ से बना।
1: ये अपने आप में एक बहुत आध्यात्मिक बात है, क्योंकि गीता में भी कहा हुआ है कि भाई जो सोल है, प्राण है, आत्मा है, वो न जलती है, न बुझती है, न मरती है, न कुछ भी, उसे कोई फर्क नहीं होता। ये जो हौसला है, ये जो अंदर का जो प्राण है, जो कुछ करने का, कुछ लोगों तक कुछ भलाई करने का जो ये हौसला है, इसको कुछ नहीं हो सकता। चाहे जो आवरण है, जो शरीर है, उसको भले कुछ भी हो रहा है, ये जो मैसेज आपने, स्पिरिचुअल मैसेज जो आपने अपने नाम के साथ, फाउंडेशन के नाम के साथ दिया सबको, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। बट साथियों, आपने भी सुना कि अतिजीवन केवल उन लोगों को सर्जरी के द्वारा ही मदद पहुंचा रहा है, ऐसा नहीं है। अतिजीवन उनको शिक्षा भी दे रहा है, उनको रोजगार के अवसर भी प्रदान कर रहा है, उनको जो भी किस्म का अवसर या सुविधा चाहिए वो अतिजीवन प्रोवाइड करता है। और आप ताउम्र जुड़ सकते हैं अतिजीवन के साथ, दिल से जुड़ सकते हैं, अपनी मदद से जुड़ सकते हैं। प्लीज जरूर जुड़िए, क्योंकि मुझे लगता है एक व्यक्ति या एक संगठन कभी कुछ बहुत बड़ा बदलाव नहीं ला सकता जब तक हम सब सांस में ना आ जाए। एक होता है सर्जरी करना, रिकंस्ट्रक्शन करना, फिजिकली उनको मदद करना। दूसरा होता है उनके मन को हील करना, बिकॉज ये एक सदमा होता है, सदमे से उभरना, पोस्ट ट्रॉमेटिक काउंसलिंग जो होता है, ये सब चीजें शायद जैसा आपने बोला कि जो बहुत ही निचले दर्जे से आते हैं, आर्थिक रीति से, मैं निचला दर्जा यहाँ पर केवल आर्थिक रीति से कह रहा हूँ, उनके लिए ये सब काउंसलिंग वगैरह जैसे तो कोई सपना ही होता है। ऐसे में इन लोगों तक काउंसलिंग पहुंचाना, या इनको किस तरीके से आप काउंसिल करते हैं?
0: देखिए, हमारे मतलब ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं जो इस चीज में एक्सपर्ट हैं, जो ये काम करते हैं फोन पे। और अब तो पैंडेमिक ने हमको ये भी सिखा दिया कि बहुत सारी चीजों के लिए हम ऑनलाइन इंटरनेट का सहारा ले सकते, बहुत चीजें हमारी अब ऑनलाइन होती हैं, काउंसलिंग भी ऑनलाइन होती है। लेकिन सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है कि मैं हर जगह, हर शहर में, मतलब मेनली बड़े बड़े शहर में या ऐसे ट्रैवल करती हूँ, और मैं वहां पे सारे पेशेंट्स को बुलाती हूँ। उनका आने जाने, वहां पे रहने का खर्च मैं देती हूँ कि तुम मुझसे मिलो, आओ। और हम लोग एक बर्न्स ग्रुप मीटिंग्स करते हैं हर जगह, साल में एक बार तो एक शहर में कर ही लेते हैं। तो उतना वो करते हैं, सारे पेशेंट्स वहां के, जो आसपास एरिया के जितने भी पेशेंट्स हैं, सबको मिलाते हैं और मिलते हैं वहाँ पे। एक दिन का पूरा वर्कशॉप, बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं वहाँ, डॉक्टर से मिलना, सब कुछ होता है। और ये ग्रुप मीटिंग्स करने का मकसद यही है कि बहुत सारे जो रूरल एरियाज में जो पेशेंट्स रहते हैं, उनको कभी एक्सपोजर ही नहीं मिलता कि वो उनकी जिंदगी इसके आगे भी हो सकती है। वो चार दीवार के घर में बंद कर दिया जाता और बोल दिया जाता है कि तुम बाहर निकलोगे तो हमारी बेइज्जती हो, परिवार वाले बोलते हैं, तुम बाहर निकलोगे तो लोग पूछेंगे तो क्या बोलेंगे, उससे अच्छा तुम घर ही में रहो। तो वो समझ लेते हैं, इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमारा अब जिंदगी जो

0: बीतना है वो घर के अंदर ही बीतना है। जो करेंगे, जो जैसा घर वाले बोलेंगे, चाहे वो ससुराल वाले हों या अपने घर वाले, जो जैसा बोलेंगे हमको वैसे ही रहना है। यही हमारी जिंदगी है, क्योंकि हमारी जिंदगी अब बर्बाद हो चुकी है। तो ये उनको ऐसे प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा करना और ये बताना कि तुम अभी भी अपने सारे सपने अचीव कर सकते हो, सब कुछ कर सकती हो, उनको ये हिम्मत देना कि मैं तुम्हारे साथ, तुम जो करना चाहती हो वो तुम करो। और देखो ये 5 लड़कियां हैं जिन्होंने, जो तुम्हारे तरह ही जिंदगी जी रही, लेकिन देखो आज ये कितना, किस मुकाम पे पहुंच गए। तो वहाँ एक ये भी मकसद है कि सक्सेस स्टोरीज बताओ कि देखो ये जो लड़की है ये भी वहाँ गोंडा जैसे गांव में रह रही थी, लेकिन आज ये दिल्ली में एक बड़े 5-स्टार होटल में काम कर रही है और आज 20,000 रुपए महीने का कमा रही है। बहुत बड़ी बात है। हाँ, दिल्ली में रह रही है, सारा सपोर्ट उसको मिल रहा है। किस चीज की कमी है तुमको? तुमको बस अपने आप में हिम्मत बनानी है, बाकी हम लोग हैं बाकी का देखने के लिए। तो ये
1: शायद ऐसे ही हिम्मत बांधने के लिए आपसे अच्छा जो निमित्त है, मैं कहूंगा जो इंस्ट्रूमेंट है, वो ईश्वर को और कोई मिला नहीं, इस वजह से आप पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी हुई है। कितने लोग जुड़े हुए हैं आपके साथ टोटल?
0: हमारे संस्था से लगभग 500 पेशेंट्स मतलब जुड़े हुए हैं ऑल अक्रॉस।
1: That's a big number.
0: हाँ, हमने लगभग मतलब 250 सर्जरी से ज्यादा हम कर चुके हैं, मतलब ये कैंप्स और ये सब के हर छोटी बड़ी सर्जरी, मतलब सिंगल सिंगल भी सर्जरी हम लोग करते हैं और कैंप्स में भी करते हैं, तो सब मिला जुला करके ये है। और मुझे बहुत गर्व होता है कि बहुत सारी लड़कियां अब MNCs में हायर हुई हैं। पिछले कोविड के टाइम में भी बहुत सारी MNCs ने हायर किया है हमारी लड़कियों को और बड़ी बड़ी कंपनी में काम कर रही हैं और बहुत अच्छा कर।
1: तो ये जो लोगों के जीवन में आपने एक बदलाव लाया, ये केवल उनके जीवन में बदलाव नहीं था लेकिन समाज में जो मुख्य धारा से में जो लोग हैं, जैसे आपने बताया MNCs में जॉब कर रहे हैं, तो उस जॉब के अंदर भी जो लोग उनके साथ रहते हैं उनके अंदर भी एक विचारधारा का परिवर्तन आता
0: है। बिल्कुल,
1: एंड दैट चेंजेस अ लॉट, इट चेंजेस अ लॉट बिग नैरेटिव, क्योंकि केवल जो प्रताड़ित है, जो परेशान है, जो शिकार है, केवल हमारा मुख्य टाइम जो हमारा होता है समय वो उन पे ही जाता है। कई बार ये नहीं सोचते कि अगर इनको हम लोगों के बीच में लाते हैं तो लोगों को भी जानने, देखने और खुद को समाज में अपने परिवार को शिक्षित रखने का एक मौका मिलता है। मुझे लगता है ये जो आपने कदम उठाया कि लोगों को मुख्य धारा में अवेयर करने का, सोसाइटी में लोगों को इस तरीके की जो अपराध हो रहे हैं इनके पीछे जो कारण है उनके साथ जोड़ने का जो आपने काम किया, ये काफिले तारीफ है। और इस वजह से भारत सरकार ने आपको नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। जब ये पुरस्कार आपको दिया गया तब आपके मन में क्या चल रहा था?
0: ये एक सपना ही है, वो दिन कैसे बीत गया और क्या हुआ वो तो मतलब अभी भी एक सपना ही है, लेकिन एक बहुत बड़ा, बहुत मुझे लगता है कि सरकार ने या समाज ने इस चीज को रिकग्नाइज किया कि मैं कुछ कर रही हूँ, वो मेरे अंदर बहुत ज्यादा उस चीज ने मोटिवेट किया, मोटिवेशन भरा और बहुत बड़ी जिम्मेदारी और दी कि मुझे और कितना ज्यादा करना है, राइट? क्योंकि अब लोग जब भी सोचेंगे कि बर्न और एसिड अटैक पेशेंट्स को मदद चाहिए तो वो मेरा नाम सोचेंगे, तो अब ये मेरी और बड़ी जिम्मेदारी है कि मैं इस चीज को और अच्छे से और बड़े लेवल पे लेके जाऊं और करूं, ताकि मैं मतलब ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स तक रीच आउट कर पाऊं और उनकी लाइफ चेंज कर पाऊं, उनको रिहैबिलिटेट कर पाऊं। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा मोटिवेशन है मेरे लिए, क्योंकि एक बार जब आपको रिकग्निशन मिलता है इतने बड़े प्लेटफॉर्म से, सरकार से, भारत सरकार से, तो लोग भी आपके काम को रिकग्नाइज करने लगते।
1: तो अब जब आपको ये सम्मान मिला और उसके बाद जब आपका काम भी बढ़ा है, आपके आसपास लोग भी जानने लगे और कई लोगों से आपकी मुलाकात भी हुई, मुझे लगता है आपने जरूर इस बात को उन तमाम आला अफसरों तक, सरकार तक पहुंचाने की बात की होगी डेफिनेटली, कि जो रूट कॉज है, जो जड़ है, वहां पर भी काम हो सकता है। लोगों को सतर्क करना, उनको सजग करना कि भाई आप अपने गुस्से पे कंट्रोल कैसे करो, और अवेलेबिलिटी ऑफ एसिड, आप सोचो कोई भी जाए अदना सा व्यक्ति दुकान में जाके बोले भाई मुझे तेजाब खरीदना, एसिड खरीदना, और उसको दे विदाउट एनी प्रेस्क्रिप्शन, विदाउट एनी रेगुलेशन, इन चीजों पे भी काम होना जरूरी है। इस पे आपका क्या विचार है?
0: मैं तो day 1 से इन चीजों पे काम कर रही हूँ। एसिड सेल रेगुलेशन का भी हमने कैंपेन और

0: मतलब 2013 में शुरू किया था और अभी भी मैं वर्कशॉप्स करती हूँ, कॉर्पोरेट में भी करती हूँ, कंपनीज में सेंसिटाइजेशन करती हूँ, अवेयरनेस सेशंस करती हूँ और मेरा यही मकसद रहता है, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी करती हूँ और मेरा यही मकसद रहता है लोगों तक ये बात पहुंचाने का कि जो लीगल एस्पेक्ट है लोगों को नहीं पता होता है, जो लॉ है एसेट सेल को लेकर के हो या सर्वाइवर के टूवर्ड्स हो या अवेयरनेस कि आपके साथ अगर आपके आसपास ऐसा होता है तो आपको करना क्या है, कहाँ लेके जाना है पेशेंट से लेकर के आपके सामने अगर कोई एसिड अटैक सर्वाइवर है तो आपको करना क्या है, आपको उसको बेचारी नहीं बोलना है, आपको उसको ये कंपनीज में मोस्टली होता है कि आपके वर्क स्पेस में अगर कोई एसिड अटैक सर्वाइवर काम कर रहा है तो आप उसको मतलब कि बहुत आपको उसको इम्पोर्टेंस भी नहीं देना है, उसको बस एक नॉर्मल इंडिविजुअल की तरह आपको ट्रीट करना है, क्योंकि बहुत मतलब जो लीडर्स होते हैं या कोलीग्स होते हैं उनका ये सवाल होता है कि हम रिएक्ट कैसे करें, हम कैसे बात, तो सबसे पहली बात कि आप किसी भी और दूसरे लोगों से जो अपने कोलीग है दूसरे कोलीग्स उनसे जो बात करते हैं वैसे बात कीजिए, आप उसकी डिसेबिलिटी को समझने की कोशिश कीजिए कि उसके पास उसको मोबिलिटी प्रॉब्लम है या नहीं है, उसको किस तरीके की डिसेबिलिटी है, और वो आप उससे बहुत आराम से धीरे से स्लोली बात करते करते समझ सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पुट करने की हमेशा जरूरत नहीं है, राइट, और आप उसके हिसाब से आप अवेयर रहिए कि उसका जो मोबिलिटी प्रॉब्लम है या जिस तरह की डिसेबिलिटी है आपको उसको कैसे डील करना है, राइट, अगर जिसको लो विजन है तो आपको किस तरीके का काम देना है, अगर आपका अगर आप मैनेजर हो उसके, या इस लेवल पे अवेयरनेस की एसिड अटैक सर्वाइवर की भी लाइफ इजी होनी चाहिए, हर जगह उसको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है, वर्क स्पेस से लेकर के जहां वो पढ़ाई कर रही है कॉलेज में से लेकर के, तो ये बहुत जरूरी है कि हम आप अपनी यंग जनरेशन को इतना अवेयर करें कि आपको बिहेव कैसे करना है, आपको अलर्ट कैसे रहना है, विजिलेंट कैसे रहना है, ऐसे अटैक्स आप रोक कैसे सकते हो, बहुत जरूरी है यंग जनरेशन को ये समझाना कि अगर स्टॉकिंग हो रही है आपकी या आपको लग रहा है कि वो खतरा बन सकता है तो आपको तुरंत अलर्ट करना है अपने पेरेंट्स को, अपने आसपास टीचर्स हैं जो भी हैं उनको अलर्ट करना, उनको बताना है कि ऐसी चीजें हैं ये हो रही हैं। सबसे बड़ी गलती लड़कियां ये करती हैं कि स्टॉकिंग वो लोग रिपोर्ट नहीं करते, उसके ऊपर भी सजा है, ये चीजें बताना बहुत जरूरी है और इसके लिए आपको बोलना होगा, आपको आपके आसपास जो भी आपको हेल्प मिल रहा है वहां तक रीच आउट करना पड़ेगा, तो इन सब चीजों पे हम काम करते हैं और मुझे लगता है अवेयरनेस बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इस टाइप के अटैक्स रोकने में, इस टाइप के अटैक्स होने के बाद किसी को हेल्प करने में दोनों तरफ से।
1: आप भारत में इस चीज का प्रचार भी कर रहे हैं, आप लोगों के पास पहुंच भी रहे हैं, उनके पास पहुंच के उनको मदद भी पहुंचा रहे हैं, तो आपने भारत का बहुत भ्रमण किया होगा, मैं समझता हूँ देश के हर कोने में आप पहुंचे होंगे, कौन सी एक बात भारत को भारत बनाती है?
0: मुझे लगता है वो जो एम्पथी रहता है लोगों को और एक जो इमोशनल टच रहता है जो हमारे एक दूसरे के साथ है, जो कनेक्ट जो हम अभी भी कहीं भी जाएं, मतलब मैं बोल रही हूँ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जाए या कहीं भी जाए, मतलब दिल्ली जाए या कहीं भी जाए, मतलब दिल्ली एनसीआर किसी भी जगह जाए, इमोशनल कनेक्ट रहता है हम लोगों का और हम एक दूसरे से बहुत जल्दी कनेक्ट कर जाते हैं और जो एम्पथी एक दूसरे के लिए रहती है और मोस्टली रहती है, मतलब मोस्टली मैं हर जगह देखती हूँ वो रहती है, तो मुझे लगता है ये बाहर मैंने कहीं नहीं देखा है और इतना ज्यादा नहीं देखा है जितना मैं यहाँ पे लोगों के साथ एक्सपीरियंस कर।
1: क्या आपको लगता है ये जो एम्पैथी है, सद्भाव है भारत का, जो भारत को खास बनाती है आपके नजरिए से, क्या ये सद्भाव हमारे यंग जनरेशन को पहले से ज्यादा सतर्क, पहले से ज्यादा प्रिपेयर्ड कि भाई ऐसा कुछ होने ही न दे और अगर होता है तो उसमें क्या करें, ये सद्भावना कैसे उसमें काम कर सकती है? हाउ डज दिस एम्पैथी कैन वर्क देयर?
0: सी एम्पैथी कैसे काम करेगी, डेफिनेटली अगर आप अलर्ट हैं और दूसरे लोगों से कनेक्ट कर पा रहे हैं तो आप मतलब अलर्ट रहें, आप कनेक्ट कर पाएंगे, आप एम्पैथाइज करेंगे तो आप कनेक्ट कर पाएंगे, और अटैक कैसे नहीं हो अंटिल आप विजिलेंट हैं अपने सारे सिचुएशन और अपने सराउंडिंग से, आप इस चीज को रोक तो नहीं सकते हैं, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप विजिलेंट रहें अपने आसपास और लोग

0: उससे कनेक्ट हो करके उनको रीच आउट करें हर तरह के सपोर्ट के लिए, क्योंकि बहुत बार अब मुझे लगता है बहुत समय चेंज हो चुका है, शिफ्ट हो चुका है। 15 साल पहले जो लड़कियां मुंह नहीं खोल सकती थी अपने मम्मी पापा के पास, आज का जनरेशन बताता है, हर चीजें बताता है, बात बोलता है, सवाल करता है। एक तरह से कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये खतरा भी बन जाता है बहुत सवाल करना, लेकिन बहुत हद तक क्योंकि वो बोल पाते हैं बहुत सारी चीजें रिपोर्ट हो, और अब पहले से ज्यादा चीजें रिकॉर्ड होती हैं, रिपोर्ट होती हैं, तो मुझे लगता है होपफुली आगे कम।
1: तो कोई एसिड अटैक हेल्पलाइन नंबर या ऐसा कुछ होता है जो ऑल ओवर इंडिया काम करता हो, या इज देयर समथिंग लाइक दैट जो रिपोर्टिंग करने में मदद करे?
0: नहीं, ऐसा कोई हेल्पलाइन नंबर अभी तक तो नहीं है एसिड अटैक का, लेकिन कोई एम्बुलेंस का ही है, आप 108 जो डायल करें अगर कुछ भी ऐसा हो होता है तो। लेकिन रीच आउट ही कर सकते हैं आप हमारी जैसे एनजीओस को, और किसी तरह की मदद की जरूरत है तो।
1: आई थिंक 112 जो है वो नेशनल वुमेन कमीशन का नंबर है, हेल्पलाइन नंबर 112। लेकिन एसिड अटैक के लिए या इस प्रकार के बर्न अटैक्स के लिए अगर कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं है तो मे बी हो सकता है अति जीवन इस पे काम करेगा और भविष्य में हमें एक ऐसा नंबर मिलेगा जो कि हम डायल करें और तुरंत और जल्द से जल्द मदद पहुंचाने की। आई थिंक अलग से नंबर ना भी हो बिकॉज इट्स अ मेडिकल सिचुएशन, ये एक
0: आप एम्बुलेंस 108 डायल कर
1: सकते हैं।
0: एम्बुलेंस इतने इक्विप्ड होते हैं आपके आसपास कि वो सबसे पहले, उनको पता है बर्न केसेस तो कहाँ जाएंगे, किस हॉस्पिटल में बर्न वार्ड है, हर हॉस्पिटल में बर्न वार्ड रहता भी नहीं, और उनको कहाँ लेके जाना है, और तो उतने इक्विप्ड होते हैं कि वो तुरंत आपके नियरेस्ट बर्न वार्ड तक पेशेंट को पहुंचा सकते हैं, या जहाँ ट्रॉमा सेंटर इमरजेंसी जहाँ पे ट्रीट किया जाता है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट होकर के फिर उनको शिफ्ट किया जा सकता है बर्न वार्ड।
1: सो दोस्तों, आपने सुना कि अगर आपके आसपास आपको लगता है कि कोई व्यक्ति खतरे में है और किसी को भी इस प्रकार की एक समस्या हो सकती है, आपको रिपोर्ट करना चाहिए। अगर आपके सामने कोई घटना घटती है, आप उसमें जो भी मदद कर सकते वो करें, लेकिन 108 पे जरूर डायल करें, कॉल करें, इमरजेंसी एम्बुलेंस बुलाएं। बाकी ये सब करते हुए ये जरूर ध्यान में रखें कि मेरे घर में जो मेरे बच्चे हैं या जो मेरे भाई बहन हैं या जो नौजवान हैं, चाहे पुरुष चाहे स्त्री, हर एक को इस चीज का ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि अपने ऊपर कैसे संयम पाया जाए, अपने गुस्से पे कैसे काबू किया जाए, अपने चिड़चिड़ेपन पे कैसे काम किया जाए, ये अपने गुस्से को दूसरे पे न हावी होने दिया जाए, उसकी वजह से किसी और का नुकसान न किया जाए। प्रज्ञा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे?
0: हाँ, मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी, अगर आपके आसपास ऐसी घटना घटती है तो डेफिनेटली एम्बुलेंस का नंबर आप डायल कीजिए 108। उसके अलावा आप उस पेशेंट को कोई भी कैसा भी जला हो, एक्सेप्ट फॉर इलेक्ट्रिकल बर्न, अच्छा बेस्ट फर्स्ट एड यही है कि आप उस पेशेंट को कहीं भी एक जगह बैठा दीजिए, हाथ में जो अगर गहना या कुछ भी पहना हुआ है, रिंग्स हैं, कड़े हैं, कुछ भी नेकलेस है, वो सब चीजों को खोल के हटा दीजिए, क्योंकि एसिड जो है ये सारे मेटल्स को मेल्ट कर देता है और वो स्किन के अंदर जाके घुस जाता है, चिपक जाता है, राइट। कपड़े वपड़े को थोड़ा अलग कर दीजिए स्किन से, क्योंकि वो कपड़े भी अगर सिंथेटिक कपड़ा है तो पूरा स्किन के अंदर एकदम जम जाएगा और फिर वो निकालने में पेशेंट का बहुत मांस निकल जाता है। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि एक जगह बैठा के उसको पहले काम कीजिए, और ये कपड़े अलग कर दीजिए, और जो ज्वेलरीज वगैरह अगर कुछ पहना है, कुछ भी मेटल का सामान, तो वो अलग कर दीजिए। उसके बाद उस पेशेंट के ऊपर जितना हो सके नॉर्मल नल का पानी, न गर्म न ठंडा, किसी चीज की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल नल का पानी डालते रहिए उसके ऊपर, या फिर अगर शावर है तो शावर के नीचे बैठा दीजिए, बस उसको शावर चलता रहे वैसा, और वो तब तक कीजिए जब तक बर्निंग सेंसेशन सबसाइड नहीं होता है। ये किसी भी बर्न के लिए है एक्सेप्ट इलेक्ट्रिकल बर्न। इलेक्ट्रिकल बर्न में हम पानी नहीं डालते हैं, क्योंकि उससे शॉक लगने का और पेशेंट का तुरंत किसी तरह का हादसा हो सकता है, चांसेस हैं। तो इलेक्ट्रिकल बर्न में आपको तुरंत रश करना है हॉस्पिटल बिना कुछ पानी डाले। उसके अलावा किसी भी तरह का फायर बर्न या पानी से जल जाता है, उबलते हुए पानी से, उबलते हुए दूध से, बस पानी के अंदर रखिए, पानी के नीचे, नल के नीचे, या पानी ऊपर से डालते रहिए जब तक कि बर्निंग सेंसेशन सबसाइड नहीं होता, और ये करने में आधा

0: जाता है और फिर वो निकालने में तो मांस भी निकल जाता है बाद में।
1: आई थिंक प्रज्ञा जी ने आज केवल अपने जीवन को ही हमारे साथ नहीं शेयर किया, अपने अनुभव भी हमारे साथ शेयर किए, जिसको कि अगर हम ध्यान में रखें तो हम हमारे आसपास में हो रहे ऐसी दुर्घटनाओं में बेहतरीन मदद पहुंचा सकते हैं। द फर्स्ट एड दैट वी प्रोवाइड शुड रियली हेल्प द पर्सन। कई बार हम फर्स्ट एड क्या करना है वो नहीं जानने की वजह से कुछ ऐसा कर लेते हैं जिसमें कि नुकसान भी बहुत ज्यादा हो सकता है। तो इसलिए अगर कोई आपके आसपास में साथी हो, आपने देखा है या देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा कि अगर कोई बर्न विक्टिम है अदर देन इलेक्ट्रिक बर्न, जो तो बिजली की वजह से जिनको बर्न हुआ है, उनके अलावा हर एक को आपको पानी के साथ ट्रीट करना है, ठंडे या गर्म नहीं, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है पानी का उसके साथ ट्रीट करना है। और अगर कोई मेटालिक चीज उन्होंने पहनी हुई है, चाहे गहने आदि पहने हुए, वो अलग करना है। सिंथेटिक कपड़े तो भले उनको अलग करना जरूरी है। आप इस समय सिर्फ ये बात ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, आप ये अपने दोस्तों को भी सुनाइए, जिनसे आप मिलते हैं आप उनको सुनाइए। ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी सेवा होगी। जाते जाते प्रज्ञा जी आपसे हम एक रैपिड फायर राउंड खेलना चाहेंगे जिसमें हम आपसे एक सवाल पूछेंगे और आपको एक शब्द में उसका जवाब देना होगा। आर यू रेडी?
0: बिल्कुल।
1: ओके, अति जीवन क्या है?
0: घर है।
1: वेरी नाइस। तो ऐसे कोई भी हमारे श्रोता साथी जो सुन रहे हैं, जिनके परिचय में कोई व्यक्ति है जो ढूंढ रहा है अपनी पहचान, खो चुका है अपनी पहचान, उसके लिए घर है अति जीवन, प्लीज आप उनको वहाँ तक पहुँचाइए। भारत क्या है?
0: भारत हमारी पहचान है मुझे लगता है।
1: तो साथियों, पहचान हम सब की एक है। भारत शक्लों पे मत जाइए, किसी के पहनावे पे मत जाइए, केवल एक ही पहचान है जिसे लेकर के मुझे और आपको हर एक को चलना है, और वो है भारत। भारतीयता हमारी पहचान है। सेवा क्या है?
0: सेवा जीवन है।
1: वही नहीं, आपने बहुत जल्दी जवाब दिया इसका। सेवा जीवन है क्योंकि आपने ताउम्र सारी जिंदगी आपने सेवा में लगाई हुई है, तो ये आपके लिए बहुत आसान था। वेरी नाइस। साहस क्या है?
0: साहस ही जीने का तरीका है हमारे जिंदगी में, मतलब जीने का तरीका है आप इसको, लेकिन इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगी। बहुत लोग गिव अप कर देते हैं कि ये नहीं, ये दिक्कत है, ये है, लेकिन जिंदगी है तभी तो प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं, खुशियां भी आ रही हैं, दुख भी आ रहा है। अगर आप हर चीज में वो साहस नहीं रखेंगे, वो करेज नहीं रखेंगे, तो किसी भी फेज अपने लाइफ का जो फेज होता है उसको अच्छे से नहीं जी पाएंगे। तो आपको दुख में भी साहस रखना है और खुशी में भी साहस,
1: तो हताश नहीं होना है।
0: हाँ,
1: हताश नहीं होना है, साहस रखना है।
0: तो जीने का तरीका ही ये है। हमको हर जगह कहीं चीजें अच्छी होती हैं हमारे लिए, हमारे लायक होती हैं, कहीं नहीं होती है, लेकिन दोनों जगह हमको साहस रखना है और वो करेज के साथ आगे बढ़ के रहें।
1: शांति क्या है?
0: शांति पता नहीं, शांति क्या है मेरे लिए तो बस अपने आप के, मतलब मुझे लगता है अपने अंदर ढूंढती हूँ शांति, अपने अंदर वो यू नो कभी कभी ऐसा समय आता है, लेकिन पता नहीं अपने
1: शांति, आप शांति आपके लिए अंदर है जिसको आप तराश रहे हैं और ढूंढ रहे हैं?
0: नहीं भी, अभी अभी ढूंढ रही।
1: आखिरी सवाल, प्रज्ञा कौन है?
0: प्रज्ञा किसी के लिए हिम्मत है, किसी के लिए जरिया है, किसी के लिए मतलब जरिया, एक अपना ड्रीम्स, अपने सपने अचीव करने के लिए किसी के लिए वो सपोर्ट है जो वो हमेशा किसी में भी ढूंढता है।
1: प्रज्ञा जी, जाते जाते अगर आप हमारे श्रोताओं को कुछ मैसेज देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, व्हाट वुड बी दैट मैसेज?
0: बहुत सारी चीजें हैं, एक लाइन दो लाइन में कहूंगी कि अपने ऊपर हमेशा भरोसा करो। यू नो जिंदगी में कोई चीज ऐसा नहीं होता जो आप अचीव नहीं कर सकते हो, अगर आप चाहते हो तो आप हर कुछ अचीव कर सकते हैं। अपने आस पास किसी भी तरह से अपने समाज को, जो कम्युनिटी है, उसको कुछ देने की कोशिश करते रहो। और एक बहुत इम्पोर्टेंट मेरा वो है टैगलाइन कि जिंदगी में आपके मतलब 10% वो चीजें हैं जो घटनाएं आपके साथ घटी हो, और 90% आपकी जिंदगी वो है जो आप उन घटनाओं से आपके जो आपने अपनी जिंदगी बनाई हो। तो डजंट मैटर आपके लाइफ में क्या हुआ है, व्हाट मैटर्स इट इज हाउ यू मेक आउट योर लाइफ आउट ऑफ इट, राइट? तो दैट इज
1: 10% जिंदगी का वो है जो आपके साथ घटा है, और 90% वो है जो आपने उन घटनाओं से सीखा है, लिया है या जीवन

0: उसके आधार पर गढ़ा है,
1: राइट। तो मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो बस जिंदगी भर स्ट्रगल करते ही रहे हैं, लेकिन वो उनको कभी शिकायत नहीं हुई है, उस चीज को पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखते हैं। और मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो छोटी छोटी चीजों से मतलब दुखी ही रहते हैं और क्रिप ही करते रहते हैं। तो मुझे ये लगता है कि जिंदगी वही है जो आप, आनाएं तो बहुत सारी होती है, सबके साथ अलग अलग तरीके की होती है, लेकिन आप उस चीज को कैसे, व्हाट यू मेक आउट ऑफ इट इज व्हाट रिफ्लेक्ट्स योर लाइफ।
0: प्रज्ञा जी ने बहुत ब्यूटीफुल एक मैसेज दिया साथियों हमें कि जीवन में घटनाएं हर एक की होती है और कुछ ना कुछ होती ही रहती है, लेकिन वो हमारे पूरे जीवन का केवल 10% हिस्सा होता है। 90% हिस्सा जीवन का वो होता है जो हम उन घटनाओं को सीख करके उनके आधार पे अपने जीवन को किस रूप में गढ़ते हैं, जीवन को क्या रूप देते हैं, वो 90% हमारे अपने हाथों में होता है, हमारे विचारों में होता है। और जैसे कि प्रज्ञा जी ने खुद को डिफाइन किया कि प्रज्ञा किसी के लिए साहस है, किसी के लिए जरिया है, हम तो कहेंगे प्रज्ञा जी आप कईयों के लिए उम्मीद है, आप कईयों के लिए वो प्रेरणा है जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए शक्ति देता है, और भारत के लिए आप वो भारत की चमकती बेटी हैं जिन्होंने भारत का नाम, भारत का गर्व दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ाया है। भारत देश को आपके जैसी एक सुपुत्री प्राप्त है, इससे बड़ा गर्व भारत को और क्या होगा। आज हमारे साथ प्रज्ञा जी आपने समय बिताया, हमें इतना सारा अपने जीवन का वो पन्ने आपने पलट के हमारे सामने शेयर किए जो शायद आप पलटना भी नहीं चाहते थे, बट पूरे परिवार को एक समझते हुए, हमको अपना मानते हुए आपने हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रज्ञा जी आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, दोबारा हम आपसे मिलना चाहेंगे, उम्मीद करता हूं हमें समय दीजिएगा। साथियों आप सुन रहे थे यशस्वी भारत कार्यक्रम, रेडियो मधुबन 90.4 FM की एक ब्यूटीफुल पेशकश, जहां पर हम हर एपिसोड में एक ऐसे अतिथि के साथ आते हैं। अतिथि कहना राइट नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि वो हमारे भारत की शान है। भारत का शान भारत के अतिथियों से नहीं होता, भारत के अपने बच्चों से होता है। ये भारत के वो नायाब रतन हैं जिनकी चमक ने भारत को इतना शानदार बनाया हुआ है। श्री प्रज्ञा प्रसून जी भारत की वो चमकती कोहिनूर हैं जो खुद एक एसिड अटैक विक्टिम होते हुए भी उन्होंने आज 500 से ज्यादा एसिड सर्वाइवर्स को जो है उनको मदद पहुंचाई। अगले एपिसोड में हम फिर आपके बीच में आएंगे एक और किसी नए गेस्ट के साथ, कि भारत के किसी एक और ऐसे पावरफुल ब्यूटीफुल चमकते हुए हीरे के साथ जिनकी शाइन से, जिनकी चमक से मैं, आप और हम सब अपने को कुछ सीखने के लिए, अपने अंदर कुछ नया भरने के लिए बेताब रहेंगे। इंतजार रहेगा दोस्तों आपसे दोबारा मिलने का। मैं इजाजत लेता हूँ आरजे शांतनु आपसे, तब तक के लिए 90.4 FM रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, जय हिंद जय भारत।

ओम शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज फिर आप सबका स्वागत। इन दिनों हम बात कर रहे थे सेल्फ मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट के कई कोर्सेस हम करते आ रहे हैं और अगर करियर में है तो बहुत सी बातें जहां स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात है, एंगर मैनेजमेंट की, लेकिन अब तक हम ये समझ नहीं पाए थे कि सेल्फ को भी मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सेल्फ को ही नहीं पहचानते थे। खुद की पहचान के साथ साथ जहां मैनेज करने की बात आई, वहां पहली बात जो आई थी वो है सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि मेरी एबिलिटी क्या है किसी भी सिचुएशन पर रिस्पॉन्ड करने की, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं अपने प्रति सबसे पहले जिम्मेवार हूं और उसके बाद बाकी जिम्मेवारियां मेरे सामने आती हैं। अगर पिछली कड़ी को एक बार थोड़ा सा और देखें तो हमने बात की थी कि अगर मैं अपनी खुशी और अपने दुख की जिम्मेवार हूं तो फिर मैं किसी और की खुशी या दुख की जिम्मेवार नहीं हो सकती।

0: आज थोड़ा सा और इस बात को आगे बढ़ाते हैं। हमारा सौभाग्य हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। जिस तरह से पिछले एपिसोड में आपने बताया था कि मेरे साथ मैं जो क्रिएट कर रहा हूं, मैं जो भी इमोशन क्रिएट करती हूं, जो भी थॉट फीलिंग क्रिएट करती हूं, उसकी जिम्मेवारी मेरी हो जाती है। तो अगर मैं खुश हूं अपनी वजह से हूं, मैंने क्रिएट किया, और अगर मैं दुखी हूं तब भी मैंने क्रिएट किया है। यहां तक तो ठीक था, लेकिन जहां हमने ये बात की थी, क्योंकि उसका रिस्पॉन्स भी आया है, बहुत से लोगों के मन में ये बात उठ रही है कि जब दूसरा दुखी होता है और वो वजह मैं बन रहा होता हूं कि मेरी वजह से हुआ, कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई या कुछ हुआ, तो वो दुखी और वो बार बार मुझे कह रहा है आई एम यू नो सैड बिकॉज ऑफ यू, मैं तुम्हारी वजह से दुखी हूं, तो वो मुझे कैसे इफेक्ट नहीं करेगी। और दूसरी तरफ अगर मैं या कोई और किसी और के दुख के लिए जिम्मेवार नहीं हो सकता, तो फिर तो मैं अपने हिसाब से कुछ भी तरह से करता जाऊं। तो ये दो बातों को थोड़ा हम और जाएंगे कि अगर हम खुले।
1: पहली बात तो अपने को समझ लें, जब ये फिट एकदम क्लियर हो जाता है कि आई एम द क्रिएटर, तो जैसे आई एम द क्रिएटर एवरीवन इज द क्रिएटर ना, इफ आई एम द क्रिएटर यू आर योर क्रिएटर, तो हर एक अपना अपना क्रिएटर हो गया ना, हम संकल्प हमारी रचना है। जब सबसे पहली बात हमें ये समझ में आ गई कि मैं अपने संकल्पों का रचयिता हूं, सो आई एम द क्रिएटर, तो जैसे आई एम द क्रिएटर इरिस्पेक्टिव ऑफ सिचुएशन आई एम द क्रिएटर ना। यस, सिचुएशन ट्रिगर तो होती ही है, डेफिनेटली है कि जब तक परिस्थिति आती नहीं, इट्स लाइक दिस स्टिम्यूलस रिस्पॉन्स, तो स्टिम्यूलस तो आएगा, वो व्यक्ति है, परिस्थिति है, वट एवर, स्टिम्यूलस रिस्पॉन्स, बिटवीन द टू फ्रीडम टू चूज द रिस्पॉन्स, ये बॉक्स तो आ रहा है ना बीच में। और इसीलिए देखा जाता है एक ही परिस्थिति में अलग अलग लोग हैं, लेकिन रिस्पॉन्स अलग अलग होगा। एक ही ट्रेजेडी में अलग अलग लोग हैं, रिस्पॉन्स अलग अलग होगा। मैं आपको एक बात बताती हूँ, एक कपल है जिनसे मिलना हुआ कुछ समय पहले, उनके 2 साल के बच्चे ने शरीर छोड़ा, 2-year-old child died, stimulus, the death of a child, young baby, बड़ी बात है ना, इससे बड़ी बात कहेंगे तो क्या हो सकती किसी के लिए। लेकिन अब दो लोग हैं, दोनों के सामने सेम स्टिम्यूलस, अब दोनों कौन है, पेरेंट्स है, तो दोनों के लिए स्टिम्यूलस जो आया है वो इक्वली हैवी है, इक्वली चैलेंजिंग है, दोनों का रिस्पॉन्स एक जैसा होना चाहिए। अगर स्टिम्यूलस रिस्पॉन्सिबल है तो दोनों का रिस्पॉन्स एक जैसा होना चाहिए। अब इसमें हमने देखा कि एक जो वाइफ है उसने उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि उसके लिए लॉस बड़ा नहीं है या उसको कुछ लग नहीं रहा कि मेरा बच्चा चला गया, ऑफकोर्स द लॉस इज देयर, लेकिन फिर सिचुएशन को तो एक्सेप्ट करना ही होगा, और जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे आप फिर आगे मूव ऑन करेंगे। तो एक ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है एंड मूव्ड ऑन, यू नो, चाहे वो अपने जॉब में ऑक्यूपाइड है या लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दिया है, स्वीकार कर लिया है कि ये मेरे साथ हुआ है। द फादर ऑफ द चाइल्ड एक्सेप्ट नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे अब खुश रहने का कोई हक नहीं है, दैट इज द रिस्पॉन्स, सेम स्टिम्यूलस, दो रिस्पॉन्स, शी सेज आई हैव अंडरस्टूड, नॉट इन माई कंट्रोल, आई हैव टू मूव अहेड, ही सेज आई विल नेवर बी हैप्पी, आई हैव नो राइट टू बी हैप्पी, सेम सिचुएशन डिफरेंट रिस्पॉन्स। और सिंपल लेवल पर ये तो फिर भी एक बहुत बड़ी बात है, आप एक ऑफिस में देख लो, हम सपोज 10 लोगों की एक टीम है, एक ही बॉस है, एक बॉस ने आज एक एक करके सबको बुलाया, सपोज हम सब ने एक गलती कर ली, एक एक को बुलाया, डांट दिया, एक ही रिस्पॉन्स होगा सबका, स्टिम्यूलस एक ही है, परिस्थिति एक ही है, रिस्पॉन्स हर एक का अलग अलग। तो जब हम हर सीन में ये देखते हैं कि सेम सिचुएशन अलग अलग लोग अलग अलग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो रिस्पॉन्स कौन क्रिएट करेगा,
0: हम खुद लोग, यस,
1: जितना भी हम दर्द में जाएंगे हम सब उस परिस्थिति को ब्लेम कर रहे हैं। लेट्स से बॉस से डांट पड़ी तो हम अपने अपनी सीट पर चले गए, किसी को 5 मिनट लगा ठीक होने में, किसी को 5 घंटे लग गए, किसी को तो 5 दिन लग जाते हैं ठीक होने में कि क्यों मुझे डांटा, अलग अलग रिस्पॉन्स, राइट। लेकिन जो 5 मिनट भी अपसेट है या 5 दिन भी अपसेट है, दोनों ब्लेम किसको करते हैं,
0: बॉस को।
1: अब दर्द का लेवल तो अलग अलग है, लेकिन दोनों ब्लेम किसको कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ये सोच रहे हैं कि मेरे दर्द का कारण देयर ना।

0: I have to understand, I am the creator, not the boss. The boss is the stimulus which has come from outside. So, aap koi bhi paristhiti mein dekh lo.
1: Achha, to matlab, baat ye aayi ki kis boss ne daanta, suppose ye example lete hain. Boss ne daanta, jaiz, matlab, ye baat ye kahi jaati hai. It will hit. Okay,
0: is not going to hit.
1: No. Whatever he's going to say comes to me, and of course I will not like. This is the first response. This is my response also. But how do I shield it then? See, if his reaction, matlab, whatever he has reacted, main usse affect na hu. Aise kaise ho sakta hai?
0: Nahi, ye baat nahi hai. आपने जो कहना है वो आपने किया. लेट्स से यू आर माई बॉस जस्ट नाउ. ओके, आपको जो कहना है आप कहेंगे. पहली बात, आप उस बेसिस पर कहेंगे जो आपकी स्टेट ऑफ माइंड है अभी. कभी कभी गलती तो इतनी होती है, लेकिन आपका मूड ठीक नहीं होगा, सो यू आर जस्ट गोइंग टू रिएक्ट. बट मुझे पहली बात ये समझना होगा कि आपका जो रिएक्शन है वो आपकी क्रिएशन है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपने जो इतना जोर जोर से शोर मचा दिया, दैट्स बिकॉज आप दर्द में हैं, बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन, नॉट बिकॉज यू हेट मी. द फर्स्ट थिंग वाई आई गो इन टू पेन इज इवन इन अ बॉस कोलीग, इवन अ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप. अब सपोज हस्बैंड पूरा दिन ऑफिस से आए, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स, अपने अपने कॉम्प्लेक्सेस, आके वाइफ को डांट दिया, जोर से कुछ कह दिया. तो वाइफ, इफ शी अंडरस्टैंड्स कि ही रिएक्टेड लाइक दिस बिकॉज ऑफ हिज ओन पेन, बिकॉज वो दर्द में है. शोर कौन मचाता?
1: जो दर्द में
0: होता है. लेकिन बुरा उसको इसलिए लगता है, मुझे ऐसा कहा, मतलब वो मुझसे नाराज है, मतलब वो मुझसे नफरत करते हैं, मतलब वो मुझसे प्यार नहीं करते. कंक्लूजन हो गया. तो आई गो इन टू पेन. वंस आई गो इन टू पेन, आई कांट अंडरस्टैंड दैट यू आर इन पेन.
1: अच्छा, और ये जो सारे थॉट्स ही मैंने क्रिएट किए थे,
0: ऑफकोर्स
1: उन्होंने जो कुछ किया वो तो किया है. क्या उनके करने से, उनके क्रिएशन से मैंने क्रिएट किया?
0: तो फिर हम वही कह रहे हैं ना बार बार. हाँ. कि सिचुएशन, सी द हस्बैंड इज देयर, द बॉस इज देयर, वट एवर समबडीज डेथ इज देयर, बट उसके सामने एक एक थॉट जो क्रिएट किया वो किसने क्रिएट किया?
1: बट अब वो सिचुएशन ही ऐसी है, तो थॉट में दूसरा कैसे क्रिएट? मैं ये थॉट क्रिएट
0: कह रहे हैं ना कि वही सिचुएशन में अलग अलग लोग अलग अलग थॉट्स क्रिएट करते हैं.
1: तो मैं बेस्ट रिस्पॉन्ड करूं.
0: दैट वॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी. सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सिचुएशंस अलग अलग आनी है. लाइफ इज दैट, अलग अलग सीन्स आने हैं. हर परिस्थिति में वॉट इज द बेस्ट रिस्पॉन्स फॉर मी?
1: एंड इफ दे स्टार्ट स्ट्रेट अवे ब्लेमिंग यू, यू आर रिस्पॉन्सिबल.
0: क्योंकि अगर मैं दर्द में चली गई, आपने मुझे गुस्सा किया, मैंने ये नहीं देखा कि मेरे पास कोई चॉइस है, मैंने दर्द क्रिएट किया, तो मैं किसको जिम्मेवार ठहराऊंगी? तो आपको जिम्मेवार ठहराऊंगी, तो आपसे नफरत करूंगी. फिर चेंज किसको होना चाहिए?
1: मुझे.
0: सी, दैट्स हाउ द होल विशेस साइकिल अगेन गोज एंड अगेन. आई कीप टॉकिंग अबाउट यू हैव टू चेंज एंड डोंट बॉदर दैट आई हैव टू चेंज, बिकॉज आई थॉट मैं जो दर्द क्रिएट किया उसका रिस्पॉन्सिबल कौन था?
1: वो व्यक्ति था.
0: इसीलिए हमने कहा बार बार भी ये सेंटेंस अगर ले लो ना, दैट यू आर द क्रिएटर, यू आर द क्रिएटर.
1: उन्होंने तो दे डिडंट बिहेव, ही डिडंट बिहेव राइटली विद मी.
0: या बट डिड आई रिस्पॉन्ड राइटली?
1: हाउ शुड आई रिस्पॉन्ड? ओके,
0: यस, अग्रीड. वी आर नॉट सेइंग कि किसी का बहुत जोर जोर से चिल्लाना या बहुत वो बहुत अच्छी बात है आपके लिए, लेकिन ठीक है, उन्होंने जो किया सो किया, अब मैंने क्या करना है? अटेंशन जब इस तरफ आएगी तभी तो.
1: तो उस तरफ तो आती नहीं है ये.
0: एंड फिर मैंने सोचा कि मैंने जो थॉट्स क्रिएट किए वो सारे इसलिए क्रिएट हो रहे थे क्योंकि उन्होंने गुस्सा किया,
1: स्टिम्युलेट कहीं हुए. ओह गॉड, यस.
0: तो फिर किसको चेंज होना चाहिए? उनको. इट्स वेरी डीप रूटेड, क्योंकि मैंने ये नहीं सोचा कि ये मैं क्रिएट कर रही हूं, ये मैं क्रिएट कर रही हूं. इफ आई कैन से उन्होंने ऐसा क्यों किया, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, कैन आई ऑल्सो क्रिएट अ थॉट, वो इतने दर्द में है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? वो मेरे से नाराज नहीं है, एक्चुअली वो कोई और पेन में है. लेट मी फाइंड आउट दैट. इट कुड बी अ डिफरेंट रिस्पॉन्स. इट कुड बी अ रिस्पॉन्स कि हाँ वो दर्द में है, लेकिन मैं अपना ध्यान रख लूं ताकि अपना ध्यान रख के मैं उनका भी ध्यान रख सकती हूँ. डिफरेंट रिस्पॉन्स.
1: बट ही इज शाउटिंग एट मी, यू नो, ही इज अक्यूजिंग मी, ही इज सेइंग सो मेनी बैड थिंग्स टू मी.
0: ही इज ओनली थ्रोइंग आउट हिज फ्रस्ट्रेशन एंड हिज पेन एंड आई consume that pain.
1: So I have to, you know, protect myself. See,
0: I consume and create. And we start with even watching the television, watching a movie. आप देखो, ये तो फिर भी हमारे रिश्तेदार है ना. What about वो जो एक्ट्रेस जो टीवी पर

0: परिस्थिति आएगी तभी तो रिस्पॉन्स क्रिएट होगा। लेट्स से मेरा बात करने का तरीका ठीक नहीं है, मैं जरा जोर जोर से चिल्लाकर आपसे बात करती हूँ, तो ये स्टिम्यूलस आपको आता है तभी तो आप दर्द क्रिएट करते हो। अब आपके अंदर ताकत नहीं है कि आप इस स्टिम्यूलस को फेस करो, तो आप स्टिम्यूलस को बोलते रहते हो चेंज चेंज चेंज, यू चेंज, यू आर द कॉज ऑफ माई पेन। तो आपकी ये सेंटेंस को मैं लेती हूँ और अब मैं अपने ऊपर वर्क करती हूँ कि एज अ सिचुएशन मैं अपने आप को कितना चेंज करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन मैं ये जिम्मेवारी नहीं लेती कि आपके दर्द का कारण मैं हूँ। दर्द तो फिर भी आपने क्रिएट किया। जब मुझे ये ध्यान में रहेगा तो मैं पहले खुद दर्द में नहीं जाती, और जब मैं दर्द में नहीं जाती तभी मैं अपने को देख पाती हूँ और तब चेंज करने का कोई मार्जिन है। जैसे रिलेशनशिप्स में दो लोग एक दूसरे को कहते रहते हैं आप मेरे दर्द का कारण हो, द अदर पर्सन डजंट एक्सेप्ट बिकॉज वो जैसे ही हर्ट हो जाता है तो ही डजंट एक्सेप्ट दैट आई एम द कॉज ऑफ एनीथिंग एंड देन ही डजंट चेंज। तो बेसिकली मुझे गिल्ट में नहीं जाना है ना, या ना कोई मुझे अपने इमोशन से मुझे यू नो बहा कर लेकर जा सकता है। आजकल होता क्या है ज्यादातर कि हम स्टेबल न होने के कारण दूसरों की इस तरह की स्टेटमेंट्स की वजह से हम बह जाते हैं, यू नो, और फिर दैट इज ऑल्सो नॉट स्टेबिलिटी। परिवर्तन, येस आई एम रेडी टू चेंज बट विथ स्टेबिलिटी, कि क्या परिवर्तन करना है मुझे।
1: एंड आई वॉन्ट टू चेंज,
0: आई वॉन्ट टू चेंज एंड आई हैव टू बी कम्फर्टेबल विद दैट चेंज। ये नहीं कि मैंने चेंज किया और फिर मैंने दर्द क्रिएट कर दिया। आई मीट सम सिस्टर्स, उनके हस्बैंड्स कहते हैं आफ्टर मैरिज डोंट वर्क एनीमोर, आपको जॉब नहीं करना है, आपको घर पे रहना है। और जब तक वो पत्नी नहीं मानती है पूरा घर दर्द में है, इन लॉज हस्बैंड, हमारी खुशी के लिए आपको जॉब छोड़नी है। चलो अब आपके पास चॉइस है कि या आपको जॉब करनी है या आपको जॉब छोड़नी है। आप ये समझकर कि आप उनको खुशी देंगे आप जॉब छोड़ते हैं, लेकिन आपने क्रिएट क्या किया वो जॉब छोड़ने के टाइम? अगर आपने ही दर्द क्रिएट कर दिया तो आप घर पर रहकर खुशी कैसे देंगे किसी को?
1: बिकॉज यू विल नेवर बी हैप्पी,
0: यू विल नेवर बी हैप्पी। सो इम्पोर्टेंट फर्स्ट इज दैट इन ऑर्डर टू गिव एनी एनर्जी आउट आई विल हैव टू क्रिएट इट, एंड देन यू हैव टू सी दीज सिस्टर्स 20 ईयर्स दे हैव बीन सिटिंग एट होम और 20 साल के बाद भी ये रिग्रेट कर रहे हैं अपना वो
1: डिसीजन।
0: तो फिर वो घर रहकर भी खुशी कहाँ हुई? फिर हम कहते हैं हमने उनके लिए इतना किया इतना किया इतना किया, वो अभी भी खुश नहीं है। वो क्यों खुश नहीं है? क्योंकि हमने किया किया किया बहुत कुछ लेकिन हम खुश नहीं थे। तो हम जब खुश नहीं थे तो वो खुश कैसे होंगे?
1: बहुत इम्पोर्टेंट बात है, वही ट्रूथ से शिवानी, कि जो भी हम कुछ कर रहे होते वही दूसरों के प्रति भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम निभा रहे हैं
0: विद स्टेबिलिटी,
1: हाँ, हैप्पीनेस, यू नो,
0: दैट इज स्टेबिलिटी। हम डूइंग लेवल पर निभा रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। कहेंगे मैं अपने इन लॉज का ध्यान रखती हूँ, मैं हस्बैंड में, बट मैं तो सारा दिन घूमती रहती हूँ, इतना कुछ करती हूँ, फीलिंग क्या है? कहते फिर भी कोई खुश नहीं होता। कैसे होगा अगर मैं दर्द में हूँ वो सब करने के टाइम? तो इसलिए डूइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी से पहले फीलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुश रहकर सब कुछ करना है, फिर आप कोई खुश हो सकता है, नहीं तो आप दर्द में तो सब लोग दर्द।
1: और सबसे बड़ी बात जो हमें ताकत मिल जाती है वो ये कि खुश रहना मेरा अपने हाथ में है, आई कैन क्रिएट इट एनी टाइम आई वॉन्ट। इनफैक्ट आप सबसे हम यही कहेंगे कि वो हैप्पीनेस के मूवमेंट्स को खुद क्रिएट करें, हैप्पीनेस के थॉट्स को खुद क्रिएट करें, और फिर हम काम, इनफैक्ट कोई भी काम शुरू करने से पहले, इनफैक्ट आई थिंक समवेयर वी शुड स्टार्ट विद दैट थॉट,
0: दैट्स व्हाई वी स्टार्ट विद 1 मिनट साइलेंस। आप दिन की शुरुआत मेडिटेशन से करें, बीच बीच में रुककर हमारा है कोई कार्य शुरू करने लगे हैं, पॉजिटिव थॉट, you know, happiness is not excitement, jump kar rahe hain sara din, happiness is positive thought, stable thought, I can do this, I will do this with stability, taki beech mein wo negative thought nahi aaye, hoga ya nahi hoga, mere se hoga, pata nahi kya,
1: वो पता नहीं वो कैसा फील करेंगे, उनको क्या फीलिंग होगी। वेरी ट्रू शिवानी, आज की इस बात ने कहीं ना कहीं हमें एम्पावर किया है और एक क्लैरिटी के साथ बात सामने आई है कि वेयर वी स्टैंड। थैंक यू सो मच। इस पूरी श्रृंखला के दौरान, पूरी बातचीत में कहीं कोई ऐसी बात लगती है जिसको आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, आपके लिए ये स्टिमुलस है, और अगर आपका कुछ रिस्पॉन्स है आपका हम स्वागत करते हैं, आप इस प्रोग्राम में जरूर शामिल हों, चाहे फोन द्वारा या फिर ईमेल पर संपर्क करें।
2: हमारे फोन नंबर है 9999344555, 9999344666, 9873666555, और हमारा ईमेल आईडी है
1: ओम शांति स्टूडियो एट bkmail.org। अब इतनी विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज इतना ही, आने वाली कड़ियों में और बातें करेंगे सेल्फ मैनेजमेंट से जुड़े हुए। अभी आपसे विदा लेते हैं, ओम शांति।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता है, या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना है, नीचे करना है। ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किस के पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: फुड़ेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: आपने जाना कि कैसे नरेंद्र अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी से मिले और धीरे धीरे कैसे वे गुरु के प्रति आकर्षित हुए, पर ये सहज ही नहीं हुआ।
1: श्री रामकृष्ण के साथ प्रथम भेंट के समय नरेंद्रनाथ ने श्री रामकृष्ण देव की जो सारी बातें सुनी थी एवं उनका जैसा विलक्षण व्यवहार देखा था, उसका वास्तविक तात्पर्य समझने में थोड़ा समय लगना आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि अवतारवाद में विश्वास नहीं रहने पर इन सब बातों और व्यवहारों का रहस्योद्घाटन संभव नहीं है। इधर नरेंद्र के युक्तिपरायण और ब्राह्म समाज के भाव में रंगे मन ने उन्हें अकस्मात तर्कहीन अवतारवाद को स्वीकार नहीं करने दिया।
0: श्री रामकृष्ण देव निश्चय ही सब कुछ जानते थे कि वे कौन हैं, नरेंद्र कौन है तथा नरेंद्र के साथ उनका संबंध कैसा है। वर्तमान परिस्थिति में उनकी पहली जरूरत थी नरेंद्रनाथ को भी उन सब विषयों से अवगत कराना। दक्षिणेश्वर में प्रथम मिलन के अवसर पर व्यक्त घोषणा के बाद भी वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। दूसरे दिन नरेंद्र की भय विहलता ने श्री रामकृष्ण देव में हास्य उत्पन्न कर दिया था, प्रयोजन की सिद्धि के मार्ग में भी बाधा खड़ी कर दी थी। तीसरे दिन श्री रामकृष्ण देव केवल अपनी पूर्व धारणा की सत्यता निर्धारित करने अग्रसर हुए थे ऐसा प्रतीत नहीं होता।
1: समाज में रहने के लिए नरेंद्रनाथ को जिस बाहरी युक्ति तर्क और आचार व्यवहार का मुखौटा धारण करना पड़ा था, उसका अतिक्रमण कर उनकी दैवी अवचेतना का सूत्रपात करना भी आवश्यक था। वस्तुतः परीक्षा के साथ साथ श्री रामकृष्ण देव ने उस दिन नरेंद्र के अंतर देवता को भी जगा दिया था। उस दिन से ही नरेंद्रनाथ के जीवन में अभूतपूर्व आध्यात्मिक विकास का सूत्रपात हुआ।
0: नरेंद्र के संशय का स्वरूप पूर्व भांति ही रह गया, यद्यपि अदृश्य रूप से उस संशय की शक्ति क्षीण होने लगी। होश रहते नरेंद्र विश्वास का लेप लगाकर युक्ति तर्क को दूर कर देने के लिए तैयार नहीं थे। गुरु की आवश्यकता को महसूस करने के बावजूद वे ऐसे किसी भी व्यक्ति को गुरु मानने को तैयार नहीं थे जिसकी बात को बिना तर्क विचार किए ग्रहण करना पड़े। उन्हें लगता था कि भगवान देह धारण कर आते हैं, ये बात विश्वास के योग्य नहीं है। हिंदू देवी देवताओं को स्वीकार करना दुर्बलता

0: कुसंस्कार मात्र है।
1: वस्तुतः उनके भीतर उन दिनों विश्वास अविश्वास की जैसे प्रचंड आंधी उठ रही थी। अधिकतर पथ गहन अंधकार के आवृत रहता है। इसी बीच अचानक बिजली चमक उठती है और वे रास्ते का पता पाकर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार वे चल रहे थे। चलने में कष्ट होता था, किंतु कष्ट के भय से योद्धा नरेंद्रनाथ असत्य के साथ या तर्कहीन लोक परंपरा के साथ कोई समझौता करने को सहमत नहीं थे, क्योंकि ये उनके स्वभाव के विपरीत था।
0: ऐसा स्वभाव लेकर नरेंद्र दक्षिणेश्वर आए थे, किंतु इस विचार प्रवणता के कारण श्री राम कृष्ण देव ने उन्हें दूर नहीं हटा दिया, बल्कि और अधिक स्नेह से अपनी गोद में बैठा लिया था। नरेंद्र भावी लोक शिक्षक जो थे, इसी वजह से मानव मन की प्रगति के पथ से उनका सूक्ष्माति सूक्ष्म परिचय आवश्यक था, नहीं तो विभिन्न प्रकृति के मनों का वे परिचालन कैसे करते।
1: फिर श्री रामकृष्ण देव जानते थे कि नरेंद्र अत्यंत ऊंचे स्तर का अधिकारी है, अतएव उनकी जिज्ञासा भी सामान्य व्यक्तियों की तुलना में कहीं अधिक होगी। इसी से वे प्रेम करके समझा बुझा कर धीरे धीरे उन्हें अध्यात्म के मार्ग पर ले चले थे। वे जानते थे कि नरेंद्र के जीवन में सफलता अनिवार्य है। वर्तमान संदेह संशय आदि छोटी मोटी बाधाएं उनकी आध्यात्मिकता के स्रोत को रोक नहीं सकती, बल्कि उनकी शक्ति और गति के वेग को और अधिक बढ़ा देंगी।
2: अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्।

0: योग्य शिष्य को पाकर श्री राम कृष्ण पहले दिन से ही नरेंद्र नाथ की ओर विशेष रूप से आकर्षित हो गए थे। परवर्ती काल में जब नरेंद्र उनसे समाधि प्राप्ति के लिए आग्रह ही नहीं बल्कि हठ करते थे तो उन्होंने कहा था,
1: क्यों तू तो उस समय कहता था कि तेरे माँ बाप हैं, उनकी सेवा करनी होगी, फिर अब क्यों समाधि प्राप्ति के लिए मचल रहा है?
2: उन्होंने नरेंद्र को एक कहानी कहकर समझाया।
1: देख, एक आदमी मरकर भूत हो गया। बहुत दिनों तक अकेला रहने के कारण वो साथी का अभाव अनुभव कर रहा था, अतः वो चारों ओर खोज करने लगा। कोई कहीं मरा है सुनते ही वहां दौड़कर पहुंच जाता और सोचता कि अब उसे साथी मिल जाएगा, किंतु वो देखता कि मृत व्यक्ति गंगाजल के स्पर्श से अथवा किसी अन्य उपाय से उद्धार पाकर चला गया है, इसीलिए वो दुखी होकर लौट आता और फिर पहले की तरह अकेले दिन गुजारने लगा। उस भूत को साथी नहीं मिला, मेरी भी वैसी ही अवस्था हुई। तुझे देखकर सोचा था कि अब मुझे एक साथी मिल गया है, पर तूने भी कह दिया कि मेरे माँ बाप हैं, फलतः मुझे कोई साथी नहीं मिला।
0: बीए की पढ़ाई के साथ ही नरेंद्र अपने पिता के आदेशानुसार सुप्रसिद्ध वकील निभाई चरण बसु के पास वकालत का काम सीखने लगे। नरेंद्र दक्षिणेश्वर में श्री राम कृष्ण के पास आते जाते हैं ये सभी को पता था, पर ये बात घर वालों को पसंद नहीं थी, पर कोई आपत्ति करने का साहस नहीं करता था।
2: बीए की परीक्षा के लिए ज्यादा दिन बाकी न थे। एक दिन शाम हो जाने के पश्चात नरेंद्र पाठ्य पुस्तक में मन लगाने का प्रयत्न कर रहे थे कि इसी समय उनके एक सहपाठी मित्र वहां आए और गंभीर भाव से नरेंद्र को नाना प्रकार के उपदेश देने लगे। उनका कहना था कि दर्शन शास्त्रों की चर्चा, साधु संग, धर्मालोचना आदि पागलपन छोड़ जिससे सांसारिक सुख सुविधा हो उसी के लिए प्रयत्न करना कर्तव्य है। कुछ दिनों से तथाकथित सांसारिक अनुभवी व्यक्तियों से नरेंद्र इसी प्रकार

0: वह उपदेश पाते आ रहे थे। अब प्रिय मित्र के मुंह से भी उसी प्रकार का उपदेश सुनकर उन्होंने व्यथित हृदय से अपनी मानसिक अशांति का वर्णन करते हुए कहा,
1: मैं समझता हूँ कि सन्यासी मानव जीवन का सर्वोच्च आदर्श होना चाहिए। नित्य परिवर्तनशील अनित्य संसार के पीछे सुख की कामना से इधर उधर दौड़ने की अपेक्षा उस अपरिवर्तनीय सत्यम शिवम सुंदरम को पाने के लिए प्राण प्रण से कोशिश करना 100 गुना श्रेष्ठ है।
0: वैराग्य के प्रेमी नरेंद्र जब उत्साह के साथ त्याग की महिमा का वर्णन करने लगे तो उनके मित्र से उनका तर्क आरंभ हो गया। थोड़ी देर में उत्तेजित होकर उनके मित्र ने कहा,
2: देखो नरेंद्र, तुम्हारी जिस प्रकार की बुद्धि और प्रतिभा थी उससे तुम जीवन में काफी उन्नति कर सकते थे, परंतु दक्षिणेश्वर के श्री राम कृष्ण देव ने तुम्हारी बुद्धि बिगाड़ दी, और यदि कुशल चाहते हो तो उस पागल का संग छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा।
0: नरेंद्र चुप रहे। ये मित्र श्री रामकृष्ण के बारे में नाना प्रकार के सवाल करने लगे। नरेंद्र उठकर कमरे में ही टहलने लगे। उनका मुखमंडल गंभीर हो उठा। थोड़ी देर बाद मौन भंग करके उन्होंने कहा,
1: भाई, तुम श्री रामकृष्ण देव को नहीं समझ रहे हो। अधिक क्या कहूँ, मैं स्वयं भी उन्हें पूरी तरह से नहीं समझ सका हूँ। फिर भी मैं उस सरल सौम्य महापुरुष को क्यों चाहता हूँ ये कह नहीं सकता।
0: मित्र दुखी होकर ये सोचकर चले गए कि रामकृष्ण की संगत से ही नरेंद्र की बुद्धि बिगड़ गई है।
3: नरेंद्रनाथ नाना प्रकार की विरुद्ध समालोचनाओं की परवाह न करते हुए अपने निर्दिष्ट पथ पर ही चलने लगे। बीए की परीक्षा समाप्त हुई। इस परीक्षा की तैयारी के लिए उन्हें कठोर मानसिक परिश्रम करना पड़ा था। थकावट को दूर करने के लिए वे बीच बीच में सहपाठी मित्रों के साथ संगीत हंसी आदि आमोद प्रमोद में सम्मिलित हो जाते थे। नरेंद्र को बाध्य होकर ही मित्रों के आनंदोत्सव में सम्मिलित होना पड़ता था, क्योंकि वे लोग एक तरह से जबरदस्ती ही उन्हें ले जाते थे।
0: एक दिन निमंत्रण पाकर नरेंद्र वराहनगर के किसी मित्र के यहाँ गए हुए थे। रात में जब वे मित्रों के साथ संगीत और हास परिहास में संलग्न थे और मग्न थे, इसी समय एक व्यक्ति ने वहाँ आकर उन्हें समाचार दिया कि नरेंद्रनाथ के पिता एकाएक हृदय रोग के कारण परलोक सिधार गए हैं। उज्ज्वल आलोकपूर्ण उस कमरे में नरेंद्रनाथ ने अपने चारों ओर अंधकार ही अंधकार देखा। जब वे घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके गौरव और गर्व के हिमालय सदृश पितृदेव की मृतदेह को घेर कर माता और भाई बहन रो रहे हैं। नरेंद्र का दृढ़ हृदय विचलित हो उठा। पितृशोक से अधीर होकर उनके भी आंसू बह निकले।
3: श्रीयुत विश्वनाथ दत्त उन दिनों भारत की राजधानी महानगर कलकत्ता के समाज में सुप्रसिद्ध थे। केवल यही नहीं, वकालत में भी उन्होंने ऐसा यश प्राप्त किया था कि उत्तर भारत के दूर दूर के नगरों में भी उन्हें कार्यवश जाना पड़ता था। उनकी आमदनी प्रचुर थी, किंतु स्वजनों के लालन पालन और मित्रों के साथ संगीत के उपभोग एवं भोजनादि में खर्च भी बहुत होता था। इसके अतिरिक्त समृद्ध परिवार के उपार्जनहीन मुखिया काली प्रसाद एक ओर जितने बेहिसाब खर्चीले थे, उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति का तो वे नाश करते ही थे, इसके अतिरिक्त विश्वनाथ के रुपयों के भी कुछ अंश हजम कर जाते।
0: अंतिम दिनों में विश्वनाथ बाबू अपने कलकत्ता स्थित अटर्नी के दफ्तर पर ध्यान नहीं दे पाते थे। किसी मित्र के ऊपर दफ्तर का भार सौंप देने के लिए वे विवश हो गए। ये सुयोग पाकर उस मित्र ने विश्वनाथ बाबू के नाम पर ऋण लेकर सारे रुपयों को निगल लिया। अतः विश्वनाथ बाबू के परिवार में एक बाहरी आडंबर के रहने पर भी आर्थिक और भौतिक परिस्थिति ऐसी ही हो गई थी कि किसी भी क्षण में परिवार संकटग्रस्त हो जा सकता था। तब विश्वनाथ बाबू की अपरिमित आमदनी एवं चाचा के बेहिसाब खर्चे के बावजूद बचे हुए सम्मिलित संपत्ति के थोड़े अंश का एकमात्र भरोसा था। इस संपत्ति पर भी बाद में विवाद उठ खड़ा हुआ। विश्वनाथ के जीवन की सांध बेला में सम्मिलित परिवार में मनमुटाव बढ़ जाने के कारण उन्हें अपना पैतृक निवास सील छोड़कर स्त्री पुत्र के साथ अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी।
3: इसके लिए उन्हें अस्थायी रूप से 7 नंबर भैरव विश्वास लेन में स्थित एक किराए के मकान में चले जाना पड़ा।

0: प्रकाशित हुआ। वे द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए थे, किंतु इसके कुछ ही दिनों बाद असमय ही वज्राघात हो गया।
1: विश्वनाथ बाबू के जीवन काल में ही संपत्ति के बंटवारे का मुकदमा शुरू हो गया था। इस समय अपने घर से बहिष्कृत नरेंद्रनाथ ने कुछ दिन और किराए के मकान में रहकर बाद में माता और भाई बहनों के लिए नानी के मकान में आश्रय की व्यवस्था की। मुकदमा लंबे अरसों तक चला था और अंत में नरेंद्र आदि ने अपना उचित हिस्सा प्राप्त किया था। भुवनेश्वरी देवी ने वस्तुतः पहले ही आपस में मेल मिलाप करने की चेष्टा की थी, क्योंकि मुकदमे में रुपयों का खर्च तो था ही, सबसे बढ़कर पारिवारिक कलह अंततः प्रकट हो अदालत में पहुंचे, ये सोचने में भी उन्हें कष्ट होता था।
0: किंतु दूसरा पक्ष, विशेषकर काली प्रसाद की पत्नी, किसी भी सम्मानजनक प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुई। मुख्य रूप से इन्हीं के अत्याचार से भुवनेश्वरी देवी को घर छोड़ना पड़ा था। इनकी पुत्रवधू यानी तारकनाथ की पत्नी पति की मृत्यु के बाद 1886 ईस्वी में इनके हाथ में पुतली की तरह नाचती थी। अतएव तारकनाथ जो प्रचुर धन रख गए थे, उसे उनकी विधवा पत्नी मुकदमे में खर्च कर अंत में सर्वस्वहीन हो गई, और बाद में वृद्धावस्था में उन्हें अपना पेट पालने के लिए स्वामी विवेकानंद के घर में रहना पड़ा था। तब अतीत के अत्याचार को भूलकर स्वामी जी ने उनकी उदारता पूर्वक सहायता की थी। मुकदमा जीतने के बाद विश्वनाथ बाबू का परिवार अपने घर लौट आया था, किंतु ये बहुत बाद की बात है। उन दिनों नरेंद्रनाथ ने गृह त्याग कर दिया था, अतएव संभवतः उनके भाग्य में फिर स्थायी रूप से पिता के घर में वास करना घटित नहीं हुआ।
1: इस समय श्रीमती भुवनेश्वरी देवी के सद्गुणों का जो अपूर्व विकास हुआ था, उसका उल्लेख करते हुए स्वामी शारदानंद ने लिखा है, पति की मृत्यु के अनंतर घनाभाव होने पर भी धैर्य, सहिष्णुता, तेजस्विता आदि गुण उनमें विशेष रूप से विकसित हो गए थे। जो उस समय के 1000 रूपये प्रतिमास खर्च करके गृहस्थी का प्रबंध करती थी, उन्हीं को अब 30 रूपये मासिक से अपना और अपने पुत्र पुत्रियों का निर्वाह करना पड़ता था, परंतु फिर भी उनके चेहरे पर कभी कोई चिंता की रेखा दिखाई नहीं पड़ी। अनेकों गुण संपन्न ज्येष्ठ पुत्र नरेंद्रनाथ अनेक प्रकार की चेष्टाएं करने पर भी धनोपार्जन का कोई साधन नहीं ढूंढ पा रहे थे, बल्कि गृहस्थी में वीतराग होकर निरंतर त्याग के मार्ग पर ही अग्रसर हो रहे थे। ऐसी विषम परिस्थिति उपस्थित होने पर भी श्रीमती भुवनेश्वरी देवी जिस प्रकार धीर और स्थिर भाव से अपने कर्तव्य का पालन कर रही थी, वो सोचकर उनके प्रति हृदय से भक्ति ही उत्पन्न होती है।
0: पति की मृत्यु के बाद भुवनेश्वरी देवी के कंधों पर गृहस्थी का भार आ पड़ा। वे जैसे तैसे घर चला रही थी, पर बच्चों से उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। नरेंद्रनाथ खुद ही नौकरी की तलाश कर रहे थे, पर घर के आर्थिक समस्याओं से वे अनभिज्ञ थे। उन्हें लगता था पिताजी के संचय से ही घर चल रहा है, परंतु एक दिन भुवनेश्वरी देवी ने पुत्र को घर का सही सही हाल बताया।
2: बेटा, तुझे एक बात कहनी है।
3: माँ, क्या बात है? पिताजी के जाने के बाद से ही देख रहा हूँ तुम एकदम खामोश रहने लगी हो। कहो ना, क्या बात है?
2: बेटा, आज तक मैंने तुझे इन सांसारिक झमेलों से दूर रखा था, पर अब तुझे सारी बातें खुलकर बतानी ही होगी।
3: हाँ हाँ, कहो।
2: तेरे पिता को गए कई महीने हो गए हैं। मेरे पास जो कुछ भी था, उसी से मैंने इस परिवार का खर्च उठाया, पर अब तो मेरा हाथ भी खाली हो गया है रे बेटा। कोई और उपाय न देखकर आज तुझे बता रही हूँ, अब तू ही कोई उपाय कर।
3: माँ, ये क्या कह रही हो? पिताजी का संचय?
2: संचय नहीं बेटा, भविष्य के लिए वे कुछ भी संचय नहीं कर पाए थे। वे कमाते तो बहुत थे, पर इतना बड़ा परिवार, इतने आश्रित जन, सभी को वो ही तो पालते थे, किसी के मांगने पर ना नहीं कहते थे।
3: माँ, इतने लोग रहते हैं इस घर में, क्या कोई भी मदद करने आगे नहीं आया?
2: नहीं बेटा, सभी ने हाथ खींच लिए। अब तो शायद ये घर ही छोड़ना पड़ेगा।
3: माँ, चिंता मत करो,

0: कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढ लूंगा, कोई नौकरी कर लूंगा। पर तुमने अभी तक ये बातें मुझसे कही क्यों नहीं? मैं तो निश्चिंत था कि पिताजी काफी पैसा छोड़ गए होंगे।
1: नहीं नहीं बेटा, तू पढ़ाई मत छोड़ना। तुझ पर मुझे पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा।
2: सांसारिक विषयों में उदासीन नरेंद्रनाथ एकाएक धनाभाव के कठोर आघात से चौंक पड़े। हमेशा से लाड़ प्यार में प्रचुरता के बीच में पले हुए भाई बहनों को दाने दाने के लिए तरसते देख उनका हृदय टूट गया। सुख संपत्ति के समय जो लोग परम मित्र थे, संसार के चिरकाल के नियमानुसार दुख विपत्ति के समय वे किनारा काट गए। तीक्ष्ण बुद्धि नरेंद्रनाथ सब कुछ समझ गए, पर उन्होंने सुधबुद्ध नहीं खोई। धैर्य के साथ वे निर्धनता की पीड़ा सहन करने लगे। मित्रों को पारिवारिक दुखद स्थिति की बात उन्होंने जानने न दी। एक ओर वे कानून की परीक्षा की तैयारी करने लगे और उधर काम धंधे की खोज भी करने लगे।
3: 3-4 महीने बीत गए, परंतु फिर भी किसी प्रकार की व्यवस्था न हो सकी। अन्न के अभाव से किसी किसी दिन घर वालों को आहार भी प्राप्त नहीं होता था। घर में खाद्य द्रव्य की कमी को गुप्त रूप से जानकर नरेंद्रनाथ माता से ये कहकर कि मेरा बाहर निमंत्रण है, घर में भोजन नहीं करते थे। वे एक प्रकार से उपवास करके अथवा बहुत थोड़ा ही खाकर दिन बिताने लगे। लगातार उपवास से उनका शरीर कृश और दुर्बल हो गया। यहाँ तक कि किसी किसी दिन प्रबल क्षुधा की ज्वाला से वे मूर्छित की तरह पड़े रहते थे।
2: कुछ सहृदय मित्र अवश्य ही इस विपत्ति में उनकी आर्थिक सहायता करने को उद्यत हुए थे, पर जन्म से आत्मनिर्भरशील नरेंद्रनाथ ने विनीत भाव से उन सहायताओं को ग्रहण करने से इनकार कर दिया। पेट की ज्वाला शांत करने के लिए वे भिक्षा स्वीकार कर लेंगे, ये सोचना तक उनके लिए असहाय था। ये मित्रगण नरेंद्रनाथ के गंभीर आत्मसम्मान को जानते थे, इसलिए प्रत्यक्ष रूप से सहायता करने में असमर्थ होकर वे बीच बीच में भोजन के लिए उन्हें निमंत्रण देते रहते थे।
3: वे किसी किसी दिन विशेष कार्य का बहाना कर निमंत्रण स्वीकार करने में अपनी असमर्थता प्रकट करते थे और किसी दिन दिखावटी प्रफुल्लता और आनंद के साथ आमोद प्रमोद में सम्मिलित रहते थे, परंतु उनसे भोजन के लिए अनुरोध करते ही उनका प्रफुल्ल मुखमंडल गंभीर हो उठता था और वे सोचते थे,
0: मेरे छोटे छोटे प्यारे भाई बहन भूखे हैं, माँ भूखी है, शायद सोच रही है मैं कुछ पैसों का इंतजाम करके घर लौटूंगा, और मैं कैसे यहां इस स्वादिष्ट भोजन। ना ना, मैं ऐसा नहीं कर सकता। नहीं भाई, आज और देर नहीं कर सकता, बहुत जरूरी काम है, जाता हूं, भोजन फिर कभी।
2: भाग्य चक्र के सहसा घूम जाने से जिन्हें किशोर और यौवन के संधिकाल में पितृहीन होकर खाली हाथ परिवार वालों के भरण पोषण का भार अपने कंधे पर लेकर जीवन संग्राम में अग्रसर होना पड़ा है, वे ही नरेंद्रनाथ की वर्तमान स्थिति का अनुमान कर सकते हैं। नरेंद्र पागलों जैसे सड़कों पर घूम घूम कर नौकरी की तलाश कर रहे थे, पर हर दिन निराशा ही हाथ लगती, वे सूने हाथ घर लौटते।
0: माँ, माँ।
1: आ गया बेटा, कोई बात बनी? और ये क्या, तू इस हालत में बाहर चला गया था? गंदे कपड़े, नंगे पांव, उलझे बाल। बेटा, तुझे इस हालत में देखकर नौकरी कौन देगा?
0: मैं हार मान गया माँ, कितने दिनों से घूम रहा हूँ, एक छोटी मोटी नौकरी भी नहीं मिली।
1: अपने पिता के दोस्तों से मिला था, क्या कहा उन्होंने?
0: माँ, मैं भाग्य में विश्वास नहीं करता था, लगता था वो कायरता है, मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास था, पर अब मेरा इस दुनिया के लोगों पर से भरोसा उठता जा रहा है। माँ, मैं पिताजी के करीबी दोस्तों से भी मिल चुका हूँ, वे सब हमारे सुख दुख के साथी थे, पर दुख के दिनों में सबने मुंह फेर लिया, उन्हें लग रहा था शायद मैं उनसे पैसे की भीख मांगूंगा, एक ने भी सीधे मुंह बात नहीं की।

0: इन्हीं दोस्तों पर तेरे पिताजी जान लुटाते थे, उनकी मदद करते थे, कितनों को तो कारोबार शुरू करने के लिए पैसे भी दिए थे। कहते थे ये दोस्त है मेरे, उनके बुरे दिनों में अगर मैं इनके साथ खड़ा न हूँ तो उनकी मदद कौन करेगा।
1: माँ, शायद बुरे दिनों में ही लोगों के असली चरित्र का पता चलता है। खैर छोड़ो, उन्हें उनकी करने की सजा जरूर मिलेगी। तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बुरा समय ज्यादा दिन नहीं रहता माँ।
0: भगवान करे ऐसा ही हो। चल आ, थोड़ा सा कुछ खा ले।
1: सबने खाना खा लिया?
0: हाँ।
1: तुमने खाया?
0: कैसी बातें करता है, तुझे खिलाए बिना मैं भला खा सकती हूँ क्या? चल खा ले, शाम हो चली है।

0: अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम आपसे मिलते रहेंगे अपने इस कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद में।
1: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: नो स्मोकिंग जोन जैसे बन गए हर जगह, वैसे नो एंगर जोन। इधर गुस्सा नहीं कर सकते, आया है तो बाहर जाओ, कर क्या। यहां नहीं कर सकते, यहां नहीं कर सकते, क्यों? स्मोकिंग के लिए क्यों अलग जगह बनाई? क्यों नहीं कर सकते सबके बीच? क्योंकि कर आप रहे हैं, नुकसान हमारा हो रहा है। इसी तरह गुस्सा कर आप रहे हैं सारे वातावरण में और सब लोगों का नुकसान हो रहा है, तो आप जाइए, वहां वो कमरा है, उधर गुस्सा करिए, वापस आइए।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
3: आला आला आला।

0: आवाज सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले रेडिओ स्टेशन ऐकत रहा 107.8 FM। आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
1: आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को सुनीता सिंह का नमस्कार। दोस्तों, भूख जब उभर आती है गालों पर गड्ढे बनकर, प्यास जब सिमट आती है अधरों पर पपड़ी बनकर, दर्द जब उभर आता है आंखों में आंसू बनकर, विद्रोह बिखर जाता है नारों की शक्ल में दीवारों पर, तब प्रतिरोध आरंभ होता है आंदोलन बनकर। एक ऐसा ही आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह। बिहार का मोतिहारी जिला पूर्व में प्रसिद्ध रियासत बेतिया के अंतर्गत आता था। बिहार का ये क्षेत्र किसी जमाने में नील की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध था। 18वीं शताब्दी से अंग्रेज नीलवरों ने यहां कब्जा कर रखा था, जो किसानों

पर नील की खेती करने हेतु जोर जबरदस्ती करते थे। इस नील को नीलभर अंग्रेज 6 गुना अधिक दाम पर इंग्लैंड में बेचा करते थे, लेकिन किसानों को कुछ भी नहीं मिलता था। सन 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन था। बिहार के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने वहां खुले अधिवेशन में बिहार के किसानों की दुर्दशा का वर्णन किया। गांधी जी ने ये पूरा बयान सुनकर चंपारण जाने का फैसला किया। इस बात की खबर अंग्रेज अधिकारियों को भी मिल गई। उन्होंने रैयत को दबाने के लिए जोर डाला कि खबरदार, कोई भी कचहरी जाकर नालिश करने की हिम्मत न करे। कुछ लोग गए भी तो कोठी का सिपाही उनको कचहरी से पकड़ लाता और खूब पीटता। पूरे इलाके में अंग्रेजों का दबदबा इतना अधिक था कि जिले के हाकिम अफसरों से अपने हित में कोई भी कानून पास करवा लेते थे। गांधी जी जब चंपारण के रास्ते पहले मुजफ्फरपुर पहुंचे, तब सैकड़ों किसान वहां पहुंच गए और उन्होंने अपना दुखड़ा उनको सुनाना शुरू कर दिया। वहां नीलवरों की संस्था के मंत्री और डिवीजनल कमिश्नर ने गांधी जी को चंपारण जाने से मना किया। उनसे कहा कि आपके प्रवास से वहां अशांति फैल सकती है, सरकार खुद किसानों की समस्याओं की ओर ध्यान दे रही है, बस सर्वे सेटलमेंट की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। कमिश्नर ने यह भी कहा कि आप अगर वहां जाकर हलचल मचाएंगे तो अच्छा नहीं होगा, बलवा फसाद की आशंका है। जब गांधी जी ने यह सब सुना तो उनका चंपारण जाने का इरादा और भी पक्का हो गया। वे निकल पड़े दीन दुखियों की एक अनजानी दुनिया की ओर उनके संबल के लिए। मन में दृढ़ संकल्प हो चला था फिरंगी शासन की विदाई का।

10 अप्रैल सन 1916 जब गांधी जी चंपारण पहुंचे तो हजारों की भीड़ उनके साथ थी। रैयत उनको अपना दुख दर्द सुनाने को आतुर थी। जो कचहरी जाने से डरते थे वे भी बेखौफ उनके साथ हो लिए। उन्हें लगा कि अब उनके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। आखिर गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें अदालत में पेश किया गया। उस दिन वहां इतनी भीड़ हो गई कि अदालत के दरवाजे टूट गए। गांधी जी ने अपना बयान दिया और 3-4 दिन में गांधी जी की रिहाई हो गई। उनको सरकार ने ये अनुमति दे दी कि वे अपनी तरह से जांच कर सकते हैं। गांधी जी ने इसके लिए प्रजातांत्रिक तरीका अपनाया। उन्होंने हरेक किसान से कहा कि आपकी जो भी तकलीफ हो, आपके साथ जो भी अन्याय हुआ है उसे आप लिख कर दें। जो लिख नहीं सकते वे अपना बयान बोलकर लिखवा दें। बयान लिखने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे कुशल वकील तथा अन्य वकील साथियों की टीम बनाई गई। सुबह से रात तक तफसील से बयान

देने का काम जारी रहा। कुछ ही दिनों में 30-35 हजार से अधिक लोगों के बयान एकत्रित हो गए। कभी गांधीजी गांव में जाते, कभी किसी शिकायत विशेष की जांच करने अन्य लोगों को भेज देते। पूरे इलाके में हलचल सी मच गई। स्थानीय अफसर घबराने लगे। लोगों को लगा कि अंग्रेजी राज उठा जा रहा है। जनता समझने लगी कि गांधी जी ही सबसे बड़े अफसर हैं जिनके सामने कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट की भी शिकायत की जा सकती है। घबराकर अफसरों ने प्रांतीय सरकार के पास रिपोर्ट भेजी। प्रांतीय सरकार ने गांधी जी को अपने एक मेंबर से भेंट करने के लिए कहा। गांधी जी ने उनसे पटना में भेंट की। अब तक जितनी शिकायतें मिली थीं, उनका पूरा ब्यौरा बनाकर उन्हें सौंप दिया। सरकारी मेंबर ने उसे सरकार के पास भेजा। उस पर विचार होने लगा। बयान दर्ज करने वाले लोगों को भी अत्याचारों की ऐसी दर्दनाक कहानियां मालूम हुई जिनके बारे में सोचा भी नहीं गया था। गांधी जी की कार्यशैली एकदम अलग थी। जनता के मन में से सरकार, पुलिस और नीलवरों का खौफ हट गया। वे निडर होकर अपने पक्ष को रख रहे थे और अपने दुख को साझा कर रहे थे।

सरकार ने इस रिपोर्ट पर कार्यवाही की। कमिश्नर ने गांधी जी को रांची बुलाया। सरकारी पत्र से आशय ये निकल रहा था कि चंपारण में गांधी जी के रहने से काफी अराजकता फैल रही है, इसलिए उन्हें वहां से हटा लिया जाए। साथ ही कार्यकर्ता सोच रहे थे कि या तो गांधी जी गिरफ्तार हो जाएंगे या उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। गांधी जी ने सब कुछ सोचकर पूरे निर्देश दिए। रैयतों के बयान के रूप में सारे सबूत हाथ में आ गए थे। उनको सुरक्षित करने के लिए सबकी नकल बनाकर गुप्त स्थान पर रख दिया। गांधी जी से विचार विमर्श 3 दिनों तक चलता रहा। अंत में गवर्नर ने एक कमीशन मुकर्रर किया। सरकारी अधिकारी, नीलवर अंग्रेज और जमींदारों के प्रतिनिधि इस कमीशन में थे। कमीशन ने सरकारी अफसर, नीलवर अंग्रेज और किसानों से ली गई जानकारी के कागज पत्रों की जांच की। कमीशन की नियुक्ति हो जाने पर गांधी जी की आज्ञानुसार डॉ राजेंद्र प्रसाद ने सारे सबूत और कागज देखकर एक बयान तैयार किया। कमीशन के अध्यक्ष सर फ्रैंक स्लाई का मन था कि सब कुछ सर्वसम्मति से तय हो। मुख्य समस्या थी 2 और 3 कठिया प्रथा। गांधी जी ने नीलवरों से बात की, लगान की दरें कम की, किसानों से जबरन नकद वसूली में से 25% वापस किया जाए, हजारों लोगों को पट्टे दिए गए थे उन पर दीवानी मुकदमा दायर करना असंभव था, इसलिए सुलह का मंत्र अपनाया गया। सर्वसम्मति से तैयार हुई रिपोर्ट को सरकार ने मान लिया। एक कानून बना जिसमें 3 कठिया प्रथा समाप्त कर दी गई। रैयतों का इजाफा घटा दिया। बेतिया राज्य कोर्ट ऑफ वार्ड्स ने अंग्रेज नीलवरों से रुपए वसूल करके रैयतों के कर्जों के रुपए लौटा दिए। यद्यपि ये रैयत की मांग से कम थे, फिर भी इस सारे आंदोलन का सबसे बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि चंपारण से नीलवर जमींदारों का खौफ समाप्त हो गया। अब उनमें वो शक्ति नहीं रह गई कि वो किसानों पर जुल्म कर सकें। जनता भी जागरूक हो गई। उनमें निडरता के साथ अन्याय का सामना करने का सामर्थ्य आ गया। 3-4 साल में सारे नीलवर अपनी कोठियां और जमीन बेचकर वहां से चले गए। उनकी जमीनें रैयत के हाथ में आ गईं। इस आंदोलन में जात पात का भेद नहीं था, सभी लोग एकजुट हो गए थे। जिंदगी में सादापन आया। इसके साथ ही गांधी जी ने चंपारण में 3 स्कूल खोले और शिक्षा के प्रसार की व्यवस्था भी की। चंपारण सत्याग्रह कांतिहीन विवशता के उस समय में जिंदगी के हाशिए पर आशा की किरण से लिखी गई साहस की सशक्त कविता की तरह था। भारत की धरती पर ये गांधी जी का पहला बड़ा ऐसा आंदोलन था जिसने ब्रिटिश सत्ता को खुली ललकार दी थी। सन 1917 में हुए इस आंदोलन ने बिहार में भी जन जागृति का संचार किया और नवोन्मेष के लिए ऊर्जा प्रदान की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया श्री राजेश प्रसाद मिश्र ने, समन्वय किया संजय यादव ने और इसे प्रस्तुत किया सुनीता सिंह ने।

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: ओम शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज फिर आप सबका स्वागत। आपको बता दें, एक बार फिर याद दिला दें कि लाइफ स्किल्स इस श्रृंखला में हम और आप साथ साथ हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी ऐसी स्किल्स हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं अपने जीवन की जो शायद हम उन टेक्निक्स को नहीं सीख पाए और इसीलिए आज हम दुख, दर्द, भय, इन सारे सर्कमस्टांसेस में इन सारे अनुभवों को प्राप्त कर रहे हैं। अगर याद हो पिछली कड़ी में हमने बात की थी कि जो भी हम लोगों के बारे में सोचते हैं वो उन तक हमारे बोलने से पहले ही पहुंच रहा होता है। एक और बात जो हमने जानी थी कि जब भी हम किसी की कमजोरी देखते हैं धीरे धीरे वो कमजोरी हमारे अंदर आनी शुरू हो जाती है, उसकी टेक्निक को समझा था। इसीलिए अगर हम पॉजिटिविटीज देखें, हर एक की विशेषता देखें तो वो मुझ में आनी शुरू हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि कितनी तरह के विचार होते हैं, कौन से ऐसे थॉट्स हैं जो हम क्रिएट करते हैं और फिर उनका हम पर क्या असर होता है। हमारे साथ हैं साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी, दोनों का स्वागत। डॉक्टर पटेल, एक बात तो हम फटाफट रिवाइंड जो हमने अभी शुरू में भी कही है कि किसी की विशेषता देखते हैं या नेगेटिविटी देखते हैं वो धीरे धीरे हम पर आ रही है। अब हमने ये भी आपकी बात मान ली कि हम थॉट क्रिएट कर रहे हैं और फिर फीलिंग जो है वो क्रिएट होती है। अब कौन से ऐसे थॉट्स हैं जो ज्यादा हावी होते हैं, कितनी तरह के हम, क्योंकि आई थिंक थॉट्स तो मतलब
1: थॉट्स हावी होते हैं। अगेन हावी मेरे पे कौन सी चीज होगी जो ऐसे सी चेंज ट्राई एंड बी अवेयर, हावी नहीं होते हैं। कौन से ऐसे थॉट्स हैं जो हम ज्यादा क्रिएट करते हैं,
0: ज्यादा उनका जो फीलिंग्स है,
1: हाँ,
0: जो ज्यादा स्ट्रांग
1: जो हम क्रिएट करते हैं,
0: तो कौन से ऐसे थॉट्स हैं जो मैं ज्यादा क्रिएट करता हूँ और फिर उनका मुझ पर क्या असर होता है।
2: आपने जो पहले पूछा कि कितने प्रकार के थॉट्स होते हैं, इस पर मैंने थोड़ा चिंतन किया है और इसलिए गहराई से सोचा कि जब ज्यादा प्रकार के थॉट्स के बारे में हमें पता चलेगा तो हम जागृत होंगे, कॉन्शियस होंगे। कई लोग ये भी कहते हैं चार प्रकार के थॉट्स होते हैं, मैंने थोड़ा गहराई से सोचा और कुल प्रकार से क्लासिफाई किया कि सात प्रकार के विचार हैं।
0: सेवन
2: टाइप्स ऑफ थॉट्स। एक तो है टॉक्सिक थॉट्स,
0: टॉक्सिक,
2: हाँ, जो कहेंगे जहरीले विचार,
0: हाँ,
2: जैसे ना टॉक्सिन्स जो क्रिएट करते हैं
0: तो बॉडी में टॉक्सिन्स की बात,
2: थॉट्स भी टॉक्सिन्स क्रिएट करते हैं।
0: ओके,
2: जैसे क्रोध के विचार, फिर भय के विचार, बदला लेने के विचार, ये जो सब है, जेलसी,
0: मतलब जो ज्यादा एनर्जी से भी भरे होते हैं, मतलब इफ वी रियली लुक एट
2: एनर्जी
0: उनमें, हाँ, वो काफी मात्रा जो है कंटेंट ज्यादा होता है,
2: इमोशंस है और वो जो केमिकल्स रिलीज करते हैं वो भी टॉक्सिक केमिकल्स
0: है,
2: एड्रिनालिन, नॉरएड्रिनालिन और भी ऐसे कोर्टिसोल रिलीज करते हैं, तो सब सच में टॉक्सिक केमिकल्स है। भी दूसरे है नेगेटिव थॉट्स, वो उससे भले कम उसकी मात्रा है लेकिन फिर भी वो नेगेटिव थॉट्स है कि असफलता के विचार, बीमारी के विचार, यह जो सब है किसके अवगुण देखना, यह सब नेगेटिव विचार है। तीसरे है वेस्ट थॉट्स, वो भले नेगेटिव भी नहीं है लेकिन फिर भी वो वेस्ट है,
0: अननेसेसरी है,
2: हाँ, उस समय जरूरी नहीं है। आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं और उस समय उनको विचार आ रहा है कि खेलने जाना है, भी खेलना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, पढ़ते समय वो वेस्ट थॉट है, ऐसे उसको कहेंगे वेस्ट थॉट। चौथे हैं नेसेसरी थॉट्स, कि कहीं काम के विचार भी करने पड़ते हैं, आपको भोजन बनाना है तो कार्य करना है, उसके जो विचार है वह काम के विचार है। पांचवे कहेंगे राइट थॉट्स, कहीं पॉजिटिव थिंकिंग को मुश्किल समझते हैं परंतु कम से कम राइट थॉट्स तो होने ही चाहिए, कि जो परिस्थिति जैसी है वैसी देखो,
0: अच्छा उसको बड़ा चढ़ा के
2: नहीं देखो, हाँ,
0: मतलब तो जो सही सिचुएशन है, स्थिति का आंकलन हो गया,
2: हाँ, वो जैसी है वैसी देखो, है ना। वास्तव में हम अलग अलग मिरर यूज करते, परिस्थिति को हम विकृत रूप दे देते उन मिरर्स के द्वारा।

0: छठे है पॉजिटिव थॉट्स कि भाई वो सकारात्मक सोच, और सातवां है एलिवेटेड थॉट्स।
1: ओके,
0: वो पॉजिटिव से भी हायर है क्योंकि उसके अंदर एक सचमुच पॉजिटिव एनर्जी है, ज्ञान के विचार, आध्यात्मिकता के विचार, वह है एलिवेटेड थॉट्स। तो ये सात प्रकार के विचारों को अगर अच्छे से हम समझे और फिर ये डिसाइड करें कि मेरे कौन से विचार चल रहे हैं, तो हम विचारों पर कंट्रोल प्राप्त कर सकेंगे।
1: पहले अवेयरनेस और उसके बाद इट्स क्वाइट अ स्टडी, काफी पढ़ना है, लेकिन हमने कहा कि हम शायद लाइफ स्किल्स को नहीं जानते, तो पहला ये है, आपने कहा कि टॉक्सिक से लेकर एलिवेटेड
0: थॉट्स तक
1: ये पूरी जर्नी है। तो मेरे को यही पूछना है, सिचुएशन डिपेंडेंट है, क्योंकि अभी तक हमारे विचारों का जो सृजन, चाहे मैं ही कर रही थी, वो सिचुएशन डिपेंडेंट था?
2: नहीं, अभी तक भी हम ही क्रिएट कर रहे थे, हम सोच रहे थे कि वो सिचुएशन डिपेंडेंट है। सी, अभी इवन टिल डेट इट वाज जस्ट दैट आई वाज डूइंग इट अनअवेयर, नाउ आई एम गोइंग टू बी अवेयर कि आई एम क्रिएटिंग द थॉट्स। क्रिएट तो पहले भी हम ही कर रहे थे, लेकिन पहले हम रिस्पॉन्सिबल परिस्थिति को ठहरा रहे थे, अब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पढ़ लेंगे कि आई हैव अ चॉइस कि मुझे कौन से थॉट्स क्रिएट करने हैं।
1: डॉक्टर पटेल, ये सात तरह के जो थॉट्स, हमने कहा कि हर थॉट की पावर होती है। पिछली बार भी मुझे याद है हमने बात की थी कि फैमिली ऑफ थॉट्स, यू नो, एक तरह के थॉट्स, दूसरी तरफ एक तरह के थॉट्स। अब ये सातों तरह के थॉट्स उतने ही पावरफुल है?
0: नहीं, ऐसे देखेंगे तो टॉक्सिक थॉट सबसे पावरफुल है, नेगेटिव एस्पेक्ट में देखिए, और एलिवेटेड थॉट सबसे पावरफुल है पॉजिटिव इफेक्ट में।
1: एलिवेटेड मतलब हर थॉट का एक एग्जाम्पल हम
0: देते
1: हैं, हम शुरू करते हैं टॉक्सिक थॉट से।
0: बड़ा सिंपल है कि भाई क्रोध के विचार है ना, भय के विचार, कोई व्यक्ति डर जाए, यहां तक कि अगर किसी को चूहे का डर लगता है, देखते हैं कि न्यूज़पेपर में भी चूहा देखा तो जंप लगाएगा और सारे बॉडी के अंदर वो केमिकल्स रिलीज होते हैं,
1: डर लग जाता है।
0: ब्रेन
1: अच्छा, जो आपकी फिजिकल बॉडी को इम्पैक्ट डालेंगे
0: वो सब, और नेगेटिव इम्पैक्ट, वो सचमुच पॉइजन्स है। जैसे कॉर्टिसोल एक पॉइजन है सचमुच, जो ब्रेन को भी डैमेज करता है, हार्ट को डैमेज करता है, और ये टॉक्सिक थॉट से वो कॉर्टिसोल की मात्रा बहुत बढ़ जाती है।
1: डॉक्टर साहब, अब अगर ऐसी सिचुएशन है कि बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, ठीक है, और मैं क्रिएट कर रही हूं ये थॉट कि बच्चा नहीं पढ़ रहा है, और धीरे धीरे वो एंग्जाइटी एंगर में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या वो स्ट्रेट अवे टॉक्सिक बनता है या कुछ कुछ उनसे गुजरता हुआ जाता है?
0: एक तो ये ठीक है कि वो स्लोली बनेगा, कि धीरे धीरे आपको भी बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो अंदर में थोड़ा इरिटेशन आया, पहले तो अच्छा नहीं लगा, अपने फोर्स किया कि पढ़ ठीक से, फिर भी वो नहीं पढ़ रहा है तो और उसकी मात्रा बढ़ी, लेकिन ये ऑल ऑफ अ सडन भी बढ़ सकता है। एक रियल लाइफ एग्जांपल है कि एक माँ बच्चे को पढ़ा रही थी और बाजू में सब्जी काट रही थी और बच्चा नहीं पढ़ रहा था, वो मिस्टेक एक ही जगह पर अटक के मिस्टेक कर रहा था, तो माँ ने कहा पढ़ ठीक से, फिर से नहीं कहा, फिर से गुस्सा किया, ठीक से पढ़ नहीं पढ़ रहा है, फिर से वही मिस्टेक की, तो उसे चाकू उसको पेट में डाला। रियल एग्जाम्पल, दिस इज एन टॉक्सिक आउटवर्ड इफेक्ट, पर सदैव नहीं होता है, परंतु अंदर में केमिकल्स तो रिलीज होते ही है टॉक्सिक थॉट्स के कारण।
1: पर ये एक्शन इट्स सच अ हार्मफुल,
2: हर थॉट हमारी बॉडी पर इफेक्ट कर रहा है, हर थॉट हमारा बिहेवियर वाइज एनर्जी एक्शन में आ रही है। अब किसी चीज में, जैसे इस पर्टिकुलर केस में, वो इतनी पावरफुल थॉट, यू नो, गुस्से की क्रिएट हुई, क्यों, कई बार आप हाथ नहीं उठा दोगे बच्चे पर, हाथ उठा सकते हो ना, चलो आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है कि इसको चाकू ही मार दिया, पर वो तो सिर्फ इसलिए था क्योंकि हाथ में उस टाइम चाकू था, लेकिन थप्पड़ तो हम मार देते हैं ऐसे, वो कहना नहीं मान रहा, भाई तुमको एक बार समझाया, दो बार, तीन बार, चार बार, हाथ उठ जाता है, बस इस बार बाई चांस हाथ में चाकू था, बट इट्स ओनली अ क्वेश्चन ऑफ कि माई थॉट्स वर सो पावरफुल, नेगेटिव एनर्जी इतनी क्रिएट हो गई कि मेरा अपने हाथ पर, मेरा अपने वर्ड्स पर, मेरा अपने एक्शंस पर कोई कंट्रोल नहीं रहा, क्योंकि लॉजिक वर्क करना बंद कर देगी ना, वो नेगेटिव एनर्जी इतनी मैंने क्रिएट
1: कर दी, वेनम था एक्चुअली, इतना आपने कहा कि
0: पॉइजन
1: है, और वो पॉइजन ही फिर निकलना
2: चाहिए, एंड वो कई बार ये भी हो सकता है कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ना हुआ, इट हैज बीन हैपनिंग, यू नो, बहुत पेंट अप, वो ये भी हो सकता है कि उस बच्चे की वजह से ना हो,
1: किसी और का गुस्सा,
2: किसी और बात से आप बहुत परेशान है, हो सकता है कोई और हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप को लेकर आप बहुत परेशान है, एंड योर continuously thinking on it, ये सिर्फ एक stimulus बन रहा है आपके गुस्से को बाहर निकालने के लिए, but आप वैसे ही बहुत परेशान हैं, और ये फिर आपको लगता है ये आपको और इरिटेट कर रहा है, यू नो वट वी थेट कि वो मुझे इरिटेट कर रहा है।

0: एंड तब आपका हाथ उठ गया, अब आपके हाथ में चाकू था. दीज आर सिचुएशन जब हमें हम देखते हैं कि चाकू लग गया, कितनी बड़ी गलती हो गई. डेफिनेटली, लेकिन अंदर भी बहुत सारी गलतियां हो रही है. नॉट नेसेसरी दे आर ऑल कमिंग आउट लाइक दिस. बाहर आ गया तो बहुत बड़ा डैमेज हो गया, लेकिन अंदर भी बहुत बड़ा डैमेज क्रिएट हो रहा है. दैट वी हैव टू सी कि हर सिचुएशन में कौन सी मेरी थॉट्स क्रिएट हो रही हैं. एंड इसीलिए जो हमने पिछली बार डिस्कस किया था, इश्यूज को रिजोल्व करते जाए. कब कौन सा इश्यू आपके नेक्स्ट इश्यू पर
1: हावी हो जाए.
0: दैट इज वेयर बहुत बार आप देखो, अगर ऑफिस में मेरा आज दिन अच्छा नहीं बीता, मैं घर पर आकर बच्चों को छोटी छोटी बातों के लिए डांटूंगी. अगर आज दिन बहुत अच्छा था ऑफिस में, आई वॉज वेरी रिलैक्स्ड, वेरी पीसफुल, घर पे बच्चा कोई बड़ी भी गलती कर देगा, आई विल से इट्स ओके, ना बच्चे ही हैं, करते हैं. इट लॉट डिपेंड्स ऑन माई प्रीवियस इश्यूज एंड माई प्रीवियस थॉट्स दैट आई वॉज कैरिंग विद मी. इट जस्ट कम्स आउट इन दिस. सपोज बॉस मेरे को डांटता रहता है, कोलीग्स मेरे साथ ठीक नहीं है, मैं उनको कुछ नहीं कह पा रही, तो वो रिजेंटमेंट, वो गुस्सा भरता गया. फाइनली किस पे निकलेगा? उन पर निकलेगा जिनके ऊपर मेरे पास पावर है, क्योंकि उस इश्यू को वहां नहीं रिजोल्व किया, उसका इफेक्ट फिर यहां आया. बहुत सारी मदर्स आज कहती है हस्बैंड इतना चिल्लाता है, मदर इन लॉ इतना चिल्लाती है. फाइनली वो किस पर निकलता है? छोटे छोटे बच्चों पर. वर्बल अब्यूज नहीं, फिजिकल अब्यूज. वो हाथ उठा सकते हैं छोटे छोटे बच्चों पर. क्यों? मदर इन लॉ को कुछ नहीं कह पाए, हस्बैंड को कुछ नहीं कह पाए, उस पर निकाल दिया. दिस इज वेयर दैट चेन ऑफ थॉट्स आपके फिर एक्शंस में आने लग जाती है. तो टॉक्सिक थॉट्स तो बहुत डैमेजिंग है. इट कुड बी जैसे फियर बताया, एंग्जाइटी, रिजेंटमेंट. इट कुड ऑल्सो बी रिजेक्शन. यू नो, कई बार मुझे आपसे रिजेंटमेंट नहीं, लेकिन मैं रिजेक्टेड फील कर रही हूँ. कोई मुझे अप्रिशिएट नहीं करता, कोई मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती. ये भी मेरे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है. इट विल नेवर लेट मी कम फॉरवर्ड. एंड मैं अंदर ही अंदर आजकल रिलेशनशिप्स में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, ये जो बहुत क्लोज रिलेशनशिप्स हो जाती हैं, और फिर अगर एक जना डिसाइड करता है कि नहीं, दिस रिलेशनशिप डजंट वर्क फॉर मी, वी हैव सीन चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स हु से आई डोंट वांट टू लिव. तो किस तरह के थॉट्स क्रिएट कर रहे होंगे वो, जो वो इस बात पर पहुंचते हैं, मैं उस व्यक्ति के बिना नहीं जी सकता, मैं नहीं जीना चाहता, मैं उसका एक फोन सुनने के लिए बस कुछ भी करने के लिए रेडी हूं. कौन सी थॉट्स क्रिएट हो रहे होंगे सारा दिन. एंड फिर कई बार वो सुसाइड के लेवल पर भी ये बातें जाती हैं. तो बहुत एस्पेक्ट्स में हम ये चेक कर सकते हैं कि टॉक्सिक मतलब जो मेरा बहुत नुकसान कर रहे हैं, और जो मेंटल टॉक्सिन्स हैं, फिर वो फिजिकल में भी, जैसे गिरीश भाई ने बताया कि वो टॉक्सिन्स क्रिएट करेगा.
2: और एक अगर एग्जाम्पल है ना, तो हेट्रेट का है. हेट्रेट से वहां तो एक को लग गया, लेकिन हेट्रेट से तो आप हजारों को मार रहे हैं.
0: सबसे पहले अपने आप को,
2: अपने आप को.
1: यहाँ एक अगर हमने टेक्निक ही सीखनी है, तो जैसे हम बात कर रहे हैं टॉक्सिक बाद में ही आता होगा. तो पहले कैसे आइडेंटिफाई करें कि कहाँ से वो शुरू होती है सीरीज? अगर हम ये चेन देखते हैं सेवन तरह के थॉट्स में, कौन सी वो पहली चेन है जो मुझे टॉक्सिक तक लेकर जाएगी? चेन की पहली कड़ी कौन सी होती है?
2: पहली कड़ी तो आएगी वही की नेगेटिव एस्पेक्ट,
1: नेगेटिव थॉट. बेस थॉट या नेगेटिव थॉट?
2: पहले नेगेटिव.
1: नेगेटिव
2: थॉट वेस्ट तो हो सकता है कि उसमें नेगेटिविटी नहीं है, ऐसी आप टाइम को वेस्ट कर रहे हो, लेकिन शुरुआत होगी नेगेटिव थॉट से, फिर उसका लेवल बढ़ता जाएगा और टॉक्सिक तक पहुंच जाएगा.
0: कई बार ये भी हो सकता है कि आप किसी और परिस्थितियों में नेगेटिव सोच रहे हैं. वो परिस्थितियां एवरेज लेवल की हैं, जो हम कह रहे हैं ना परिस्थिति स्टिम्यूलस है, तो वो परिस्थितियां ऑर्डिनरी हैं, लेकिन मेरी रिस्पॉन्स उसमें नेगेटिव है एंड एनर्जी तो मेरी डिप्लीट हो रही है. और फिर सडनली मैं एक थोड़ी सी बड़ी परिस्थिति में आ जाऊंगी. लेट्स से ऑफिस में काम करते करते मुझे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ रहा है, दैट विल बी नेगेटिव थॉट्स. और फिर घर गई, सडनली मुझे एक बिगर सिचुएशन मिली, तो मैं इमीडिएटली जो थॉट क्रिएट करती हूँ, इट्स समटाइम्स टॉक्सिक, बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नेगेटिव क्रिएट करते करते मन की कितनी सारी ताकत खत्म हो जाती है. एंड देन अ लिटिल बिगर सिचुएशन एंड आई विल रिएक्ट इन अ बिगर वे. तो वो रिजेंटमेंट, हेट्रेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे. एंड देन नॉट नेसेसरी कि आपके प्रति है तो आपके साथ ही वो हमेशा होगी. आपके साथ मैंने नेगेटिव क्रिएट करते करते करते अपने आप को इतना डिप्लीट कर दिया कि फिर इन्होंने अगर मेरे साथ थोड़ा सा कुछ बड़ा कर दिया, आई कैन जस्ट क्रिएट दोज टॉक्सिक थॉट्स. सो इट इज अ कंटिन्यूअस चेकिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ थॉट्स आई क्रिएट इन एवरी सिचुएशन विद एवरी पर्सन इन एवरी इंटरेक्शन. दैट्स वाई वी सेट कॉन्स्टेंट अवेयरनेस.

0: उनके साथ कोई एक बार ऐसे कुछ हो जाए जैसे अब हमें लोग ही नहीं अच्छे लगते तो फिर क्या हुआ, देखो कितना डैमेज हो गया, अब हमारा लोगों पर ही विश्वास नहीं रहा, तो वो हर रिश्ते में कैसे जाएंगे, हर इंटरेक्शन में कैसे होंगे, एवरी इंटरेक्शन विल बी देन नेगेटिव एंड द साइकिल बिकम्स मोर एंड मोर विशेस।
1: वन रिलेशनशिप नो, इवन वन रिलेशनशिप, जैसे किसी में मदर से, जैसे डॉक्टर का मदर से कुछ प्रॉब्लम हुआ तो फिर और भी, ऑल नो लेडीज आर बैड फॉर हर, या जेंट्स से हुआ तो ऑल जेंट्स आर बैड, ऐसी स्थिति बन सकती है।
2: अच्छा, ये तो बात रही कि टॉक्सिक जो कि काफी दिख जाते हैं, यूजुअली हम देखें तो जो बात समझ में आ रही है कि टॉक्सिक में हमें एहसास भी हो रहा है, हमारे फिजिकल भी वो क्रिएट हो रहे हैं, केमिकल्स, केमिकल रिएक्शंस भी हो रहे हैं, उसके अगर हम नीचे थोड़ा सा नीचे उतरे तो टॉक्सिक के बाद आपने नेगेटिव बोला ना, तो नेगेटिव में क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज नेगेटिव? क्योंकि नेगेटिव में बहुत बार लोग बोलते हैं मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता, दूसरे के बारे में बुरा सोचना ही क्या नेगेटिव
1: है? वो तो एक पहलू है कि भी दूसरे के बारे में बुरा सोचना एक नेगेटिव है। दूसरा नेगेटिव ये है कि भी कुछ हुआ आपको, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, भी ठंडी में गए, कहीं मैं बीमार तो नहीं हो जाऊंगी, सर्दी तो नहीं हो जाएगी, तो ये भी नेगेटिव है।
2: मतलब ये एंग्जाइटी थोड़ी सी,
1: एंग्जाइटी भी कह सकते हैं, आपको विचार आया भी एग्जाम में गए कहीं फेल तो नहीं हो जाएंगे, ये भी नेगेटिव थॉट है, डाउट, डाउट के एलिमेंट है भले।
2: पर ये तो मतलब अब ये तो हमें रोज रहता है,
1: ये तो यही करना है, तो हम तो सारा मतलब हम डिस्कस कर रहे हैं कि यू आर चूजिंग योर थॉट।
2: बट डॉक्टर पटेल, दीज आर द थॉट्स विच वी नेवर थॉट, दे आर लाइक दे आर नॉर्मल थॉट्स,
1: दीज आर द स्किल्स
2: कि जो मतलब अगर मैं एग्जाम देने जा रही हूँ तो मैं पास भी हो सकती हूँ, फेल भी हो सकती हूँ, मतलब एग्जाम मुश्किल भी आ सकता है, पेपर मुश्किल आ गया तो फेल नहीं तो कम मार्क्स आ सकते हैं। सी दीज आर द डाउट्स विच एक्चुअली आर सो नॉर्मल।
0: अब इसीलिए तो ज्यादातर अगर हम देखें तो पॉजिटिव थॉट्स बहुत कम होते हैं आजकल सारा दिन।
2: मतलब ये तो ये एक डाउट भी अगर नेगेटिव थॉट में आता है तो फिर तो हमारे पास नेगेटिव थॉट्स,
1: इसीलिए नेगेटिव बहुत सारे हैं और हमें सोचना चाहिए कि भी एक भी नेगेटिव ना आए, क्योंकि हम थॉट्स को चूज करते हैं, जब हम चूज कर रहे हैं।
2: कैसे नहीं आएगा, दिस इज समथिंग विच वी हैव लिव्ड विद इट ऑल आवर लाइफ।
1: नो, इट इज वन थिंग व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो कि भी हम अपने थॉट्स को चूज करते हैं, तो मुझे सही को चूज करना है, हाथ को ऊपर नीचे करना मेरे कंट्रोल में, तो इससे थॉट्स भी मेरे कंट्रोल में, चलो एक बार आ गया कोई बात नहीं, लेकिन तुरंत उसे मैं ट्रांसफॉर्म करूं और पांच बार पॉजिटिव करूं तो एक जो नेगेटिव हुआ उसकी इफेक्ट कम हो जाए।
2: अच्छा, तो नेगेटिव में एक रहा डाउट, और क्या क्या नेगेटिव में शामिल? आई थिंक समवेयर हम अवेयर नहीं है,
1: दिस थिंग्स आर उसके पीछे का जो रीजन कहे, अगर नेगेटिव को हमें सोचना हो तो फेलियर के विचार, बीमारी के विचार ना, ये सब नेगेटिव है, लॉस के विचार,
0: इवन इरिटेट होना थोड़ा थोड़ा,
1: हाँ,
0: इरिटेट होना अगेन ट्रैफिक में खड़े हैं, इरिटेट हो रहे हैं, कोई गलत तरह से चला रहा है, इरिटेट हो रहे हैं, कोई मेरी तरह काम नहीं कर रहा, इरिटेट हो रहे हैं,
1: डिसलाइक हो रहा है,
0: कोई मेरा कहना नहीं मानता, इरिटेट हो रहे हैं, ये भी तो नेगेटिव थॉट्स है।
2: ये मतलब क्यों क्रिएट करते हैं फिर? बिकॉज दीज आर द थॉट्स, आई थिंक हमें पता भी नहीं है, हम अवेयर ही नहीं है कि ये थॉट्स जो है उनमें कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि इरिटेशन तो रहती ही है।
0: इतना हमने कहा इरिटेशन रहती है, आपने कहा डाउट रहता है, एंग्जाइटी रहती है, तभी तो स्ट्रेस, अनहैप्पीनेस, एंगर हो गया ना, तभी हम कह रहे हैं हैप्पीनेस चाहिए, क्यों? क्योंकि कई चीजों को हम नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल
2: तो
0: कहते रहे,
2: सबको इग्नोर करते जाएं। मतलब अगर कोई कैसे बिहेव कर रहा है, कुछ ऐसे कर रहा है, तो हम इरिटेट ना हो, हम अपना डिसएग्रीमेंट ना शो करें, हम मतलब फिर देन वही आ जाती है बात कि स्पिरिचुअलिटी मीन्स यू नो एक्सेप्टिंग एवरीथिंग।
1: फर्स्ट तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये स्किल है, टू एक्सेप्ट नहीं, पॉजिटिव सोचना भी ये स्किल है, और ये स्किल मुझे डेवलप करनी है। जैसे नहीं मसल्स को हम डेवलप करते, अच्छे से एक्सरसाइज करते हो आप मसल्स को डेवलप करते हो, तो ऐसे ये स्किल को भी मुझे डेवलप करना है। और पहले भी हमने डिटेल में डिस्कशन किया कि एक नेगेटिव थॉट की कितनी इफेक्ट होती है, वो वातावरण में वाइब्रेशन क्रिएट करता है, व्यक्ति भी वैसा ही बन जाएगा, वी विल अट्रैक्ट दैट सिचुएशन। तो इसलिए इस स्किल को हमें डेवलप करना है,
2: कोई भी
1: प्रैक्टिस करे तो मुश्किल
2: उसको चेंज
1: नहीं
2: करे।
0: एक बात देखते हैं, आपने कहा ये नेचुरल है, सपोज कोई मेरे हिसाब से काम नहीं कर रहा तो डिस्टर्ब होने से फायदा क्या होता है?
2: डिस्टर्ब जब हम होना शुरू होते हैं थोड़ी देर बाद उसको भी समझ में आने लगती है और वो कुछ कुछ तो करता है,
0: बिना डिस्टर्ब हुए भी

0: सकते हैं,
1: तब उसका इफेक्ट इतना नहीं होता। अब जैसे बच्चा है, ठीक है, बच्चे के साथ, बच्चा मेरी बात नहीं मान रहा है, तो बच्चे को दिखा कि मेरे को गुस्सा चढ़ना शुरू हो गया है, थोड़ी थोड़ी मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, मैं हर्ट हो रही हूँ, मैं इरिटेट हो रही हूँ, मैं ये, बच्चा फटाफट बात मानना शुरू हो जाता है। तो थोड़ी सी तो बात मानी ना उसने,
0: बच्चा बात बच्चा बात तो मानता है, लेकिन आपने उसको नेगेटिव एनर्जी भी दी उस प्रोसेस में। सो वी आर ट्राइंग टू ट्रांसफॉर्म पीपल विद नेगेटिव एनर्जी, और फिर ये हम कभी कभी नहीं करते, वी आर यूजिंग दिस टेक्निक क्योंकि टाइम मेरे पास कम है, पेशेंस तो मेरी वैसे ही कम हुई है। तो अब मुझे पता है कि आपसे जब मैं प्यार से काम कुछ भी बोलूं तो आप नहीं करते, लेकिन मैंने ये देख लिया, ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला मेरा क्या हो गया कि थोड़ा सा ऐसे करके बात करूं ये तो जल्दी काम करते हैं। टाइम नहीं है, काम जल्दी कराना है, तो मैंने कौन सा टेक्निक यूज किया, शोर मचाओ हो गया, शोर मचाओ हो गया। फिर सिर्फ बच्चों के साथ नहीं किया, ऑफिस में भी करना शुरू कर दिया, फिर सिर्फ ऑफिस में भी नहीं किया, सड़क पे स्ट्रेंजर्स के साथ करना शुरू कर दिया कि जब कोई मेरे अनुसार नहीं करता, शोर मचाओ, काम मेरे अनुसार होगा। काम होता गया, इवन लेट्स से काम होता गया, मेरी हालत क्या होती जा रही है। दिस आई नाउ नीड टू स्टॉप एंड चेक कि मेरी हालत क्या होती जा रही है, और अगर अपने बारे में नहीं सोचना चाहते तो कम से कम इतना सोचो उन बच्चों की हालत क्या होती जा रही है। सिर्फ मदर वो टेक्निक नहीं यूज कर रही, फादर भी वही टेक्निक यूज कर रहा है, सिर्फ पेरेंट्स नहीं यूज कर रहे, टीचर भी वही टेक्निक यूज कर रही है, प्रिंसिपल भी वही टेक्निक यूज कर रही है, क्योंकि एवरीवन इज इन द सेम बोट, एवरीवन इज यूजिंग द सेम टेक्निक। कैन वी जस्ट लुक एट अ लिटिल चाइल्ड जो अभी ग्रो हो रहा है, जिसकी सेल्फ एस्टीम अभी डेवलप होनी है, जिसका सेल्फ कॉन्फिडेंस अभी डेवलप होना है, जो इमोशनली अभी डेवलप हो रहा है, यू नो, जैसे फिजिकली डेवलप हो रहा है, और इस एक छोटे से बच्चे को जो डेवलप हो रहा है, ये चार पांच लोग जो उसके पूरे जीवन का फोकस है अभी वर्तमान समय,
1: ब्लैकमेल कर रहे हैं
0: हम, इमोशनली ब्लैकमेल नहीं, हम उसको इमोशनली डिप्लीट कर रहे हैं। हम सी ना, एक छोटे बच्चे को बीच में रखो, सर्कल में आप पांच लोगों को खड़ा करो, मदर, फादर, टीचर, प्रिंसिपल, जो भी, या कोई बड़ा सिबलिंग, सारे उसको कौन सी एनर्जी दे रहे हैं, काम करवाना, होमवर्क करवाना, खाना खाना, पढ़ना, जो भी है, व्हाट इज द एनर्जी कमिंग, कैन यू सी व्हाट विल हैपन टू दिस चाइल्ड, एंड देन वी आर सेइंग, आजकल के बच्चे देखो कैसे हो गए हैं, छोटी छोटी बातों में इनको गुस्सा आने लग जाता है, इनकी टॉलरेंस पावर कम होती गई है। स्टॉप, क्यों हो गई ऐसी, वाई, क्योंकि इनको सबसे कौन सी एनर्जी मिली, वो पर्सनैलिटी कैसे बड़ी हो रही है। अब जब वो पर्सनैलिटी
1: वरिड ही रहेगा,
0: वरिड नहीं, वेरी वेरी लो सेल्फ एस्टीम और उसकी अपनी टॉलरेंस पावर, क्योंकि उसको पांचों लोगों से कौन सी एनर्जी मिल रही थी, पांचों के अंदर टॉलरेंस पावर नहीं थी, पांचों में पेशेंस नहीं थी। बच्चे में पेशेंस आ जाएगी, कहां से आएगी, दिया आपने वो खाना खिलाया उसको, आपने वो खाना खिलाया नहीं, और कहते ताकत क्यों नहीं है, ताकत क्यों नहीं है, वही ताकत डेवलप होगी जो चारों तरफ से आ रही है। अब मैं प्रिंसिपल को नहीं चेंज कर सकती, मैं टीचर को नहीं चेंज कर सकती, मैं कम से कम अपने आप को करूं। सिर्फ ये नहीं सोचे काम करवाना जल्दी कैसे हो जाए, मोर इम्पोर्टेंट इज जो कर रहा है उसकी डेवलपमेंट कैसी हो, एंड ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट मेरी स्थिति कैसी हो। लेट्स नॉट बी ओनली वर्क ओरिएंटेड, लेट्स बी फीलिंग ओरिएंटेड, देन वील टेक केयर ऑफ ईच अदर, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट।
2: रवि ना, सटल बात है बहुत, अगर सुपरफिशियल भी देखो ना, शी इज 100% राइट है, डीप बात को आप समझ लो, अगर कोई इतनी डीप बात न भी समझे तो भी ये समझना चाहिए कि फियर वो टेम्पररी मोटिवेटिंग फैक्टर है। डर से बच्चा सदैव नहीं पड़ेगा, जब तक आप उसके सर पे खड़े हैं शायद पड़ेगा, और जैसे ही आप और कुछ करने लगेंगे बच्चा छोड़ देगा उसको, धीरे धीरे तो उल्टा वो सीख जाते हैं, फिर तो डर की भी इफेक्ट नहीं होगी, समझो नहीं, गुस्से से आप समझते बच्चे शांत रहेंगे, नहीं, उल्टा वो समझेंगे कि भी गुस्सा दिलाओ उनको आनंद आएगा अंदर, दे विल लर्न दिस। एक बार दो 11-12 साल की लड़की आपस में डिस्कशन कर रही थी, एक ने दूसरी को कहा कि चल हम कुछ शरारत करते हैं ताकि माँ को गुस्सा आए, कहते माँ को गुस्सा आएगा तो मुझे बहुत मजा आता है, माँ को गुस्सा आता है तो बोले मुझे अपने कमरे में 2 घंटे बंद रहना पड़ता है, लेकिन मैं बहुत इंजॉय करती हूँ कि माँ मुझे कंट्रोल नहीं कर रही, मैं माँ को कंट्रोल कर रही हूँ। नो, लेट अस मेक सम मिस्चीफ, वैसे अल्टीमेटली चिल्ड्रन लर्न दिस।
0: एंड जो गिरीश भाई ने कहा था ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का रूट कॉज चाइल्डहुड में है, जो चाइल्डहुड में हम ये एनर्जी एक बच्चे को देते हैं तो उसको जो सबकॉन्शियस में जो फीलिंग है वो है दे डोंट केयर फॉर मी, एंड वेरी सून ही इज गोइंग टू बी डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स विच यू विल फील ही डजंट केयर फॉर मी, बट इट स्टार्टेड एट दैट टाइम,
1: कि जो मैंने दिया वो
2: ये भी, व्हाई आई शुड केयर फॉर देम,
0: दे एक्चुअली देर आर चिल्ड्रन हु कम एंड

0: उन्होंने मुझे क्या दिया एंड दिया नॉट इन टर्म्स ऑफ फिजिकल, लेकिन इनसे मुझे क्या मिला, मुझे भी उनकी कोई परवाह नहीं है. यू नो वी टेल देम आपके पेरेंट्स रो रहे हैं, आपके पेरेंट्स इतने अपसेट हैं, इट्स वेरी सैड बट दे गेट अ सेडिस्टिक प्लेजर आउट ऑफ इट कि इन्होंने मुझे बहुत दुख दिया था, आज मैं करूंगा ऐसे काम जिससे इनको दुख मिले.
1: मैं भी कितना रोया था, कितना डरता था. Oh my God! I just I'm feeling
0: like it really happens. We are meeting a lot of children who say this, and it's very sad to see that you know the cycle is getting more and more vicious. More and more, both are blaming each other. No one's ready to take the responsibility.
2: You know, many disturbed children are like this. And I think a school ka ek case mere paas hai. Waha teachers ne kaha. Teacher said ki bhi ye parents ka fault hai pura. पेरेंट्स ने उनको नेगेटिव बातें सिखाई है, नेगेटिव रूप से डेवलप किए, इसके कारण बच्चे ऐसे बने.
1: आई थिंक क्योंकि हमें नेगेटिविटी का ही पता नहीं है शायद. सिस्टर शिवानी, डॉक्टर गिरीश पटेल, थैंक यू सो मच. कहीं ना कहीं वो सारी बातें निकल कर आ रही हैं जिन्हें अभी तक हमने ये माना था कि ये तो बिल्कुल नेचुरल है. आज चेक करने की जरूरत है. हमने सात तरह के जो थॉट देखे हैं कि इस तरह के थॉट्स हम क्रिएट करते हैं, उसमें टॉक्सिक तो बहुत विजिबल है, लेकिन नेगेटिव को हमने अभी तक रियलाइज नहीं किया था. लेट्स ट्राई टू रियलाइज, लेट्स ट्राई टू सी, लेट्स बिकम अवेयर कि पूरे दिन में ये जो नेगेटिव, हमने यही सोच लिया कि नेगेटिव मतलब दूसरे का बुरा सोचना, लेकिन उसके अलावा हम क्या क्या कर रहे हैं, कितने कितने ये जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, चाहे वो डर है, संशय है, भय है, दुख है, या हर्ट है, या रिजेक्शन है, ये सारे जो थॉट्स हैं, या इरिटेशन है, छोटी छोटी बात पे इरिटेट होते जाना, अपनी बात मनवाने के लिए कितने कितने तरीके अपनाना, कितने कितने यू नो थॉट्स उन तक पहुंचाना, एनर्जी पहुंचाना, ये हम क्या कर रहे हैं अपने साथ भी, अपनों के साथ भी, फिर हमें रिश्तों में कहां से प्यार मिलेगा. लेकिन जहां हम सीखते जाएंगे, ज्ञान एक ऐसी रोशनी है जो आगे का रास्ता क्लियर कर देती है. कोई बात मन में है, कोई सवाल है, आप हमारे साथ शेयर करें. आप हमें ईमेल पर या फोन पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर हैं 9999344555, 9999344666, 9873666555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही. लाइफ स्किल्स की इस श्रृंखला में वो वाली स्किल्स हम सीख रहे हैं जो आज तक शायद नहीं सीखी थी, लेकिन आज सीखकर ना सिर्फ अपने जीवन को, अपनों के जीवन को, आने वाले जीवन को बेहतर बना पाएंगे. आपसे विदा लेते हैं. ओम शांति.

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: 24 घंटे का व्रत रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सामने वाले का व्यवहार कैसा भी हो, मेरा मन, वाणी और व्यवहार शांत और प्रेम से भरपूर। सिर्फ 24 घंटे का व्रत रखें तो भी हमने सृष्टि की कितनी सेवा की, और जो चीज हम एक दिन कर सकते हैं हम उसको हर रोज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास पावर है।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: मनन से मनोबल तक, आस्था से अस्तित्व तक, मेरी आवाज 107.8, खुश रहो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, अपने के तहत रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ मिलता ही नहीं यहाँ, लड़ने वालों के कदम में जहान होता है।
1: नमस्कार, आप सुनाई करता है रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार मंडळी, कसे आहेत? आपण सर्वजण कोविड पासून बचावासाठी खूप जागरूक आहे आणि जागरूकता वाढवण्यासाठी IVR नंबरवर निश्चित फोन करा +918060019225। नंबर एकदा +918060019225। या IVR नंबरवर फक्त मिस कॉल करा युवाने। आपण ऐकत आहेत रेडिओ सिनेरी 90.4 FM, आवाज तुमचा आमचा।
1: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: छोटी छोटी बातों में अपनी एनर्जी को डिप्लेट नहीं करना, क्योंकि हम हीलर्स हैं, हम एंजल हैं, और हमारी एनर्जी का असर हमारे आसपास के लोगों पर एंड ऑफ कोर्स फिर हमारे पास जो हीलिंग के आ रहे हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है। आई कैन नॉट अफोर्ड टू

0: waste my energy like this. My energy is for a purpose of healing thousands of people. And जब हम उस intention से अपनी energy को बचाएंगे, सबसे पहले कौन बच जाएगा? हम खुद. हम काम करेंगे, काम करवाएंगे, discipline करेंगे, disciplinary action भी लेंगे, लेकिन हिले बिना. It's only a lifestyle change. These are lifestyle changes. Energy, life है. ये निकल जाए तो लाइफ खत्म हो जाती है.
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो.

0: Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome, sister.
1: Om Shanti.
0: Om Shanti and welcome to Being Divine.
1: Thank you.
0: Bahut achha laga meditation karke, soch ke ki I am a soul. Aur kuch der ke liye itna ek, main bata nahi sakta, aankhon mein ekdam shanti si feel hui. Jaise ki normal aadmi अच्छी नींद सो के उठता है ना 7-8 घंटे वैसे एक 2 मिनट में लगा एंड आई द सोल वाज सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग.
1: नाउ जस्ट लुक एट दिस एक्सपीरियंस कि बहुत पीसफुल लगा, बहुत अच्छा लगा, जैसे हम नींद करके उठे हैं. बॉडी और माइंड को बहुत अच्छी एनर्जी मिली थी. क्वालिटी ऑफ थॉट बहुत ब्यूटीफुल थी. एवरी थॉट वी क्रिएट, ये आज हमें मंत्र की तरह पक्का करना है. हर थॉट जो हम क्रिएट करते हैं उसका प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ता है. एक रैंडम थॉट है ना, सपोज मैं एक थॉट क्रिएट करूं, क्या बेकार जगह है. ये एक थॉट है, ये मुझे ऐसा लगेगा कि ये तो थॉट है ना, क्या हुआ, है ही बेकार जगह, तो आई ऑब्वियसली आई क्रिएट अ थॉट कि बेकार जगह है. तो मैंने एक थॉट क्रिएट कर दी, क्या बेकार जगह है. ये एक थॉट का असर कहाँ
0: क्यों पड़ेगा. थॉट आई चली गई,
1: थॉट आई चली गई. अगर थॉट आके चली जाती तो प्रॉब्लम ही नहीं थी.
0: क्यों
1: थॉट आई चली गई नहीं ना, थॉट आई अपना प्रभाव छोड़ गई.
0: किसके ऊपर?
1: किस किस के ऊपर छोड़ गई? जैसी थॉट वैसी फीलिंग. साइकिल था क्लियर, थॉट से फीलिंग. तो जैसे यहाँ पर मैंने एक थॉट क्रिएट की, आई विल फील लाइक दैट. That quality. I will feel, if I create a thought, क्या बेकार जगह है, तो I don't feel nice. अगर मैंने thought create की, what a beautiful place, I'll feel nice.
0: हाँ, but ये तो actual भी तो होते ही है ना. कभी बहुत harsh sun है, कितना तेज धूप है, अच्छी नहीं लग रही. सुबह sun, अरे what a beautiful sunrise.
1: हाँ, तो thought, that's
0: तो,
1: okay.
0: वो तो आती है ना, तो उसको कैसे रोक लेंगे.
1: Thought आती नहीं है,
0: वो तो दिख रहा है एक सनराइज को.
1: दिखने के बाद थॉट,
0: आंख भी चुभ रही है.
1: दिखने के बाद थॉट कौन क्रिएट कर रहा है? सनलाइट है, चुभ रही है, आई हैव टू टेक केयर. और एक है, क्या बेकार लाइट है, सीधा मुंह पर आ रहे
0: है.
1: क्वालिटी ऑफ थॉट. हम ये नहीं कह रहे कि सनलाइट है, मुंह पे चुभ रही है, हम कह रहे हैं सो ब्यूटिफुल. नो, आई हैव टू टेक केयर. ओके, गेट अप, टेक केयर. लेकिन वहां खड़े होकर उसके बारे में इरिटेटिंग थॉट्स क्रिएट करना, जैसी थॉट वैसी फीलिंग. तो यहां की क्रिएट की हुई थॉट सबसे पहला प्रभाव यहां डालेगी. आई विल फील दैट वे, फर्स्ट असर. अब हमें लगता है कि ये इतनी छोटी सी थॉट थी, तो एक थॉट के बाद एक और थॉट, एक और थॉट, एक और थॉट. लेकिन ड्यूरिंग दिस होल सीरीज ऑफ थॉट्स, जैसी क्वालिटी ऑफ थॉट वैसी फीलिंग.
0: ओके,
1: तो फर्स्ट असर. सेकंड, एवरी थॉट हैज एन इफेक्ट ऑन एवरी सेल ऑफ द बॉडी. एवरी थॉट, नॉट सम थॉट्स, एवरी थॉट. हर थॉट, हर सोच मेरे शरीर पर प्रभाव डालते हैं. तो जैसे ही मैंने थॉट क्रिएट की, क्या बेकार जगह है, गई एनर्जी यहां भी, यहां भी गई. सेकंड असर. अब मैंने थॉट क्रिएट की, क्या बेकार जगह है, एनर्जी क्रिएट हुई, यहां नहीं ब्लॉक होती, रेडिएट होके वाइब्रेट हो जाती है, यहां आप तक पहुंचेगी. ये आपके मन पर असर डालेगी, और जो आपका मन क्रिएट करेगा वो आपके शरीर पर भी असर डालेगी. और ये थॉट इस यूनिवर्स में, यहां प्रकृति में चली गई. ये एक थॉट कितनी पावर है, मुझे आत्मा के पास कितनी पावर.
0: मिलियंस ऑफ लोग और मिलियंस ऑफ थॉट्स और मिलियंस ऑफ,
1: यस, मिलियंस ऑफ सोल्स, मिलियंस ऑफ थॉट्स पुट टुगेदर क्रिएट द कॉन्शियसनेस ऑफ द वर्ल्ड. जो अंदर चलेगा एक के, वो रेडिएट होके वाइब्रेट होता है, और लोग भी उसको कैच कर लेते हैं, वो भी वैसा ही सोचने लग जाते हैं. बहुत जल्दी 10 लोग वैसा सोच रहे होते हैं.
0: नहीं, वैसे जाने जाने बोलने भी लग जाते हैं, एंडोर्स

0: पीठ तक वाइड ओरा आया, इट वॉज वेरी गुड। फिर उन्होंने जो वो करा रहे थे डेमोन्स्ट्रेशन, उन्होंने उनको कहा आप आंख बंद कीजिए और लास्ट आपने जब गुस्सा किया था उसको याद कीजिए।
1: ओके।
0: गुस्सा करना है अभी नहीं बोला,
1: उसको याद करिए,
0: उसको बोलो लास्ट। तो उसने कहा 10 दिन पहले आई थी कोई बहुत बड़ी बात। इतने कोई बात नहीं, आप जस्ट आंख बंद कीजिए और वो 10 दिन पहले जो इंसिडेंट हुआ था उसको यहाँ पर, जैसे हम याद करते हैं पास्ट की बातों को, उसको करिए। उस व्यक्ति ने एक आधा मिनट भी नहीं लगाया होगा, 1 मिनट उसने याद किया, उसने आंख खोली और कहा मैंने याद कर लिया। सेम मशीन, सेम स्टेज, एवरीथिंग इज सेम, दैट पर्सन इज सेम। वहां आए, एवरीथिंग वॉज नेगेटिव, फुल बॉडी की एनर्जी फील्ड। तो जो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे, ही सर आपके सारे चक्रा ब्लॉक्ड हो गए, अब पहले सारे चक्रा ओपन थे और ऑरा जो 10 फीट का था वो 3 फीट हो गया। सिर्फ वन एंड अ हाफ मिनट ऑफ रिमेम्बरिंग समथिंग ऑफ द पास्ट। ये है प्रभाव हमारी हर सोच का, यहां पर शरीर पर, हमारी ऑरा पर, प्रकृति पर। क्या हम ऐसे ही कुछ भी सोच सकते हैं? कितना अटेंशन रखने की जरूरत है?
1: हाँ, लेकिन अभी मेरा मन भी इतना चालाक है, अभी ये सोच रहा है इस वक्त कि फिर जब मैं गुस्सा करता होऊंगा तो किसी और ने किया होगा, उसका मुझ पे असर हुआ होगा, तो मुझे ट्रांसफर हुआ। अब देखो कैसे मन में सोच रहा
0: है। कोई बात नहीं, ये पर ये हो सकता है।
1: अब मेरी थिंकिंग कहाँ जा रही है? देखो कि ब्लेम गेम खेलने के लिए इतनी आदत है,
0: लेकिन हमारे पास अब नॉलेज है, हमारे पास अब नॉलेज है कि हो सकता है कि किसी और ने क्रिएट किया अंदर, वहां से यहाँ आई, मतलब एनर्जी आई, लेकिन मैं मालिक हूँ, मैं मालिक हूँ। एनर्जी के साथ हम 3 चीजें कर सकते हैं, कोई भी एनर्जी, या तो हम अब्सॉर्ब कर सकते हैं, या हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, या हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। दैट इज लॉ ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन ईदर बी अब्सॉर्ब्ड
1: विदाउट योर नॉलेज, भी तो अब्सॉर्ब हो सकती है।
0: हाँ, हो रही है ना, विदाउट नॉलेज तो अब्सॉर्ब ही हो रही है, लेकिन एनर्जी के साथ कर तो 3 चीजें सकते हैं ना, या तो अब्सॉर्ब्ड और रिफ्लेक्टेड और ट्रांसफॉर्म्ड।
1: क्या ये 3 जरा समझाएंगे
0: आप? चेक करिए, आप बताइए। एनर्जी कैन बी अब्सॉर्ब्ड, किसी ने कुछ नेगेटिविटी क्रिएट की, हमने अब्सॉर्ब कर ली, अब वो हमारी नेगेटिविटी का हिस्सा।
1: बोल दिया बहुत बुरा, तो
0: बोल में तो बहुत ही विजिबल हो गया। थॉट्स
1: अच्छा,
0: में भी
1: किसी की एक नेगेटिव थॉट है और मैंने अब्सॉर्ब कर ली।
0: अगर हमने सिमिलर क्रिएट करनी शुरू कर दी तो हमने अब्सॉर्ब नहीं कर ली?
1: आपका वहां से कहां से शुरू हुई ना,
0: वी डोंट नो, वी कांट फाइंड द सोर्स।
1: मैंने शुरू किया, उसने पिंग पॉन्ग जो पहला बॉल किसने मारा मालूम,
0: बट हमें नहीं मालूम।
1: जब मिडल ऑफ द गेम से शुरू करते हैं,
0: देखो मैंने एक बॉल मारा, आपने वहां से बॉल मारना है। आप जब मार रहे हैं तो आपके पास 2 चॉइस हैं। एक, आप कहें इन्होंने इतना बेकार बॉल फेंका तो मैं कैसे अच्छा मारूं, ब्लेम गेम। लेकिन एक है, मेरा कैसे भी आया हो, यू विल प्ले वेल। करेंगे या नहीं करेंगे?
1: अगला रॉन्ग शॉट्स मार रहा है तो मैं क्यों मारूंगा, मैं तो जीतना है मुझे।
0: सी,
1: मैं तो अच्छा करेंट मारूंगा, उसको पहले मारने दो।
0: तो फिर सेम थिंग,
1: गेम
0: होती ही तो यही है। अगर सामने वाला गलत मारे, हम भी गलत मारे, तो फिर हु इज गोइंग टू विन द गेम?
1: आई वॉन्ट टू विन, लेट हिम मेक एनी मिस्टेक्स, आई विल वेरी कॉन्सेंट्रेटेड।
0: सेम थिंग, लेट हिम सेंड एनी एनर्जी, आई विल प्ले वेल।
1: तो कभी थॉट आए तो या तो मेरी और मेरे से ओरिजिन मैं हूँ या बाहर से आया,
0: हमें नहीं मालूम।
1: चलो वी डोंट लेकिन आई
0: क्रिएट हुई,
1: क्रिएट हुई। अब्सॉर्ब नहीं करने तो क्या करना है?
0: अब्सॉर्ब नहीं करना मतलब इमिडिएटली उसको फिर ट्रांसफॉर्म कर देना। सपोज आपको मेरे बारे में अभी एक नेगेटिव थॉट आती है, ठीक है, या मेरे से रिलेटेड कोई नेगेटिव थॉट आती है, तो वो आपकी तरफ से ओरिजिन हो सकता है या मेरे यहाँ चल रही है इसलिए वहां जा रही है। ओके, 3 ऑप्शन। अब्सॉर्ब मतलब खुद भी नाराज या उदास हो जाए, अब्सॉर्ब। सेकेंड,
1: सोच से चले जाए,
0: हाँ तो वो तो अब्सॉर्ब हो गया, ब्लॉटिंग पेपर के अंदर वो सोक हो गया। सेकेंड, रिफ्लेक्ट, आपने मेरे लिए भी नेगेटिव थॉट

0: घर में कर सकते हैं, सब चले गए, फिर वापस दूसरे आगे नेक्स्ट डे। लेकिन एक थॉट कितने लोगों को खराब किया।
1: तो कैसे हुआ?
0: कब से सोच रहा था,
1: सोच रहे थे, बात अच्छा कर रहे थे, व्यवहार अच्छा कर रहे थे, लेकिन उनको थॉट्स बहुत दिनों से भेज रहे थे। हमें क्या करना था? बाहर जो ठीक करना था ना, कि यहाँ नंगे पैर नहीं रखना, ये ऐसे करना, ये सब कर लेना चाहिए था, अंदर नहीं क्रिएट करना चाहिए था।
0: कई बार सोचा था जैसे कि दो चार चप्पल खरीद के लाके रखूंगा, लेकिन हुआ नहीं।
1: तो वो सब अगर कर लेते तो यहाँ कुछ ना क्रिएट होता, तो वो सीन ना क्रिएट होता।
0: मैं भी तो डिस्टर्ब ज्यादा ही हो रहा था, छोटी सी बात।
1: रेपरकशन ऑफ ऑल दैट हैज हैपेंड,
0: माय रिएक्शन वाज मोर, ठीक है गद्दियों पे धुलवा लेंगे।
1: नो नो, दिस इज ऑल्सो नॉट द वे कि ठीक है फिर कुछ भी करने दो। जो करना है उसको भी ठीक करना है, लेकिन अंदर अक्यूमुलेट नहीं करना थॉट्स क्रिएट करके। आपने भेजे, उन्होंने अब्सॉर्ब की।
0: और कब से भेज रहा था?
1: हाँ, कई दिनों से अब्सॉर्ब की। स्टिमुलस आया, एक ने रिएक्ट किया उनमें से, उसका सबने कैच किया और बहुत जल्दी सबने सेम वे रिएक्ट किया
0: और सब उड़ गए और चले गए।
1: एक ने भी डिफरेंट एनर्जी नहीं क्रिएट की ना,
0: नहीं।
1: कोई एक भी उस सीन को क्या कर सकता था, सॉफ्टन करके, मेलो डाउन।
0: आप स्टिमुलस भी क्या,
1: बच्चे
0: प्योर चाइल्ड,
1: जिसको स्टिमुलस हम नहीं कह सकते, लेकिन वो इसीलिए तो हम कहते हैं स्टिमुलस की तो गलती नहीं, स्टिमुलस तो जिम्मेवार ही नहीं, स्टिमुलस को तो हम ऐसे ही ब्लेम करते हैं। इट इज आवर एक्सचेंज ऑफ थॉट्स व्हिच वाज गोइंग ऑन सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। आज से अपनी हर थॉट पर अटेंशन, मैं मालिक, मैं आत्मा क्रिएटर हूँ।
0: चलिए सिस्टर, थैंक यू सो मच। आज की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब समझ में आ गई है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।
1: ओम शांति।
0: ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति।
2: एवरी थॉट वी क्रिएट हैज अ डीप इम्पैक्ट। फर्स्ट, इट इन्फ्लुएंसेस द वे वी फील। सेकंड, इट इन्फ्लुएंसेस द सेल्स ऑफ आवर बॉडी। थर्ड, इट रेडिएट्स टू द पर्सन अबाउट होम it was created. Fourth, it radiates to people around us and into the universe. Every place has an energy field based on the collective consciousness of the people there. Vibrations of a temple are different from the vibrations of a shopping mall because of the thoughts created by souls there. Everyone who visits there gets influenced by the energy field. Our thoughts and behavior with souls where we live or work trigger thoughts and feelings in them. Together, all these vibrations create the energy field of our house or office. We are responsible for creating a peaceful and pure energy field of the place in which we have to live daily. When we receive negative energy from another soul, we have three options. We can absorb that energy, that is, create pain and hurt and suppress it within. We can reflect that energy, that is, radiate the same quality to them. We can transform it into positive energy and radiate to them.
1: If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 0999 55 9 6 6 0.

खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुणे रेडियो आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट। वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रांग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आवाज
1: सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले झकास रेडिओ स्टेशन
0: पुणेरी आवाज
1: ऐकत रहा 107.8 FM
0: आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुणेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।

0: शन कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और सभी विद्यार्थी मित्रों को बड़ा ही अच्छा लगेगा आज हम लोग करियर इन म्यूजिक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि म्यूजिक एक ऐसा पैशन है जिसके माध्यम से आप अपना करियर बना सकते हैं, अपने हॉबीज को अच्छी तरह से क्रिएट कर सकते हैं। और बड़ा अच्छा लगता है जब आप अगर करियर भी नहीं हुआ तो लोगों को जरूर खुश कर सकते हैं, कहीं भी चार लोगों के बीच में अगर थोड़ा सा भी आप गुनगुना देते हैं तो सभी को अच्छा लगता है। तो सभी को खुश करने का बहुत ही सुंदर तरीका है संगीत। तो आइए म्यूजिक में करियर कैसे कर सकते हैं, क्या सिस्टम है, क्या तरीका है, वो हम जानने वाले हैं। आज हमारे साथ विशेष मेहमान रश्मित कौर हैं, जिनसे हम लोग बातें करने वाले हैं। और आप एमपी से हैं, जागरा से, स्कूल में आप बच्चों को म्यूजिक पढ़ाते हैं, सेकेंडरी स्कूल है विशेष, फर्स्ट टू ट्वेल्थ बच्चों को जो है आप म्यूजिक सिखाते हैं। तो आइए रश्मित कौर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: ओम शांति भाई जी।
0: ओम शांति, कैसे हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ बिल्कुल।
0: जी जी जी, मैं चाहूंगा कि आपका संगीत से कैसे जुड़ना हुआ वो बताइए हमें।
1: मेरा संगीत से ऐसा जुड़ना हुआ कि मैं सिख फैमिली को बिलोंग करती हूँ, तो हम लोग बचपन से ही गुरुद्वारे जाते हैं।
0: अच्छा,
1: तो गुरुद्वारे में हमको वादन की भी विद्या प्राप्त होती है और गायन की भी होती है। वादन
0: तो
1: में
0: कीर्तन भजन और शब्द गाते हैं तो जुड़ जाते हैं, तो उससे लगन लग जाती है।
1: जी, वादन में भी ढोलक तबला हारमोनियम, इससे मेरी स्टार्टिंग हुई। और गाते सभी हैं हम लोग फैमिली में, क्योंकि सिख फैमिली में अधिकतर ऐसा ही होता है कि गाने का सबको शौक रहता है। जी भाई जी,
0: बंगाल में भी ऐसे ही है
1: जी।
0: वहाँ पर बोले खाना पीना और उसके साथ बजाना नहीं हो तो फिर बंगाली नहीं कहेंगे।
1: जी जी भाई जी।
0: तो रश्मिता जी, मैं चाहूंगा कि जो शुरुआत आपकी जो है, पहले जैसे बचपन से ही आपको जो है वाद्य का जो है इंस्ट्रूमेंट के साथ जुड़ना हुआ, तो पहली बार आपको कैसे लगा कि मैं संगीत में कुछ कर सकती हूँ, कब ऐसा एहसास हुआ?
1: जब मैं छोटी थी तब मैं गुरुद्वारे में गाती थी, तब मुझे ऐसा कुछ शौक नहीं था, मैं भक्ति में बहुत थी।
0: अच्छा,
1: छोटी
0: अच्छा।
1: थी तब। फिर ट्वेल्थ में भी मेरा सब्जेक्ट कॉमर्स ही था।
0: अच्छा,
1: ट्वेल्थ के बाद इवन मुझे ये भी नहीं पता था कि म्यूजिक में भी आगे कुछ करियर होता है। मुझे लगता था कि बस ऐसे ही गाते हैं, कुछ नहीं, मुझे जीरो नॉलेज था। मेरे मामा जी प्रोफेसर हैं एक कॉलेज में, उन्होंने मुझे बताया कि एक म्यूजिक भी सब्जेक्ट होता है आर्ट्स में। तो फिर मैंने वहीं जावरा से ही कॉलेज में मैंने बीए लिया, उसमें मैंने एक मेन सब्जेक्ट मेरा म्यूजिक लिया।
0: अच्छा, अच्छा
1: जी।
0: अच्छा, अच्छा,
1: वहां से फिर मुझे थोड़ा पता लगा कि क्लासिकल म्यूजिक भी कुछ होता है।
0: बिल्कुल,
1: पहले मुझे बिल्कुल इसका नॉलेज नहीं था, तो वहीं से मेरी स्टार्टिंग हुई। फिर वहां मतलब मेरे गुरु माँ हैं जिन्होंने मुझे पूरी बारीकियां समझाई संगीत की।
0: बहुत बढ़िया।
1: कि कैसे क्या होता है इसमें, कैसे करियर बन सकता है, आप कैसे बाहर जाएंगे, और बहुत ऑल इंडिया रेडियो के बारे में भी उन्होंने मुझे बताया कि आपका क्या करियर बन सकता है म्यूजिक में। तो वहीं से मेरी स्टार्टिंग हुई म्यूजिक में।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रश्मिता जी, एक और बात मैं पूछना चाहूंगा, जैसे कि आप भजन वगैरह तो गा ही लेते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि कहीं म्यूजिक में ही आपको कुछ करना है, आप फिर आर्ट्स में जब आपको पता चला कि इसमें म्यूजिक है और उसमें आप मास्टरी कर सकते हैं, तो तब आपको एहसास हुआ, वहीं से आपने म्यूजिक के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया।
1: जी।
0: तो आपके जो गुरु रहे उनके बारे में थोड़ा सा बताइए, वो कैसे?
1: मेरी गुरु माँ है प्रीति वर्मा मैम।
0: जी जी जी।
1: वो खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से वो खुद पढ़कर आई थी।
0: अच्छा अच्छा।
1: और वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं।
0: क्या बात है।
1: और उन्होंने 4 साल कर्नाटक में रहकर भी संगीत की शिक्षा प्राप्त करी है।
0: अच्छा, अच्छा, अच्छा।
1: तो उन्होंने ही मुझे एक एक, मतलब मेरी फैमिली रेडी नहीं थी मुझे बाहर भेजने के लिए खैरागढ़, क्योंकि अच्छा। मैं कभी जावरा से बाहर कभी गई नहीं थी, और खैरागढ़ एकदम अलग ही स्टेट हो जाता, क्योंकि मैं एमपी की थी और खैरागढ़ छत्तीसगढ़ में है।
0: अच्छा अच्छा, दोनों स्टेट हो जाते हैं।
1: जी, तो उन्होंने ही मेरी फैमिली को मनाया कि मतलब कुछ कर सकती हैं म्यूजिक में आगे, तो उन्होंने ही पूरी फैमिली को मनाया, पापा से बात करी, मम्मा से बात करी।
0: अच्छा, अच्छा।
1: तो मैं मतलब मेरा संगीत का पूरा श्रेय उनको ही जाता है एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि अगर वो नहीं आती जावरा में तो मुझे नहीं पता रहता कि संगीत में मैं कुछ कर सकती हूँ। मतलब अभी भी मैम मुझे एक एक चीज मैं उनसे पूछती हूँ, और वो मुझे एकदम अपने बेटी जैसे ही रखते हैं, सब बताते हैं। और वो खैर छत्तीसगढ़ के, और छत्तीसगढ़ के लोग बहुत मीठे होते हैं बात करने में भी।
0: बिल्कुल।
1: तो सब उन्होंने ही मुझे बताया।
0: छत्तीसगढ़ में आर्टिस्ट भी काफी हैं।
1: जी, बहुत हैं।

0: कुछ, उन्होंने मुझे सारे उनके नोट्स दे दिए थे जब मैं जावरा में थी। और उनका सिखाने का तरीका ऐसा था कि वो चीजें बातों बातों में ही याद करवा देती थी उनको, हमको समझने की ऐसी जरूरत नहीं पड़ती थी।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: तो शी इज लाइक माई मदर, उन्होंने बिल्कुल मुझे एकदम बेटी जैसा सिखाया। और भी सब स्टूडेंट्स को उन्होंने पहले मुझे खैरागढ़ भेजा, उसके बाद वहां जितने स्टूडेंट्स थे सबको वो मेरा ही एग्जाम्पल देती थी। और अभी भी 2-3 स्टूडेंट्स आ गए हैं खैरागढ़ में जावरा से।
1: रश्मित जी, बहुत ही अच्छा लगा आपने अपने गुरु माँ के बारे में बताया, और मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। उनका स्टाइल ऑफ टीचिंग जो है बहुत ही यूनिक है जो उन्होंने आपको सिखाया। तो मैं चाहूंगा कि जैसे शुरुआत उन्होंने किन चीजों से, उनसे क्या सीखा पहले पहले?
0: जी, मैंने उनसे एक्चुअली उस टाइम ऐसा हुआ था कि कोरोना आ गया था,
1: हाँ।
0: तो हमारी क्लासेस बहुत कम लग पाती थी, फिर भी उन्होंने मुझे बहुत सारी बेसिक चीजें बताई थी, जैसे रियाज कैसे किया जाता है, खाने पीने में क्या परहेज करना चाहिए,
1: हाँ।
0: और किस टाइम रियाज करना चाहिए। वैसे रियाज का कोई समय नहीं होता है,
1: हाँ, बिल्कुल,
0: हम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन एक गले के रियाज के लिए हमें खर्च का रियाज जरूरी होता है, जो हमें सुबह
1: करना
0: जब हमारी आवाज थोड़ी भारी रहती है। तो बहुत सारी उन्होंने बारीकियां मुझे संगीत की बताई कि आप कैसे रियाज करो, पलटे दिए कि आप ये वाले पलटे करो, आप ये बड़े आर्टिस्ट को सुनिए, क्योंकि हमें सुनने से ज्यादा समझ में आता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो उन्होंने मुझे लिस्ट दी कि आप ये बुक्स है आप इसको पढ़िए, और मुझे यूट्यूब पे भी वो बताते रहते थे कि आप इनको सुनिए। और आप उनका खुद का भी यूट्यूब चैनल है, तो मैं उसके माध्यम से भी,
1: क्या नाम से उनका यूट्यूब?
0: प्रीति वर्मा,
1: प्रीति वर्मा डालने से आपका उनका यूट्यूब खुल जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जो खर्च की बात हम लोग, चलो मेरे को भी वो खर्च जब भी बोलते हैं तो वो समझ में थोड़ा सा कम आता है, तो थोड़ा सा बताइए कैसे शुरुआत हुई।
0: खर्च ऐसा रहता है कि हम जैसे हम बोलते हैं 3 सप्तक रहते हैं,
1: हाँ।
0: एक रहता है मंद सप्तक, एक मध्य सप्तक, एक रहता है तार सप्तक। तो हम लोग मध्य सप्तक से नीचे उतरते हैं मंद सप्तक, जैसे अगर हम सा लगा रहे हैं तो सा से हम जैसे नीचे उतरते हैं, ऐसे जैसे सा नी धा पा मा गा, ऐसे करके इसे हम मंद सप्तक बोलते हैं। इससे आवाज में हमारी खनक आती है, थोड़ा भारीपन आता है, जिससे हम कभी कुछ गाते हैं तो उसमें बेस अच्छा रहता है। तो इसका रियाज बहुत जरूरी रहता है जब हम नीचे उतरते हैं। और तार सप्तक वो रहता है, तार सप्तक वैसे हमको बोलते हैं कि शाम को करना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: तो वैसे हम 3 सप्तकों का रियाज साथ में कर सकते हैं, सुबह अगर हमने कर लिया मंद सप्तक, फिर मध्य कर लो, फिर तार कर लो। तो अगर हमारा मध्य सप्तक है तो मध्य सप्तक ऐसा है, सारी गामा पाधानी सा, ये यहाँ खत्म हो गया मध्य सप्तक। अब तार यहीं से हमारा सा चालू हो जाएगा।
1: अच्छा,
0: जैसे हमारा फिर से मैं मध्य लेके फिर तार पर जाती हूँ।
1: जी बिल्कुल, बिल्कुल।
0: सा

0: ये ऊपर चला जाता है, तार सप्तक का रियाज है जी।
1: चलिए अच्छा, अब इसकी प्रैक्टिस करने के लिए क्या हमें इन्हीं चीजों के साथ प्रैक्टिस करना है या कुछ और भी चीजें दी जाती
0: हैं? भाई जी, इसमें बहुत सारी चीजें रहती हैं, लेकिन हमको ऐसे बोलते हैं कि अगर आप एक ही चीज को पहले पक्का करोगे
1: बिल्कुल,
0: तो आप आगे और अच्छे से इसे निभा पाओगे चीजों को। तो पलटे होते हैं बहुत सारे, जैसे हमने पहले सारे गामा का रियाज करा, तो इसके बाद हम इसकी थोड़ी हम बीपीएम बढ़ाते हैं, मतलब स्पीड बढ़ाते हैं। जैसे हम अभी हम कह रहे हैं सारी गा, तो और स्पीड सारी गा मा पा धा नी सा, फिर हम इसे आकार में करते हैं आ, ऐसे करके इसकी स्पीड बढ़ाते हैं, तो इससे हमारे गले में थोड़ा बेस बनता है। फिर इसके ही पलटे रहते हैं, अलंकार रहते हैं, सा सा रे रे गा गा मा मा, डबल हुआ ट्रिपल सा सा सा रे रे रे गा गा गा, ऐसे करके बहुत सारे पलटे रहते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कैसे आप जो है रियाज या खरज का प्रैक्टिस करते हैं, ये आपने बताया। और मुझे लगता है कि ये सारी चीजें जो है कभी कभी बहुत बोर लगता है सुनने में, लेकिन जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उससे आपका गला निखरता है और आपकी प्रैक्टिस बढ़ती है, और यही एक चीज है जो आपकी आवाज को बनाए रखता है।
0: जी जी भाई जी, बिल्कुल।
1: तो आइए दोस्तों आगे

0: हैं। और अगर आप पहली बार अगर कभी किशोर दा के पुराने कोई एल्बम वाले गीत या स्टेज शो को अगर आप किशोर दा के सुनेंगे तो उनको कहा जाता था कि वो पहले ही ये सारी चीजें जो है प्रोग्राम के पहले लोगों को एंगेज करते थे और लोगों के नाम के साथ में रियाज किया करते थे वो, और हर एक को नाम लेके उसके साथ में जो है रागों को वो प्रेजेंट करते थे, सा सा रे रे रे गा गा गा गा मामा पापा पापा ऐसे करके जो है फिर उनके नाम लिया करते थे। तो इससे वो ये वो एक उनका ट्रेंड था, वो एक तराना जैसे उनको सुनने को अच्छा भी लगता था लेकिन एक्चुअली में वो उनकी प्रैक्टिस हो जाती थी और उसके बाद उनका गाना शुरू हो जाता था। तो ये एक बहुत ही सुंदर जो टेक्निक माना, लोगों को ये भी मालूम नहीं कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनको एंटरटेन भी हो रहा है और दोनों चीजें हो रहा है। तो वो चीजें जो है शायद कई बार हम लोग जो है ये सोचते हैं कि कैसे हम लोग इन चीजों को करें, प्रैक्टिस कैसे करें, कैसे रियाज करके फिर अच्छा प्रेजेंटेशन दे अपनी। तो बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि आप किसी न किसी टेक्निक के माध्यम से लोगों के साथ जुड़े, और कभी कभी गाना से ज्यादा तराना भी अच्छा लगता है। बिना शब्दों के वहां पर जो है मेलोडी आता है तो वो बड़ा एक एक आर्टिस्ट की खूबसूरती उसमें नजर आता है कि कैसे ये चीजें जो है कर रहे हैं, है ना। तो अभी आप रश्मित जी को भी सुन रहे होंगे तो उनका भी जो सा सा सा ये जो उन्होंने किया तो वो सारी चीजें हमें जो है एक अलग फील देता है। तो ये अब जितना अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी उतना मेलोडियस वो चीजें बनेगा, और जब मेलोडियस हो गया तो फिर गाना आपका अच्छा ही निकलेगा, ये गारंटी है। तो ये आपको समझना है। तो आइए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और रश्मिता जी से ही एक बहुत ही प्यारा सा गीत हम लोग सुनेंगे रश्मित कौल जी से। तो एक गीत सुनाइए, अभी वक्त हो गया एक ब्रेक का
1: जी। तो मैं लाइट म्यूजिक शब्द आप जो बोले
0: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए लाइट म्यूजिक,
1: लाइट म्यूजिक ही सुना दूं
0: जी जी
1: जी। एक मेहंदी हसन जी की गजल है,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: मैं वो सुनाना चाहूंगी। ये राग भीम पलासी में है।
0: बहुत बढ़िया
1: जी। निशा पनी सागरे नी पसा

मागा रे सा। जिंदगी

0: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। करियर इन म्यूजिक इस विषय को लेकर रश्मिता कौर जी से बातें हो रही हैं और बड़ी अच्छी बातें उन्होंने बताया अपने गुरु के बारे में, और इसके साथ में उन्होंने एक प्रेजेंटेशन भी आपको दिया है, बहुत ही प्यारा सा मेहंदी हसन का गजल आपने सुना। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और जैसे कि म्यूजिक की बात हम लोग जब करते हैं तो म्यूजिक में सबसे ज्यादा जो है, कई बार जो है माता पिता उसके लिए रेडी नहीं होते बच्चों को म्यूजिक में करियर करने के लिए, तो इसके लिए आप क्या बताएंगे कि कैसे हम लोग अपने घर वालों को समझाएं कि आज म्यूजिक में भी अच्छा करियर बन सकता है।
1: जी भाई जी, ऐसा होता है फैमिलीज में कि संगीत के लिए नहीं मानते। बहुत लोगों को लगता है कि संगीत में सिर्फ सारे गामा ही होता है, जबकि सा लगाना ही बहुत मुश्किल होता है। बहुत साधना चाहिए रहती है, बहुत रियाज चाहिए रहता है सिर्फ सा लगाने के लिए। जब मैंने म्यूजिक को अपना करियर चूज करा तब मुझे भी बहुत लोगों ने बोला कि सिर्फ सारे गामा तो रहता है, क्या करना रहता है इसमें। इवन जहां मैं पढ़ाती हूँ वहां के भी स्टाफ मेंबर्स

0: बोलते हैं कि आपका सब्जेक्ट तो बहुत इजी है, तो मैं उनको बताती हूँ कि एक
1: इजी है तो करके दिखाओ
0: जी, इसमें सिर्फ आप सा ही लगा के बताइए, क्योंकि सा लगाने के लिए इतनी साधना, मतलब जैसे हम अगर हम भगवान को, जैसे अगर हम प्रेयर करते हैं तो हम कितनी उसके लिए भी हम साधना करते हैं भगवान से, क्योंकि संगीत भी ईश्वर से मिलने का माध्यम है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: जब हमारा मन उदास रहता है तो हम भगवान को याद करते हैं, हम बाबा को याद करते हैं, बट अगर हम जैसे म्यूजिक है तो हम भगवान को याद भी म्यूजिक के द्वारा ही करते हैं, अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो भी हमें गीत लगाते हैं, अगर हम गुरुद्वारे में शब्द कीर्तन करते हैं तो वो भी एक म्यूजिक ही है, मुस्लिम्स में भी कवाली रहती है, चर्च में भी प्रेयर्स रहते हैं, तो म्यूजिक हर जगह है। तो हम अगर कहते हैं कि म्यूजिक ईजी है तो म्यूजिक ईजी तो नहीं है, लेकिन हम उसको ईजी बना सकते हैं, हम रियाज करके, प्रैक्टिस करके और साधना करके अच्छे से हम म्यूजिक को अपना करियर कैसे बना सकते हैं। मैं इसके बारे में बताती हूँ कि म्यूजिक में सिर्फ हम एक म्यूजिक टीचर भी बन सकते हैं, हम कॉलेज में प्रोफेसर भी बन सकते हैं, इसमें जॉब हमें प्राइवेट स्कूल में भी मिलती है, गवर्नमेंट स्कूल में भी मिलती है, नवोदय स्कूल में भी मिलती है, केंद्रीय विद्यालय स्कूल में भी मिलती है, एकलव्य स्कूल में भी मिलती है। इसके अलावा हम अपनी खुद कॉम्पोजिशन बना सकते हैं, हम लिरिक्स लिखकर उस सॉन्ग को निकाल सकते हैं बाहर।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: बहुत मतलब इसमें रहता है म्यूजिक में, हम खुद की कॉम्पोजिशन अगर बनाते हैं तो उसमें भी ऐसा रहता है कि मतलब वो बहुत हम आगे बढ़ सकते हैं, अगर हम बॉलीवुड में जाना चाहें, खुद का भी अगर आज यूट्यूब चैनल भी बहुत बना सकते हैं हम उसमें, तो उसके माध्यम से भी हम म्यूजिक में आगे बढ़ सकते हैं। आजकल ऐसा है कि बहुत लोग संगीत में शिक्षा नहीं भी लेते हैं, फिर भी वो लोग इतनी आगे पहुंच जाते हैं उनकी मधुर आवाज के कारण। तो ऐसा है कि अगर फैमिली को भी मनाने की बात हो तो पहले ऐसा होता था कि फैमिलीज नहीं मानती थी, बट मुझे नहीं लगता कि अब कोई फैमिली ऐसे मना करती होंगी, क्योंकि अब म्यूजिक ऐसी चीज है कि म्यूजिक के द्वारा ही सब लोग बहुत ज्यादा फेमस भी हो जाते हैं, अर्निंग भी होती है, अगर हम शोज करते हैं पार्टीज में या कहीं प्रोग्राम्स होते हैं तो उसमें भी अर्निंग जी, स्टेज शोज
1: जी। रश्मिता जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि कैसे हम लोग जो है म्यूजिक में अपना करियर को बना सकते हैं, और बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास कि हम लोग स्काई इज द लिमिट कह सकते हैं, कि बहुत सारी चीजें हैं, आप इसके साथ खुद अपना जो है गाने पब्लिश करके भी पैसे कमा सकते हैं और फिल्मों में गाकर भी पैसे कमाए जा सकते हैं, और इसके साथ में आप अपना खुद का बैंड भी बना सकते हैं जिसके जरिए आप अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं, कंपनी आपकी बना सकते हैं जिसके जरिए आप बहुत पैसा कॉर्पोरेट कंपनी बना सकते हैं। तो चलिए, ये हुआ इनकम सोर्स कैसे जनरेट कर सकते हैं आप। इसके अलावा म्यूजिक सीखने से आपको संतोष मिल जाता है, खुशी मिल जाता है, और दोस्त जो आपके आसपास में लोग रहते हैं उन सभी को भी आपको जो है खुशी देने का एक माध्यम बन जाता है, जो मैंने शुरुआत में ही बताया था। तो ये सारी चीजें हैं, म्यूजिक हम सभी को प्रिय लगता ही है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो संगीत से अलग होगा या संगीत जिसको पसंद नहीं होगा, गाना सुनना पसंद नहीं होगा, म्यूजिक सुनना पसंद नहीं होगा, सभी लोग सुनते भी हैं और पसंद भी करते हैं, हर व्यक्ति की अपनी चॉइसेस भी होती है संगीत में। तो इसका मतलब ये है कि जो सबकी चाहत है वो आप म्यूजिक के माध्यम से पूरा कर सकते हैं, और किसी भी धर्म में जैसे अभी रश्मिता जी ने बताया, रश्मित कौर जी ने, कि कैसे अलग अलग धर्मों में भी जो है संगीत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, आपको चाहे प्रेयर करना हो आपको, या फिर आपको जो है पढ़ना हो, या फिर आपको जो है किसी से बात करना हो, तो ये सारी चीजें जो है आपको जो है इबादत करना हो तब भी संगीत आपका जो है माध्यम बनता है। एक और बात मैं पूछना चाहूंगा, जैसे कि हम लोग अब शुरुआती दौर में प्रोफेशनली हम लोग सीखना चाहे संगीत को, तो क्या उसमें गुरु का कितना इम्पोर्टेंट रोल रहता है, गुरु हमें सिलेक्टेड करना चाहिए या फिर जैसे ही आपको बिना गुरु के भी कर सकते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है?
0: एक्चुअली गुरु का होना बहुत जरूरी है
1: जी, जी, जी।
0: बिना गुरु के हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं
1: जी, जी, जी, जी।
0: और गुरु हम ऐसा मानते हैं कि हम अपने आप को इतना योग्य नहीं मानते कि हम गुरु को चुने, गुरु हमें चुनते हैं।
1: अच्छा अच्छा
0: जी, हम क्योंकि गुरु जो वो गुरु ही इसलिए बने हैं क्योंकि उन्होंने सीखा है इतना, और हम तो उनसे सीखने जा रहे हैं, तो अगर हमारे पास कभी ऑप्शंस भी आते हैं कि आपको किस गुरु से सीखना है।

0: तो हम कभी अपनी चॉइस नहीं बता सकते, क्योंकि हम कैसे चूज करेंगे कि ये गुरु अच्छे हैं और ये गुरु अच्छे नहीं है। तो गुरु सब अच्छे होते हैं, गुरु सबको जैसे बाबा सबको एक जैसा ज्ञान देते हैं, नंबर वार रहते हैं सब लोग, कौन कितना ले रहा है। ऐसी स्कूल में भी रहता है कि टीचर सबको एक जैसा ज्ञान देते हैं लेकिन वो स्टूडेंट्स पे रहता है। ऐसे संगीत में भी गुरु सबको एक जैसा ज्ञान देते हैं, वो स्टूडेंट्स पे, शिष्य पे डिपेंड करता है कि वो अपने गुरु से कितना ले रहे हैं, गुरु की सेवा कितना कर रहे हैं, गुरु के दिल में कितना बस रहे हैं। मतलब अगर हम गुरु से सीख रहे हैं तो हमको बिल्कुल शिष्य बन के ही सीखना चाहिए। हमें ये नहीं कि आपने ऐसा सिखाया था, हमारे दूसरे गुरु जी उन्होंने ऐसा सिखाया था। मतलब एक रहता है स्टूडेंट्स में जो टीचर्स को वो बोलते हैं, और गुरु का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं होगा कि हमको स्टार्टिंग कैसे करनी है, अगर स्टूडेंट्स भी अगर स्कूल जाते हैं तो अगर वहां टीचर ही नहीं रहेंगे तो वो कैसे सीखेंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो संगीत के लिए भी गुरु का होना बहुत जरूरी है। तो गुरु का होना भी जरूरी है और शिष्य का भी उतना ही। जैसे अगर गुरु अपने 100% दे रहे हैं तो शिष्य को भी अपना 100% देना पड़ेगा, नहीं तो वो अधूरा रह जाएगा सब कुछ।
1: अच्छा, संगीत सीखने में जो है ना, कुछ चैलेंजेस है, क्या चैलेंजेस है थोड़ा बताइए।
0: संगीत सीखने में चैलेंजेस तो यही है कि हमें अपना पूरा 100% देना पड़ता है संगीत को। चैलेंज तो हम खुद को ही देते हैं एक तरह से, कि हमें अगर जैसे अगर हमें रियाज करना है, हम अगर एक दिन भी उसे छोड़ते हैं तो हम पीछे ही रह जाते हैं। उसको कंटिन्यू हमको रखना पड़ता है संगीत, तो हमको खुद को पहले निश्चय करना पड़ता है। और गुरु पे हम सबसे पहले, अगर हम गुरु से सीखते हैं तो हमको सबसे पहले अपने गुरु पे ट्रस्ट होना चाहिए। हमें डाउट नहीं होना चाहिए कि अगर हमें सिखा रहे हैं, क्या पता सही सिखा रहे हैं या गलत सिखा रहे हैं, क्योंकि सब में स्टूडेंट्स में रहता है ऐसा कि इनके पास जा रही हूँ क्या पता मुझे कैसे। तो निश्चय होना बहुत जरूरी है कि गुरु कैसे। तो यही रहता है कि हम जितना रियाज करेंगे, गुरु जी ने अगर कोई एक चीज बताई है, तो म्यूजिक में ऐसा है कि हमारी क्लासेस रेगुलर नहीं होती हैं। अगर हम किसी से पर्सनल क्लास भी लेते हैं तो मंथ में हमारी कभी 2 क्लास कभी 5 क्लास रहती है। उसका रीजन ये है कि एक बार अगर आपको गुरुजी ने कोई चीज बताई है तो आपको उसको पूरा हफ्ता प्रैक्टिस करनी है, पूरा वीक प्रैक्टिस करनी है, तो वो आपको नेक्स्ट चीज बताएंगे। तो वो जो वो बेसिक चीजें हमें बताते हैं तो उसका ही हम रियाज इतना करते हैं तो आगे के लिए हम चीजों के लिए परफेक्ट खुद ही बन जाते हैं कि हम नेक्स्ट चीज जो है हमको वो कैसे करनी है। और नहीं करेंगे तो हम फिर वही जीरो पर आ जाएंगे। जी
1: चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया कि कैसे हम लोग, म्यूजिक का जो चैलेंज है वो यही है कि आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस में ही या रियाज करने में आपको थोड़ा अलग से आ सकता है। वहां पर अगर आप उस चैलेंज को अगर आपने ओवरकम किया तो बहुत अच्छा हो सकता है। अगर वहां पर आप टूटे या फिर थोड़ा सा लेजीनेस रहा तो वो हमेशा के लिए बना रहता है। इसलिए म्यूजिक में सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि आपको 2 क्लास मिले महीने में, 3 क्लास मिले, लेकिन रोज आपको तो प्रैक्टिस करना ही है, ये आपका चैलेंज है। अगर आप सोच रहे हैं कि चलो गुरु फ्राइडे को ले रहा है, उसके पहले मैं थर्सडे को प्रैक्टिस करके अच्छी तरह से फ्राइडे को मैं सुनाऊंगा थर्सडे को प्रैक्टिस करके, तो ये सारी चीजें जो है आपको बड़ा मुश्किल कर देगा। आप ऐसी चीजें बिल्कुल संगीत में नहीं चलता है। इवन जो अच्छे से गा रहे पॉपुलर संगीतकार है वो भी रियाज आज भी कर रहे हैं। जितना रियाज करेंगे आप उसमें, उतना ही आपका गला अच्छा बन जाता है और आप अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, सुरों पे आपकी पकड़ बनी रहती है, रागों पर आपकी पकड़ बनी रहती है। तो अगर ये चीज जो है संगीत में, यही चैलेंज है कि आपको प्रैक्टिस रेगुलर रियाज रेगुलर करना पड़ेगा, सबसे बड़ा चैलेंज। और सीखते वक्त तो हर चीज को जो है, जैसे अब राग की बात आती है तो हर राग का अपना एक स्टाइल है, तो सब में सब सुर लगते हैं ऐसा भी नहीं है, किसी में सुर कम भी हो जाते हैं, किसी में सुर जो है पूरे के पूरे लगते हैं, आरोह अवरोह, ये सारी चीजें आपको एक तो मैथमेटिकली आपको याद भी रखना पड़ता है। तो यहां पर संगीत के साथ साथ कुछ गणित भी है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं रश्मित कौर जी से। और अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक, सुनते एक बहुत ही प्यारा संगीत। आप सुनाए हैं रिनुवाद 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। रश्मित कौर हमारे साथ हैं और संगीत में कैसे हम अपना करियर बने, अपने जीवन को बनाएं, इस विषय पर बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं और आपने उनको सुना कि किस तरह से हमें जो है संगीत सीखना आसान भी है, मुश्किल भी है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि सभी का पसंद होते भी सभी लोग गायक नहीं बन पा रहे हैं ना, तो यहां मुश्किल है। अब मुश्किल किस बात पे है वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बात बताई। अब इसके बाद अगर मैं एक और बात जोड़ना चाहूंगा, संगीत और मैथमेटिक्स साथ साथ चलते हैं, तो बोलेगा अरे सर अभी एक नया चैप्टर क्यों जोड़ रहे हो आप? लेकिन आप समझेंगे अभी। रश्मित कौर जी, संगीत में मैथमेटिक्स कैसे काम करता है थोड़ा सा?
1: संगीत देखा जाए तो मैथ्स ही है एक तरीके से।
0: फिर से वापस आओ, मैंने विद्यार्थी मित्र कंफ्यूज तो नहीं हो रहे?
1: ऐसा है कि जो हमारा शास्त्रीय संगीत है
0: जी जी,
1: ये निबद्ध है। अगर जैसे अगर हम कोई ताल में इसको गा रहे हैं, वो ताल जितने मात्रा की है हमको उतनी ही मात्रा में उसको खत्म करना रहता है। अगर सम पर अगर हम आ रहे हैं तो अगर एक भी मात्रा, मतलब एक भी मात्रा अगर ऊपर नीचे हुई तो हमारा गलत हो जाएगा। शास्त्रीय संगीत में ऐसा बोलते हैं कि एक बार बेसुरे हो जाओ लेकिन बेताले मत हो। बेताल होना मतलब सब गड़बड़ हो जाता है। तो हम चाहे तो हम इसे अपनी फिंगर्स पे काउंट करके भी गा सकते हैं, नहीं तो अगर हमें ताल समझ आती है तो हम मन में या हाथ पे ऐसे बीट देकर भी हम गा सकते हैं। कोई भी अगर हम ताल, हर जो मतलब बंदिशें रहती हैं वो बहुत सारी तालों में निबद्ध रहती है। जैसे मैंने सीखा था भीम पलासी, उसमें मैंने एक छोटा ख्याल बंदिश सीखी थी, जा रहे अपने मंदिरवा। उसमें ऐसा था कि स्टार्टिंग में मुझे बहुत दिक्कत आती थी कि ये कैसे है काउंट, कैसे म्यूजिक में कैसी काउंटिंग रहती है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इसमें भी हमको कुछ ऐसा रहता है। और काउंट करके गाना कुछ लोग कहते हैं कि गलत है, जबकि ऐसा कुछ गलत नहीं है। जबकि जो बड़े आर्टिस्ट रहते हैं वो भी काउंट करके गाते हैं, और अगर उनको ताल, जो बड़े आर्टिस्ट हैं उनको ताल ऐसे समझ में आती है कि उनको काउंट करने की नीड नहीं भी होती है, उनको समझ आता है। जब मुझे शास्त्रीय संगीत के बारे में नहीं पता था तो मुझे लगता था कि तबला एक जैसा ही प्ले करता है, ऐसा नहीं पता था कि इसमें भी ताल होती होंगी, ऐसा कुछ मुझे नहीं पता था। जब मैं खैरागढ़ गई वहां जाके मुझे पता लगा, अच्छा ये वाली ताल प्ले हो रही है, अब इसके बाद ये वाली ताल प्ले हो रही है, उसमें भी काउंटिंग रहती है कि एक ताल 8 मात्रा की है, एक ताल 16 मात्रा की है। तो उसमें हम जैसे फिंगर्स पे ऐसे ऐसे करके काउंट करते हैं, ऐसे धा धिन धिन धा धिन धिन धा तिन तिन ता धिन धिन धा, तो ये ऐसे हम काउंट करते हैं, काउंटिंग के हिसाब से हम गाते हैं। जैसे अगर हम यहाँ से उठा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अगर हम 7 से उठा रहे हैं तो जा रे अपने मन, ये इसको सम बोलते हैं। यहाँ पर आते हैं तो मंदिर वा जा तो

ने पहले जहाँ से जहाज स्टार्ट करा था वहीं पे हमको आना चाहिए। अगर हम इधर आ गए तो मतलब हमारा गलत हो गया, हमने काउंटिंग गलत कर ली। तो यहाँ से जा जा रे अपने मंदिर वा, जा जा रे, ऐसे करके काउंट करके हम गाते हैं। तो हमको गुरुजी ने यही सिखाया था कि आप स्टार्टिंग में तो आप काउंट करके गाओ, फिर धीरे धीरे आदत हो जाती है तो हमको काउंट करने की नीड ही नहीं रहती। और अगर हाथ पे नहीं काउंट करें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं,

ऐसे करके मैंने एक बंदिश सीखी थी और बहुत सारी, अगर हम इसका बड़ा ख्याल गाते हैं विलंबित जिसको कहते हैं, उसे भी हम जैसे वो विलंबित मतलब एकदम स्लो हो जाता है, तो उसमें भी मैंने विलंबित एक सीखा था।

0: मतलब ये सम आ गया। तो अगर हम गा रहे हैं तो अगर हमने बेर, जैसे अभी मैंने लिया बेर, तो अगर मैंने बेर कर दिया, एक भी मात्रा हो गई, तो वो पूरा गलत हो जाएगा। अगर संगतकार साथ में बैठे हैं तबले के,
1: बिल्कुल,
0: तो वो देखने लग जाते हैं कि इन्होंने गलत गा दिया, वो फिर हमको बताते हैं कि ये अब आएगा सम। स्टार्टिंग में मेरे साथ होता था और स्टार्टिंग में सबके साथ होता है,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: कि हम सुर में तो गाते हैं लेकिन हम ताल में नहीं गा पाते, तो इसके लिए यही है कि हमें रियाज करना पड़ता है।
1: बिल्कुल।
0: और हमारा ये है कि हमें तबले के साथ रियाज करना चाहिए।
1: सही बात।
0: तबले के साथ रियाज करते तो हम बेताल नहीं है, बेताले नहीं होते, हमें पता रहता है कि इस ये मात्रा है, ये ताल चल रही है, तो हमको कैसे गाना है, कहाँ से उठाना है, कहाँ हमको पॉज लेना है। तो ये अगर हम तबले के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी कभी इसमें गलती नहीं होगी ताल में।
1: चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया, और मुझे लगता है कि जो हमारे विद्यार्थी मित्र हैं वो सोच रहे होंगे संगीत सीखना आसान है, लेकिन आसानी के साथ साथ कुछ चीजों का जो है परफेक्शन भी इसमें चाहिए होता है, जिसके वजह से आपकी पहचान बनती है। अगर आप मात्राओं को अगर इधर उधर बेताले हो जाते हैं तो फिर वो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, सुनने वालों को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो दोनों आपको जो है, जब भी आप गाते हैं, बहुत सारे लोगों को संगीत के साथ गाना बड़ा अच्छा लगता है, और बहुत सारे लोगों को सोलो में भी गाते हैं तो अच्छा लगता है। तो ये पूरी प्रैक्टिस के ऊपर रहती है कि कितना आपने अब उसको रियाज किया है, कितना आपकी जो है इन चीजों के साथ बेसिक जो है, अगर कोई गाना आप गाते हो तो गाना ये फिनिश प्रोडक्ट है मेरे भाई, इसके पहले जो है बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर कोई गाना लिखा है तो वो किस ठाट में बनेगा और किस तरह से उसमें राग आएगा और किस तरह से उसको डेकोरेट किया जाएगा, ये सारी चीजें जो है एक कंपोजर, सिंगर, ये सारे लोग मिलके उसके बारे में सोचते हैं, और जब वो सारी चीजें तैयार हो जाता है उसके बाद गायक को वो चीजें बताई जाती है कि इस राग में ये चीजें ऐसे ऐसे आपको गाना है। तो फिर सिंगर जो है उसको उस ताल को समझता है, उस राग को समझता है, फिर उसको अपने तरीके से उसको उस लहजे में, उस मोड में, उस फील में गाता है। फिर उसके बाद वो रिकॉर्डिंग पूरी तरह से होने के बाद, सारा सेट होने के बाद आपके पास फिनिश प्रोडक्ट आता है ना। लेकिन उसके पहले बहुत सारा जो है काम होता है, जिसके बारे में अभी हम लोग रश्मिता कौर से सुन रहे थे। तो ये सारी चीजें हैं, और वो सारी चीजें जब पूरी हो जाती है तब जाके आपके पास गाना आता है ना। तो इसलिए बहुत जरूरी है, सिर्फ गाना सुनने से आपको आसान अच्छा लगता है, लेकिन उसके पीछे जो है चार पांच लोगों का बड़ी मेहनत रहती है, तब जाके वो चीजें बनी है। तो सबसे पहले तो एक और बात मैं पूछना चाहूंगा, जितना आपकी रुचि रहेगी उतना ही चीजें जो है वो अच्छा आप सीख पाएंगे। अगर संगीत में रुचि रखते हैं तो आप तो जैसा टाइम मिले वैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आपकी इंटरेस्ट भी देखिए और उसके बाद फिर आप इस चीजों में आगे बढ़ेंगे। तो एक और बात मैं पूछना चाहूंगा जाते जाते, जैसे कोई गाना बनता है
0: जी,
1: तो कंपोजिंग्स वगैरह जिसको बोलते हैं, तो उसमें जैसे कि

0: कैसे शुरू हो जाता है? थोड़ा सा कोई ऐसा कंपोजिंग किया हो आपने या आपने गुरु के साथ, गुरुमा के साथ कुछ चीजें, तो वो एक एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए।
1: एक्चुअली मैंने अभी तक कुछ कंपोज करा नहीं है।
0: जी जी,
1: मुझे लिखने का शौक है। मैं संगीत पर मैंने कविता लिखी है।
0: अच्छा अच्छा
1: जी, मैं आपको चार लाइन उसकी सुनाती हूँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल, सुनाइए।
1: इसका टाइटल है वह है संगीत।
0: वह है संगीत।
1: जीवन जीने की कला है संगीत, ईश्वर से मिलाप है संगीत। जीवन जीने की कला है संगीत, ईश्वर से मिलाप है संगीत। महफिल में आने का सबब है संगीत। जो शहर में करे रियाज वह ईश्वर से करे मिलाप। शहर मतलब जो सुबह अमृत वेला हम जिसको बोलते हैं, जो हम बोलते हैं जो हम जिस टाइम हम रियाज करते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि अगर हम सुबह उठ के रियाज करते हैं मतलब हम ईश्वर से मिलाप करते हैं, हम सरस्वती माँ से मिलाप करते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो यही है, मैंने दो चार लाइन लिखी थी और वैसे मेरे फोन में है, मुझे एकदम अभी याद नहीं आ रही।
0: कोई नहीं कोई नहीं, हम समझ गए कि आप लिखते भी हैं और कंपोजिशन का अभी आपके पास वो चीजें नहीं है।
1: मैं स्टार्ट करूंगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि आप उसे भी एक बार अनुभव वो भी आपके पास आ जाए। और जाते जाते मैं चाहूंगा कि एक आपका पसंदीदा गीत हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को सुनाइए। कोई भी फिल्मी गीत, कोई भी मोटिवेशनल, कोई भी गीत सुनाइए। जी
1: जी, ऐसे तो बहुत सारे हैं।
0: जी जी जी, अभी जो याद आ रहा है वो सुनाइए।
1: जी
0: ओके, सुनाइए।
1: ये गीत मुझे मेरी दादी ने सिखाया था।
0: अच्छा।
1: दादी जी गाते थे पहले दादाजी के लिए, तो उन्होंने मुझे सिखाया। अच्छा। था कि दादाजी को बहुत पसंद था। तब मैं बहुत छोटी थी, तब मुझे गीत दादी से ही मैंने पहली बार सुना था। फिर जब मुझे बहुत बाद में याद आया तो फिर मैंने इसे यूट्यूब पे सुना था।
0: अच्छा।
1: ये सॉन्ग खानदान मूवी का है, तुम ही मेरे मंदिर।
0: हाँ, तुम ही मेरे।
1: मैं स्टार्ट करती हूँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल।

हूँ। बहुत रात में

0: चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर,
1: बहुत ही अच्छा। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में हमने रश्मित कौर को सुना, बहुत ही प्यारा संगीत आपको सुनाया उन्होंने, और संगीत की यात्रा के बारे में उन्होंने बताया, अपनी भी बताया और आप कैसे इसमें अच्छा कर सकते हो ये भी आपको बताया है। तो चलिए, आशा करूंगा आपको आज के इस एपिसोड में संगीत में करियर करने का बहुत ही सुंदर जो है बातें आपको सुनने को मिले। अगर आप सोच रहे हैं संगीत में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप जरूर आगे बढ़े और जो बातें आपको बताई गई हैं उस पर जरूर काम कीजिए। एक बार जो है आप इन सारी चीजों को ध्यान में रखें और आगे बढ़ते जाएं, ऐसी शुभ आशा के साथ फिर से एक बार रश्मित कौर जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। फिर मिलते हैं और ओम शांति। चलिए मित्रों, आप सभी का करियर आप संगीत में अच्छा करें ऐसी शुभ आशा के साथ फिर मिलते हैं अगले कड़ी में कुछ नई बातें लेकर। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: गाँव न गिरता, अब तो गाना आता है तुम्हें।
1: मुझे नहीं आता, मैं भी नाच दिया। आजकल तो गीता जी खूब गाती है।
0: हाँ हाँ गाइए ना।

0: सर, इतनी तेज चलाने की क्या जरूरत है सर?
1: जिंदगी में मैंने कभी हार नहीं मानी विनोद, और वो भी एक गलत तरीके से ओवरटेक करती हुई गाड़ी से।
0: दैट्स द स्पिरिट सर।

0: हमारी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: परिवार की जड़ है हमारे बुजुर्ग। पात्र परिचय: वेदांत, आदित्य प्रकाश, यश, पंकज, सैंडी, दृष्टि, आकाश, आदित्य, उन्नति। लेखिका: सुधापुरी।
2: चलो भाई, जल्दी करो, नुक्कड़ नाटक नहीं करना क्या?
3: करना है, करना क्यों नहीं,
4: पर नाटक का कोई टॉपिक तो सोचो।
3: मैं एक बता सकता हूँ।
5: तो बताओ ना, सोच क्या रहे हो?
3: हमें अपने घर के बुजुर्गों का आदर करना चाहिए।
6: हाँ, ये तो बहुत अच्छा है।
7: इस बार मेरे जन्मदिन पर मेरे मम्मी पापा मुझे एक वृद्ध आश्रम लेके गए थे।
3: अच्छा, कैसा था वहाँ पर?
7: ऐसे तो सब सहूलियत थी, पर सबके चेहरे पर अजीब सी उदासी थी। इस वृद्ध आश्रम के सब लोग गरीब नहीं थे। एक हिस्से में ऐसे थे जिनके बच्चे उनका खर्चा भेज रहे थे और उनके लिए काफी आराम था, पर कुछ ही दूर एक ऐसा विंग था जहां वो लोग थे जिनका खर्चा लोगों की मदद से चलता था।
4: तो तुमने अपना जन्मदिन इन लोगों के साथ मनाया?
7: हाँ, कुछ मिठाइयाँ और जरूरत का सामान बांटा।
6: कल ही मेरी दादी मुझसे कह रही थी कि वे हर समय भगवान का शुक्र करती है, उन्हें मेरी मम्मी पापा जैसे बच्चे मिले और मैं और मेरी बहन जैसा पोता पोती।
3: ये टॉपिक बिल्कुल ठीक रहेगा, और फिर बाद में जब अपनी सोसाइटी में से दिखाएंगे तो कई ऐसे घर जहां बुजुर्ग लोग तकलीफ में हैं, उनके बच्चों तक हमारा संदेश सही से पहुंच जाए।

0: का।
1: हाँ, और बिना कुछ सीधे सीधे कहे ही हो सकता है उन्हें अपनी गलती का पता चल जाए और वो उसे सुधार लें।
2: ऐसे किसी की भावनाओं को ठेस भी नहीं पहुँचेगी और हमारा लक्ष्य भी हासिल हो जाएगा।
3: और क्या, हमारे नुक्कड़ नाटक का यही तो लक्ष्य होगा ना, लोगों को हमारे समाज में बढ़ते बुजुर्गों की तकलीफों की ओर सजग करना,
0: उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाना,
4: उनका ध्यान बुजुर्गों की भावनाओं का ध्यान और उनका सम्मान करने की ओर आकर्षित करना।
5: पर दीदी, कोई हमारी बात का बुरा तो नहीं मानेगा ना?
6: यही तो नाटक और कला का फायदा होता है, बात सबके सामने प्रकट कर दी जाती है और सब अपने अपने विचारों के अनुसार उनका मतलब भी निकालते हैं और उनसे कुछ सीखते भी हैं। चलो चलो, अपने अपने आइडिया दो मुझे।
4: दीदी, हम एक गीत से शुरू करेंगे। जैसे

0: यही गीत क्यों?
1: इस गीत में दोस्ती का महत्व बताया गया है और अगर सब रिश्ते नातों में दोस्ती की भावना आ जाए तो सब सरल हो सकता है।
2: सब रिश्तों में मतलब?
1: मतलब भाई बहन से दोस्ती करे, नाना जी दादाजी से दोस्ती करे, सब पड़ोसी दोस्ती करे।
0: हाँ, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था।
2: हम दोस्तों में सब कुछ होता है, मजाक भी, अनबन भी, लड़ाई भी, एक दूसरों की मदद भी करते हैं, पर फिर एक होकर हंसकर, हर बात को एक खेल समझकर, सब बुरी भावनाओं को भुलाकर प्यार से रहते हैं।
3: कितना मजा है ना, अगर हम अपने माता पिता के फ्रेंड बन जाएं, उनकी हर काम में मदद करें, या हमारे माता पिता हमारे दादा दादी के दोस्त बनकर उनसे भी हंसी मजाक की बातें करें।
4: पर गुरु को भी तुम्हारा मित्र बनना होगा, छोटी छोटी बातों को बुरा ना मानकर हमारी गलतियों को माफ करना होगा।
5: पर हमारी गलतियों को फिर सुधारेगा कौन?
1: बड़े ही तो सुधारेंगे, पर प्यार से, आराम से, नरमी से, मधुर स्वर में वार्तालाप करके।
0: हाँ, प्यार से, आराम से, एक दोस्त की तरह किसी से भी बात की जाए तो कुछ भी समझाया जा सकता है।
6: वाह भाई वाह, तुम सब तो बड़े ज्ञानी हो गए हो। चलो ऐसे ही कुछ शुरू करते हैं। तालियों से पहले शुरू करते हैं।
1: दादा दादी मेरे दोस्त, नाना नानी मेरे दोस्त।
7: हाँ भाई हाँ, हाँ भाई हाँ।
2: पापा मम्मी मेरे दोस्त, भैया दीदी मेरे दोस्त।
7: हाँ भाई हाँ, हाँ भाई हाँ।
0: सबको अच्छी सीख है देते।
7: वाह वाह, वाह वाह, वाह वाह।
0: सबकी परेशानी हल लेते।
7: वाह वाह, वाह वाह, वाह वाह।
0: कहानियों की है ये खान।
7: हाँ भाई हाँ, हाँ भाई हाँ।
3: जब मैं छोटा बच्चा था, पकड़ उनकी उंगली चलता था।
7: हाँ भाई हाँ, हाँ भाई हाँ।
5: अब वो निर्बल हो गए हैं, तो मैं उनका हाथ थामूंगा।
7: वाह वाह, वाह वाह।
5: अपना कर्तव्य निभाऊंगा, अपना फर्ज निभाऊंगा।
7: हाँ भाई हाँ, हाँ भाई हाँ।
0: बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने अपना निभाया था जब मैं छोटा बच्चा था।
7: हाँ भाई हाँ, हाँ भाई हाँ।
2: उनका बरसाया प्यार मैं दुगना कर लौटाऊंगा।
7: वाह वाह, वाह वाह, वाह वाह। ये दोस्ती।

0: पर दीदी एक बात मेरे मन में आ रही है।
1: क्या?
0: बच्चे भी तो वही सीखते हैं जो वे देखते हैं।
2: हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। अगर बच्चों की तरफ माता पिता का रवैया अच्छा न हो या वो अपने बड़े का आदर न करते हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चे उनसे ही गलत सीख रहे हैं?
1: उन्हीं से नहीं, कई बार गलत पिक्चरें देखकर या पाश्चात्य सभ्यता की कमजोरियों से प्रभावित होकर या और किसी बुरी संगति के प्रभाव में आकर, किसी और कारण से भी।
3: पर और देश तो भारत की ओर देख रहे हैं ज्ञान और सभ्यता के लिए।
1: यही तो बात है, हम ये अपनी कद्र नहीं कर रहे हैं। यहाँ मुझे ये प्रार्थना गीत याद आ रहा है।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता है। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स, क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद मैं उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर दूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं। यू नो, इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं। डू आई वॉन्ट देन, नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी, कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है, हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, एंड आई कैन क्रिएट इट व्हेन, वेयर एवर एंड फॉर हाउ एवर लॉन्ग आई वॉन्ट, सो देन इट्स माई चॉइस। सो नाउ इट्स योर चॉइस, आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं, क्रिएट इट।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

कौन जाने मैं क्या हूँ, सुनना चाहते हो? सुनो, मैं एक चांद हूँ जिसके माथे पे एक दाग है, मेरा दिल जलता हुआ चिराग है।

0: है दिल में दर्द रहता है।
1: अच्छा,
0: मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती।
1: बाप रे,

जाके बाजार से भगवा चुनरी ले आना, जाग से फिर संसार प्राणी बन में बस जाना। यदि फिर भी तू फिरे दिल को खाना, सुरक्षा कर।

ಮಗನ ಓ ರಬ್ಬ ಖೈರ್ ಖೈರ್ ಓ ರಬ್ಬ

है।

अय्या करूं मैं क्या सुख सुख, अय्या करूं मैं क्या सुख सुख, खो गए

0: मैं दुनिया से बेखबर चलता हूँ अपनी डगर, मंजिल है मेरी प्यार।
1: अय्या सुकु सुकु,
0: अय्या करूँ मैं क्या, सुकु सुकु खो गया दिल मेरा, सुकु सुकु अय्या।

0: सांसों में नशा, मेरी सांसों में नशा, बहका मैं बिनती है घुटते घुटते बेबसी, सहमी सहमी हर घड़ी, बिन चाहत क्या जिंदगी जीता मैं किस लिए।
1: अय्या सुकू सुकू,
0: अय्या करूँ मैं क्या, सुकू सुकू सो गया दिल मेरा, सुकू सुकू।

0: छोटी, रोटी वोटी कुछ न मिली, पीछे पड़ी मोटी।
1: रे मम्मा रे, रे मम्मा रे मम्मा रे।
0: सुन लो सुनाता हूँ तुमको कहानी, रूठो ना हम।

ने इतना उकसाया, दिल रोके रुक ना पाया। तुमने इतना उकसाया, दिल रोके रुक ना पाया, मेरे एहसास में आ

तुम मेरे राजा हो राजा आजा आजा आजा।

0: प्रिये किसी का मन ना तोड़ो, देखो सुनो जाने दो छोड़ो।
1: नारायण नारायण, बात हुई क्या कृष्ण मुरारी, क्यों रूठी है सुंदर नारी।
0: अच्छे समय पर आप पधारे, विपदा में है प्राण हमारे। रुक्मिणी कहे मेरे संग आओ, भामा कहे नाथ मत जाओ।
1: जिसका निमंत्रण आया पहले, भगवान जाए उसके महले।
2: नारद जी।
1: नारायण।

0: नहीं अभी खाओ पुरानी, फिर आए हो आग लगाने।
1: मैं सबका सेवक तुम जानो, चाहे परख लो जो ना मानो।
0: कोई उपाय आप बताएं, वो सौतन के घर ना जाए।
1: अच्छा तो एक व्रत रखोगी, अपने पति का दान करोगी।
0: वाह वाह, ढूंढा खूब उपाय, आपसे तो बस राम बचा। जिस दिन देखूं जिनके सपने खो बैठूं वो प्रीतम अपने।
1: तुम नहीं समझी कैसा खोना, उनके बराबर तोल के सोना, मोल ब्राह्मण को दे देना, मोहन को वापस ले लेना।
0: बस इतना ही, आप करें व्रत की तैयारी, भामा जी की रुक्मिनी हारी।
1: परंतु कृष्ण है भारी जितना, तेरे पास है सोना इतना।
0: वाह नारद जी, सोने के भंडार जो खोलूं, एक नहीं सौ कृष्ण मैं तोलूं।
1: नारायण नारायण।

0: ठोका है राम दुहाई, इतनी भारी नहीं तन्हाई।
1: ये तेरा सोना नकली है, मेरा मनमोहन असली है।
0: मेरे पास जो था ले आई, दे दू मुझको कृष्ण कन्हाई।
1: दे दू लेके जरा सा सोना, मोहन है या कोई खिलौना। चल तुझको संसार में बेचूं, दांतों के बाजार में बेचूं। लो ये तंबूरा बंसी बजाइया, पकड़ो ये करताल कन्हैया।
2: भामा
0: स्वामी।
1: कैसा स्वामी, किसका स्वामी? स्वामी की होगी नीलामी।
0: नीलामी